ओम शांति। कई आत्माएं कहती हैं हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, ये हमारा श्रेष्ठ भाग्य मिस हो गया। लेकिन अगर हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने लगे तो हमारी ये भासना रहेगी कि वो हमारे सदा साथ रहते हैं, और ये जो एक संकल्प चलता है कि हमने उनकी पालना नहीं ली, ये समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा बाबा सच्चे अर्थों में माता पिता थे, केवल कहने के लिए नहीं, उनकी भावनाएं, उनका दिल वैसा ही था जैसे माता पिता का होता है। पिता से भी अधिक कहीं वो माँ थे, क्योंकि शिव बाबा ने उनको बड़ी माँ बना दिया था। उनके चित्त में सभी के लिए वैसा ही प्यार समाया हुआ था। हम भी उन्हें फॉलो करें, माता पिता बन जाएं, सबकी पालना करने वाले, सबको देने वाले, जैसे माता पिता को बच्चों से कुछ लेने की इच्छा नहीं रहती, केवल देने की रहती है। बच्चों को योग्य बनाना है, उन्हें प्यार देना है, उन्हें हेल्दी रखना है, उनकी अच्छी पालना करनी है, ताकि बड़े होकर वो बहुत अच्छा अपना जीवन व्यतीत कर सकें। वैसे ही बाबा को भी रहता था, और हमें भी सब आत्माओं के लिए वैसा ही रहना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हैं, और पूर्वजों को सबकी पालना करनी होती है, और इस पालना के लिए हम अपने अंदर बहुत अच्छा संकल्प ले लें, मैं पूर्वज हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ। जैसे और जगह सभी को इंचार्ज बनने की इच्छा होती है, सेवाओं के इंचार्ज, किसी सेवा केंद्र के इंचार्ज और बड़े इंचार्ज, क्योंकि उससे मान मिलता है, उससे कई सत्ताएं अपने पास रहती हैं, परंतु हम अपने को विश्व कल्याण का इंचार्ज मान लें, भले इसमें हमें मान नहीं मिलेगा, भले इसमें हम लोगों की नजरों में नहीं आएंगे, पर हम गुप्त रूप से, सूक्ष्म रूप से संसार की सभी आत्माओं की पालना करते रहेंगे, और एक दिन आएगा सारा संसार हमें सम्मान देगा, प्रकृति भी हमें सम्मान देगी, क्योंकि उसको, उसकी भी तो हमें पालना करनी है, उसको भी तो हमें सत्व प्रधान बनाना है। प्रकृति अपनी शक्ति खो चुकी है, हमें उसकी शक्तियाँ पुनः उसमें भर देनी है, और सबको याद रहे प्रकृति की मूल शक्ति है पवित्रता। जो आत्माएं जितनी पवित्र हैं, मानो उनके वाइब्रेशंस प्रकृति की पालना करते रहते हैं। जो आत्मा पवित्र बन भी गई, चाहे उनकी पवित्रता कितनी भी कम हो, लेकिन ये पवित्रता प्रकृति की पालना कराती है। तो हम विश्व कल्याणकारी हैं, पूर्वज हैं, हमें तो सबका कल्याण करना है। जब हमें सबका कल्याण करना है तो हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या कैसे हो सकती है, घृणा नफरत कैसे हो सकती है, गिराने की भावना कैसे हो सकती है। हम तो विश्व कल्याणकारी हैं, हमें तो सबको आगे बढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ते देख प्रसन्न होना है, उनको उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते देख हमारा दिल फूल जाए, हमारा दिल आनंदित हो जाए, हमारा चित्त शीतल हो जाए। ये विश्व कल्याणकारी आत्माओं के लक्षण हैं। तो आज सारा दिन हम ये स्मृति रखेंगे, मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याण की इंचार्ज हूँ, ये मेरा मुख्य कर्तव्य है, और सब कर्तव्य तो निमित्त मात्र हैं। मेरा असली कार्य तो आत्माओं को बल देना है। मैं तने में हूँ, मैं जड़ों में हूँ, मेरा एक एक संकल्प संसार की सभी आत्माओं तक पहुँचता है, ये ध्यान रखना है। अगर हम स्वमान में रहते हैं तो हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का बल संसार की सभी आत्माओं का कल्याण करता रहता है। ये सूक्ष्म गति हमको समझ लेनी है। ये सबसे बड़ा पुण्य हो गया कि हम संकल्पों के द्वारा सभी आत्माओं की निरंतर पालना करते रहें, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमारे व्यर्थ
संकल्प, हमारे इम्प्योर संकल्प अनेक आत्माओं को निगेटिव एनर्जी भी देंगे, ये बहुत बड़ा पाप भी हो जाएगा। तो ब्राह्मण आत्माएं, पूर्वज आत्माएं बहुत बड़ा पुण्य भी कर सकते हैं और बड़ा पाप भी। तो आज सारा दिन दो स्वमान की स्मृति विशेष रखेंगे, मैं पूर्वज और विश्व कल्याणकारी हूँ, और कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर बाबा से शक्तियाँ लेकर पवित्रता लेकर पूरे कल्प वृक्ष में फैलाते रहेंगे। एक बार हर घंटे में कल्प वृक्ष को वाइब्रेशंस देने का विश्व कल्याण का कार्य आज सारा दिन करना है, इससे महान पुण्य जमा होता रहेगा। ओम शांति।

0: होती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
2: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। हेलेन केलर ने लिखा है, आशावाद के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। आशा के बिना कोई भी कार्य किया ही नहीं जा सकता। चार्ल्स किंग्सले का कहना है कि मैंने जिन व्यक्तियों को सफलता प्राप्त करते देखा है, वह सब हमेशा प्रसन्नचित और आशावान रहा करते थे। व्यापार को आरंभ करते समय उनके मुख पर जो मुस्कान खेलती रहती थी और पौरुष की जो चमक उनके चेहरे पर दिखाई पड़ती थी, उसी कारण उन्होंने अवसर का लाभ उठाकर सफलता प्राप्त की। उन्होंने कठोरता को कठोर होकर सहा और कोमलता के प्रति उनके मन में सदा ही सुकुमारता ही रही। किसी भी प्रसन्नचित व्यक्ति के चेहरे की ओर दृष्टि डालिए, उसमें इतनी रचनात्मक शक्ति होती है जितनी निराशावादी व्यक्ति में कभी नहीं हो सकती। क्योंकि प्रकाशपूर्ण आशा आकांक्षा के समान ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है जिससे जीवन की उकताहट और उदासी दूर हो सके, जिससे मार्ग में आने वाले कष्टों और रुकावटों को सहने की शक्ति प्राप्त हो सके और जीवन मधुर बन सके। समान योग्यता होने पर भी प्रसन्न मन वाले व्यक्ति अधिक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि प्रसन्नता रूपी तेल से हमारे मस्तिष्क रूपी यंत्र के कल पुर्जों में किसी प्रकार की रगड़ अथवा टूट फूट नहीं होती। प्रसन्न चित्त व्यक्ति का शरीर सदा स्वस्थ रहता है, जबकि चिंतित व्यक्ति का शरीर सदा रोगी रहता है। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा, रूखा और प्रसन्नता से रहित होता है, इसलिए उसके शरीर रूपी यंत्र के पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं और उसका शरीर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। सुविख्यात डॉक्टर जे सैंडरसन ने लिखा है, स्वस्थ रहने और रोग को दूर रखने में प्रसन्नता का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। प्रसन्नता का अभाव किसी औषधि की भांति शरीर के कोशों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि वास्तव में जीवन शक्ति प्रदान करता है और प्राकृतिक मार्गों से इसकी अनुभूति शरीर के प्रत्येक भाग को प्राप्त होती है। प्रसन्न व्यक्ति के नेत्र सदा चमकते रहते हैं, उसकी चाल में एक मस्ती भरी लचक आ जाती है और उसके चेहरे पर एक ऐसी रक्तिम आभा दिखाई पड़ती है जिसे देखकर अन्य लोग भी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न व्यक्ति के तंत्रिका कोशों में ऑक्सीजन स्वच्छंद रूप से प्रवाहित होती है, तभी उनकी रोग निरोधक शक्ति बढ़ जाती है और उनका स्वभाव उन्नत होता चला जाता है। तो सुना आप सभी ने, प्रसन्नचित रहने के कितने सारे लाभ होते हैं।

तभी कुछ वर्ष पहले की बात है कि एक किसान के फेफड़े में रोग था। एक दिन हल चलाते हुए उसे खून की उल्टी आ गई। उसने चिकित्सक को दिखाया तो चिकित्सक ने कहा, अब तुम शीघ्र ही मर जाओगे। किसान ने बड़े शांत भाव और दृढ़ निश्चय पूर्वक चिकित्सक को उत्तर दिया, मैं अभी मरने को तैयार नहीं हूँ। वाकई उस किसान की शारीरिक शक्ति निरंतर बढ़ती चली गई और वह दिनों दिन ठीक होता चला गया। इसका एक कारण यह भी है कि उस किसान ने अपने स्वभाव को उल्लासपूर्ण बना लिया था। छोटी छोटी बातों पर भी उसने हंसना शुरू कर दिया। न हंसने योग्य बातों पर भी वह खिलखिलाकर हंस पड़ता था। इस प्रकार वह एक मनमौजी जीव बन गया और धीरे धीरे उसका रोग बिल्कुल समाप्त हो गया। उस किसान को यदि प्रसन्न रहने की आदत न होती तो वह वास्तव में मर गया होता। हंसी अनेक लाइलाज रोगों का एक इलाज है, जिसके द्वारा शरीर पुनः स्वस्थ किया जा सकता है और भयंकरतम रोग भी नष्ट किए जा सकते हैं। शरीर में एकत्र विजातीय द्रव्यों अर्थात विषों को नष्ट कर और मानसिक समन्वय पैदा कर स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हंसी एक अनमोल दवा मानी गई है। अन्य लोगों के दोष जो व्यक्ति बार बार निकालता है, उनकी निंदा करता है, शिकायत करता है, वह कितनी ही बार यह स्वीकार करता है कि उसके शत्रु की शक्ति उससे कहीं अधिक है। वह मान लेता है कि उसके विरोधी की ताकत उससे अधिक है और इस प्रकार वह अपनी प्रसन्नता को ही नष्ट कर डालता है। प्रसन्नता की इन शत्रुओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है उनकी उपेक्षा कर उनको अपने मस्तिष्क में घुसने ही मत दो। उन विचारों का अस्तित्व ही मानने से इनकार कर दो, क्योंकि वह मिथ्या अस्तित्वहीन है। जबकि स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं सफलता यह वास्तविक तथ्य है और जीवन की सच्चाई है। एक महान दार्शनिक ने कहा है कि जहाँ तक मेरा वश चलता है, मैं किसी बात से भी अपने मन को दुखी नहीं होने देता। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए जो कुछ भी होता है वह अच्छा ही होता है। जॉन लुम्बक ने एक स्थान पर लिखा है कि यदि हमारे अध्यापक और उपदेशक प्रसन्नता और कार्य पर ही ध्यान दें तो हमारा जीवन ही क्या, यह सारा संसार कहीं अधिक आनंदमय हो जाए। सच ही तो कहा है जॉन लुम्बक।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही आत्म मंथन से शांति, सच्चाई और समाधान निकलते हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

दूसरों को प्रसन्न रखने का महत्वपूर्ण उपाय है कि स्वयं प्रसन्न रहना। इस प्रकार की प्रसन्नता स्वास्थ्य को बड़ा लाभ पहुंचाती है, क्योंकि तब हमारा चित्त शांत रहता है, तब हमारे अंग प्रत्यंग विधिवत अपने अपने काम को पूरा करते रहते हैं, तब हमारे समस्त शरीर में पूर्ण समन्वय, पूर्ण संचालन, पूर्ण सामंजस्य बना रहता है। और इस बात से तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, विक्षुब्ध मन की अपेक्षा किसी भी कार्य को पूर्ण करने में शांत मन अधिक समर्थ होता है। अस्थिर जोश या धूमधड़ाका सोडे की बोतल की भांति थोड़ी ही देर तक रहता है, जबकि शांत व स्थिर मन से किया गया कार्य प्रभावशाली, सफल एवं चिरस्थायी होता है, क्योंकि शांत चित्त व्यक्ति में शक्ति का स्वाभाविक निवास होता है। शांत चित्त व्यक्ति कभी भी असंतुष्ट, अचिंतित अथवा अति महत्वाकांक्षी नहीं होता। वह सदा ईमानदारी से काम करता है। वह न तो आलस्य के कारण अकर्मण्य ही होता है और न किसी आवेश में आकर कोई अन्याय ही करता है। प्रसन्न चित्त व्यापारी को सभी पसंद करते हैं, क्योंकि उसका व्यापार विनयशील और शांत होता है, और अपनी इस व्यवहार कुशलता के कारण वह हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या आप किसी मनहूस व्यक्ति का चेहरा देखना पसंद करेंगे, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखना पसंद करेंगे जिसे देखकर आपके मन में आशा का संचार हो जाए, जिसे देखकर आपको कर्म की प्रेरणा मिले? वर्तमान व्यावसायिक जगत में वातावरण बड़ा गंभीर हो चला है। इस समय उल्लास नाम की चीज ही समाप्त होती जा रही है। मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसे कम करने की आवश्यकता है। इस मानसिक तनाव को कम किया जा सकता है प्रसन्नचित और हंसमुख व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ग्राहकों के चिड़चिड़ेपन को भी दूर कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। बड़े बड़े व्यापारिक संस्थाओं में ऐसे ही सेल्समैन रखे जाते हैं जो सदा हंसमुख एवं प्रसन्नचित रहें, ताकि अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें तथा व्यापार की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकें। समाचार पत्र के संवाददाताओं को भी तथ्य प्रकट करने के लिए प्रसन्नचित और प्रफुल्लित होना आवश्यक है। यह तो एक आम बात है कि प्रसन्न और प्रफुल्लित व्यक्ति को हर कोई अपने पास बिठाना चाहता है, उसका स्वागत करता है, जबकि चिड़चिड़े स्वभाव वाले खिन्न मना अथवा निराशावादी व्यक्ति को कोई भी अपने समीप बिठाना पसंद नहीं करता। अनेक ऐसे व्यापार हैं जो प्रसन्नता, शिष्टाचार और मधुर स्वभाव पर ही आधारित हैं। यदि किसी संस्थान के कर्मचारी प्रसन्न, प्रफुल्लित और मृदुभाषी बन जाएं, तो उन्हें अनेकानेक सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, उनका वेतन बढ़ सकता है और वह शीघ्र ही पद उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहते हैं, वह हमेशा अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और खुद भी खुश रहते हैं, साथ ही साथ अन्य को भी खुशी बांटते चले जाते हैं।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सारा संसार अनेक प्रकार के कष्टों व दुखों से भरा हुआ है। इसे आवश्यकता है हर्ष रूपी प्रसन्नता रूपी सूर्य के प्रकाश की। इसे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो लोगों को उत्साहित करें। प्रसन्नता से उल्लासित व्यक्ति की आत्मा का मूल्यांकन कौन कर सकता है? ऐसे व्यक्ति जहां भी जाते हैं प्रसन्नता रूपी प्रकाश डालते जाते हैं, जिसे देखकर निराशा रूपी अंधकार दुम दबाकर भागता प्रतीत होता है। मनहूसियत भाग जाती है, कष्ट मिट जाता है, लोगों के मन प्रसन्नता से रोमांचित हो उठते हैं और वे भी सोचने लगते हैं कि वे भी ऐसे ही प्रसन्न बन जाएं। ऐसे व्यक्ति के सामने धन संपत्ति जमीन जायदाद सब है प्रतीत होने लगते हैं। प्रसन्नता की किरणों में सौंदर्य की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। योग्यता की तुलना में भी प्रसन्नता कहीं अधिक ऊंची है। व्यक्तित्व उज्जवल और दिव्य हो जाता है। प्रसन्नता बड़े ऊंचे दर्जे का ऐश्वर्य है और प्रसन्न व्यक्ति जहां कहीं भी जाता है वहीं प्रसन्नता फैलाता जाता है। फिर भी उसकी प्रसन्नता समाप्त नहीं होती बल्कि बढ़ती ही जाती है। उसकी प्रसन्नता रूपी किरणों से अनेक शोकाकुल व्यक्तियों के हृदय में उज्जवल प्रकाश भर जाता है। यदि प्रसन्नता के साथ व्यक्ति को लोक व्यवहार की कला तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी प्राप्त हो जाए, तब तो संसार की कोई भी धन संपत्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकती। इस प्रकार की धन संपत्ति को प्राप्त करना विशेष कठिन भी नहीं है। आप मुस्कुरा सके, हंस सके, आपके चेहरे पर उदारता दिखाई पड़े और आपको देखकर दूसरे लोग भी प्रसन्न हो सके, तो आप भी इस संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। प्रसन्नता दिखावे की चीज नहीं है, यह तो आत्मा की झलक है। इसका उदय आत्मा से होता है। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे पर जो चमक दिखती है वह वास्तव में आपकी आत्मा की चमक का ही प्रतिबिंब होता है। आपको अपने हृदय को उदार बनाना होगा, हर किसी से दिल खोलकर मिलना होगा। ऊपरी मुखौटे के पीछे छिपे व्यक्ति के वास्तविक रूप को पहचानना होगा। जब आप इस महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेंगे तो आपके हृदय में सद्गुणों का विकास होता जाएगा और तब ज्योत से ज्योत जगाते हुए आप हर किसी के बोझ को हल्का कर सकेंगे, हर किसी के कष्ट को हल्का कर सकेंगे। दूसरे को दुखी देखकर आपके मन में केवल सहानुभूति ही नहीं उपजेगी बल्कि सहानुभूति का उदय होगा और तब आपकी वाणी से आपके कर्मों से जो शीतल व कोमल शब्द निकलेंगे वह रेगिस्तान में तपते लोगों को मानसून की वर्षा का आनंद दे जाएंगे। तब इस प्रकार की मानसिक शक्ति और आनंद से आपको जो लाभ प्राप्त होगा वह किसी भी प्रकार की योग्यता से कम नहीं होगा। आशा का सूर्य उदय होते ही निराशा की निशा लुप्त हो जाती है, हंसते मुस्कुराते ही उदासी दूर हो जाती है।

0: आप हो रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: उल्लास की भावना आते ही चिंताएं नष्ट हो जाती हैं, दया एवं परोपकार की भावना आते ही सब दुख दूर हो जाते हैं। आनंद से पूर्ण व्यक्ति के आते ही लोग मुस्कान द्वारा उसका स्वागत करते हैं और तब संपूर्ण वातावरण से प्रसन्नता और हर्ष की एक मादक लहर दौड़ जाती है। यदि आप अपने कार्य या व्यवसाय को विस्तृत और विकसित करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने स्वभाव में प्रसन्नता लाएं और उल्लास पैदा करें, उसे हर्ष समन्वित बना दें। आप अपने मन में दूसरों की सेवा करने की भावना पैदा करें। इस प्रकार उल्लास और परोपकार के भाव मन में आते ही आपके कार्य का विस्तार और विकास होता जाएगा। मित्र आपसे मिलने के लिए आपकी राह तकेंगे और ग्राहक आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपका व्यवसाय दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करता चला जाएगा। संभव है कि आपके मन में अन्य व्यक्तियों के दोषों व बुराइयों को ही खोजने की आदत हो, लेकिन आपको चाहिए कि अपने मन को विवश करें कि वह दूसरों के केवल सद्गुणों को ही देखें, उनके सद्गुणों को ही अपनाने का प्रयत्न करें, क्योंकि ईश्वर ने जितने भी व्यक्ति बनाए हैं उनमें से प्रत्येक में उसने कोई न कोई विशिष्ट गुण अवश्य भर दिया है। रस्किन ने कहा है, अपने दोषों की चिंता मत कीजिए और दूसरे के दोषों की चिंता और भी कम कीजिए। जो भी व्यक्ति अपने पास आता है, सोचिए और यह जानने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या विशेषता है, क्या सद्गुण है। इससे आपके कष्ट उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जिस प्रकार वृक्ष से सूखे पत्ते अपने आप झड़ने लगते हैं। यदि आप अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लें कि भविष्य में किसी को भी कठोर वचन नहीं कहेंगे और दूसरों में उनके गुणों को ही ढूंढने का प्रयत्न करेंगे, तो इससे ही आपको अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होता दिखाई देगा। शांत और प्रसन्नचित होकर आप किसी को भी देखिए, भले ही मुंह से कुछ न बोलिए, लेकिन फिर भी आप उसके मन को प्रसन्नता और शक्ति का संदेश ही दे जाएंगे। हर घटना के उज्जवल पक्ष की ओर देखने की आदत बना लें, तो आप पाएंगे कि संसार में आपके लिए कष्ट का कोई भी कारण शेष नहीं रहेगा। यदि कोई छोटा मोटा कष्ट आ भी गया तो भी आप में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप उसे भी सुखमय बना दें। पर इसके लिए अपने स्वभाव के चिड़चिड़ेपन को, कटुता को, बेचैनी को, दूसरों में दोष निकालने की प्रवृत्ति को दूर करना होगा और शांत एवं प्रसन्नचित रहना होगा। अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। दूसरों के दुर्गुणों की आलोचना करने की अपेक्षा उनके सद्गुणों को अपनाना होगा। तब आपका व्यक्तित्व प्रसन्नता से सराबोर हो जाएगा। तब मानवता के सभी वरदान और संसार की सभी सिद्धियां आपके चरणों पर आ गिरेंगी। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते

सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

0: चक्र का पहिया जिस प्रकार अपनी धुरी पर घूमता रहता हूं, उसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा भी परमात्मा शिव की याद रूपी धुरी के सहारे निरंतर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर रहते थे। पहाड़ जैसे विघ्नों को रुई की भांति पार करते वे ईश्वरीय सेवा के कार्य में नित नवीन प्रयोग करते रहते थे। धुन के पक्के एवं लगन के सच्चे ब्रह्मा बाबा कम समय में ही लाखों भारतवासियों के प्रेरणा मूर्त बन गए थे। वे जिस तरह से स्वयं गृहस्थ में रहते हुए कर्म योगी बनकर आध्यात्मिकता के मार्ग पर चले, उससे अनेकानेक मनुष्यों को भी इस राह पर चलने का असीम बल मिला।
1: अब आप सुनेंगे नवसृष्टि के रचयिता युग प्रवर्तक ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूप।

0: भक्ति मार्ग में हमने देखा है कि कैसे अपने इष्ट की आराधना के उपरांत ही लोग मुख में अन्न का निवाला लिया करते हैं। ब्रह्मा बाबा भी यज्ञ वत्सों से सर्वप्रथम ज्ञान अध्ययन अथवा परमात्मा शिव की ज्ञान मुरली सुनने को कहा करते थे।
1: उनका कहना था कि संगम युगी ब्राह्मण जब तक ज्ञान मुरली न सुन लें, दूसरों को न सुना लें, तब तक उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए। बाबा ने उनसे मिलने आने वाले को निर्देश दे रखा था कि यदि किसी की ज्ञान मुरली सुनने में प्रीति नहीं तो मानो कि उसकी बाबा से भी प्रीति नहीं। वे कहते थे कि बुद्धि में ज्ञान की कोई पॉइंट न होने से या ठीक रीति से न समझने से ही माया से हार होती है।
0: वहीं जो ठीक से समझ लेता है तो उसकी जीत पक्की होती है। बाबा ज्ञान के पॉइंट्स को माया से युद्ध करने के अस्त्र शस्त्र मानते थे। इस तरह जो प्रतिदिन ज्ञान

0: बुद्धि सुनता है, उसका अध्ययन करता है, उसकी बुद्धि स्वच्छ एवं तेज होती जाती है। बाबा कहते थे,
1: बच्चों, शिव बाबा का ये ज्ञान तो इतना मधुर एवं सुखप्रद है कि उसे सदैव सुनते रहने का मन करता है। इससे देह की सुध भी मिट सी जाती है। हम आत्मनिश्चय होकर जब शिव बाबा के ज्ञान मोती चुगते हैं तो प्रभु मिलन के सुख में विलीन हो जाते हैं। परंतु इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि हम अपना कर्म करना छोड़ दें। यह न भूलें कि आप राजयोगी के साथ कर्मयोगी भी हैं।
2: बाबा जहां ईश्वरीय ज्ञान एवं योग द्वारा आत्मा को तन्मयता की ओर ले जाते, वहीं वे लोगों को अपने सामाजिक कर्तव्यों के प्रति सतर्क भी करते। वे देह के संबंधियों के साथ पवित्र नाता निभाने को कहते तो कछुए की भांति कर्मेंद्रियों को समेटना सिखलाते।
0: साथ ही योगियों की तरह देह और देह के संबंधियों को भूलकर केवल परमपिता परमात्मा की याद में मन को एकाग्र करने का तरीका भी समझाते। बाबा कहते थे,
1: बच्चे, जबकि आपने रचना रची है, अर्थात गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, तो उन्हें संभालना भी आपका कर्तव्य है। यह आपका कर्मों का खाता है, इसे आपको ही चुकता करना है। इसलिए ट्रस्टी बनकर पवित्र रहते हुए अपने गृहस्थ एवं प्रवृत्ति को चलाओ।

0: बाबा समझाते थे कि जिस प्रकार फौजी युद्ध में अस्त्र शस्त्र हथियारों की मदद से दुश्मनों से देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य आत्माओं को पांच विकारों देह अभिमान एवं काम क्रोध आदि से मानसिक रूप से युद्ध करना होता है।
1: वे कहते थे कि शिव बाबा ने आकर समझाया है कि भारत और विश्व में सुख का स्वराज्य छीनने वाले शत्रु वास्तव में ये काम क्रोध लोभ आदि मनोविकार ही हैं। इन्होंने ही हर एक मनुष्य को अपना गुलाम बनाया हुआ है। लेकिन अफसोस कि विश्व भर के लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि ज्ञान एवं योग रूपी अस्त्रों शस्त्रों के बिना विकारों रूपी माया से लड़ाई नहीं जीती जा सकती।
0: और जब तक माया पर जीत नहीं पाते तब तक संसार में सुख शांति की स्थापना नहीं हो सकती। बाबा को लगता था कि गीता के प्रति मनुष्यों के मन में बैठी भ्रांति को दूर करना बहुत आवश्यक है, इसलिए वे अक्सर गीता के राज स्पष्ट करते रहते थे। वे कहते थे,
2: देखो बच्चे, भारत के लोग गीता को लेकर कितने बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि गीता में परमात्मा के लिए जो भगवानुवाच शब्द का प्रयोग हुआ है वो भगवान आखिर कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। वे ये भी मान बैठे हैं कि अर्जुन घोड़ों से चलने वाले एक रथ पर सवार थे और श्री कृष्ण उस रथ को चला रहे थे। लोगों को बताना चाहिए कि गीता के भगवान तो सर्व आत्माओं के परम पिता थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में नहीं और केवल एक अर्जुन को नहीं बल्कि सारी सृष्टि के लिए ज्ञान दिया था। अब उसी वृत्तांत की पुनरावृत्ति हो रही है।

0: आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि मनुष्य आत्माएं किन किन विकट परिस्थितियों का सामना कर रही हैं, शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से संघर्ष कर रही हैं। चारों ओर एक नकारात्मक वायुमंडल बन गया है।
1: प्रकृति भी अपना विकराल रूप दिखा रही है। लोग परेशान हैं और तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्या करना सही होगा। खुशी एवं शांति की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, गुरुओं की शरण ले रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार भाई बहन योग तपस्या के बल से ऐसी हर मुश्किल परिस्थिति को पूरे धैर्य एवं संयम से पार कर पा रहे हैं। लोग पूछते हैं कि इसका राज क्या है।
0: दरअसल ये शिव बाबा के ज्ञान का प्रतिफल है। परमात्मा वर्षों से ब्रह्मा बाबा द्वारा यज्ञ वत्सों को ज्ञान के गहन तत्व अनेक प्रकार से समझा रहे हैं।
1: मानो वे हरेक को पहले से ही इस प्रकार की परिस्थिति से पार होने के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे हों।
2: बाबा, मैं अपनी बीमारी से परेशान हो चुकी हूँ। न जाने कौन से जन्म के पाप हैं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। मैं थक गई हूँ बाबा।
3: बाबा, मेरे बिजनेस में मुझे लगातार घाटा हो रहा है। मैं बहुत चिंतित हूँ बाबा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ।
4: बच्चों, अब आप लोग अपने इस उच्च आध्यात्मिक पुरुषार्थ के द्वारा मानव से देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। इसका अर्थ है कि अब आप संपूर्ण पवित्रता के द्वारा निरोग, सदा शांत, सदा सुख पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। ये रोग शोक इत्यादि आपसे अंतिम विदाई लेने के लिए आते हैं। आप इसी दृष्टि से इन्हें देखिए, इन्हें सलाम करिए और इस हर्ष में रहिए कि इसके बाद तो हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। फिर जब नई काया मिलेगी तो देवताओं के समान सदा निरोगी कंचन काया मिलेगी, जिसे काल, दुर्घटना, रोग इत्यादि आतंकित नहीं करेंगे।
0: ब्रह्मा बाबा सदैव इस खुशी में रहते थे कि उन्हें त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ एवं स्वर्गिक राज्य भाग्य देने वाले परम पिता परमात्मा मिले हैं। शिव बाबा द्वारा प्राप्त दिव्य बुद्धि एवं दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त कर वे स्वयं को अति भाग्यशाली मानते थे।
1: सदा हर्ष से सराबोर रहते थे। फिर चाहे कैसी भी हलचल वाली परिस्थिति क्यों ना आए, यहां तक कि जब बाबा को शिव बाबा से संदेश मिला कि मातेश्वरी जगदम्बा शीघ्र ही अपना स्थूल शरीर त्याग सकती हैं, उनका पाठ शीघ्र ही पूरा होने वाला है, तब भी उनकी स्थिति में रंच मात्र का अंतर नहीं आया। बाबा ने पूर्णतया अपना कर्तव्य निभाया और अंतर्मुखता, गंभीरता तथा उच्च आत्मिक स्थिति को कभी नहीं छोड़ा।
5: बाबा, मम्मा की तबीयत इतनी अच्छी नहीं है बाबा।
6: बाबा, हम क्या कर सकते हैं जिससे मम्मा को ठीक होने में मदद मिले।
4: बच्चे, हम सब की माता और हमारे पिता तो शिव ही हैं। वो हमारी चमकीली माँ है। उन जैसी तो दूसरी कोई माँ होती नहीं। इसलिए वत्सो, देहधारियों से बुद्धि योग हटाकर एक शिव बाबा से ही लगाओ। बच्चों, साकार रूप में आपकी माँ तो ये ब्रह्मा ही है, क्योंकि सर्व आत्माओं का पिता शिव बाबा इसके मुख से ही ज्ञान देकर आपको ये मर्जीवा जन्म देता है। ब्रह्मा बेशक शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष तनधारी है, लेकिन ज्ञान के सूक्ष्म दृष्टिकोण से वो आपकी माता है। आप सभी उसके मुख वंशज ब्राह्मण बच्चे हो। चाहे जैसी भी घटना घटे, आपकी खुशी का पारा नहीं उतरना चाहिए। इस ज्ञान एवं योग के फल स्वरूप आपको अतींद्रिय सुख से फूला नहीं समाना चाहिए।

0: यज्ञवत्सों को भी उन्होंने इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से तैयार कर रखा था।
1: 24 जून 1965 को मातेश्वरी के देह मुक्त होने के बाद भी जैसे मधुबन एवं तमाम सेवा केंद्रों का वातावरण अव्यक्त हो गया था। सभी सामूहिक रूप से योग की उच्च अवस्था में स्थित हो गए थे। कहीं भी ऐसी कोई हलचल, कोई शोक, कोई बोल सुनाई नहीं दिए।
0: यह बाबा की ही युक्ति थी। उन्होंने सिखाया था कि निकट संबंधी के शरीर छोड़ने पर भी हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए।

किया। विश्व इतिहास के एक ऐसे महामानव की आध्यात्मिक यात्रा के संग चल रहा हूं, जिसने अपने तप, संपूर्ण समर्पण भाव एवं पुरुषार्थ से नष्टो मोहा अवस्था को प्राप्त किया। उनके समक्ष कितनी ही परीक्षाएं आईं, निकटतम संबंधियों ने अपने देह का त्याग किया, यहां तक कि मातेश्वरी जगदम्बा का साथ भी छूट गया, परंतु उनकी अवस्था अचल रही। वे देह एवं देह के संबंधों से उपराम रहे। उन्होंने सदैव यही माना कि तन भी उनका नहीं, उन्होंने उसे शिव बाबा को लोन पर दिया है, वे ही उसकी संभाल करेंगी। ब्रह्मा बाबा ने यही संदेश दिया कि शिव बाबा ही सर्व आत्माओं के अमर पिता हैं और उनसे ही सभी के सर्व संबंध होने चाहिए। हालांकि मातेश्वरी जी के जाने के बाद यज्ञ वत्सों में एक उत्सुकता बनी रही कि अब इस विश्व नाटक में आगे कौन सा दृश्य देखने को मिलेगा।

साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। नए बिलीफ सिस्टम्स के साथ आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि अब हमें समझ में आया कि बिलीफ सिस्टम्स भी, या जिन पर हमारा पूरा जीवन खड़ा है, वो कुछ मान्यताएं हम खुद तैयार कर सकते हैं, खुद क्रिएट कर सकते हैं। सबसे बड़ी मान्यता जो अब हम क्रिएट कर रहे हैं वो ये कि खुशी यानी कि हैप्पीनेस मेरी अपनी क्रिएशन है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समय मैं चाहूँ खुश रह सकती हूँ। अमेजिंग, व्हाट अ पावरफुल थॉट एंड व्हाट अ पावरफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक आप सब अब उसे अनुभव कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि अब पिछली कड़ी से जो हमने बात करनी शुरू की है, सॉल्यूशंस पर आएं। ये तो एक नया हमने बिलीफ सिस्टम किया कि मैं खुद अपनी खुशी क्रिएट कर रहा हूँ। अब बाकी जो बिलीफ सिस्टम्स हैं उन पर काम कैसे करना है और कैसे नए बिलीफ सिस्टम्स को बनाते जाना है, और इसमें हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अमेजिंग, यू नो द वे नाउ लाइफ लुक्स। मतलब अभी तक पूरी तरह से डिपेंडेबिलिटी थी कि जो जो हो रहा है उसके आगे हम हताश थे, हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक स्पार्क शुरू हुआ है, एक यू नो एक्साइटमेंट आई है कि यस नाउ आई कैन क्रिएट माय ओन लाइफ, सो थैंक यू सो मच। और ज्ञान की जहां हम बात करते हैं तो एक डेप्थ में जाकर हम समझ पा रहे हैं चीज़ों को। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे बिलीफ सिस्टम नए जो हैं उन्हें क्रिएट नहीं करने देते, क्या कुछ मुझे करना है।
1: हमने ये देखा कि जो हमारा स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसको आज दिन तक हम समझते कि बाहर से आ रहा है, ये हमारी अपनी क्रिएशन है। अब वो तो समझ में आ गया, लेकिन अब अपना ध्यान कैसे रखें, यू नो क्या क्रिएशन, बट देन इट्स गेटिंग क्रिएटेड, सो व्हाट डू आई डू दैट इट डजंट गेट क्रिएटेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी सॉ इज टू प्रैक्टिस बींग क्वाइट। अंदर जो ये सारा दिन बहुत शोर चलता है संकल्पों का, इसको अटेंशन रख के धीरे करना है। और उसके लिए अगर अंदर नहीं हो रहा है तुरंत से, तो पहले यहाँ से शुरू करें। और हमने देखा कि अगर हम अभ्यास करें कि कम बोलें, मीठा बोलें, धीरे बोलें, और कभी कभी मौन भी रखें। कि दूसरा हमने देखा कि बहुत सारी बातें हैं जो हमने पकड़ कर रखी हुई हैं। इट इज़ सिचुएशंस जो हुई, लोगों ने कुछ कहा, या मेरी अपनी अटैचमेंट्स, मेरे अपने बिलीफ, मेरे साथ गलत हुआ, आई एम द विक्टिम, यू नो दिस काइंड ऑफ थॉट्स हमने पकड़ कर रखी हैं, और शायद पूरी जीवन उसको पकड़ कर रखेंगे। और पकड़ने से और किसी का नुकसान नहीं होता,
0: मेरा ही होता जा
1: रहा, मैं ही दर्द में रहती हूँ। स्पेशली दिस फीलिंग ऑफ यू नो आई एम द विक्टिम, मेरे साथ लोगों ने बुरा किया, क्योंकि मेजोरिटी आर फीलिंग लाइक दिस, तो वो पकड़ के रखना इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर मी। तो एक सिंपल तरीका है कि साइलेंस में बैठे, उस बात को ले, बात के दर्द में ना चले जाएं फिर से, डोंट लिव थ्रू द होल एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगेन, लेकिन एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर उस सीन को देखें, समझें कि दर्द हम क्रिएट कर रहे थे, एंड लेट गो नाउ। कई बार कई भाई बहने कहते इतना ईजी नहीं है, आई कैन नॉट लेट इट गो लाइक दिस। आप एक बार करो, दो बार करो, 10 बार करो, फाइनली तो वो चला ही जाएगा।
0: लेकिन हो ये रहा है कि बार बार वही सिचुएशन भी आ जाती है फिर से।
1: वो सिचुएशन तब तक फिर से आएगी जब तक कि मैंने वो बात अंदर पकड़ी हुई है। यू सी वी सॉ पहले भी कि जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो फिर से प्रेजेंट में क्यों क्रिएट होते, क्योंकि हम थॉट्स वही वाली फिर से क्रिएट करते, तो हम वही एनर्जी ट्रांसमिट करते, वही फिर मेरे साथ हो जाता है। एंड सपोज वो सिचुएशन कुछ और है जो बाहर से आ रही है, लेकिन अगर मैंने लेट गो किया है अपने हर्ट को, तो अब क्या होगा, भले वही वाली सिचुएशन आ सकती है, आप हर्ट नहीं होंगे। सी फॉर मी व्हाट इज अ सिचुएशन, फॉर मी द सिचुएशन इज द रिस्पॉन्स दैट आई क्रिएट टू द सिचुएशन। सपोज आप यहाँ बैठ कर कुछ बड़ा बुरा भला ऐसे कह रहे हैं, मुझ पर इफेक्ट क्यों हो रहा है,
0: कि मैं क्रिएटिंग हर्ट।
1: लेकिन जिस दिन वो मुझ पर इफेक्ट होना बंद हो गया, उस दिन मेरे लिए वो कोई सिचुएशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट समवन सिटिंग देयर एंड saying what they feel like saying.
0: Is it like I switch off actually andar se?
1: It's not I switch off, I change my perspective.
0: Haan.
1: Switch off agar hum kahenge to then I say ki maine jaise ki apne aap
0: block kar liya.
1: Haan, duniya se alag kar liya hai. Main yahan sochna, feel karna band kar deti hu. That's not true. Do tarah ki thoughts or feelings create kar sakte na, ya to hurt ke ya fir
0: happiness ke.
1: Compassion ke. इस केस में
0: अगर वो दूसरे व्यक्ति की अपनी पेन है,
1: so I am sitting here, I am watching you creating, you know, something which is troubling you. मुझे ये समझ में आ रहा है इनकी अपनी कुछ चीजें बाहर निकल कर आ रही हैं। एक है गुस्सा होना, एक है नफरत करना, एक है दर्द में चले जाना, मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, और एक है अपने दर्द को नहीं क्रिएट किया, तो फिर सेकंड किसके बारे में सोचेंगे?
0: दिखने लग गया कि ओहो ये बेचारे को क्या प्रॉब्लम
1: है, क्या होता है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी यू, व्हाई आई एम नॉट एबल टू फील एनीथिंग फॉर यू, कि ये क्यों दर्द में है, व्हाट कैन आई डू टू हेल्प और व्हाटएवर, बिकॉज मैं ही तो दर्द में चली गई. तो जैसे ही मैं दर्द में चली गई तब मुझे एक ही दिखाई देता है, एंड दैट इज मी एंड माई पेन एंड माई हर्ट. बाकी कौन लोग मेरे आसपास हर्ट हैं, it doesn't matter. So then I really am not giving anything into relationships. I'm occupied with my own pain, and pain ko bhi main theek nahi par pa rahi, main bas us dard mein jeevan ko jeete ja rahi. Lekin jab khud ka dard dheere dheere khatam hoga to energy stability ki hogi, switch off nahi hogi. Switch off matlab mera aapke sath connection finished. I have nothing to do with you. No, it's just that I will not create pain. So I will create love. See, hum kehte hain, I love you, I really, really love you. But when I'm creating pain, I'm not creating love. You know, even in a parent child, and then a husband, wife, I'm kehenge, but I love you. But there's so much of pain while we're saying that. There's so much of hurt. That's not energy of love. Ek formula jo hume yaad rakhna hai, ek time pe, wo sirf ek energy ho sakti hai. When we don't need anyone to tell us ki wo kaun si wali hai, wo hume khud अंदर पता चलता है कि ये अच्छी अच्छी वाली है, विच मेक्स मी फील गुड आफ्टर दैट, और इट मेक्स मी फील लो, एंड फिर वही वाली क्रिएट
0: अगेन. यू नो, वी एक्चुअली लुकिंग एट द न्यू सेट ऑफ लाइफ एंड सेट ऑफ यू नो बिलीफ सिस्टम्स फॉर अस. द फर्स्ट वाज दैट आई क्रिएट एवरीथिंग, आई क्रिएट माय हैप्पीनेस, आई क्रिएट माय हेट्रेड, आई क्रिएट लव.
1: अगर पता चल जाता है, देखो अवेयरनेस के स्टेप्स क्या है, पता चल गया आई एम फीलिंग लो, तुरंत एक थॉट को चेंज करना है, आपकी फीलिंग तो अपने आप चेंज हो जाएगी. अवेयरनेस के साथ चलना शुरू करें, डोंट इग्नोर योरसेल्फ. अभी हम इग्नोर कर रहे हैं अपने आप को. आपका मूड अगर आज खराब मुझे दिखाई देता, आई एम अवेयर, मुझे पता चलता है. अगर आपका और मेरा थोड़ा भी कोई रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता नहीं चाहिए, थोड़ा भी रिश्ता है, तो मुझे पता चलता है कि आपका मूड ठीक नहीं है. सेकेंड स्टेप मैं क्या करूँगी, आपका मूड ठीक नहीं है आज, क्या हुआ, दिस इज कंसर्न, एंड देन इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प. अगर हम औरों के साथ ये कर सकते हैं, अपने साथ
0: तुम, हाँ, मूड को, मतलब ये वेरी ट्रू,
1: अपने साथ नहीं, क्या जिसके साथ पहला रिश्ता है, तो मेरा मूड ठीक नहीं है, आई डोंट इवन स्टॉप टू सी व्हाई माय मूड इज नॉट ओके, कौन सी वो थॉट है. जैसे आपको मैं पूछूंगी, किसने क्या कहा आपको जिससे यू नो आपका मूड ठीक नहीं हुआ, तो हम सोर्स तक जाने की कोशिश, इनफैक्ट हम सोर्स बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम ट्राई तो कर रहे हैं ना, आपको किसने क्या,
0: कौन सी सिचुएशन थी, क्या हो गया था, कैसे हुआ, यस,
1: देन यू विल से यू नो, देन दे सेड दिस, देन आई फेल्ट दिस, व्हाटएवर. At least we take time, and this is how a relationship develops.
0: And in fact, you know, then if I'm going to tell you कि उसने ऐसे से किया, तो आप जो third person हैं, you will be able to tell me कि नहीं उसने ऐसा इसलिए कहा होगा.
1: Whatever. But this takes time, ना? लेकिन suppose आप आ रहे हो, आपका mood ठीक नहीं है, लेकिन I'm not bothered, and मैं पूछू भी नहीं, it doesn't even you know come into my mind, नहीं है, नहीं है, मुझे क्या करना? बैठे रहें दर्द में, काम तो करें ना, बैठ के काम करने आया ना आप यहाँ पर. भले आप दर्द में हैं, आप काम करो. What kind of relationship is this? There is no sensitivity towards the other person. तो इसलिए we are very, very sensitive to other people, but we're not very sensitive to ourselves. खुद को हम कहेंगे, दर्द में है ना, टेंशन है, कोई बात नहीं, काम करो अपना. This is being so insensitive to yourself, कि रहने दो ना अंदर दर्द में, मेरे जीवन का लक्ष्य काम करना.
0: और उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना. सबसे बड़ी बात हमें ये लगता है कि हमारे अपने दर्द का कोई इलाज नहीं है.
1: कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 2 मिनट. औरों की प्रॉब्लम डिस्कस करने में 10 मिनट लग सकता, लेकिन अपनी जब करेंगे ना अपने साथ, 2 मिनट्स, जस्ट टेक आउट 2 मिनट्स, सिट बैक, एंड कोई काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो 2 मिनट निकालने से कुछ रुक जाएगा.
0: हम दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बाकी सारी चीजें छोड़ देते हैं.
1: हम एक एक घंटा बैठ सकते हैं किसी और के साथ, क्या अगर कोई प्रॉब्लम में है, और ये 2 मिनट अगर अपने साथ निकालते हैं, अपने को ठीक करते हैं, फिर काम करने जाते हैं, wouldn't the performance be very effective?
0: Of course, I'll be so light.
1: Yes, you know, when we're talking of this journey of self-transformation, जरा भी फील हो कि दर्द है, अनकंफर्टेबल है, डोंट कंटिन्यू विद इट.
0: Take a pause.
1: Yeah,
0: yes.
1: It is just 99 fever. Don't continue. Take something immediately. नहीं तो वो शाम तक बढ़ता जाएगा, और फिर वो सिर्फ मेरे तक ना रहकर मेरे रिश्तों में भी जाता है, मेरे काम पे भी इफेक्ट होता है, और इतनी सी बात फिर
0: इतनी बड़ी बन जाती है. इनफैक्ट यही दैट इज बाय द टू चेक योर हैप्पीनेस इंडेक्स एवरी आवर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट.
1: जो वो दूसरा वाला इंडेक्स होता है फाइनेंशियल, उसको तो हर थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं ना, टीवी पर, इंटरनेट पर, आपस में भी बात करते हैं, कहाँ तक पहुँचा, गिर क्यों गया इतना, व्हाट हैज हैपेंड इन द वर्ल्ड, अच्छा बढ़ गया, कितना अवेयरनेस है. सिर्फ एक ही चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, अंदर क्या हो रहा है. एंड दिस शोज लैक ऑफ लव फॉर द सेल्फ. If I don't take care of you, it shows I don't, you know, you don't matter to me. Similarly, I think I don't matter to myself anymore. एक रिश्ता है जिसको हमने totally ignore कर दिया है, वो अपने आप के साथ है. आप सोचो कोई रिश्ता है जिसमें ना हम टाइम देते, ना हम बात करते कभी, ना हम उनका ध्यान रखते, ना हम उन पर ट्रस्ट करते, ना हम उनसे प्यार करते, ना हम उनकी रिस्पेक्ट करते, वो रिश्ते का क्या होगा?
0: It does not exist actually. That
1: so
0: is why.
1: That's with the self. That is with the self. No time, no conversation, no love, no care, no trust. That's why I say vacuum है अंदर, vacuum है, खालीपन है. क्यों? अंदर से कोई अपने आप से connectivity feel ही नहीं हो रही. और फिर जब ऐसी बात सुनते तो कहते हैं अपने आप से रिश्ता वो क्या होता है?
0: Let's check हमारा अपने आप से रिश्ता कहाँ तक है.
1: बहुत सुंदर.
0: और आज जैसे ही समझ में आया कि मतलब जिस तरह से आपने वो सारे जो बातें जो हम लोगों के साथ रिश्तों में ढूंढ रहे होते हैं, अपने साथ तो हमने उसे कायम ही नहीं किया.
1: जब तक अपने साथ नहीं कायम करेंगे, we're not doing justice outside. हम नहीं, I just can't love someone else without loving myself first. क्योंकि जब तक यहाँ प्यार नहीं है, you know, loving myself मतलब मुझे स्मृति है कि I'm a loveful being. There's this energy of love here. Then that will flow with energy of pain here, giving love to others.
0: It
1: cheating,
0: is not possible.
1: Absolute cheating with myself and with other people, जिनको हम कहते हैं कि I really love you.
0: I can do everything for you. मेरे से मैं अपने आप को भुला के आपके लिए काम करती हूँ. You know, कितनी बार हम
1: belief system. ये तो belief system बना लिया ना कि अपने लिए करना ये स्वार्थ है, दूसरों के लिए करना ये प्यार है. दूसरों के लिए करना बहुत प्यार है, लेकिन वो होगा नहीं.
0: वो हो ही नहीं रहा.
1: होगा नहीं.
0: तभी तो हमारे रिश्तों में कितना कुछ करने के बाद, थॉट्स भी देने के बाद, आई नो समवेयर, यू नो, नाउ देयर इज समबडी हु सेज कि अच्छा मैंने बात समझ गया, मैं समझ चुका हूँ कि थॉट पर काम होता है, तो मैं उनको बहुत अच्छे पॉजिटिव थॉट्स देता हूँ. बट अगर मैं अपने आप के अंदर ही
1: अच्छा हमें समझ में आ गया कि जो रिश्ते हमारे थोड़े से ऊपर नीचे हैं, हमें बैठकर उनको गुड विशेस भेजने हैं, हमें उन खुद की स्थिति गुड विशेस भेजने की चीज ही नहीं है.
0: वो अपने आप चली जाती है. आई नो हम टेंशन में बैठ के यू नो कि मतलब
1: उनको गुड विशेस भेजनी है, या यस यू आर अ लवफुल बींग, यू आर अ प्योर बींग, यू आर अ पीसफुल बींग, ये भेजने की चीज नहीं है. वाइब्रेशंस है जो यहाँ है, आप चाहो ना चाहो, इट्स गोइंग टू स्प्रेड इन टू द एनवायरमेंट. एंड दैट्स वाई राजयोग टीचर्स अस कि कुछ मेहनत नहीं है रिश्तों में. इट्स ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. एवरीबडी एल्स इज ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ. तो उसके लिए हर रोज थोड़ा समय अपने लिए निकालें. सुबह का समय अपने आप के साथ 5-10 मिनट जरूर स्पेंड करें, इवन इफ यू आर लेट. इवन इफ यू आर लेट, यू नो, हम सोचेंगे नहीं लेट हो गया, तो वो लेट तो हर ऑलमोस्ट थोड़े दिन बाद होता ही रहता है. लेकिन जैसे भले लेट हो जाए, फिर भी आप फटाफट तैयार तो होते ना, फटाफट नाश्ता तो कर. इसी तरह ये टाइम भी उसको एक अपनी उसमें फिट करना है रूटीन में कि माई डे स्टार्ट्स विद 5 मिनट्स फॉर माई सेल्फ. अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इफेक्टिव डे. ये मुझे अपने आप को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. इट हैज टू स्टार्ट विद 5 मिनट्स ऑफ योर सेल्फ. एंड वो 5 मिनट अपने यहाँ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करें, अपने थॉट्स को क्रिएट करें. सारा दिन में देखना मुश्किल लग रहा है ना, अवेयरनेस नहीं आ रही, तो दिन की शुरुआत वो क्रिएट करके होनी चाहिए. आई एम अ वेरी पावरफुल बींग, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द सिचुएशन टुडे, द डे इज गोइंग टू बी इन माई कंट्रोल. आज का दिन मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ पेशेंस, लव. चाहे कुछ भी हो जाए, I am not getting irritated today. You know, it's planning how you're going to be today. So, jaise we plan what to do, hame aaj kya karna hai, let's start planning how to be. Isliye hum baar baar yehi yaad rakh rahe hain, hum human doings nahi hain, hum human beings hain. So, how am I going to be today? Because depending on how I'm going to be, दैट इज़ वॉट आई विल डू. देखो आप कितनी भी अपनी डायरी प्लान कर लो कि आज ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, अगर आपका मूड खराब हो गया किसी चीज़ से आपका तो पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा सारा. और अगर करोगे भी 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, लेकिन वो मूड तो हर घंटे के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करता है और फिर वो पूरी मीटिंग्स डिस्कशंस जैसी होनी चाहिए उस फ्लेवर पर नहीं जाती, क्योंकि आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ वॉट टू डू. लेट्स स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ हाउ टू बी, यू नो दैट बीइंग पार्ट की भी एक डायरी, डायरी नहीं तो एक इंटरनल तो डायरी लिखना शुरू करें और हर रोज एक चीज एटलीस्ट अपने लिए डिसाइड करें, क्योंकि वैल्यूज ऐसी चीज है एक से सारी इंटरकनेक्टेड है. आप एक चीज डिसाइड कर लो आज चाहे कुछ भी हो जाए आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड. अगर मेरे अंदर इरिटेशन की आदत है छोटी छोटी छोटी छोटी, आई एम नॉट गेटिंग इरिटेटेड टुडे, टुडे इज स्टेबिलिटी टोटली. अब सुबह डिसाइड कर लिया, अपने आप को विजुअलाइज कर लो ये करते हुए, देख लो अच्छी तरह से कि सारा दिन ड्राइवर के साथ ऑफिस में ये, क्रिएट दैट सीन. दिस इज प्रोग्रामिंग फॉर द माइंड. आपने फीट कर दिया, अब आप निकले अपने सारा दिन के लिए. तो कई बार सुबह की बात थोड़ी सी भूल जाती है, तो फिर हर एक घंटे के बाद एक मिनट ब्रेक, 1 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर इज फॉर माई सेल्फ. इसको हम भले बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन अगर अभी तक नहीं करना शुरू
0: तो
1: किया
0: अब है कर लेना चाहिए.
1: लेकिन अब आप देखो, हमने जब पिछली बार ये डिस्कस किया उसके बाद से आपने अलार्म लगाना शुरू किया, उसके पहले हमने कितनी बार डिस्कस किया, लेकिन जब तक अलार्म लगाना नहीं शुरू किया वो नहीं होता है. यू नो इट्स नॉट समथिंग लाइक हम सोचे हाँ ठीक है हम कर लेंगे, वो नहीं होगा. We have to initially use some external aid, कोई alarm, कोई computer पर reminder, put it into, it's like a homeopathy medicine.
0: And you know, अब क्या होता है, अब अपने आप ही, I'm just like, now almost,
1: absolutely.
0: अपने आप वो click कर जाते हैं ना, start waiting की बजेगा.
1: Yeah. अब तो वो, you know, now वो, क्योंकि body clock है ना, वो आपका reminder आपको आ जाएगा और जैसे ही आपको याद आएगा एक घंटा उतनी देर में वो वहां से बचेगा.
0: In fact, मैं ये exercises करने में सबसे ज्यादा lazy हुआ करती थी, because मुझे लगता था कि ये मुझे समझ में तो आ गया है. और ऐसा ही एक जो हमने belief systems को लिखना शुरू किया है.
1: Right.
0: Amazing है जो आपने कहा था कि वो, in fact, I would like to share कि हम सब
1: अच्छा लग रहा है लेकिन हो नहीं रहा है अभी तक. तो एक ही स्टेप तो बचा, सुन भी लिया, समझ भी लिया, अंडरस्टैंड भी हो गया, एक्सेप्ट कर लिया. या दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जर्नी है ना, शुरू शुरू में नहीं एक्सेप्ट किया था. बहुतों ने कहा कि ये कौन सी बातें हैं कि गुस्से के बिना काम होगा ये, पर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ट्राई किया, कभी रिजल्ट मिला कभी थोड़ा नहीं मिला, लेकिन एक्सेप्ट होते गए. अब उसको अगर पूरी तरह से अपने जीवन में डालना है, थोड़े छोटे होमवर्क कर लेने चाहिए. बहुत कम टाइम लगाते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, लेकिन दे कैन बी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग. इमेजिन इतनी सी इन्वेस्टमेंट 5-10 मिनट की और पूरी जीवन परिवर्तन हो जाए, रिश्ते बदल जाए. इट्स नॉट टू मच ऑफ टाइम इज इट,
0: एंड इट्स वंडरफुल. इट बिकम्स यू नो वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, जब हम खुद को देखना, हमारा ना सारा ध्यान बाहर से एक्चुअली हटने लग जाए.
1: तो उसी तरह हमने ये सीरीज शुरू की थी ना, अपना ध्यान रखना. दैट्स व्हाट वी स्टार्टेड, कि स्पिरिचुअलिटी को आज दिन तक हम कहते थे ध्यान करना. इट्स बेसिकली ध्यान रखना. अपना ध्यान रखते जाओ, बाकी सब चीजें विल जस्ट फॉल इनटू प्लेस. रिश्ते आपको पता ही नहीं चलेंगे कि कहाँ वो कॉन्फ्लिक्ट जो था वो खत्म होता गया, क्योंकि आपने उस चीज पर ध्यान रखना शुरू किया जहाँ कंट्रोल पॉसिबल है.
0: तो अब वो जो पहले थॉट बिना क्रिएट किए जो पेन आ जाता था या पेन मैं क्रिएट कर लेती थी, वो अब नहीं हो रहा है. आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, क्योंकि मुझे ही प्रॉब्लम आई थी पहले कि थॉट कहाँ होता है, फीलिंग ही पहले आ जाती है.
1: True.
0: पर ये अगर थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो फीलिंग तक जा नहीं पाते, जाते नहीं है आप. सिचुएशन
1: देखो, इतनी सी मेहनत करने से हम उस स्टेज तक पहुंच गए हैं जहां वो फीलिंग आती नहीं, उससे पहले हमें पता चल जाता है ओके दिस इज थॉट, एंड चेंज करना इट्स नॉट डिफिकल्ट. और इतनी सी मेहनत करने से आपकी हेल्थ ठीक, आपकी फिजिकल हेल्थ ठीक, रिश्ते ठीक, करियर ठीक, this is success.
0: सबसे बड़ी बात है decision making ठीक.
1: So everything, you see, there will be one harmony. जो harmony आज तक हम जीवन में ढूंढ रहे थे, we said harmony in relationships. That used to be the issue. कि संबंधों में कैसे वो harmony लेकर आए, वो कभी नहीं आ सकती. आप कितना भी try करो, जब तक internally there is no harmony. You know, ये smooth flowing होना चाहिए, energy flow हो रही है. यहाँ इतना
0: block नहीं हो जाता. मतलब otherwise वो कुछ जा नहीं रहा होता, और वो जो जा रहा होता है वो वही कचरा.
1: Keep doing this 1 minute. 1 minute में हम क्या कर रहे हैं, 1 minute रुकते साफ कर देते हैं. फिर थोड़ी देर बाद अगर कुछ इकट्ठा हो गया, फिर 1 minute आता, फिर साफ कर देते. जैसे ये टेबल है, अगर हम इसको हर 1 घंटे के बाद साफ करें, विल दिस एवर गेट डर्टी? सी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवन इफ अगर ये अभी गंदी हो चुकी है थोड़ी, लेकिन हर 1 घंटे के बाद इसको आप एक कपड़ा मारते जाओ, उसके बाद तो ये कभी गंदी दिखनी नहीं, क्योंकि इसकी रेगुलर सफाई हो रही है. यहाँ लास्ट कब सफाई की थी, याद ही नहीं. अक्यूमुलेट

0: इंटरेस्टेड है आखिर, और बहुत प्राउडली बोलते हैं 20 साल पहले वो बात हुई थी, मैं तो अभी तक नहीं भूला
1: क्योंकि ये था, क्योंकि और ये था कि दूसरों के ऊपर डिपेंड हो रहा था ना, कि दूसरे अभी भी एक मिनट के लिए मैं आपसे यही कहूंगी, जो एक मिनट वाला था जब मैंने शुरू किया शुरू में, तो मैंने जैसे ही एक मिनट पे आती थी मैं बाकी सारी चीज़ें भी देखती थी लोग, यू नो, और उसमें वो एक मिनट क्या, फिर वो बहुत टाइम निकल जाता था. सो इसीलिए देन आई रियलाइज्ड कि एक मिनट मुझे करना काम अपने साथ है, यू नो, कि कौन सी इमोशन किसके कारण हुई, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट.
0: एग्जैक्टली, जैसे ही हम ये सोचने लगे आई एम हर्ट किसके कारण, तो फिर मेरा फोकस सारा कारण पर चला जाएगा, उनके कारण, और फिर उसके बाद सीरीज ऑफ थॉट होगी कि उनको कैसे चेंज होना चाहिए. यू नो, दैट्स हाउ द फोकस गोज ऑफ अगेन टू द अदर पर्सन. मैं हर्ट हुई हूँ, किसके कारण इज नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे उस चोट को ठीक करना है सो दैट आई कैन गो इन टू माई नेक्स्ट आवर. एंड उसमें भी मैं हर्ट हुई हूँ, उसको ठीक करना, दैट्स ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मुझे ये पता है हर्ट मतलब नेगेटिव थॉट, ठीक करने के लिए क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट. सो डोंट इवन थिंक व्हाई आई एम हर्ट, पेन है, जस्ट स्टॉप, क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट. तो उससे क्या होगा, अगर कुछ क्रिएट हुआ भी होगा पिछले एक घंटे में, इट गेट्स डिलीटेड. एंड धीरे धीरे मन, क्योंकि जिसको प्रैक्टिस नहीं है बहुत समय से ऐसे पावरफुल पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने की, कर करके जैसे नेगेटिव थिंकिंग आदत बनी, वैसे धीरे धीरे
1: पॉजिटिव
0: थिंकिंग आदत बनती है. वो वन मिनट में जो हम करते हैं वो वन मिनट में नहीं रहता ना, फिर सिर्फ उसका इफेक्ट इट पासिस ऑन टू द नेक्स्ट वन आवर. जब हम शुरू में ये करते तो एक मिनट का इफेक्ट अगले 5-1 मिनट तक पहुंचता, 10 मिनट तक, फिर उसके बाद वी गो टू आवर ऑर्डिनरी वे. फिर 2-3 दिन में आप देखेंगे उस एक मिनट का इफेक्ट 10-15 मिनट पहुंचता. एंड धीरे धीरे यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग कि मोस्ट ऑफ द वन आवर आप स्टेबल हैं. आपको अब क्या होगा, आप उस वन मिनट पे भी डिपेंडेंट नहीं है. धीरे धीरे यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन दैट वन मिनट. अब आपको अवेयरनेस आने शुरू हो गई कि जैसे ही दर्द क्रिएट होता है आपको पता चल जाता है. तो आपको वेट थोड़ी करना है कि जब नेक्स्ट अलार्म बजेगा तब मुझे उसको क्लियर करना.
1: वेरी ट्रू, यू नो.
0: सो नाउ दिस इज बिकमिंग कि जो हम आज दिन तक कह रहे थे कि मन को कैसे देखें, वो देखना अब नेचुरल हो गया. तो बिकम वेरी वेरी सिंपल.
1: अब तो आप मन के साथ ही चल रहे हो. You know, like your journey actually is with your own self.
0: पहले भी चल रहे थे साथ में.
1: हाँ, वो पहले हमें पता नहीं था ना.
0: It's like आपका बच्चा है और अब उसका हाथ उस आपके साथ है, और वो आप जहाँ जहाँ जा रहे हो वो आपके साथ साथ है. लेकिन एक है आप सारा दिन, यू नो, लाइक अ चाइल्ड इज गोइंग विद यू टू वर्क. आपका बच्चा आज आपके साथ काम पर जा रहा है, कंटिन्यूसली आपका हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है उसकी तरफ. वो कभी वहाँ गिर रहा है तो भी आप ऐसे ही घसीट रहे हो, उसको चोट लग रही है आप तो भी नहीं रुक रहे हो, आप उसको ऐसे ही घसीटे जा रहे हो. उसको भूख लग रही है, शोर मचा रहा है, आप सुनते ही नहीं हो. तो क्या है, तो वो फिर भी साथ में. अब क्या है, अब भी वो साथ में है, अब भी आप सारा काम कर रहे हो लेकिन एक नज़र सब ठीक है. और अगर उसको थोड़ा सा भी वो किसी बात पर रोने लग रहा है, आप एक मिनट अपने काम से निकाल सकते हो, वो ऐसे चुप हो जाएगा बहुत जल्दी. उसको सिर्फ एक मिनट देखना है कि क्या हुआ.
1: तो हम अपने बच्चे के साथ कभी ऐसा नहीं करते हैं जो आपने सीन क्रिएट किया.
0: सारा किसके साथ, अपने साथ
1: तो करते हैं. तो ये जो बच्चा अंदर है उसकी आवाज़ सुननी जरूरी है कि वो कह क्या रहा है. उसे भूख लगी है, उसे कोई दर्द हो गई है, उसे चोट लगी. अमेजिंग, हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, यू नो. तो अपने अंदर का बच्चा जो है, क्योंकि हम कभी भी अपने बच्चे के साथ जैसे सिनेरियो क्रिएट किया जैसे शिवानी ने कि उसे कुछ भी होता जाए हम हाथ फिर भी पकड़े रखेंगे, लेकिन हम कुछ होने भी नहीं देंगे. सो वो होना अपने आप को नहीं होने देना है. वेरी ब्यूटिफुली द वे इट हैज़ कम आउट. और फिर हमें खुशी क्रिएट थोड़ा करनी है, वो तो अपने आप हो ही रही है जब हमने अपना ध्यान रख लिया. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी. शांति. आपके मन में हो सकता है कोई बात उठे, बिल्कुल हर बार की तरह आपको हम यही निमंत्रण देंगे. लेकिन जो बात समझी, जो अब नए बिलीफ सिस्टम हम लेकर आ रहे हैं, अगर दर्द है आप कभी भी ना खुशी दे पाएंगे किसी को, ना लव दे पाएंगे, आप दे नहीं पाएंगे. ये एक नया बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें, एक वक्त पर एक ही फीलिंग हम क्रिएट कर पाएंगे. सो लेट्स क्रिएट समथिंग विच इज़ गुड नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर एवरीवन एल्स. आप हमें ईमेल पर या फिर फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी, इसमें बहुत सी बातें हम समझते हैं सिस्टर शिवानी. चलते चलते क्यों ना थोड़ी देर रिफ्लेक्ट करें, चाहे वो एक मिनट में ही करना हो, जब हर
0: विल डू इट एग्जैक्टली फॉर वन मिनट अभी कि एक मिनट में हमें करना क्या है और फिर इसको हर एक लेकिन कल से करे जरूर सब
1: अभी से
0: अभी से आज से यस हर एक मिनट के लिए जस्ट सिट कंफर्टेबली ये एक मिनट अपने थॉट्स को देखना है इसके लिए आपको ना कोई पोस्चर चाहिए अलग ना पोजीशन ना एनवायरनमेंट जहाँ भी बैठे हैं चाहे ऑफिस में चाहे घर पर इट जस्ट डजंट मैटर जस्ट सिट बैक एंड लुक एट योर थॉट्स एंड क्रिएट द मोस्ट पावरफुल ब्यूटिफुल थॉट्स I, the master of this body, is sharir ka malik, that conscient energy, creator of every thought and feeling. I am a beautiful being, pure, positive and powerful. This is me. Ye mujhe kahin bahar nahin thundna hai. Main hoon hi. उस शक्तिशाली पवित्र शुद्ध आत्मा इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग अराउंड मी एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट एंड एज आई क्रिएट दिस थॉट द वाइब्रेशन स्प्रेड्स टू एवरीवन अराउंड मी ओम शांति
1: ओम शांति आपसे विदा लेते हैं और आप सबसे भी विदा लेंगे लेकिन अवेकनिंग का ये जो सफ़र है ये आगे भी चलता रहेगा। ओम शांति।

ईद के साथ हो जाए। तो हम आपको मेरे सदगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सुना है ये प्यारा सा गीत हम आपको सुनाना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। तो दोस्तों ये कितना प्यारा गीत था, सतगुरु के प्रति एक गीत प्यारी भावना के साथ बना हुआ था। तो दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों की यही इच्छा रहती कि हमारा जीवन पूरा आनंदमय हो, सदैव आनंदमय जीवन कैसे बीते, क्योंकि जीवन में चढ़ाव उतराव होते हैं, कभी दुख कभी सुख, तो सदा ही सुख या सदा ही आनंद में कैसे रहे, ये बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। तो शुरुआत में हम आपको बताना चाहेंगे कि सदैव आनंदमय जीवन कैसे जिया जाए। संसार में तो हर मनुष्य सुख शांति और आनंद की खोज में लगा हुआ है। धन पद प्रतिष्ठा भौतिक सुविधाएं जीवन को सुविधाजनक बना सकती है, लेकिन सच्चा आनंद केवल बाहरी वस्तु से नहीं, आनंद एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो हमारे विचारों व्यवहार और जीवन दृष्टि से उत्पन्न होती है। हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: ओम शांति, हरिओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
0: बोलिए,
1: मानपुर से बुरीलाल बोल रहा हूँ।
0: बोलिए बोलिए, कैसे है?
1: हाँ जी, वो राम नाम रस पीले, राम नाम रस पीले सदरिया धीमी रे, राम नाम रस पीले, ये कबीर वाणी है
0: जी।
1: सर ये भजन हो जाएगा तो हमारा दिल के अंदर खुशियां आ जाएगी।
0: जरूर,
1: तो सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को, आपको रेडियो मधुबन वालों को, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी जी जी जी जी जी, जरूर हम कोशिश करेंगे। गाना राम नाम
1: रचगीले। हाँ, सदरिया धीमी रे।
0: जी जी जी,
1: कबीर वाणी है सर।
0: जरूर जरूर हम कोशिश करेंगे ये गाना, क्योंकि कभी कभी

0: के गाना मिलता नहीं है, अगर मिलेगा तो जरूर हम लगा देंगे, ठीक है?
1: ठीक है,
0: ओके
1: ओके
0: जी जी जी जी। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आनंद, हम आनंद में रहें, सदा आनंद में कैसे रह सकते हैं, उस आनंद की परिभाषा क्या है, क्या होगी, तो उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हम ये समझना होगा कि आनंद और सुख में अंतर है। सुख प्रायः परिस्थितियों पर निर्भर होता है। कोई मनपसंद वस्तु मिल जाए तो सुख मिल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद समाप्त भी हो जाता है। इसके विपरीत आनंद मन की स्थायी अवस्था है। यह हमारे भीतर से उत्पन्न होता है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा साथ देता है। जी हाँ, विपरीत परिस्थिति भी जब आती है तब हम कैसे सदैव खुश रहे, आनंदित रहे, इसके भी कुछ हम आपको टिप्स बताएंगे। तो इस प्रकार के हम 8 सूत्र बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सदैव आनंद में जीने का पहला सूत्र है सकारात्मक सोच। हमारी जो सोच है सकारात्मक रहे, सदा सकारात्मक रहे। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में अच्छाई देखने का प्रयास करेंगे, समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान दें, तब हमारा मन प्रसन्न रहेगा। जीवन में कठिनाइयां आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उनका सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना ही, तो क्या हो जाएगा, हमें आनंद का आनंद लेने को आएगा। सदा जीवन में हम आनंद ले सकते हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है। दूसरा सूत्र है संतोष। आज मनुष्य देखते हैं कि अधिक पाने की दौड़ में लगा हुआ है, जितनी इच्छाएं उनकी बढ़ती उतना मन अशांत होता है। उसके पास जितना है, करोड़ है, फिर भी क्या चाहता है, वो अब जो कमाना चाहता है, और जिस विकास अब जो हो लगता है कि और मेरे पास हो, और हो, और हो। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम प्रगति नहीं करें, प्रगति करें, लेकिन हमारे पास जो है उसमें भी हम संतुष्ट रहे, उसका भी आनंद ले, उसे भी खुशियाँ मनाए। प्रगति तो करना ही है, दिनों दिन प्रगति करना है, जितना आज है उससे और प्रगति करें। बल्कि यह भी है कि हमारे पास जो है भगवान ने, परमात्मा ने दिया है, उसके साथ वो कृतज्ञ रहे, उसके लिए भी संतुष्ट रहे, उसका भी आनंद ले। नहीं तो हमारे पास जो है उसका आनंद नहीं मनाएंगे तो फिर कब मनाएंगे। तो इसके साथ साथ तीसरा सूत्र है स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद, योग, प्राणायाम करें। जी हाँ, हमारी दिनचर्या ऐसी हो, क्योंकि अच्छा अगर शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हम सब कुछ अच्छा कर सकेंगे। अगर शरीर ही तंदुरुस्त नहीं तो मन हमारा एक ठिकाने पे नहीं रहेगा। शरीर बीमार है तो हमें खुशी नहीं दिलाएगा। तो इसलिए शरीर को सदा तंदुरुस्त रखने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना होगा, प्राणायाम करना होगा, और जो आराम हमें लेना है, नींद, वो भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी है, और स्वस्थ शरीर के लिए योग, प्राणायाम आदि भी करना जरूरी है। इसके साथ चौथा सूत्र है अच्छे संबंध का निर्माण करो। परिवार, मित्र, समाज, इनके साथ हमारे मधुर संबंध हो तो क्या हो जाएगा, हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। प्रेम, सहयोग, सम्मान और संवाद से रिश्ते मजबूत होते हैं। एक में को प्रेम दो, सहयोग दो। हम सहयोग देंगे नहीं तो प्रेम बढ़ेगा कैसे, सम्मान रखेंगे नहीं तो सम्मान मिलेगा कैसे, रिश्ते मजबूत होंगे कैसे। तो रिश्ते पहले हमारे मजबूत करने होंगे। अगर रिश्ते मजबूत है तो क्या हो जाएगा, परिवार में टकराव नहीं होगा, परिवार में खुशियाँ ही खुशी होगी। तो इसके लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें, सुख दुख में सहभागी बने। अगर सुख दुख में हम सहभागी बनते हैं, सहयोग देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे रिश्ते अच्छे बनते हैं। रिश्ते अच्छे बनते हैं तो आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है, परिवार में कोई किटपिट नहीं होती है। तो इसलिए ये चौथा सूत्र है जो परिवार में एक दो की सहयोग दो, सम्मान दो, एक में की भावनाओं को समझो। अगर ये करेंगे तो हमारा जीवन आनंद बनेगा। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि सदा आनंद में कैसे रहें। जी हाँ, हर एक चाहता है कि आनंद में रहें। तो हमने सदा आनंद में कैसे रहे इसके चार सूत्र तो पहले बताए, अब हम आपको पांचवा सूत्र बताना चाहेंगे। पांचवा सूत्र है क्षमा करना और करुणा। करुणा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया है तो उसे क्षमा कर देना हमारे अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। जी हाँ, अगर हम बात को पकड़ के रहेंगे कि उसने मेरा अपमान किया, मेरे को दुख दिया, मेरे को तकलीफ दी, अगर हम बार बार वो याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर वो चलता रहेगा। और जो हम चिंतन करते हैं उसका हमारे बॉडी के ऊपर असर होता है। तो इसलिए डॉक्टर भी यही कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो। तो इसीलिए एक याद रखना, कोई अगर तकलीफ देता है, किसी ने तकलीफ दिया है, किसी ने क्रोध किया है, किसी ने दुख दिया है, वो सब सारी बातों को हम भूल जाए। वही अगर मन में चिंतन करेंगे, हम भी क्रोध करेंगे, हम भी गुस्से से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। क्षमा करने वाला व्यक्ति हल्का और प्रसन्न महसूस करता है। वो अगर क्षमा कर देगा, चने दो उससे गलती हो गई तो क्या हो जाएगा, हमने दिल से उसे क्षमा कर दिया तो जरूर हम भी हल्के हो जाएंगे और हल्का मन प्रसन्न जरूर रहता है। हाँ जी नमस्कार, ओम शांति।
1: भोला राम बोल रहा हूँ, रमेश भाई
0: बोलिए बोलिए। सोमनाथ भाई बोल रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: जी जी बोलिए बोलिए।
1: वो प्रोग्राम सुन रहा था और अच्छे कहा जो बोले तो ये आठ टिप्स बताए तो वो भी अच्छे तो बात सुन रहा था।
0: जी जी,
1: मैं बोला सुबह सुबह राम राम तो कर दूं मैं।
0: जरूर जरूर, सवेरे सवेरे राम राम तो होना ही चाहिए। जी जी,
1: और सब मधुबन भाइयों को सबको मेरा राम राम।
0: जी जी जी, आपको भी हमारी सारी टीम की ओर से राम राम। आपके जीवन में सदाई खुशियां बरसे, हम यही कामना रखते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, ओम शांति फोन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम बातें कर रहे थे कि सदा आनंद में जीवन कैसे रहे उसके बारे में बता रहे थे। तो हमें सामने वाले को क्षमा करना जरूरी है। तो क्षमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम वो बात को हल्का लेंगे और हम अपने मन से प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे मन में करुणा हो, सहानुभूति हो, करुणा सहानुभूति होने के कारण क्या हो जाएगा, हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। और छठा सूत्र है सेवा का, परोपकार का। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते, तब हमें भी संतोष मिलता है। हमें जिसकी ज़रूरत है तो वहाँ सेवा करना जरूरी है। अगर हम किसी की सेवा नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, तो वो अंदर से खुशी होनी चाहिए, वो खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, तो जिसकी ज़रूरत है उसको अगर हम मदद करते तो वो भी अंदर से दुआएं देते कि हाँ, ये भाई साहब ने हमें बहुत बड़ी मदद की है, इन्होंने हमें सहारा दिया है। जैसे समझो कोई स्कूल बच्चा कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है और उसकी कुछ एग्ज़ाम की फ़ी भरना है, उसके पास उस समय पैसे नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हमें इस की मदद करो, हम आपको अगले महीने दे देते हैं। अगर उसकी फीस का 2-3 हज़ार रुपये हम कुछ दे देते हैं, उस समय उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो उसको खुशी होती है कि मैं कितना समय पर पैसा भर सका, समय पर मैं कार्य कर सका। और हमें भी खुशी मिलती है कि हम किसी के अच्छे कार्य के लिए मददगार बने। तो इसलिए जो ज़रूरतमंद होता है, लगता है कि हमें यह ज़रूरत करें, हम फंसेंगे नहीं, ये भी देखना है, कोई झूठा सहयोग लेना नहीं चाहता, तो ये भी हमें देखना है कहाँ सहयोग देना है, कहाँ सहयोग नहीं देना है, सच तलाशना है कि हाँ, जिसको सच में ज़रूरत है और हम मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेवा और परोपकार की भावना से भी हम संतोष पा सकते हैं। इस प्रकार से सातवां सूत्र हम बताने चाहेंगे कि वर्तमान में जीना। बहुत से लोग क्या करते हैं, अतीत पे जीते हैं। एक साल पहले उसने कहा था, 10 साल पहले ये कहा था, हमें बात कभी नहीं भूलेंगे। जब भी वह व्यक्ति सामने आता है, उसने कही थी 3 साल पहले बात, उसने अपमान किया हो या कुछ भूला हो, तो वही बात हम दिन भर, वो सामने आता है, आकर चला भी जाता है, लेकिन सालों सालों बात याद रखते हैं। तो हमें वो बात भूल गई, वो भी भूल गया होगा, लेकिन हम क्या करते, वही पकड़ के रहते, वही मन में चलता रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वो जो वर्तमान है, वर्तमान का आनंद नहीं ले सकेगा। अतीत को भूल जाओ, अतीत तो अतीत होता है, उसको अभी सामने लाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो इसीलिए अतीत की बातें भूल जाओ, वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में आपके हाथों में बहुत सारे अवसर है, वर्तमान को खुशियों से भर दो, वर्तमान को बहुत अच्छा बना दो। अगर वर्तमान को बहुत अच्छा बनाएंगे तो वही आपका भविष्य बनने वाला है। भूतकाल को आप याद करेंगे तो वो आपका भविष्य नहीं बनेगा, लेकिन आपके हाथ में वर्तमान है। वर्तमान को बहुत अच्छा बनाओ, वर्तमान में बहुत अच्छा जियो, तो वर्तमान में जो आप करते हो वही तो आपका भविष्य बनेगा। तो इसीलिए वर्तमान में जीना सीखो। और 8वां सूत्र है आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन। जी हाँ, ये सब बातें करने के लिए कुछ हमारे अंदर आध्यात्मिकता के भाव भी होना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता से क्या हो जाता है, हमारे अंदर आत्मचिंतन आता है। आध्यात्मिकता से हम ध्यान, प्रार्थना, सत्संग से क्या हो जाता है, हमारे अंदर अच्छे गुण आता है, मन को शांति मिलती है, हमारे मन में एक शांति का चिंतन चलता है, हमारे अंदर खुद कमजोरियां ढूंढने को अवसर मिलता है। आध्यात्मिकता हमें सही राह दिखाती है, जीवन की सही दिशा प्राप्त करती है। क्या अच्छा है, क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है, तो आध्यात्मिकता हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाती है। तो ये 8 सूत्र हमने आपको बताया कि ये सूत्र अगर आपके जीवन में आप अपनाएंगे तो जो कठिन परिस्थिति भी आती है तो उसमें आप धैर्य भी रख सकेंगे और आपके जीवन की यात्रा को सुखमय बना सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, इसे कहते हैं लाइफ इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। ओके, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी। कैन आई एंजॉय द प्रोसेस ऑफ जर्नी? सपोज हमको कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, सपोज इफ आई वॉन्ट टू कम फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब हम दिल्ली पहुंचेंगे तो ही हम बहुत खुशी में रहेंगे। लेकिन कहा जाता है कि हर एक स्टेप ऑफ यात्रा में क्या उस यात्रा के प्रोसेस को आप एंजॉय कर सकते हो क्या? एंड दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप में से कितनों ने हवाई यात्रा की है, हाथ उठाइए। अरे वेरी गुड। अच्छा, व्हेन यू गो इन एन एरोप्लेन फायदा क्या होता है? बहुत वंडरफुल अनुभव होते हैं। एक, अगर हमें किसी मंजिल पर जल्दी पहुंचना होता है, वी ऑलवेज यूज एन एयरक्राफ्ट मोड, यू नो, जो आपको 24 घंटे लगती है दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में, वहां पे अगर हम एरोप्लेन में बैठेंगे तो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। नंबर टू, जब आप एरोप्लेन में बैठते हो, धीरे से आप ऊंचाई में पहुंचते हो, वहां से अगर आप नीचे देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी आपको बहुत छोटी दिखाई देगी, राइट? नंबर थ्री, जब आप ट्रैवल करते हो, आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करते हो, लेकिन आपको फील होता है जैसे आप एक जगह आराम से बैठे हुए हो, आपको बिल्कुल जर्क फील नहीं होगा, यू विल फील एज इफ यू आर स्टेशनरी, लेकिन एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। जब ये एरोप्लेन नीचे उतरती है और जैसे जमीन को टच करती है ना, तब वो बहुत जर्क होता है, तब हमको महसूस होता है माई गॉड इट वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, जबकि उस समय उसकी वेलोसिटी काफी कम हो गई है। उसी तरह फ्रेंड्स, यात्रा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो सभी लोग यात्रा करते हैं वो स्थूल यात्रा होती है। आप हो सके ना तो आप ये 3-dimensional वर्ल्ड से अपने आप को ऊपर लेकर जाने की कोशिश कीजिए और वो यात्रा करिए अवे फ्रॉम दिस 3-dimensional वर्ल्ड। और जब आप वो यात्रा ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे एक्चुअली आप बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको फील भी नहीं होगा। एंड दैट जर्नी इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ स्पिरिचुअल जर्नी। स्थूल यात्रा तो हम सभी करते हैं, लेकिन जब आप उस स्पिरिचुअल जर्नी में ट्रैवल करना आरंभ करेंगे, जहां पे आप अपनी स्थिति को बहुत धीरे धीरे ऊंचा उठाने लगते हो, जब वो ऊंचा उठाते हो, अब बहुत हाई वेलोसिटी में ट्रैवल कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो जाती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमको बहुत छोटी लगेगी, एंड इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल जर्नी। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल जर्नी से आप नीचे उतरते हो, तब आप जर्क फील करते हो। तो वन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ इज कैन आई एंजॉय दिस स्पिरिचुअल जर्नी, and that is what is very very important.

0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज अनिल कुमार शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी में इनकी स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है। वर्तमान में अनिल जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस कार्य समिति के और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हेतु विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ये 1989 में वाराणसी से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। अला जी नमस्कार, ओम शांति।
1: राम शांति, नमस्ते सर, कैसे हो?
0: बस बढ़िया, बस बढ़िया। आप कैसे हैं?
1: बस बहुत अच्छे हैं। आप आ गए तो और खुशी हो गई, आनंद आ गया। क्योंकि हम तो हरदम आपकी और रमेश भाई की राह देखते रहते हैं हरदम।
0: जी जी जी,
1: कि आप सोमनाथ भाई जी आए, रमेश भाई जी आए हमारे, तो हम कुछ न कुछ बोल पाए आपसे और आपसे कुछ नया कुछ जान पाए। क्योंकि अक्सर हमारे वंदना जी आते हैं, कुछ न कुछ अच्छी बातें लेके आते हैं आपके साथ। बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम।
0: जी जी जी जी,
1: तो बहुत अच्छा लगा सर। सत गुरुवार है, आज बाबा का वार है, सभी को आज के दिन की गुरु इस कृपा सब पर बने रहे, ऐसी शुभकामना सर।
0: जी जी जी।
1: और चलो आज बाबा का तो एक गाना हम जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि गुरुवार है, सत गुरुवार है।
0: जी जी जी।
1: तो कहीं ना कहीं हम भी हर रोज पाठशाला में जाते हैं, हमारे यहाँ गीता पाठशाला है हमारे जोटाना में, तो हम हर रोज जाते हैं मंदिर सुनने के लिए।
0: वाह, बढ़िया, अच्छी बात है।
1: हमारे यहाँ रात को क्लास होता है, दिन को सुबह में नहीं होता है, क्योंकि सुबह कोई आ नहीं पाता, इसलिए हमारे यहाँ रात को
0: एरिया सर्विस वाले जॉब वाले धंधा दौरे वाले असर होता है।
1: ज्यादातर हमारे महिला ज्यादा आती है, तो रात को महिलाओं फ्री होती है, तो इसी तरह रात को सभी आते हैं और मुल्ले सुनते हैं।
0: जी,
1: तो बहुत अच्छा लगता है सर बाबा का, उसमें कुछ तो हमको थोड़ा सा तो जरूर ज्ञान तो लगता ही है सबको, क्योंकि हम हर रोज जाते हैं बाबा की बातें सुनते हैं, क्या करना है, कैसा करना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है।
0: जी,
1: सभी बाबा हर रोज मल्ले में सुनाते हैं।
0: जी जी जी,
1: ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है हर रोज सर। तो चलो बाबा का एक गाना भी आपको मैं दे दूं, शायद आप जरूर सुना देना सर।
0: जरूर जरूर, कोशिश करेंगे हम।
1: बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान, हर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान, मानव होगा देव समान। वही गाना है सर।
0: बदलेंगे शुरुआत क्या है?
1: जी जी, बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान।
0: जी,
1: हर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। बढ़िया गाना है बाबा का।
0: जी जी जी जी,
1: ठीक है सर।
0: जरूर,
1: आपको
0: जरूर।
1: और हमारे सभी मित्रों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन की।
0: जरूर, जरूर।
1: और बस सब खुश रहे, आनंद में रहे और आपकी तरह हर दम मुस्कुराते रहे। जी, ऐसे शुभकामना देते हैं, क्योंकि मुस्कुराना तो एक जीवन का मकसद होता है। कहते हैं मुस्कुराने से कोई भी टेंशन चिंता सभी दूर हो जाती है। एक अच्छा मौका मिलता है कि जब हम खुशी में रहते हैं, एक दूसरे के खुशी में बात करते हैं, एक दूसरे के मुस्कुराते हैं, तो कई सारे हमारे जो जीवन के प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाता है आपो आप।
0: जी जी जी जी,
1: जी।
0: जरूर जरूर।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर हम आपको गीत भी सुनाएंगे, बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। तो हम बता रहे थे आज के दिन किन लोगों का जन्मदिन, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते थे। जी हाँ, आज अनिल कुमार शास्त्री जी का जन्मदिन है। उनका जन्म 4 जून 1948 में लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और माता ललिता शास्त्री थी। इन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। बाद में उन्होंने एस्ट्रिज बिजनेस स्कूल यूके से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का अध्ययन भी किया। अनिल जी का विवाह 24 फरवरी 1973 को मंजू श्रीवास्तव के साथ हुआ। इनके 3 बेटे हैं, आदर्श, लगन और मुदित। अनिल शास्त्री जी राजनीति में आने से पहले कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते थे। वहां इन्होंने 17 वर्षों तक वरिष्ठ पदों पर कार्य किए। वहां से त्याग पत्र देकर ये राजनीति में आ गए। ये कांग्रेस पार्टी में अपनी स्पष्टवादिता के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है अनिल जी, 1989 में वाराणसी से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए और वित्त मंत्रालय भारत सरकार में मंत्री भी रहे। वर्तमान समय में ये अपने परिवार सहित नोएडा में स्थायी रूप से रह रहे हैं। अनिल शास्त्री की प्रबंधन क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने हेतु अहम भूमिका रही है और अपने पिता के नाम पर सीमित साधनों से शुरू किए गए लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली के चेयरमैन तथा लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बरेली के भी वो अध्यक्ष रहे। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टियों में भी वो शामिल है। ये ट्रस्ट कई सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करता है। तो चलिए दोस्तों, लेते एक छोटा सा ब्रेक और जो रिक्वायरमेंट थी, मांग थी कि एक परमात्मा का प्यारा सा गीत आपको हम सुनाना चाहेंगे, जो फरमाइश हुई है, बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता की, शिव की संतान। तो चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

मानव होगा देव समान। जी हाँ दोस्तों, अगर हम तस्वीर विश्व के बदलेंगे तो जरूर ये मानव देवता समान हमें दिखाई देगा। तो आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपको बताना चाहेंगे आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उसके बारे में। जी हाँ, आज एसपी बाल सुब्रमण्यम का भी जन्मदिन है। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक गायक है। पार्श्व गायक होने के साथ साथ वह एक अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता भी थे। एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता है। जब अभिनेता सलमान खान नए नए फिल्मों में आए थे तो कई सालों तक एसपी बालसुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज़ समझा जाता था। फिल्म मैंने प्यार किया, जी हाँ, तो ये कौन भूलेगा। हाँ, तो मैंने प्यार किया के गानों हो या साजन या फिर हम आपके है कौन, ही सब फिल्मों में सलमान खान को एसपी बालसुब्रमण्यम ही आवाज़ दी। जी हाँ, वो आवाज़ तो हर एक के कानों में घुसती थी। जैसे कि मैंने प्यार किया, दिल सजना का माने ना, साजन, हम आपके कौन, एक फिल्म तो बहुत सुपर हिट हो गई थी और वो आवाज़ सारी बाल सुब्रमण्यम की थी। एसपी बाल सुब्रमण्यम को एसपीबी या बालू के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। उनका जन्म 4 जून 1946 में मद्रास के नेल्लोर, जब वो चित्तूर जिला आंध्र प्रदेश में हुआ है। सलमान खान के साथ साथ उन्हें साउथ के सुपरस्टार कमल हसन की भी आवाज़ माना जाता है। एसपी बालसुब्रमण्यम ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इसी दौरान उन्होंने संगीत की शिक्षा भी ली। एसपी ने 15 दिसंबर 1966 को तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से गाने की शुरुआत की थी। उनकी पत्नी का नाम सावित्री है। उनके 2 बेटे, एक बेटी पल्लवी और दूसरा बेटा चरण है। उनका बेटा चरण भी प्लेबैक सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बालसुब्रमण्यम ने एक दूजे के लिए मैंने प्यार किया, पत्थर के फूल, हम आपके हैं कौन, रोजा जैसे पॉपुलर फिल्मों में गाने के बाद करीब 15 साल तक हिंदी फिल्मों से दूर रहने के बाद फिर 2013 में उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में भी गाना गाया था। तो 15 साल उन्होंने हिंदी फिल्मों में कहां पर भी गाना नहीं गाया, लेकिन 15 साल के बाद चेन्नई एक्सप्रेस में भी उन्होंने गीत गाया। वह एक बेहतरीन गायक है, संगीतकार है और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी है। उन्होंने कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, शाहरुख खान, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड और अर्जुन सरजा जैसे अभिनेताओं के लिए वॉइस ओवर चेंज किया है। इतना ही नहीं, फिल्म दशावतारम में तेलुगु वर्जन के लिए उन्होंने कमल हसन के 7 किरदारों का आवाज का वॉइस ओवर भी किया है। इसमें बूढ़ी औरत वाले किरदार का भी आवाज शामिल है। एसपी बालसुब्रमण्यम को भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री और 2011 में पद्म भूषण से नवाजा था। पिछले 5 दशक में करीब 16 भाषाओं में 40,000 से ज़्यादा गाने व गा चुके, 40,000 से ज़्यादा और 16 भाषा, ये कोई कम नहीं है। यशुदास के बाद एसपी बालसुब्रमण्यम बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल अवार्ड पाने वाले दूसरे सिंगर थे। यशुदास ने अपने करियर के दौरान 8 नेशनल अवार्ड जीते, जबकि एसपी बालसुब्रमण्यम ने 6 नेशनल अवार्ड अपने जीते हैं। तो ऐसे महान कलाकार भारत में भी हैं जो अपने फिल्म इंडस्ट्री को भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से लेते हुए ब्रेक लेते हुए अभी वक्त हो गया है समाचार का। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आज के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमिदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए

0: स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
1: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में

0: संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है। जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ते ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: माँ की कोमल धूप के साथ कुछ जानकारियाँ और मनोरंजन, ये है नई किरण।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको मिलाना चाहेंगे कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संदीप शेलके जी। डॉक्टर संदीप शेलके जी महाराष्ट्र से है और होम्योपैथी डॉक्टर है, तो हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब सबसे पहले अपना परिचय खुद दें जी।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर संदीप शेलके, मैं पिछले 25 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं स्किन और साइकियाट्री में प्रैक्टिस करता हूँ, साथ ही में मैं DKMM होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में HOD और प्रोफेसर हूँ साइकियाट्री का।
0: जी जी, बहुत खूब सर, स्वागत है आपका। सर, जैसे हम आपको पूछना चाहेंगे कि देखा जाता है तो बहुत सारे लोग आज टेंशन, डिप्रेशन, तनाव महसूस करते हैं, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो श्रोताओं को आप डिप्रेशन क्या चीज़ होती है उसके बारे में बताएं कि डिप्रेशन सुनते हैं लेकिन ये डिप्रेशन होता क्या है, कैसे होता है, किसे डिप्रेशन कहेंगे। जी जी,
1: आजकल दो तीन चीज़ें बहुत मार्केट में या बहुत, जब भी कोई किसी से बात करता है तो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये काफ़ी चर्चा होती है। तीनों बीमारियां ऐसे साथ साथ चलती है, लेकिन साइकियाट्रिक भाषा में थोड़ा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हमें उसे उसके सब लक्षण देख के डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी बीमारी या कौन से लक्षण कब से है। तो अगर देखा जाए तो डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसमें व्यक्ति लगातार उदास होता है, बहुत निराश होता है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है और जीवन में रुचि नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम जो रोज़ का काम करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, खाना घूमना ये वो, तो इस पेशेंट या इस रुग्ण में जीवन में रुचि नहीं दिखती। ये केवल कुछ दिनों का दुख नहीं है, अब देखो दुख स्वाभाविक है, कुछ चीज़ों में मुझे आज रुचि नहीं है, आज मेरा खेलने का मन नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन ये जो है रेगुलर बेसिस पे कल के बाद काफ़ी दिनों तक, बल्कि ऐसी स्थिति जो व्यक्ति के काम, पढ़ाई, रिश्ता और उसके डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में बाधा निर्माण करती है और ये लंबे समय तक जब चलती है तब इसे डिप्रेशन कहा जाता है। एक या दो दिन थोड़ा नाराज़ है, कुछ घटना घटती है आपकी लाइफ में तो आप दुखी हो सकते हैं, दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये इमोशंस होते हैं। लेकिन अगर ये लंबे दौर तक चलता है कि भाई कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा, किसी चीज़ में रुचि नहीं ले रहा, कोई काम में रुचि नहीं ले रहा, ड्यूटी नहीं जा रहा और उदास रहता है, तो इसे हम डिप्रेशन कह सकते हैं।
0: तो आज का ज़माना अभी बदल गया है, तो नए नए शब्द मार्केट में आ गए हैं डिप्रेशन। पहले के ज़माने में ये काफ़ी कम शब्द सुना करते थे, लेकिन अभी बहुत सारे मोबाइल में भी खोलते या तो डिप्रेशन शब्द सुनने को मिलता है, बहुत सारे आजकल के बच्चे भी बोलते हैं डिप्रेशन। तो क्या अभी जैसे आपने बताया कि उदासी आती है, तो उदासी आना ही डिप्रेशन कहेंगे?
1: क्या हर उदासी डिप्रेशन है? ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, हर उदासी हर मौका वही नहीं रहता, तो हर उदासी डिप्रेशन नहीं है। उदासी एक सामान्य मानवीय भावना है जो किसी कठिन परिस्थिति के कारण हो सकती है, किसी के घर में कोई नज़दीक का कहीं जाता ऊपर जाता है या कोई बड़ी घटना घटती है, कोई एक्सीडेंट होता है या अपने मन के खिलाफ कुछ होता है, तो ये हो गई उदासी। लेकिन समय के साथ और हमेशा अगर लंबी दूरी तक, लंबे समय तक ये उदासी बनी रहे तो इस व्यक्ति को सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, इसे हम डिप्रेशन कहेंगे। हर रोज़ का थोड़ा बहुत उदास है तो ये डिप्रेशन नहीं कर सकते। तो सीधी बात है, हर डिप्रेशन या हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती।
0: जी जी जी जी, हर उदासी डिप्रेशन नहीं होती, क्योंकि उदास के कई कारण होते हैं, और मन उदास हो जाता है तो हर उदास मन डिप्रेशन नहीं कहा जाता है। तो डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण क्या क्या हम समझेंगे कि ये डिप्रेशन है?
1: डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण, अभी हर बीमारी के कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं
0: जी,
1: तो वैसे ही डिप्रेशन के हम मुख्य लक्षण लेते हैं, जिससे अगर ये लक्षण आपको हमेशा दिखते हैं तो उसे हम डिप्रेस्ड कह सकते हैं। लगातार उदासी या खालीपन महसूस होना, पहले पसंद आने वाले काम में रुचि नहीं है, जब पहले मुझे खेलना पसंद है, बात करना पसंद है, घूमना पसंद है, अभी इस पेशेंट को हम कहो चलो कहीं घूमने जाते हैं, सर बिल्कुल नहीं, खेलना पसंद करते हो तो नहीं, मैं आराम करूँगा या मैं किसी से बात नहीं करूँगा, जो हमेशा ज़्यादा बात करने वाला व्यक्ति है अचानक उदास हो जाता है। थकान और कमज़ोरी, ये भी देखो थकान कमजोरी काफ़ी बीमारियों के लक्षण है, लेकिन हमेशा अगर इसका देखते हैं चेहरा तो उदास दिखता है, निराश है, थकान लगती है और फ्रेश नहीं दिखता है चेहरे से। उसका जो चेहरे का ग्लो है वो कहीं गायब हो जाता है। फिर इसे पूछेंगे खाना खाना है, नहीं भूख नहीं है, कभी भी पूछो आप दिन में चार बार पूछ लो, अभी मम्मी है रिश्तेदार है ये तो बार बार पूछते हैं क्या हो चुका है जो चार चार रोटी खाता था अभी खाना ही नहीं खा रहा है, नींद और देखो अगर उल्लू के जैसे जागते रहता है दिन रात, फिर ध्यान लगाने में कठिनाई होती है उसको, अगर किस चीज पे फोकस करना है कॉन्सेंट्रेशन करना है, और हमेशा निराश दुखी और बेकार जैसा फील, फिर किसी और को भी उसे बात करने की इच्छा नहीं होती। तो अगर ये लक्षण है सब एक साथ हमें दिखाई देने लगती है, बार बार दिख रही है, काफी महीनों से दिखती है, सब लोग उसको देख के उदास हो रहे हैं, तो इसे हम डेफिनेटली डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण कह सकते हैं।
0: तो दोस्तों बहुत अच्छी बातें बताए हमारे डॉक्टर संदीप शर्के जी ने कि उदासी के या डिप्रेशन के प्रमुख लक्षण क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि बार बार थकान या कमजोरी, नींद नहीं आना, भूख में बदलाव, भूख जैसे कहते हैं कि खाना खाओ तो नहीं खाते, तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने बातें बताई। तो डॉक्टर साहब हम आपको पूछना चाहेंगे कि ये डिप्रेशन किन कारणों से हो सकता है।
1: बहुत अच्छा सवाल है कि कारण क्या है।
0: हाँ,
1: सब सोचते हैं ये सब अच्छा था, बढ़िया रहते थे, खेलते थे, घूमने जाते थे, और अभी कुछ भी पूछो तो निराश रहता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है? डिप्रेशन के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले है आजकल का जो कॉमन जो हम लेते हैं वो है अत्यधिक तनाव। देखिए तनाव में और ज़्यादा तनाव, कुछ लोग ना बहुत तनाव लेते हैं, अब यही काम का तनाव तो होने वाला है, उसके बाद आएगा पारिवारिक में कुछ प्रॉब्लम है, परिवार में कुछ समस्या हो जाती है, कुछ घटना घटती है, या कोई आर्थिक समस्या। अब ये सभी देखो आजकल कलयुग में आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। फिर किसी प्रियजन की मृत्यु, जो घर का जो मेन आदमी है या क्लोज है उसके, उसके बाद जो कारण ले सकते हैं गंभीर बीमारी, फिर अनुवंशिक कारण भी हो सकता है, किसी घर में काफ़ी लोग डिप्रेशन में थे, फिर ये बंदा भी आ गया, इसमें भी डिप्रेशन आ गया, और फिर अगर आपको मानसिक कोई बीमारी है या ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी है, मस्तिष्क की रसायन उसका असंतुलन या हम इसे इम्बैलेंस कहते हैं, अगर हार्मोन्स या केमिकल्स ऑफ द ब्रेन अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं किसी कारण, वो फिर अभी देखो सभी कारण आ गए, उसमें उदासी आ गई, उसके कोई नज़दीक का कोई जाता है, या उसे नींद नहीं आती है या भूख नहीं लगती, फिर इससे क्या हो रहा है, आपका हार्ट और ब्रेन दोनों का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, और फिर बनता है अपना डिप्रेशन के मेन कारण।
0: जी जी जी, बहुत खूब डॉक्टर संदीप जी ने बताया कि डिप्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किन कारणों से डिप्रेशन होता है। जैसे कि उन्होंने बताया अत्यधिक तनाव, हम बिना मतलब का तनाव लेते हैं, अत्यधिक तनाव बढ़ जाता है तो डिप्रेशन के कारण बन जाता है, साथ ही साथ पारिवारिक समस्या भी बताई। तो हम पूछना चाहेंगे कि क्या डिप्रेशन केवल मानसिक समस्या है या शरीर को भी ये डिप्रेशन प्रभावित करता है, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
1: देखो अभी डिप्रेशन पहले दौर अगर जैसे भी दिमाग में डिप्रेशन आता है तो मानसिक समस्या ही है, क्योंकि तुम्हारे माइंड के केमिकल्स है जो डिस्टर्ब होते हैं उसी के कारण हो रहा है। लेकिन कोई भी मानसिक बीमारी का असर आपके शरीर पे पड़ता ही पड़ता है। फिर इससे क्या होगा, व्यक्ति में सर दर्द, शरीर दर्द, थकान, पाचन ठीक न होना और संबंधित समस्याएं और नींद की गड़बड़। जैसे आपकी नींद अगर डिस्टर्ब हो जाए तो मुझे लगता है हर चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है, तो ओवरऑल ये पर्सनैलिटी पूरी डिस्टर्ब हो जाती है डिप्रेशन के कारण, ना भूख लग रही है ना नींद लग रही है। फिर क्या हो रहा है, सर दर्द होता है, मुझे बॉडी पेन हो रहा है, फिर ये दुख रहा है वो दुख रहा है और पूरे घर में दुखना आ गया। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि डिप्रेशन में ये सब लक्षण दिख रहे हैं और थकान, पाचन संबंधित समस्या, नींद की गड़बड़ जैसी समस्या हो चुकी है, और फिर मानसिक और शरीर में दोनों में भी इंटर रिलेशन हो सकता है। तो हर डिप्रेशन केवल मानसिक समस्या नहीं है, ये शरीर को भी 100% प्रभावित करता है।
0: बहुत खूब कि डॉक्टर साहब ने बताया कि डिप्रेशन के कारण क्या होते हैं, डिप्रेशन से थकान भी होती है, और डिप्रेशन का पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है। जी हाँ, मानसिक के साथ साथ शारीरिक प्रभाव भी डिप्रेशन का होता है। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
2: रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, कीप लिसनिंग कीप स्माइलिंग। दिस इज आदित्य राज कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू ब्रह्म कुमारीज कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। कीप लिसनिंग कीप स्माइलिंग।

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए फिर से हम आपके साथ मिला रहे हैं डॉक्टर संदीप शेड़के जी के, और उन्होंने बहुत सारे बातें डिप्रेशन के बारे में बताया कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके कारण क्या है, और क्या उसका अपने शरीर के ऊपर भी कोई प्रभाव होता है क्या। तो ये सारी बातों की जानकारी उन्होंने हमें लगातार दी है, और आप भी जो हमारे श्रोता अभी इस समय सुन रहे हैं, उनमें से किसी को अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए, उनके परिवार में या किसी कोई समस्या ग्रसित दिखता है, तो आप जरूर उसके बारे में डॉक्टर को पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है, तो आप भी, आपके मन में कोई प्रश्न है या और कोई अन्य बीमारी के बारे में कोई प्रश्न है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि ये डिप्रेशन है, या लगता है कभी ये व्यक्ति शांत शांत रहता है, नाराज तनाव में रहता है, तो इनको कब ऐसा लगता है कि डॉक्टर से मिलाना जरूरी है या डॉक्टर से मिलना चाहिए?
1: बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि कब किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य विशेष तज्ञ जैसे कि साइकेट्रिक डॉक्टर से मिलना चाहिए।
0: जी,
1: तो जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में लिया है कि अगर उसे यदि उदासी, निराशा या रुचि की कमी

0: दो सप्ताह से ज़्यादा, अगर वो रेगुलर 8-10 दिन या 2-4 दिन कोई घटना घटने के बाद उदास रहता है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 सप्ताह से अधिक समय तक बनी रहे, इससे उसका लाइफस्टाइल, जो जीवन शैली है वो प्रभावित हो रही है। हो सकता है कि उसे कोई किसी को मारना, आत्महत्या करने जैसे विचार आ रहे हैं, तो तुरंत आपने साइकियाट्रिक डॉक्टर को संपर्क करना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है।
1: जी जी जी। तो 2 हफ्ते से अगर अधिक कोई व्यक्ति उदास है, चिंतित है, परेशान है, तो ऐसे व्यक्ति को जरूर डॉक्टर के पास लेके जाना जरूरी है। जो विशेषज्ञ है उसके पास लेके जाए, उसको बता दे कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपके लिए रही रहेगा कि घर वाले भी देखते हैं, हमारे परिवार में एक सदस्य ऐसा है वो अधिक समय से नाराज़ है, उदास है, तो परिवार में जो डिप्रेशन वाला व्यक्ति है तो परिवार वाले उसको कैसी मदद कर सकते हैं?
0: सबसे इम्पोर्टेंट होता है परिवार
1: जी।
0: अगर परिवार के लोग उसे सही सपोर्ट करते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है उससे बढ़िया दवा कोई है नहीं।
1: जी जी।
0: तो उनका सपोर्ट इम्पोर्टेंट है, उनको सुन लेना
1: जी।
0: परिवार ने उसको ध्यान से देखो, सबसे बड़ी आजकल की दुनिया में जो प्रश्न चल रहा है, कोई सुनना नहीं चाहता
1: जी।
0: तो उसे सुनना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसकी भावनाएं को समझे, आज उसे प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसको निगेटिव फीडबैक मत दो, उसकी आलोचना मत करो, उसको नाम मत रखो, अरे ये ऐसे पागल जैसी बात कर रहा है, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ये तो ऐसे ही करता है, तो उसको डिप्रेस मत कीजिए, आप ऑलरेडी ही इज़ अंडर डिप्रेशन, फिर उसको आप ऐसे टॉन्ट मार कर या उसकी आलोचना करके उसको डिप्रेस ना करें, और उसको उपचार के लिए प्रमोट कीजिए। देखो, और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उसको अगर साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास ले जाना है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि लोग बोलते हैं अगर आप नॉर्मल चीज़ के लिए जाए तो उसको लगता है पागल हो गया क्या।
1: जी जी।
0: तो लोगों में एक ये स्टैम्प लग जाती है कि साइकियाट्रिक डॉक्टर के पास जा रहा है, तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को लोग अलग नज़रे से देखने लगते हैं कि ये इसको क्या प्रॉब्लम हो चुकी है।
1: जी जी।
0: तो उसे प्रोत्साहित कीजिए, किसी को बार बार बताइए मत कि हम ये डॉक्टर के पास गए थे, इसको ऐसी प्रॉब्लम, डोंट शेयर हिज प्रॉब्लम्स।
1: जी जी जी।
0: उसको कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं तो जो डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ और कोई नहीं, या 2 या 3 दिन की दवा लेना है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परिवार का सहयोग ही उपचार की मुझे लगता है कि मेन फाउंडेशन है।
1: जी जी जी। बहुत अच्छी बात है बताया कि परिवार में एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को बातों को समझना है। जो हमारे घर में ऐसा व्यक्ति है उसको टॉन्टिंग ना करे, आलोचना ना करे, उसको और चिढ़ाए नहीं और ना उकसाए, बल्कि उसको प्यार से आगे बढ़े, उसको प्रोत्साहित करे। परिवार का सहयोग मिलना बहुत ज़रूरी है। ये बात ख्याल रखते हुए हम डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि ये डिप्रेशन के ऊपर जो डॉक्टर होते हैं किस प्रकार से उपचार करते हैं, कैसे किया जाता है इस डिप्रेशन के ऊपर?
0: अच्छा सवाल है। रेगुलर डॉक्टर और साइकेट्रिक डॉक्टर में बहुत डिफरेंस है
1: जी।
0: तो ये इनका जो ट्रीटमेंट का, हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है, अभी दूसरी जगह आप जाते हैं तो 2 मिनट में, या हो सकता है थोड़ा बहुत आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाए, पूरी डिटेलिंग हो जाए, रिपोर्ट्स और आपको दवा लिखते हैं। साइकेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट होता है काउंसिलिंग
1: जी।
0: आपको पूरी चीज़, पूरी घटना, इवन पेशेंट ने हर चीज़ जितना डिटेलिंग डॉक्टर को बताएंगे उतना उसे फ़ायदा होगा। तो और काउंसलिंग करेंगे उसको, उसको समझा के बोलेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है, ऐसा होता है, ये ज़िंदगी में हो सकता है, और उसको उस चीज़ से बाहर निकालेंगे। और ये 1 या 2 सिटिंग में नहीं हो सकता, हो सकता है कि उसको बार बार डॉक्टर से मिलना पड़े। जब तक व्यक्ति का, पेशेंट का समाधान नहीं होता, काउंसलिंग चलती रहेंगी। उसके बाद साइकोथेरेपी होती है, एक टाइम में साइकोलॉजिकल उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको एक थेरेपी बोलते दवा दी जाएंगी। फिर नियमित व्यायाम की सलाह दी जाती है पेशेंट को कि नियमित व्यायाम करें, और नींद, और अभी नींद पर्याप्त लेनी है तो दिन में सही समय पर सोना चाहिए, सही समय पर उठना चाहिए, और ध्यान रखे कि दिन भर न सोए पेशेंट, कुछ चीज़ में व्यस्त रहे। तो साइको जैसा काउंसिलिंग में हम ये सब चीज़ें बताते हैं पेशेंट को। फिर उसको तनाव कैसा मैनेज करे, वो जिस चीज़ से उसे प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसा इग्नोर करे, उसको लाइफ में से कैसा हटाया जाए, और आवश्यकता पड़ने पर दवाइयाँ। पहले ये 4-5 स्टेप लेते हैं, काउंसिलिंग, साइकोथेरेपी, पेशेंट को व्यायाम करना, जिस चीज़ से उसको तकलीफ हो रही है उसको दूर हटाए, और फिर दवाइयाँ दे।
1: जी जी जी। बहुत खूब आपने बताया कि किस प्रकार से डॉक्टर डिप्रेशन के ऊपर उन पर उपचार करते हैं। सबसे पहले मेन काउंसलिंग है, काउंसलिंग उनको कराते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, तो धीरज देते हैं। तो डॉक्टर की काउंसलिंग ही वो पे मरीज को आधे से ज़्यादा ठीक कर देती है। फिर उन्होंने कहा कि उसको क्या क्या करना ज़रूरी है, तो अगर ज़रूरी बातें करते हैं तो डिप्रेशन से मुक्त हो जा सकते हैं। तो लेकिन डॉक्टर साहब, हम ये पूछना चाहेंगे कि आपके पास बहुत सारे पेशेंट तो आते होंगे, तो पेशेंट में से कोई उनके मन में डिप्रेशन के बारे में अलग अलग भ्रम होते हैं?
0: हर बीमारी का ये प्रॉब्लम है
1: जी।
0: हर, और क्या है ना, समाज में, मार्केट में हर चीज़ के बारे में, अब थोड़ा अगर उसको डिप्रेशन है तो एक बंदा बोल देगा ये तो पागल हो गया, इसको ये दिक्कत है। तो क्या होता है कि थोड़े, और हर कोई इतना पढ़ा लिखा होता नहीं, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी उसकी होती नहीं है, तो उस पर एक लेबल लगाने की कोशिश करता है और कुछ गलत धारणाएँ बनती है। तो कई लोग मानते हैं कि डिप्रेशन एक कमज़ोर आदमी की निशानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक आधा स्ट्रांग आदमी है, उसे कोई लाइफ में घटना हुई तो भी वो डिप्रेशन में जा सकता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि इसकी इच्छा शक्ति कम है तो उसके कारण वो हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। डिप्रेशन एक वास्तविक चिकित्सा स्थिति है और जिसे 100% उपचार से संभव है कि वो ठीक हो सकता है।
1: जी जी जी जी जी, डिप्रेशन है वास्तविक उपचार से 100% ठीक हो सकता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपके आसपास या आपके रिश्ते में कोई डिप्रेशन वाला होगा तो आप ये ख्याल रखें कि डिप्रेशन वाला आदमी अगर सही उपचार मिलता है तो वो ठीक भी हो सकता है। तो अगला सवाल डॉक्टर साहब से है कि डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों के लिए आपका संदेश क्या रहेगा?
0: बहुत इम्पोर्टेंट है सभी दर्शकों से, सभी जो लोग डिप्रेशन में है या उन्हें लगता है मैं उदास हूँ, तो उनके लिए अगर, यदि आप लंबे समय से कोई आपका दोस्त है, कोई दोस्त है या कोई फ्रेंड है, कोई रिश्तेदार है, उसको आप हमेशा उदास देखते हैं, तनाव या निराश महसूस कर रहे हैं, तो चुपचाप सहन न करें। मदद मांगना कमज़ोरी बिल्कुल नहीं है ये, बल्कि उपचार मिलना चाहिए। परिवार का सहयोग दीजिए और एक पॉजिटिव प्रयासों से मुझे लगता है कि आप डिप्रेशन जैसे बड़ी बीमारी पर आसानी से विजय पा सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आपके नज़दीक जो साइकेट्रिक डॉक्टर है उसे संपर्क कीजिए या हमारे जैसे डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं।
1: जी जी जी, बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डिप्रेशन आप ठीक हो सकता है, और डिप्रेशन जो दिखाई दे रहा है पेशेंट में, आप सही डॉक्टर पर जाके उनके पास उपचार कर सकते हैं, काउंसलिंग भी कर सकते हैं। और इसमें मेन रोल रहता है कि हमारे परिवार का, परिवार में अगर हम उसे अच्छा सहयोग देते हैं तो क्या हो जाता है, वो आसानी से, जल्दी से डिप्रेशन से बाहर आ सकता है। तो ये थी बातें डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से, डिप्रेशन के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन से और सही उपचार से ठीक भी हो सकता है। तो जाते जाते कुछ डिप्रेशन के बारे में और क्या आप बताना चाहेंगे?
0: अभी समापन करना चाहूँगा, मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है। अपने मन की देखभाल कीजिए, खुलकर बात कीजिए और आवश्यकता पड़ने पर विशेष तज्ञ का सहारा लीजिए, सहायता लीजिए और जीवन में संकोच नहीं कीजिए। थैंक यू।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप शेलके जी, आपने आपका कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को लाभान्वित किया कि डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन के कारण, और डिप्रेशन जब व्यक्ति ऐसा कोई दिखता है तो उसके लिए हम क्या सावधानियां ले सकते हैं। तो अपनी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को समझाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जो आज का कार्यक्रम जो हमारे श्रोता सुनते होंगे उन्हें ये बहुत ही पसंद आया हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताना चाहेंगे कि आज किन किन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में। जी हाँ, आज नूतन जी का भी जन्मदिन है। हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से वो एक अभिनेत्री रही है। भारतीय सिनेमा जगत में नूतन को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्री के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने पर परंपरागत विचारधारा को बदलकर उन्हें अलग पहचान दिलाई। सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी, तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसी कई फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय से नूतन ने यह साबित किया कि नायिकाओं में से भी अभिनय क्षमता है और वह अपने अभिनय की बदौलत वे दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में सक्षम है। नूतन जी का जन्म 4 जून 1936 को एक पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती शोभना समर्थ था और पिता का नाम कुमार सेन समर्थ था। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन अक्सर अपनी माँ के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इस वजह से उनका भी रुझान फिल्मों में और हो गया। वह भी अभिनेत्री बनने के ख्वाब देखने लगी। नूतन ने बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती से अपने सिने करियर की शुरुआत की। इस बीच नूतन ने अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया जिसमें वह प्रथम चुनी गई, लेकिन बॉलीवुड के किसी निर्माता का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। बाद में अपनी माँ और उनके मित्र मोतीलाल की सिफारिश की वजह से नूतन को वर्ष 1950 में प्रदर्शित फिल्म हमारी बेटी में अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म का निर्देशन उनकी माँ शोभना समर्थन ने किया था। इसके बाद नूतन ने हम लोग, शीशम, नगीना और शबाब जैसे किच फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों में से कुछ खास पहचान नहीं बना सके। वर्ष 1955 में प्रदर्शित फिल्म सीमा से नूतन ने विद्रोहिणी नायिका के सशक्त किरदार को पहला रूप पर्दे पर साकार किया था। इस फिल्म में नूतन ने सुधार गृह में बंद कैदी की भूमिका निभाई थी जो चोरी के झूठे इल्जाम में जेल में अपने दिन काट रही थी। फिल्म सीमा में बलराज साहनी सुधार गृह के अधिकारी की भूमिका में दिखाई देते हैं। बलराज साहनी भी ऐसे दिग्गज कलाकार की उपस्थिति में भी नूतन ने अपने सशक्त अभिनय से उन्हें कड़ी टक्कर दी। इसके साथ ही फिल्म में अपने दमदार अभिनय के लिए नूतन को अपने सीने करियर का सर्वश्रेष्ठ फिल्मी अभिनेत्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। नूतन ने देवानंद के साथ पेंगेस्ट और तेरे घर के सामने में नूतन ने हल्के फुल्के रोल कर अपनी बहुआयामी प्रतिभा का परिचय भी दिया। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म सोनी की चिड़िया के हिट होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में नूतन के नाम के डंके बजने लगे और बाद में एक के बाद एक कठिन भूमिकाओं को निभाकर वह फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गई। वर्ष 1958 में प्रदर्शित फिल्म दिल्ली का ठग में नूतन ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर उस समय के समाज को चौंका दिया। हाँ, ये बात 1958 की है। फिल्म बारिश में नूतन काफ़ी बोल्ड दृश्य दिए जिसके लिए उसकी काफ़ी आलोचना भी हुई, लेकिन बाद में विमल राय की फिल्म सुजाता एवं बंदिनी में नूतन ने अत्यंत मर्मस्पर्शी अभिनय कर अपनी बोल्ड अभिनेत्री की छवि को बदल दिया। सुजाता, बंदिनी और दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों की कामयाबी के बाद नूतन ट्रेजेडी क्वीन कहने जाने लगी। हेलो जी, नमस्कार, ओम शांति।
1: नमस्कार जी। नमस्कार मदन भाई।
0: बोलिए बोलिए मदन भाई,
1: कैसे आप?
0: आपका आवाज डबल आ रहा है मदन भाई।
1: कम आ रहा है?
0: डबल आ रहा है।
1: डबल आ रहा तो मैं इसको कम कर देता हूँ रेडियो।
0: जी जी जी जी,
1: रेडियो से डबल आ रहा है।
0: रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। बोलिए
1: जी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं सुबह से रेडियो।
0: जी जी,
1: बाबे के गीत सुन रहे हैं और दोस्तों की आवाज सुन रहे हैं।
0: जी,
1: और जैसे डॉक्टर साहब ने भी सब कुछ अच्छा बताया है।
0: जी जी,
1: कि कुछ भी है मगर खुल के और खुशी से बोलना चाहिए।
0: जी जी जी जी,
1: तो हर जितने भी डॉक्टर हैं सभी जगह हम गए हैं यहाँ जाते हैं उन सभी को हम शुक्रिया करते हैं
0: जी।
1: और हमें रेडियो मधुबन में बताते हैं
0: जी, हर जी।
1: दवा की बीमारी की किस तरह से क्या टेंशन है मोबाइल की वजह से या घर के संबंधों की वजह से
0: जी,
1: क्या हो गया क्यों हो गया ये पत्तों की वजह से बढ़ते रहते हैं तपन हो जाता है। बहुत तरह के टेंशन है, कोई काम के है, कोई घर के, कोई परिवार के हैं, तो कोई तपन टूट गया है, तो इसी वजह से लोग बीमार भी पड़ जाते हैं, तो चक्कर भी आने लगते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं
0: जी, जी,
1: तो
0: जी।
1: बस आपने क्या सुनाया है, और भी बहुत कुछ है, और रेडियो मधुबन का आपके जाने का भी समय है
0: जी जी जी, अभी जाने का समय हो गया
1: और ये हिंदुस्तान की बात की तो उनका गाना सुनाई दिए, तेरे घर के सामने किधर बनाएंगे, तेरे घर के सामने

0: भी कुछ बनाऊंगा नमस्कार
1: जी, जी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम बताना चाह रहे थे कि नूतन जी के बारे में। तो नूतन जी ने अपने करियर में बहुत सारे फिल्में किए और उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो नूतन को वर्ष 1974 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अभी ये दोस्तों वक्त हो गया है कार्यक्रम को यही पूरा करने का। कल फिर मिलते हैं नई करण इस कार्यक्रम में, तब तक के लिए लेते हैं विश्राम। धन्यवाद। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: ये गुस्से वाले हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। तो मैं तो बच गई, लेकिन आप अपने आप से दूर कैसे रहेंगे? आप सारा दिन अपने आप को कितना चीट कर रहे हैं। किसी को चीट करना क्या होता है कि किसी का नुकसान करना ना, किसी के साथ धोखा करना, किसी का गलत करना, उसी को आप चीटिंग कहेंगे। अपने मन का पल पल पल नुकसान करना, अपनी फीलिंग्स का नुकसान करना, अपनी खुशी को, अपनी शांति को हर थॉट में खत्म करते जाना। दूसरा अगर चीट करता भी, किस चीज के लिए चीट कर लेती? पैसों के लिए कर लेती, बिजनेस में कर लेती, कुछ आप मेरे पे विश्वास करते मैं झूठ बोल देती, इतना ही तो चीट कर सकते हैं। सामने वाला कितना चीट करेगा, हमें क्या चीट करेगा? दूसरे तो हमसे बच गए, दूसरे हमसे डर गए, दूसरे हमसे दूर रहने लगे, लेकिन हमें तो अपने साथ रहना है। द पर्सन हु आई हैव टू लिव विद 24/7, आई नीड टू बी कम्फर्टेबल विद दैट पर्सन। आई हैव टू लिव विद माई सेल्फ। दूसरे तो अपना संभाल लेंगे। सो वी नीड टू से।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: भाव स्वभाव और संभावनाओं का अनूठा संगम, ये है नई किरण।
0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे

0: की रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स, कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है. तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वांट देन नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं क्रिएट इट.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए.

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अशना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। हर बात के दो पहलू होते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। अब कौन सा पहलू जीवन में लाना है वो जरा विचार करिए। और जी हाँ, आम किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है जरूर जानेंगे आप। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं। आज भी आपको सिखाने वाली हूँ अचार, लेकिन कौन सा वाला वो आप बताएंगे, नहीं तो फिर हम तो बैठे ही हैं। और आज की पहली बहुत ही शानदार रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, नकारात्मक और सकारात्मक सोच का परिणाम क्या होता है वो जानिएगा। तो आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। पुराने समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। एक दिन अचानक कुछ समय, मतलब थोड़ा सा समय गुजरा, उसके बाद दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो जाती है। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनाकर मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर के उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जीवन दिया था। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरे जीवन मैंने बैल की भांति खेतों में काम किया है। जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया, ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा भोजन करा पाया। जो भी पैसे मैं कमाता था, कोई आकर के मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो? तुम इस जन्म में क्या चाहते हो? मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुन करके वह किसान पुनः बोला, भगवान आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ही ना पड़े। मुझे तो केवल चारों ओर से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात करके कर वे किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और

कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी, तुम क्या चाहते हो। उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू। आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट भोजन दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपने पूरे जीवन अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और प्यासे लोग आते थे भोजन मांगने के लिए, परंतु कभी कभी मैं भोजन न होने के कारण उन्हें भोजन नहीं दे पाता था और वो मेरे द्वार से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कह करके वह चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनकर उससे पूछा, तो अब क्या चाहते हो तुम इस जन्म में, मैं तुम्हें क्या बनाऊं। किसान भगवान से हाथ जोड़ते हुए विनती की, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे द्वार से कोई भी कभी भी भूखा और प्यासा ना जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम जाओ, तुम्हारे द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा नहीं जाएगा। अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों ओर से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ही ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही चला जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बना। हर बात के दो पहलू होते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीज़ों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीज़ों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और सदैव दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से बहुत सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। भाई, आम खाने के क्या फायदे हैं और कौन सी बीमारियां ठीक करता है आम? आम का सीजन है ना, और आम तो सभी को पसंद है, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं। और आम ऐसी चीज़ है कि आसानी से खा भी सकते हैं, नहीं तो कोई कड़क चीज़ होती है तो बुजुर्ग नहीं खा पाते, कभी नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं खा पाते, लेकिन आम ऐसी चीज़ें नन्हे मुन्ने बच्चों से लगा करके बुजुर्गों तक सब पसंद करते हैं। तो आम स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई गुणों से भरपूर फल है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। देखिए, आम में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसमें विटामिन ए होता है जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। आम आँखों के लिए लाभदायक है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। कैसे? तो इसमें विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को सहयोग देते हैं। क्या होता है? इसमें विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को सहयोग देते हैं। देखिए, आम ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। कैसे? पका हुआ आम प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, त्वचा के लिए भी बड़ा ही लाभदारी है। कैसे है? संतुलित मात्रा में आम खाने से त्वचा को आवश्यक पोषण मिलता है। अब मैं आपको घरेलू उपाय बता रही हूँ। लू से बचाव के लिए आप आम का पन्ना, मतलब कच्चे आम को उबालकर उसका पन्ना बनाकर पीजिए। ये परंपरा है, गर्मियों में ताजगी देगा, ठीक है। पाचन के लिए कच्चे आम के छोटे टुकड़ों पर थोड़ा सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा डाल करके खा सकते हैं, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। पाचन शक्ति के लिए कच्चे आम के छोटे टुकड़े पर थोड़ा सा सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल करके आप खाइएगा, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पके आम को दूध के साथ मिला करके मैंगो शेक बनाइए और फिर पीजिएगा। ये ऊर्जा देने का बहुत ही सुंदर पेय है। तो पके आम को दूध के साथ मिला करके मैंगो शेक बनाइए और फिर आप पीजिएगा। तो ये ऊर्जा देने का बहुत ही अच्छा स्रोत है। आप इस तरह मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं। आम खाने का पारंपरिक तरीका भी आप जान लीजिए। कई लोग पके आम को कुछ समय पानी में भिगोकर खाने की सलाह देते हैं। यह एक पारंपरिक घरेलू प्रथा है। तो आप ज़रूर पानी में भिगो करके ही उसके बाद ही खाइएगा। तो इस तरह आम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत अधिक मात्रा में आम खाने से कुछ लोगों को पेट की परेशानी या शुगर बढ़ने जैसी समस्या भी हो सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में सेवन करना बेस्ट माना जाता है। कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर कोई भी चीज़ हो, हम लिमिट में खाते हैं तो फ़ायदा करता है, और अनलिमिट में खाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है तो नुकसान भी करता है। तो बैलेंस रख करके खाना है, ठीक है। एक आम आप रोज खा सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा घरेलू उपाय जो आपने सुने हैं और आप आजमा सकते हैं। और आइए अब आज के पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, न मैं सेब न मैं अनार, गर्मी में होता मेरा इंतज़ार, रस से भरा मीठा मेरा नाम, बच्चे बूढ़े खाए सुबह और शाम। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में फिरोज भाई जुड़ चुके हैं पालनपुर से। नमस्ते फिरोज भाई।
1: नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी,
1: कैसे? मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और मालिक सभी श्रोताओं का और सभी रेडियो मधुबन परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखे, ऐसे मालिक के प्रार्थना
0: जी। और आज का विषय मैं रख रही हूँ, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों अधिक हो, और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। क्या कहेंगे आप?
1: तो इसमें ऐसा है बहन जी कि हमारे जो बड़े सेठ थे भाई जो इंतकाल हो गए, तो उन्हें बुरा वक्त भी देखा है और अच्छा वक्त भी देखा है, कि वो जो जो इनका बचपना था और इनकी पढ़ाई लिखाई का जमाना था, उसी टाइम में ये मैंगो के जमाने के अंदर वो बैल के अंदर मैंगो लेके जाते थे दूसरे गांव बेचने के लिए, और वो इनका ये खराब वक्त था, ऐसे मजदूरी करने का वक्त था, और फिर बाद में पढ़ाई लिखाई करके वो अपना ये फूड एंड ड्रग्स के डायरेक्टर बने गांधीनगर सचिवालय।
0: जी क्या बात है।
1: और इनका आयुर्वेदिक इनका मानसिक था, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी भी बनाई डांग जिले के अंदर, वहाँ के जो जो बंजर इलाका के जो आदमी आदिवासी लोग हैं इनके लिए, इनकी रोजी रोटी के लिए, तभी 60-70 जन अच्छा वेतन सरकारी धारा दौड़ मुझे पगार बोनस सब मिलता है इनको, और एक आदमी इनका रिटायर होने पर एक आदमी इनका घर का बच्चा रख दे इनका
0: जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में?
1: इस विषय के अंदर हम कहना चाहेंगे कि कोई भी मुश्किल हो, खराब वक्त हो या अच्छा वक्त हो, उसमें खुशखुशहाली रहना और ये अपने दिमाग में नहीं लगाना है। दिमाग में लगाओगे तो पागलपन भी आ सकता है, और ऐसे अपना
0: नहीं के अंदर थोड़ा विषय समझिए फिरोज भाई। देखिए, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ज्यादा हो, दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही देखा हो, वो ही अनुभव की बातें कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: हमने भी अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है, कि अनुभव में हम देखो ये हम मेरे ग्रैंड टीचर तो हम उसी टाइम में बॉम्बे के अंदर रोजी रोटी के लिए हम लोग मैं 16-17 गाड़ी धोता था, सुबह उससे कूदता था और
0: क्या बात है
1: धोता तो हाँ, और वो हमारा समझो कि बुरा वक्त भी था अच्छा वक्त भी समझो
0: जी,
1: उसमें पैसा भी मिलता था उसी जमाने में
0: जी। तो और एक अच्छा देखिए, यंग एज होती काम भी हो जाता है, जनून रहता है
1: जी जी। और अभी ये देखो मेरी इस उम्र के अंदर मेरी 69 चल रही है, अभी इस उम्र में भी मैं एक्टिव हूँ
0: जी जी जी। बहुत बढ़िया, जिन्होंने शुरू से मेहनत की है ना वो लास्ट तक करते ही है
1: जी।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। विषय भी बहुत ही अच्छा है, आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है। पहले तो मैं आज का विषय दोहरा रही हूँ, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ज्यादा हो, और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। चलिए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, कंचन भाई नमस्ते, कैसे हो आप?
2: नमस्ते नमस्ते बहन जी। कल तो खेत में थोड़ा काम था तो गया था, तो रात को 9 बजे आया
0: जी,
2: और पूरे दिन काम था खेत में, थोड़ा जुआर बोया था तो वो काटे थे, तो इसका निकालना था बागीदार का और ये सब करने का
0: जी जी जी जी।
2: आज तो दुकान पे हूँ, तो सुन रहा हूँ अभी फिरोज भाई ने बातें बताई, और सवाल बहुत अच्छा है
0: जी।
2: समझदारी की बात दो ही लोग करते हैं।
0: हाँ जी।
2: एक तो क्या उम्र,
0: हाँ जी, एक तो क्या है कि थोड़े अधिक उम्र वाले हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग हो चुके हैं या तो वो कर सकते हैं, ठीक है, उम्र और अनुभव दोनों होते हैं उनके पास, या फिर वो ही कर सकते हैं जो कम उम्र में भी अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। जैसे आपका भी हम कह सकते हैं आपके भी पिताजी के बचपन में ही डेथ हो गई, तो आपने कैसे भाइयों को पाला पोसा, तो अनुभवी तो आप भी है।
2: हाँ, वही तो बात मैं करना चाहता था कि भाई कम उम्र में ऐसी घर परिवार में जवाबदारी है, कहा जाती है ही नहीं। तो एक तो अच्छे लोगों का संग, बुरे लोग भी मिलते हैं इसमें, और इसमें चला जाए और ये सब हमें मिल जाए, जमीन जायदाद सब हमें मिल जाए, तो ऐसे भी मिलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ होते हैं लोग तो ये सलाह अच्छी देते हैं, तो ये ग्रहण करनी चाहिए
0: जी,
2: और आगे बढ़ना चाहिए। ये व्यसन व्यसन कुछ छोड़ देना चाहिए। हमारा भी ऐसा था, कम उम्र में आठवीं कक्षा से निकल गया मैं, करता था तो
0: जी,
2: तो पिताजी थोड़े ऐसे ही थे, कोई जवाबदारी नहीं थी
0: जी,
2: समाज के व्यक्ति तो वो तो इधर उधर तालुका जिला में चले जाते थे, तो पूरी जवाबदारी मेरे माता जी ने बोला कि भाई तू नहीं पढ़ पाएगा, तू निकल जा
0: जी।
2: निकल गया और खेती की जवाबदारी ऐसा ले ली मैंने
0: जी जी जी,
2: खेती की जवाबदारी ली इसमें। और हमारे कुटुंब घर परिवार गांव वाले तो बोलते थे कि ये घर अब निकल जाएगा, घर घर नहीं रहेगा
0: जी,
2: जाएगा
0: जी,
2: ऐसी परिस्थिति
0: जी जी जी। लेकिन जब घर का मुखिया ही अगर लापरवाह हो जाए तो फिर घर बिखरेगा, स्वाभाविक है, लोग ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि इन्हीं के बीच
2: पिताजी का भी कोई दोस्त तो नहीं था, लेकिन ऐसे लोगों का संग किया ना तो उन्होंने
0: जी, संग का रंग लगता है ना।
2: हाँ, तू ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा, वो तू ही तालुका में जिला में जाके तू ही ये बात कर सकता
0: जी जी। ऐसे जी,
2: ऐसे ये लोग मिले ना तो ये ऐसे करने लग गए, कोई जवाबदारी है, पास बेटे है मेरे, ऐसा है वैसा है, तो कोई पीछे देखा भी नहीं
0: जी जी जी जी।
2: तो मुझे ये छोड़ना पड़ा पढ़ाई, और सिलाई काम मैं सीखने, और खेती तो भागीदार करता था, ये भी देखभाल करते थे मेरे माता जी
0: जी,
2: और सिलाई का काम सीख गया एक साल में आया, और ये मकान भी नहीं था, दुकान भी नहीं था, तो किसी के कपड़े की दुकान थी ना, वहाँ आंगन था थोड़ा उठला, तो वहाँ बैठ के मैं सिलाई का काम करता था। ऐसा कर करके फिर ये दुकान का आयोजन किया, पंचायत में दिखाया, ये सब किया, दुकान बनाई
0: जी।
2: तो अभी इसके बाद तो मैंने 8-10 युवाओं को सिखाया ये काम, कि हमारी परिस्थिति कैसी
0: जी जी जी, अनुभव हो गया ना आपको, अनुभव हो गया, कम उम्र में तकलीफें आई तो आप समझदार समय से पहले बन गए। वो कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि कम उम्र में भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब बुद्धि से।
2: बुद्धि
0: जी,
2: मैंने अच्छे लोगों का ही किया, और मेरे दोस्त भी ऐसे मिले कि तुम ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो
0: जी, ये भी देखे,
2: ये सब बताने वाले लोग भी, इसका ही मैंने संग्रह, और इसका आभार मानता हूँ, और अब अच्छी परिस्थितियाँ है
0: जी जी।
2: घर की
0: वो तो
2: मैंने चार बेटा और एक बेटी हुई, तो सबको कॉलेज तक पढ़ाया
0: जी जी, बहुत बढ़िया।
2: तो जॉब करते हैं, मेरी बेटी बीएड किया है, तो वो भी लग जाएगी, वो भी कोशिश कर रही है आगे एग्जाम देने की
0: जी जी जी।
2: तो बिल्कुल कुल मिला के बहन जी, बहुत अच्छा परिस्थितियाँ है, लेकिन ये सब क्या है कि भाई हमारा संघ, और हमें संघर्ष करना पड़ेगा
0: जी,
2: संघ करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, हमारे पास अनुभव नहीं होता तो दूसरों का अनुभव लेना पड़ता
0: जी जी जी, बिल्कुल।
2: कोई तो ऐसे है कि ये कैसे डूब जाए, और ये सब हमें
0: हाँ मौके का फायदा उठाना चाहते हैं ना लोग, और ऐसे ही क्या ये टूट जाए तो अच्छा है जी।
2: ये बात मैंने बताई बहन जी, दूसरे लोगों को भी जुड़ना है तो।
0: चलिए, बहुत बहुत आभार। आज की पहेली का जवाब देंगे
2: आप? पहेली तो मैंने सुनी है, लेकिन थोड़ी देर बताऊंगा।
0: अच्छा, ठीक है चलिए, बहुत बहुत आभार। हाँ जी। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। आपने भी अपना अनुभव सुनाया है, विषय को स्पष्ट किया है। कहते हैं ना कि जो भुगत भोगी होते हैं तो उनसे बढ़कर और कौन अनुभवी होंगे। खुद के अनुभव होते हैं ना, प्रैक्टिकल विषय है। हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि उस समय इंसान कम उम्र में भी जब वो परिस्थितियों का सामना करता है तो करते करते स्ट्रगल करते करते आखिर एक दिन वो कामयाब हो जाता है और अच्छे पोजीशन में आकर के बता देता है कि देखो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उनके पास ही अनुभव होते हैं और ऐसे लोगों के अनुभव कभी भी गलत नहीं होते। इसलिए कभी सलाह लेनी हो ना तो ऐसे लोगों के पास बैठिए जो जीवन में अनुभवी है। अब जिसने वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ले लीजिए, चलिए आम ही ले लीजिए, किसी ने आम नहीं खाया और फिर उससे पूछोगे आम का टेस्ट कैसा है, कभी उसने देखा ही नहीं तो उसको पूछोगे आम का कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, वो क्या जवाब देगा। लेकिन जिसने खाया है वो अच्छी तरह बता सकेगा कि भाई पहले ग्रीन होता है, पकने के बाद येलो हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर वैसा हो जाता है, ऐसा है वैसा है, पूरा स्पष्ट करके रख देगा। ऐसे ही कभी कोई बातें होती है या जीवन में कभी देखे, ऐसा नहीं है कि सभी आराम से ही बड़े होते हैं। परिस्थितियाँ कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है और उस समय हमें सलाह की बहुत ज़रूरत होती है। उस समय ऐसा लगता है कि हम किससे बात करें, किससे शेयर करें कि उसका सॉल्यूशन निकल आए। तो ऐसे लोगों से आप शेयर करिए जो भुगत भोगी होते हैं, जो जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए एक दिन सफल होकर के दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बैठिएगा और ऐसे लोगों से राय लीजिएगा, ठीक है। चलिए और भी इस विषय पर अधिक चर्चा करेंगे। हम तो चाहते कि आप जुड़े और आप अपनी बात को रखें, लेकिन एक ब्रेक के बाद जुड़िएगा। समय हो चला एक ब्रेक का। चलिए फिर भी फोन की घंटी बजी है तो उठा देंगे। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
3: हाँ जी बहन नमस्ते, जगदीश भाई बोलू।
0: हाँ जगदीश भाई, केम छो? बहु दाड़ा पछे जोड़ाया।
3: बहु दाड़ा प्रोग्राम तो सब रही तमारो
0: तो क्यारे क्यारे जोड़ाओ।
3: નાની ઉંમર માં જેને મા બાપ ગુજરી ગયો હોય, માં ના હોય બાપ ના હોય, એને નાની ઉંમર માં પણ અનુભવ ઘણા થઈ ગયા હોય
0: જી।
3: કેવાનો મતલબ એ જ કે એને જો બાપ ના હોય તો બધી જિમ્મેદારી એટલે બધું એના ઉપર આવી જાય, એટલે એને બધી રીતે સમજણ પડી જાય।
0: સાચી વાત છે તમારી।
3: નાની ઉંમર માં પણ એનો અનુભવ બહુ મોટી ઉંમર ના હોય કે એમના જેટલો અનુભવ થઈ જાય
0: જી। બહુ સરસ જગદીશભાઈ, આજની પહેલીનો જવાબ આપશો?
3: પહેલી બોલજો બેન।
0: હા, આજની પહેલી સંભળાવું છું, સાંભળજો તમે। ન મે સેબ ન મે અનાર, ગરમી મે હોતા મેરા ઇંતજાર, રસ સે ભરા મીઠા મેરા નામ, બચ્ચે બુઢે ખાએ સુબહ ઓર શામ।
3: બેન કહી દઉં,
0: તમે ઇશારો કરી શકો છો, ડાયરેક્ટ નામ નહીં લેતા તમે।
3: જવાબ આપ્યો છે આજે, ટિપ્સ આપી
0: ગયો
3: ઘરેલુ ઉપચારમાં।
0: ઓકે, હું સમજી ગઈ, તમારો ઈશારો સમજી ગઈ। ઓકે, હા, બહુ બહુ આભાર, ઓર વચ્ચે જોડાયા કરો હો।
3: હા હા બેન, ચલો થેન્ક યુ।
0: ઓકે, તો યે થે જગદીશભાઈ ઈડર સે, ઓર अब आइए यहाँ पर एक अल्पविराम ले लेते हैं, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। विषय बहुत ही सुंदर है, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। क्या कहेंगे आप? हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: हाँ जी नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, हमारे सभी मित्र जो रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में बात कर लूँ।
0: जी जी हाँ, बहुत अच्छा।
1: सभी हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, हमारे जगदीश भाई को भी नमस्ते। जगदीश भाई बहुत दिनों से बात जुड़े हैं
0: जी,
1: तो वो भी हमारे जगदीश भाई भी हमारे मित्र जो सतीश भाई के फादर हैं, तो सतीश भाई का भी मुझे कॉल आता है कभी कभी
0: जी,
1: इडर इडर से।
0: जी जी बहुत बढ़िया, आपके तो पास में पड़ता होगा इडर।
1: नहीं, हमारे तो इधर तो बहुत दूरी पड़ती थी, कम
0: अच्छा।
1: से कम 100 किलोमीटर है, 100
0: बहुत दूर है जी,
1: बहुत दूर है वो तो
0: जी।
1: तो आज का जो विषय है दीदी, एक बार बता दीजिए क्योंकि।
0: हाँ जी, आज का विषय आप पर भी सूट करता है, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो।
1: बिल्कुल सही दीदी, देखो मेरी मैं खुद की बात करूं दीदी, तो मैं तो छोटा सा 20 साल का था, तो मेरे फादर ऑफ गए हैं, पिताजी गुजर गए, पूरी जिम्मेदारी दीदी मेरे पर आई
0: जी,
1: क्योंकि मैं तो 5 बहन, इस वक्त मेरी 5 बहन थी, तो शादी मेरी नहीं हुई, शादी होने के बाद मेरा फादर ऑफ गया था।
0: अच्छा, शादी तो होते
1: शादी के बाद, हाँ शादी के बाद
0: जी
1: पिताजी गए थे, लेकिन फिर भी जवाबदारी जब भी छोटा था, 20 साल का तो मैं, 22 साल का तो गुजर छोटी सी उम्र कहलाती है मैं
0: जी, बिल्कुल
1: तो सभी जवाबदारियां तो सभी
0: 20 साल की उम्र में तो आज शादी भी नहीं होती है,
1: नहीं होती है
0: जी,
1: तो सब कुछ देख लिया, देखो इतना अनुभव हुआ, इतना अनुभव, सबसे व्यवहार त्योहार सभी एक दूसरे को मनाना ये तो सभी रहता है शादियों में
0: जी,
1: कई सारी अनुभव है, लेकिन इसीलिए तो दीदी मैं आज बिल्कुल अच्छा हूँ, क्योंकि मेरे छोटी सी उम्र में मेरा सब कुछ मैंने सीख लिया, देख लिया
0: जी जी जी,
1: सुख दुख भी देख लिया, दुख भी देख लिया
0: जी,
1: और अब अच्छा है, बेटे है, बेटे काम से एक जॉब है, बहुत अच्छा है, अब कुछ टेंशन नहीं है, सभी टेंशन जो हम छोटे थे तब चले गए, छोटी सी उम्र में कोई भी दुख आता है दीदी अच्छा रहता है
0: जी जी,
1: लेकिन जब
0: अनुभवी हो जाते हैं जल्दी,
1: हाँ बहुत उम्र होती है, बाद में जो दुख आता है दीदी वो सहन नहीं पाते,
0: बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाता है सहना,
1: हाँ मुश्किल हो जाता है, इसलिए कई सारे अनुभव हुए जी। मैं तो दीदी इतना कहूंगा कि कोई भी जो प्रॉब्लम आए तो उसको खुशी खुशी को सहन कर लो, तो आप कोई प्रॉब्लम आए तो सहन कर लो, तो आपको आगे
0: देखिए रोग के भी सहन तो करना ही है ना, तो इससे अच्छा हंसते हंसते सहन करिए,
1: हाँ सहन करना है, सहन करेंगे तो दीदी आगे आएंगे
0: जी,
1: तो देखो आज हम सहन नहीं करेंगे, देखो आज आज कई लोग क्या करते हैं दीदी, कोई ऐसा टेंशन आता है तो खुदकुशी कर लेते हैं
0: जी,
1: कई सारे हमने ऐसे देखे हैं कि जब टेंशन आता है कोई जो कर्जा हो जाता है भाग जाते हैं चले जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं
0: जी,
1: तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दुख के दिन बहुत नहीं रहते, सुख के भी नहीं रहते, तो दुख के एकदम ज्यादा नहीं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, अंधकार के बाद प्रकाश आना ही है,
1: हाँ प्रकाश आता है, तो बस हम तो कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसा टेंशन मत लो, क्योंकि दुख सुख तो हमारा साथ ही है, चले जाएंगे
0: जी
1: जी। नमस्ते
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई चोटाना से, बहुत ही कम उम्र में पिताजी गुजर गए, तो स्वाभाविक है पूरे घर की जिम्मेदारी, 5 बहनें, माताजी, खुद और बीवी, बच्चे भी, तो इतने बड़े परिवार को एक साथ लेके चलना और ऊपर पिता का साया न होना, बहुत ही वो पल मुश्किल वाले होते हैं, वो पल बीत जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में जब हम गुजरते हैं तब पता चलता है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, ना समय तो निकलना ही है, लेकिन समझदारी से आगे बढ़ते हैं वो ही इंसान कहलाता है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई दानेरा।
0: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
2: नमस्ते।
0: कैसे हैं आप
2: जी? नमस्ते नमस्ते दीदी, बस बहुत अच्छे हैं दीदी, और आपकी और मित्रों की बात सुन रहा हूँ, और विषय भी बहुत अच्छा है
0: जी।
2: और तो आज का विषय मैंने सुनकर मेरे बचपन की पिछली जिंदगी जीवन याद आ गया, कितने कष्ट भरी रही मेरी
0: जी, मेरा जी, भी जी। जीवन। आप एक एक की कहानी है, आपके भी जीवन में काफी तकलीफें आए हैं और आज आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना?
2: जी। और वो तो चलो कष्ट आ गए, हमने तो हमारे माता पिता ने अच्छा संस्कार दिया था, तो चलो समझदार हो गए, और समझदार जैसी बातें और हमारा जीवन में धारण कर ली। लेकिन दीदी मैं बात करूं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बचपन में या कोई भी तकलीफ दुख आती है तो वो क्या करते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं, चोर उचक्का गुंडा वगैरह बन जाता है, और नहीं तो नशीली चीजों में
0: जी
2: जाता है, तो
0: बिल्कुल,
2: जीवन
0: बिल्कुल।
2: ही बर्बाद हो जाता,
0: नशे के आदि हो जाते हैं।
2: हाँ, तो हर एक इंसान की समझदारी से काम कैसे ले वो इंसान को खुद तय करना है। और रही बात जो कंचन भाई ने बात बताई दोस्तों की संग की बात
0: जी,
2: तो ये भी हमें समझना जरूर होगा कि हम किसके संग में है और किस में संग में रहना चाहिए। अगर अच्छे संग में रहे तो अच्छा ही हमारा संग मिलेगा। ये तो बहुत सारे जितनी कहे बात इतनी कम है दीदी, तो बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि चलो बचपन में जो कष्ट आया तो हमने झेल दिया, ये जब तक जीवन है तो सुख आएगा दुख आएगा, लेकिन समझदारी से साथ लीजिए। और अगर कोई बुजुर्ग या कोई उम्रदराज व्यक्ति है तो अपने आसपास अपने बच्चों को सभी को बात बतानी चाहिए और कहनी चाहिए कि देखो बेटा ये जो आप कर रहे हैं ऐसे हमारे जीवन में भी आया था, लेकिन हमने अच्छी समझदारी से काम लिया। अपने बच्चों को या किसी भी को मैं ये मोटिवेशन कर सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा सभी को सुनने वालों को कि अपने जीवन में तो लाइए अच्छे संस्कार समझदारी, लेकिन दूसरों के जीवन में भी समझदारी लाने की कोशिश करेंगे।
0: जी
2: जी जी दीदी,
0: और आज की पहेली का जवाब देंगे?
2: हाँ, आज की पहेली तो आपने जो नुस्खे है ना उसमें ही
0: बता। अच्छा, ठीक है।
2: जी नमस्ते दीदी,
0: जी बहुत बहुत आभार। तो आप सुन रहे कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अभी सुरेश भाई धानेरा से जुड़े थे। आपने भी देखे बचपन में बहुत तकलीफें उठाई है, तो हर एक का अनुभव है। रेडियो मधुबन के हमारे इतने सारे श्रोता बंधु हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और आज वो पारस की तरह निखर गए हैं और नेक कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कि पहले पहले अगर दुख तकलीफ आता है जीवन में तो अच्छा है, बुढ़ापे में नहीं आना चाहिए। फिर भी मान लीजिए किसी के बाद में आता है, या किसी किसी का ऐसा होता है कि ज़िंदगी भर वो दुख तकलीफों से ही गुजरते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि उन्होंने स्वस्थ तन दिया, स्वस्थ मन दिया, है ना, दिव्य बुद्धि दी। कम से कम लोगों के पास ये भी नहीं है, किसी के आँख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, हमें ईश्वर ने ये तो दिया है, इसलिए धन्यवाद दीजिए। और जिंदगी भर अगर दुख तकलीफ है तो ईश्वर का, वो कहते हैं ना, ईश्वर भजन करते रहिए, ईश्वर की याद रहती है उसमें, और ईश्वर को मत कोसिए। हो सकता है किसी जन्म का हमारा कोई भी हिसाब किताब हो, ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि जिंदगी भर किसी के जीवन में तकलीफ ना हो। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति उषा बहन जी।
0: हाँ जी नमस्ते दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मेरे प्यारे मित्रों की, बहनों की, सभी आरजे भाइयों की, दादियों की कृपा है। अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। इस वक्त
0: राजस्थान
3: में हूँ तो अभी थोड़ी तेज हवाएं भी चल रही है
0: जी,
3: और दो दिन पहले आंधी बांधी कुछ बारिश भी थोड़ी हुई
0: जी,
3: और कहीं कहीं बिजली भी गिरी तो कहीं नुकसान भी हुआ, कहीं पेड़ भी गिर पड़े और बिजली के खंभे भी उखड़ के गिर गए, तो चार पांच दिन से बिजली अभी ठप पड़ी हुई है
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
3: और काम चल रहा है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा
0: जी जी जी। जरूर
3: और
0: होगा।
3: रेडियो सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे सुरेश भाई, कंचन भाई, सुरेश भाई धानेरा, जगदीश भाई और भी मेरे सभी साथ,

0: समझदार नहीं था, तो मेरे पिताजी जब गुजर गए तो सब जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर आ गई
1: जी।
0: तो मैंने अपनी जिंदगी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ले ली और मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और भाई बहनों को साथ में लेके चला और उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट दिया। तो उस वक्त दीदी हम आज लगभग मेरे ख्याल से 35-40 साल पहले की बात है, तो उस वक्त हमारे को हमारे ऐसी प्रॉब्लम थी, तकलीफ होती थी, तो क्योंकि खाने को अनाज भी नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलती थी, हमारे पढ़ने के लिए कहीं मजदूरी पर हमारे पिताजी जाया करते थे तो हमको भी साथ लेके जाया करते, तो हमारी पढ़ाई में बहुत रुकावटें आई, हमने पढ़ाई सही तरह से नहीं की
1: जी जी।
0: लेकिन बहुत ही जिंदगी में हमने उतार चढ़ाव देखा है, अभी अभी हम जो हम काम कर रहे हैं बाबा से खुश है, हमारे ऊपर से हम भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम इतनी जिंदगी में ठोकरे खा के आज हम अपने पैरों पर खड़े हुए, आत्मबल और शक्ति और आत्मशक्ति हमारे भीतर है तो हम खुशी से जी रहे हैं, हम तो खुशी से जी रहे हैं और हमारे साथ भी जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे जो आते जाते हमारे साथ है, वो भी उनको भी हम उसका भी मार्गदर्शन करते हैं
1: जी जी जी। बहुत बढ़िया।
0: हमारा तो गुरु ही रेडियो मधुबन है, आप जैसे आरजे हैं तो आपने हमारे भीतर इतनी सकारात्मक सोच भरी है, सोच करके तो हम अच्छी जिंदगी जीते हैं और दूसरों को भी मार्गदर्शन बताती है।
1: बहुत
0: सभी सुनने वालों को नमस्कार, ओम शांति। और आज की पहली क्या तो जवाब मैंने
1: जी जी दे दिया आपने,
0: माध्यम से भेजा है।
1: हाँ जी हाँ जी, देख लिया,
0: धन्यवाद
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, बहुत ही सुंदर भी आपने भी बात कही है कि देखिए आपके भी कम उम्र में पिताजी गुजर गए, घर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन कह रहे थे कि ठोकरे खाते खाते आखिर संभल गए और आज एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुके हैं। आज आप खुश हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छी बात है। हर एक के जीवन में ऐसा होता है, हर एक के नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों के जीवन में इस तरह की बातें होती है। इसलिए कहते हैं समय से पहले वो परिपक्व हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं। और ऐसे लोगों से अगर हम अपनी बात शेयर करते हैं तो सॉल्यूशन सही निकलता है। इसलिए जिन्होंने जीवन का मर्म ही नहीं समझा हो उनसे कभी सलामत मांगिए, उनसे बैठिए, देखिए, ऐसे नहीं कि उनको अकेले छोड़ देना है, उनके पास भी बैठेंगे तभी उनको दुनिया से जीवन से अवगत करा पाएंगे। बाकी हाँ, जहाँ सलाह मशवरा की बात आवे तो वहाँ पर आप समझदार अनुभवी लोगों के साथ बैठिए, या तो उम्र वालों के साथ बैठिए कि उम्र वालों को पता होता है, पूरा जीवन उनका गुजर चुका होता है तो उन्हें पता होता है कि क्या उतार आया क्या चढ़ाव आया। और कम उम्र वालों के पास बैठते हो तो ऐसे लोगों के पास ही बैठिए जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा हो और सहते हुए भी जीवन में उनको कामयाबी हासिल हुई हो। ठीक है, तो बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली बहुत ही सुंदर है। न मैं सेब न मैं अनार, गर्मी में होता मेरा इंतजार, रस से भरा मीठा मेरा नाम, बच्चे बूढ़े खाए सुबह और शाम। तो क्या क्या है जो बच्चे बूढ़े सभी पसंद करते हैं और गर्मी में सभी को इंतजार रहता है इसका? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट और चटपटा कच्ची केरी और चने का अचार। तो आइए जानते हैं इसकी आसान विधि आपको सिखाते हैं। तो तैयार होना आप सभी सीखने के लिए। हमने कहा था कि आप अपनी पसंद रखिए, आप अपनी पसंद नहीं रखते तो चलिए हम हर प्रकार का अचार आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आज कच्ची केरी और चने का अचार ये भी आप बना करके देखिए, बहुत अच्छे लगेंगे। तो सामग्री लिख लीजिए, कच्ची केरी ले लीजिए, 500 ग्राम कच्ची केरी ले रहे हैं तो काबुली चना या देसी चना जो भी आप ले रहे हैं एक कप ले लीजिए, ठीक है। सरसों का तेल लेना है आपको, राई ले लीजिए दरदरी पीसी हुई, मतलब राई की दाल ले लीजिएगा। और अगर आप मात्रा कहे तो सरसों का तेल एक कप लीजिएगा, दरदरी पीसी हुई राई की दाल 3 बड़े चम्मच लीजिएगा, 2 बड़े चम्मच सौंफ लीजिएगा, हल्दी 1 छोटा चम्मच लेना है, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच लीजिएगा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ, सामग्री ध्यान दीजिएगा। कच्ची केरी 500 ग्राम ले रहे हैं तो एक कप आपको या तो काबुली या देसी चना जो भी पसंद है लीजिएगा, 1 कप सरसों का तेल लेना है, दरदरी पीसी हुई राई ले लीजिएगा मतलब राई की दाल लीजिएगा 3 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच सौंफ लेना है, 1 छोटा चम्मच हल्दी लीजिएगा, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। फिर आपको तीखा पसंद हो या सामग्री आपको ऐसा लग रही हो तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले कच्ची केरी को धो करके अच्छी तरह सुखा लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लीजिए। अब रात भर भिगे हुए चनों का पानी, मतलब पूरी रात आपको चने को भिगोना है, कोई से भी चने ले रहे हो देसी या काबुली, पूरी रात पानी में भिगोना है। भिगो करके पानी से निकाल करके उन्हें कपड़े पर फैला दीजिए ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए। फिर अब आप सरसों के तेल को हल्का गर्म करिए और गर्म करने के बाद ठंडा कर दीजिए, ठीक है। इधर 1 बड़े बर्तन में केरी, चना, राई, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए। अब जैसे ये सरसों का तेल गर्म कर रखा है और थोड़ा सा ठंडा हो गया हो तो इस मिश्रण में मिला दीजिए, ठंडा कर देना है, पूरा ही ठंडा करके मिलाना है, ठीक है। फिर तैयार अचार को साफ और सूखे कांच की बरनी में भर दीजिए, 3 से 4 दिन तक रोज एक बार साफ चम्मच से इसको हिलाइए। बस तैयार है आपका स्वादिष्ट कच्ची केरी और चने का अचार। तो बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाना सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा। तो श्रोताओं, इस गर्मी घर पर बनाइए कच्ची केरी और चने का ये स्वादिष्ट अचार और बढ़ाइए अपने भोजन का स्वाद। तो चलिए यहाँ पर सुना देते हैं गीत, उसके बाद पुनः लौटेंगे। अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाना है, कोई भी सात्विक चीज बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाना है। और अब एक ब्रेक लेने के बाद पुनः रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: केले बहु इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ अम्मा, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू। बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर ज़रूर आपने गौर किया होगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए। आम किस तरह फ़ायदा करता है हमारी हेल्थ के लिए वो आप सभी ने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो जो रेसिपी में आपको कच्ची केरी और चने का अचार सिखाया है, ज़रूर बना करके खाइएगा भाई। 12 महीने की चीज़ है, अभी सीजन चल रहा है, अभी ही आपको बनाना है, ठीक है? कभी भी कच्ची केरी लेकर के आ जाइए। चने तो वैसे ही मिल जाते हैं मार्केट में, घर पर भी रखते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। साल भर का इकट्ठा करके रख दीजिए ताकि कभी भी आप खा सको, ठीक है? और आज की पहली बड़ी सुंदर थी, न मैं सेब न मैं अनार, गर्मी में होता मेरा इंतज़ार। रस से भरा मीठा मेरा नाम, बच्चे बुड्ढे खाए सुबह और शाम। तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने जवाब सही दिया है, सभी के लिए ढेर सारी तालियां। नाम भी बोलूंगी मैं, अभी नाम सुनाने जा रही हूँ। मीना बहन तलेटी से, आबू तलेटी से, मंजू जी बाड़मेर से, लीला जी कपासन से, वेदांत उदयपुर से, ललिता तलेटी आबू रोड से, दयाराम जी रामपुरा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई मुंबई से, फिरोज भाई पालनपुर से, कंचन भाई मंडाली से, जगदीश भाई इडर से, सुरेश भाई धानेराव से, शोभा सोमानी कपासन से, अलका जी काबरा कपासन से। आप सभी का जवाब सही है और विषय में भी हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े, उन सभी के लिए भी ढेर सारे। आज का मीठा मोती है, बहुत ही सुंदर है आज का मीठा मोती। संबंध नियमों को लागू करने से नहीं सुधरते, स्वयं को बदलने से सुधरते हैं। इसलिए स्वयं को बदलिए। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ। तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। श्याम प्रभु के रूप को जो निरखे एक बार, दुख दरिद्र सगला मिटे, फले सदा परिवार। मोर छड़ी थार हाथा में, हीरो चमके माथा में, थारे गल फूल।

बड़ी दूर से चल कर आया, दो दर्शन थारा भक्ता ने, आंसू भरे हमारी आँखों में, आंसू भरे हमारी आँखों में, नैया है भवसागर में।

या बस कामा ने अब नैया पार लगाए बाबा श्याम धनी थारे घल फूला रोहार बाबा श्याम धनी। उषा कहे श्याम बिहारी सब भक्ता की टेर सुनो बस भक्ता के संग में बाबा मारे सिर पे हाथ धरो भजन सुनाऊं मैं थाने दर्शन दे दो अब माने थारी भक्ति दे दातार बाबा श्याम धनी। मोर छड़ी

नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, वो शारीरिक

0: रूप से अस्वस्थ है या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कारण कुछ भी है, लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा में, और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों से आप सभी को मदद करने के लिए। तो हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस दूसरे एपिसोड में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: जी। तो हम आज आपसे ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक जो कॉमन बीमारी है, या शायद इसको बीमारी कहे या ना कहे आप बता सकते हैं, अनिद्रा होना या सो नहीं पाना। महिलाएं दिन भर काम करती हैं, बावजूद उनको ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, घर पे ही तो बैठी हुई थी। मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
2: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10-11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7-9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा आ रही है, अनिद्रा हो रही है, तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोमनिया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे वो 16 घंटे 17 घंटे 20-20 घंटे सोते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7-8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरियाट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5-4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं, आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से अनिद्रा हो सकती है। या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें भी नींद कम या ज़्यादा होती रहती है।
0: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है, या जो भी है मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं, तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए ऐसा करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
2: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं। जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के सातों दिन रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी खराब होगी। तो रोजाना एक समय पर सोना शुरू करें। रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10, 11, 12 बजे तक फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोस को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तू तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जिससे चाय, कॉफ़ी, रेडबुल, जो ऐसी चीज़ें जो एक्टिविटिंग या जगाने वाली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3 से 4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पर बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पर बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, तो उस चीज़ का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पर सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहाँ पर मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज़्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करी, 10-15 मिनट का सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज़्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीज़ें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
1: जब हम सोने जा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6 से 7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2 से 3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो 3 से 4 इंच का पिलो है जो आपके नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है, या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है, जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए, आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जैकबसन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाएं, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे, बोरिंग से बुक उठाएं, या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीज़ें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपको ज़रूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10-12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
0: जी, ये बहुत सारी अपने टिप्स दी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपने बाहरी तौर पे एक फिज़िकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिज़िकल एड ऑन वर्क है, लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें?
1: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीज़ें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया, या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले, या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला। नॉर्मल है, सुबह उठते हैं, उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं, उन्हीं से आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीज़ें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीज़ें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं, वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें। बेस्ट सोल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा।
0: कई बार हो सकता है वो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
1: हाँ, एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राई का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है, वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये 3 सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है, जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
0: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढें, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो किसी और से सोल्यूशन ले, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ख़त्म कर दें,
1: अपने अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, उसको बाहर निकालें, जैसे मैंने चार तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें जरूर, किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट जरूर करें।
0: जी मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ, हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है उस कारण से ये मेरी लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारी जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है, मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
2: देखिए सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए, तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीजों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए, सिर्फ मन ही नहीं शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी, जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियाँ, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही है, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी दवाई भी ले रही है फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
0: जी सो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी
2: है। जी
0: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खास करके एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में? जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत
2: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हार्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हार्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, उस सबका नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को इधर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
0: जी ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे 2 बजे 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
2: जब आप लगातार 12 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले मैं चीज समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीजों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम। वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया, वो रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं, उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
0: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
2: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इशू आने लग पड़ते हैं। जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं। 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती है।
0: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करती है या ऐसा, उनका ये कहना होता है कि दिन में हमारा काम नहीं होता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जो है वो रात को ही होती है।
2: ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जो लोगों को लगता है कि सिर्फ क्रिएटिव काम में सिर्फ रात को कर सकती हैं या दिन में नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप दिन में भी सभी प्रोडक्टिव और सभी क्रिएटिव काम कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ रात में बैठकर ही क्रिएटिव काम कर पाएंगी और सुबह नहीं कर पाएंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
0: जी, सो लास्ट में व्हाट इज़ द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय वो सोना है एंड दिस इज़ द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं?
2: देखिए बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए, हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है और सुबह जल्दी उठना उसके साथ में लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना, तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है।
0: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है?
2: नहीं।
0: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी, हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: धन्यवाद।
0: तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम, अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।
3: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हमारा रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को और रेडियो मधुबन के हमारी तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ।
0: अच्छा।
1: वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूं सर। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया। तो हाँ, जो और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहां पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहां से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा व्हाटएवर आई हैव सफरिंग। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों देख पा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए

0: रहा, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिक स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
1: अच्छा,
0: लड़की
1: परिवार
0: तो
1: में ही?
0: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी मतलब नॉट इन माई फैमिली, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में
1: अच्छा,
0: मामा ऐसे होते हैं ना लोग हमारे रिलेटिव होते हैं, तो होता है, तो वो एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, तो बस गया ना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे कि उस तरह
1: जी
0: से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया, किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
1: जी
0: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया, 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
1: बिल्कुल
0: पर डॉक्टर
1: बिल्कुल
0: ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
1: अच्छा
0: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्याएं चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
1: ओहो,
0: दौरान
1: अच्छा
0: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
1: जी
0: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे और उसका साइड
1: जी
0: इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसका मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। प्लस 2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
1: क्या
0: तो
1: बात है वाह।
0: वहाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
1: ये
0: टैलेंट
1: प्लस
0: को
1: टू
0: देख
1: का बता रहे हैं आप,
0: करके,
1: 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने
0: जी
1: टॉप किया
0: ट्वेल्थ
1: है ना?
0: का
1: क्या
0: बता रही हूँ, जी 12th में मैंने फर्स्ट डिविजन
1: सब्जेक्ट उस
0: के,
1: समय,
0: हाँ
1: 12th में
0: जी,
1: सब्जेक्ट क्या रहे आपके? क्या
0: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और
1: हिंदी
0: हिंदी जो
1: मीडियम
0: उस
1: है, इंग्लिश
0: पास में
1: मीडियम?
0: हिंदी इंग्लिश मीडियम 10th तक
1: इंग्लिश
0: देखिए,
1: मीडियम।
0: मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने +2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय। तो
1: जी
0: इसके बाद जो अब आई +3 के बाद, तो +3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए,
1: जी
0: फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना, और
1: जी
0: तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मैनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं है आपका, बीएड नहीं कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर 1 साल का मेरा ये चला, +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक कुचक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वॉज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माई लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम
1: जी
0: में मैंने पाया, तो आई वॉज सो हैप्पी, लेकिन 10th सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ कि तो मेरी

0: जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि भाई आपके इनके शादी कर दो, क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, है ना। तो हाँ जी, समझ आया आप। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई, पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो, और क्या चाहिए, है ना। हमारा
1: आंखों का क्या
0: मतलब
1: ठीक हो गया था, वापस
0: जी,
1: बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
0: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था
1: अच्छा, मतलब आपकी
0: जी।
1: रोशनी वापस से ठीक होने
0: नहीं
1: लग गई थी?
0: रोशनी,
1: ओके,
0: नहीं रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था, तिरछापन जो था पुतलियां, वो अपनी सही जगह
1: टेढ़ापन
0: पे,
1: था।
0: हाँ, वो सही हो रहा था। तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई, एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी के।
1: तो
0: तो
1: आपकी
0: इन द
1: एंगेजमेंट
0: ईयर
1: आपके जैसे
0: जी,
1: व्यक्ति से हुई थी या
0: नहीं
1: सामान्य
0: नहीं
1: व्यक्ति से?
0: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें, कहीं
1: आप इस
0: दिखाया
1: स्थिति
0: नहीं
1: में
0: था
1: नहीं रहे
0: सर।
1: कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें
0: हाँ
1: परिवार
0: बिल्कुल
1: में।
0: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे ये, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी, राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था, आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धराकटा रह गया, वो हम दे नहीं पाए जी। तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना, हर कोई मैरिज करता है।
1: हर कोई यही सोचता
0: हाँ
1: है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख तीर के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं, है ना।
1: हाँ,
0: तो यहां भी मैं
1: दुख
0: बहुत
1: भरे
0: अनलकी
1: दिन भी
0: रही
1: तेरे भैया।
0: जी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना, कार्मिक अकाउंट से मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ। उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब व्हाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन, मेरे सब लोग, फैमिली मेंबर, एवरीवन इज हैप्पी, व्हाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी,
1: ओहो,
0: दहेज, ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई, ठीक है। वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड,
1: जॉब वगैरह थी?
0: कुछ नहीं था सर,
1: कुछ
0: अपने
1: भी नहीं
0: फैमिली के
1: था?
0: टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
1: नहीं, कोई बात
0: क्योंकि
1: नहीं,
0: यहाँ
1: कोई
0: पे,
1: बात
0: हाँ जी हाँ,
1: नहीं।
0: क्योंकि अब वो बीत गई है, तो
1: वो
0: जो
1: वैसे
0: भी
1: भी
0: भाग
1: पर्सनल,
0: गए
1: हाँ वो वैसे भी
0: जी
1: पर्सनल लाइफ है, रही
0: हाँ
1: है उसकी,
0: जी।
1: तो कोई बात
0: तो
1: नहीं।
0: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया, ठीक है। देन माई सन वॉज बॉर्न इन द ईयर 2000, यस, तो 2000 में उसका बर्थ था। तो उसके बाद फिर जिंदगी कुछ यूं गुजरी कि 6 महीने मायके में पैर रहा, 6 महीने ससुराल में, है ना। तो
1: ओहो,
0: 2004 में जा करके मेरे पापा मम्मी ने जब मेरी आईज का ट्रीटमेंट कहीं करवाने का थोड़ा बहुत पैसे वैसे अरेंज किए और दिखाने के लिए किया, तो हम लोग को विशाखापट्टनम, है ना, यहाँ पर मैक्सी विजन और विशाखा आई हॉस्पिटल वगैरह, वहां पर हमको ले गए। तो यहाँ पर जो मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ सर, कि इतना ट्रेजिकल होता है कि सडन आपको, ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चल रहा है कि यू हैव अ डिजीज एंड दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, वो क्योर नहीं हो सकता। आप
1: एक
0: इतनी
1: ऐसी
0: मुश्किल से जा
1: परेशानी
0: रहे हैं
1: से आप
0: और
1: जूझ रहे
0: कई
1: हैं जो ठीक
0: सालों
1: नहीं हो
0: से,
1: सकता।
0: कई सालों से मतलब, है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
1: अच्छा।
0: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू को मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस, आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते
0: हाँ
1: नहीं है, न जाने क्या
0: हाँ तो
1: हुआ है
0: बोले कि
1: जो।
0: हाँ, वो कहते हैं ना यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस, फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू, मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूँ और मैं आराम से खाना पका लूँ या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूँ, इस तरह का स्विमिंग इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन सर, वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया। I was in, you know, depression, पूरा होता है ना एक आदमी का, पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस,
1: है और उन्हें बेटे की हाँ। बेटे का लालन पालन भी साथ में चल रहा है,
0: वो सब तो मैं हाँ वो सब तो देखिए सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हमको और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग, मतलब बच्चे का लालन सब कुछ अपने आप चलता गया। यस, और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहाँ पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहाँ पर जैसे वाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट क्योंकि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने।
1: और ब्रेली भी सीखी मैडम
0: जी? मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना, कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया, फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई, थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे कुछ 2-3 लाख रुपए वो मुझे मिल गए, दैट्स इट। और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो ये चीज जब दूर हो गई ना तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस, तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कॉन्टेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद ही भी पढ़ रही है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है, सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया मैंने हाथ में सीखा कहते हैं, है ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे। और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो भी कुछ पिताजी की वजह से हूँ, वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी जितनी किताबें होती थी सब मुझे बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी, ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे ले जाना, झारसुगुड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना, ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी, मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया, तो आज वो नहीं है बट व्हाटएवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
1: आपके जीवन में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है ऐसा समझ में आ रहा है,
0: रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया, अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती।
1: हम समझ रहे हैं कि आप भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते।
0: तो ही वाज अ बैकबोन टू मी एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूं तो बस पिताजी की सहायता से सहयोग से। वो कहते थे यू नो मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं। तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते हैं। मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहा मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर अजीबोगरीब। मैं आपको बताऊं हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर आपके प्रति बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है, है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों ने तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं है, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी इन लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है, है ना। लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर।
1: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं,
0: है ना। तो ये बात है। तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है, बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा, और भगवान ने बहुत बहुत तरक्की दी, मोर देन यू नो 4,000 to 5,000 स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग दी है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा स्टाफ पढ़ाया है, कि बहुत सारे हमारी जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाइप किया, टाइप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाइप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपना एक है, उन लोगों ने टाइप किया, तो इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को, तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वाज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
1: समय, मतलब आपने यही लक्ष्य बना लिया कि बस अब तो मुझे,
0: हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी, तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फाइनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर, बाकी टाइम पे फिर किताबें लिखना शुरू किया, तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो 2 मैंने कोर्स बुक लिखी सर और 2 लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहुजा, उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए, तो ये जो 2 कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ, जिसके और 2 हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के। तो मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से। ये मेरा एक
1: बात
0: और कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले। तो ये मैंने किया, कोशिश की, लेकिन चूंकि वो जो हमारा एरिया था ना, वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले, है इस तरह के। तो ये चीजें हमने की, उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं। तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक ओटीवी है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 400,000 लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को, तो उस समय पे। और तो काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे। और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे। अच्छा जी जी
1: आपने कहा होगा भाई ये गलती दोबारा नहीं करनी है।
0: नहीं नहीं सर, देखिए एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है हमारे समाज में, हम जिस तरह के माहौल में रहे हैं।
1: क्या होता है ना कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में फिर सोचने का कोई मतलब भी नहीं
0: सोचता इंसान, है ना, नहीं सोचता बस, है ना। क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई, है ना। उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए, है ना। और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 इयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और स्टार्टअप है उसका अभी। हाँ जी, तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे। तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा था। भगवान की दया से देखिए पापा ने, बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है। देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो। तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी। तो ये बातें, लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है। तो क्या हुआ कि 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया।
1: अच्छा,
0: ओरल कैंसर जी। तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा। तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। सर्जरी भी हुई पिताजी की, है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। So in the year 2018, he was expired. So that was a great loss to our family. So बहुत great loss हुआ। और सर मेरी ऐसे lap पे उन्होंने इसे रखा हुआ था when he got expired. It was the last उनका था। And उनका मेरा बहुत heart एक full connection है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट था भाई से, है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो होके फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए और यहाँ से फिर कहते हैं अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ. तो ये
1: छत्तीसगढ़ में कौन से शहर में आप?
0: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है वहाँ.
1: अच्छा, अच्छा, अच्छा.
0: जी
1: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
0: हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया एंड उन्होंने ही हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ है ना एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर. फिर जमीन वगैरह
1: 2008 से लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में ही आपने आपको मतलब
0: बचपन से ही पूरा
1: सरवाइव भी किया, फ्लरिश भी किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर वहीं देखे आपने.
0: सब सब.
1: एक बात बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टि बाधित लोगों को लेकर के जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में.
0: जी.
1: तो ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी, लेकिन जब आपने कोचिंग शुरू की
0: जी
1: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके पास जाएं पढ़ने के लिए और फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे मिलने लगे?
0: जी जी जी, मैं वही बताती हूँ. सी देखिए, एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है तो नोबडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है. पहली बात तो ये, तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं, तो ये भी चीजें रही है ना जिसने एक प्लस एड ऑन किया.
1: यानी किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको पढ़ाने वाला टीचर जो है वो शायद ब्लाइंड है.
0: लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को. ओके. और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास जाओ. सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड, जो भी आता था. और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से. और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स कर डाला उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ. एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में है ना. तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ बहुत अच्छे तरह से कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत तरीके से.
1: आपने रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी या अपना कुछ खुद का ही खरीद लिया था, कैसे कर रहे थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी. तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
1: उसी पर ही करते रहे थ्रू आउट.
0: हाँ बस एक हॉल जैसे था तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है. देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी. तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी. और बाकी फिर जहाँ भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी और वहाँ पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग कोऑपरेट करते थे. तो
1: ये ओडिशा में कौन सा शहर बता रहे हैं आप? जादू
0: झारसुगुड़ा. जी झारसुगुड़ा सर, JHAR झारसुगुड़ा. हाँ ये बिल्कुल राउर किला के नजदीक है सर और ये वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है.
1: तो एक बात बताइए, जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए
0: जी,
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: सर कोशिश किया था बट वी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा.
1: ये क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा तो. लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है. तो ये बात बेटे को पता है बहुत अच्छी तरह से. जी
1: बिल्कुल ठीक बात है. बहुत जबरदस्त मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम है आप. दिल्ली में एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है. तो दुनिया मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए. वो उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर सब का अपना अपना संघर्ष होता है।
0: अब इस
1: कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं। अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही, बहुत अच्छी और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई।
0: जी मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ। अभी आपने एक रुख फोकस ऑन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
1: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं उस ओर। तो
0: और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है जो रहता है, तो वो भी रहा।
1: जी आप बताइए।
0: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
1: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए।
0: जी बिल्कुल सर होती है। तो वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है वह मंजिल यही कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
1: बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
0: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी। सिर्फ डायरी नहीं, सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा। और चूंकि मेरे ताऊ जी की किताब की दुकान थी तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
1: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी, तो तब ये हाल है ना,
0: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
1: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है।
0: जी
1: जी
0: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के कि किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ करके वापस लौटा दी थी, ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही, तो ये बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा है ना लॉस के यहाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है, जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं है ना, तो हाँ तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना लिखने मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा, मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में, स्टूडेंट्स को भी जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर, और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम ट्रस्ट ने मुझे बहुत हेल्प किया सर। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई। मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए। 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है। तो कल्पनावादी संसार होता है ना, उसमें बस उड़ रहे थे कि
1: उसमें बस
0: उड़ान,
1: तो बस हाँ। एक बार जब घुस गए तो निकलने का कोई मतलब नहीं।
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे है ना, विमल मित्र, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनके और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के। तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनएबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना। तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें क्लास करो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे। लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे, तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास में, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे। मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए। फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए, जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें आर्टिकल आता था पर्सनालिटी ऑफ द वीक, उस समय मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी क्योंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारे चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, का नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी। इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोग, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके, ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखता है। ओके, तो ये रही। तो इसपे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इसपे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से, और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो मैंने इनके एक पोएट्री कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो
1: अच्छा।
0: वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में, तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग रिम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी
0: जी।
1: तो यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है, कनेक्टिंग रिम्स के नाम,
0: जिसका नाम कनेक्टिंग रिम्स दिया, और ये हमारी VI कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक VI भी नहीं, अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं, तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो VIs हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित हैं, तो इन सभी की किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से हैं, और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ब्लाइंड पर्सन है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई, तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी, और सब सब लोग बोलते थे कोमल नहीं, हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर, तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बार बताती हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है, तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी, और विकास शर्मा जी को फाउंडर है, और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इशू होते हैं सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं करती हूँ, और ओम वेनावरिया भी इसमें ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम हमने बनाया, इसमें हमारे चार कोर मेंबर और हैं जिनका नाम क्रमशः सुरेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है, तो ये हमारी टीम के कोर मेंबर रहे हैं, और बाकी हमारे टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं। तो इसमें 1/4 लोग जो हैं वो साइटेड हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं 80% लोग अराउंड सभी दिव्यांगजन हैं, तो कोई लोग ऐसा नहीं कोई कम्प्लीटली ब्लाइंड है। तो लिखने का ये रहा, तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया, के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई, इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों ने, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया, और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा, ये मैंने एक
1: बिल्कुल समझ गया मैं, वो वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है,
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कहना ही होल्डर हैंड बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये तीन हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है,
1: जी
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है यस आई एम 40। आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए, बहुत ही सुंदर। हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, और बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉर्ज को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हम एक्साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने एक्साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो
1: बहुत
0: सकता है कि
1: खूब
0: हम बहुत बहुत रीच नहीं है लेकिन इन फ्यूचर
1: हो
0: होगा,
1: जाएगी
0: आज
1: बिल्कुल,
0: कल
1: आज नहीं तो कल जो
0: आज
1: सोचा है वो
0: अगर
1: तो होना ही वाला है। जी हाँ
0: हम आज 4-5 हज़ार लोगों तक पहुंच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में जीरो और लग जाए, तो ऐसा हो
1: बिल्कुल,
0: सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं कीप योर फेस टू द
1: एक क्या
0: सनशाइन।
1: अनेक जीरो लग जाएंगे,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: अनेक जीरो लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के
0: जी।
1: माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो कितने, मतलब टोटल ऐसे
0: बिल्कुल
1: एक संख्या में कभी
0: बिल्कुल
1: नोटिस तो। जी
0: जी हाँ, संख्या में अगर हम मैं बताऊं तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जो पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट, कहानियां कविताएं तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: और
0: कहने
1: उपन्यास
0: का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है, का नाम कैन आई होल्ड योर हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है, और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं, और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं। अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा, और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी,
1: एक
0: डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है जी, तो
1: बहुत
0: वो
1: अच्छी
0: भी
1: बात है।
0: ब्लाइंड।
1: एक मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है।
0: जी बिल्कुल टोटली ब्लाइंड है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब। तो कभी
0: जी,
1: अगर
0: इनका हमारे साथ टाई अप
1: अवसर
0: है, कोलैबोरेशन
1: अवसर मिला
0: करने
1: तो
0: के
1: उनके साथ भी हम मन की आंखों से
0: लिए।
1: कार्यक्रम
0: जी
1: जरूर करने
0: बिल्कुल
1: की
0: जी
1: कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल हाँ, वो बहुत
1: और ये
0: प्रतिभावान
1: अभी व्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना।
0: जी, अभी व्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है, और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा, और हमने उनका भावोन्मेष, उन्होंने किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है, और पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है, और गोष्ठी,
1: बहुत
0: कुछ
1: खूब
0: काव्य गोष्ठियां हमने की हैं कनेक्टिव ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोएट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भावों की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और रक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीजें कनेक्टिंग ड्रीम्स, हम लोग समय समय पर इवेंट, कॉम्पिटिशन, सेलिब्रेशन, गेट टूगेदर, छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, तो ये बात है, तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियां लिखने का सर ऐसा है कि कहानियां बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियां लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे, क्योंकि ब्रेल लिपि तो
0: नहीं
1: आपने
0: नहीं
1: बहुत ज्यादा सीखी नहीं।
0: नहीं नहीं नहीं सीखी लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ, जो भी हुआ
1: ओके ओके
0: सब
1: अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा
0: जी।
1: और उसी का बहुत जबरदस्त
0: हाँ
1: इस्तेमाल भी
0: बिल्कुल,
1: किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर वो वाला, ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती।
1: बहुत बहुत जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में, हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, अब ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी, मैं इसमें चार पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले, मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिवअप नहीं करना है, आप उठिए चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीआईस के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं, तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया साजिश सुकून है, क्या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी परीक्षाएं लेती है, तो सुकून भी जिंदगी के पास है। आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके, जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका, कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें, अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया, तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही, ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ न कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद, बहुत बहुत
0: जी, बहुत शुक्रिया।

0: शांति, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान आज के इस प्रोग्राम में राम प्रकाश जी हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। आप विशेष रूप से प्रोफेशनली आप इंजीनियर हैं और काफी अलग अलग कंपनीज में एज ए कंसल्टिंग आपने काम किया है। न्यूयॉर्क में भी आपने काम किया है, तो इंटरनेशनल डायरेक्टर अभी हैं और साथ ही साथ 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, ये जो एक प्रोजेक्ट था ब्रह्मा कुमारीज का, जिसमें आपने विशेष काम किया, और उसके साथ में 9/11 वाला सर्वे एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका, 9/11 वाला जो अमेरिका का एक्सपीरियंस है वो व्हाइट हाउस वाला भी काफी अच्छा है। और बहुत सारी चीजें आपने ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल होना जरूरी नहीं है लेकिन स्पिरिचुअलिटी को कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो चीजें आपके द्वारा हम सीख रहे हैं। निश्चित तौर पर आपके एक्सपीरियंस में आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग में समझ में आ जाता है। तो निश्चित तौर पे आज हम लोग जब बात करेंगे आपसे, या कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो जिसमें आपके शेयरिंग्स जो है हम सभी को मोटिवेशन देगा। तो बहुत बहुत स्वागत है राम प्रकाश जी आपका आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू।
0: और मैं चाहूंगा श्रीशा एक बहुत ही प्यारा संगीत के साथ राम प्रकाश जी का स्वागत करें आप।
2: जरूर। टुडे आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग जहाँ से मैंने रेडियो मधुबन में अपना ऑडिशन दिया था, वो सॉन्ग मैं फिर से सुनाना चाहती हूँ।
0: जी जी जी।

0: जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करे, ये कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ पे हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शीशा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है, मस्ती भरा गीत। तो आइए राम प्रकाश जी, कैसे हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं?
2: गुड मॉर्निंग, यहाँ पर न्यूयॉर्क में गुड मॉर्निंग है, आप गुड इवनिंग है,
1: बिल्कुल
2: तो ईस्ट मीट्स वेस्ट है ना, तो कैसे हम सब चीज को दिन रात को एक कर सकते हैं। तो इस समय मैं न्यूयॉर्क में हूँ, हमारा जी, बहुत अच्छा स्थान है पीस विलेज, जो 300 एकड़ में रिट्रीट सेंटर बना हुआ है और बहुत बहुत ग्रीनरी है, बहुत बढ़िया यहाँ पर वातावरण है, तो मैं वहाँ बैठकर आप सभी का स्वागत करता हूँ और साथ में जो आपने मेरे को मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और मैं चाहूंगा राम प्रकाश जी, जैसे कि अभी आप शेयरिंग किया कि आप पीस विलेज में हैं, जो ब्रह्म कुमारी का एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, जहां पर मेडिटेशन भी करते हैं, रिट्रीट भी होता है और बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े हुए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर थे, बहुत सारा काम करते हुए अपने लाइफ में व्यस्त थे, तो इस और आध्यात्मिकता की और भी खास ब्रह्म कुमारी की और कैसे आप पर जुड़ना हो, क्या ऐसा हुआ जो आप इस तरफ आ गए?
2: देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने में चेंज कर सकता हूँ, इफ आई कैन बिकम स्पिरिचुअल, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं बताऊं, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, ब्रह्मा कुमारी का नाम हमने सुना था लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। तो क्या था, एक बार हम कॉलेज में थर्ड ईयर में थे, मैंने इंजीनियरिंग की है ना, बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर, तो हम आपस में बात कर रहे थे, एक आर्टिकल आया था, जैसे वो कोई अमेरिका का था, उसमें लाइफ मैगजीन, उसमें उन्होंने कई प्रिडिक्शन की थी, कोई जीन डिक्सन नाम की कोई बहुत फिलोसफर थी, एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने जैसे कैनेडी का मर्डर हुआ, ये चाइना वॉल का गिरा, ये कई कुछ, उनमें से एक प्रिडिक्शन थी कि ओवर द टर्न ऑफ द सेंचुरी, माना थोड़े वर्षों में भारत सबसे ज्यादा समृद्धशाली होगा। तो हम फ्रेंड्स आपस में हंसने लगे, हम कहते हैं भारत तो 100 साल पिछड़ा हुआ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर हुआ क्या कि जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली और मैं अपने घर में बैठा था, एग्जाम का देकर आया था और मैं सिर्फ वेट कर रहा था, अचानक ब्रह्मा कुमारी का वहां हमारे शहर में आना हुआ और उन्होंने एग्जीबिशन किया, हमारे भुआ जी इसमें थे, एग्जीबिशन के बाद उनको कोई स्थान

हमने देखा कि बहनें बड़ी सामान्य रूप से रह रही हैं। हम पहले सोचते थे ये सन्यासियों की तरह होंगे, लेकिन नहीं, वो तो हर चीज में इंटरेस्टेड थे और हमको लगा कि अच्छे परिवार से हैं और बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे। लेकिन मैं उनको देखता था, ज्ञान सुनाते हैं, रात को बड़ा सिंपल खाना खाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, वो मेरे को ना बड़ी अपील करती थी। मुझे पता है ये मुस्कुराहट अगर थोड़ी सी ना होती है ना, फेक होती है, वो थोड़ा समय रहती है, लेकिन हम उनके साथ कंटिन्यूअसली रहे तब लगा इनको कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी, तो क्या हुआ, मैंने अल्टीमेटली ज्ञान उनसे लेना शुरू कर दिया 2-3 वीक्स के बाद। तो उन्होंने कहा कि आपको मनुष्य से देवता बनने का है और सृष्टि पर स्वर्ग आने वाला है। तो मैं तो एकदम बौखला गया, मैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की। तो उस समय क्या था, मैं कॉलेज के समय में बिगड़ा हुआ था। अब मेरे को बुरा नहीं लगता है बताते हुए, मैं, हम अग्रवाल परिवार से हैं, तो हमारे घर में पहले कोई प्याज वगैरह भी नहीं आता था। बाद में प्याज आना शुरू हुआ, उसके बाद और कुछ नहीं था, लेकिन हमने एग भी खाना शुरू किया, नॉन वेजिटेरियन बन गए, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, स्मोक करना शुरू कर दिया, माना जो बुरे से बुरे काम थे ना हॉस्टल में होते हैं, सब हमने करने शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने कहा कि आप मनुष्य से देवता बन सकते हो, तो मेरे को हंसी आई। मैं कह मैं थोड़ा सा सुधर जाऊं, मेरे लिए तो वही बहुत है ये देवता बनने की बात कर रहे हैं। पर हुआ क्या कि वो लेसन लेते लेते, मैंने उनको जब ऐसा कहा ना, कहते हो सकता है लेकिन आप ना पूरा धारणा ऊपर चलो। तो मैंने कि क्या धारणा है, तो क्या हुआ, एक हफ्ते के बीच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दिया। तो मेरे को अचानक लगा एक हफ्ते में सब कुछ हो गया। तो अगर हफ्ते में मैं इतना चेंज हो सकता हूं, तो अगर मैं और एफर्ट करूं तो और भी ज्यादा हो सकता हूं। तो इंजीनियरिंग में हम क्या देखते होते हैं कि कोई चीज का मॉडल बनाते हैं, और मॉडल अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर उसका प्रोटोटाइप, माना थोड़ी सी प्रोसेस आपको समझ आ जाती है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह का मेरे को लगा, और अचानक फिर मेरे को लगने लगा एक और चीज जो मेरे को ध्यान में आई, कोई इंजीनियर होने के नाते हम दो चीजें पर्टिकुलर करते हैं। एक है हम चीज को ना सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग्स ये वो इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉमन आदमियों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम किसी को सुनाते हैं, समझाते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं, ये आपका बेडरूम है, ये 10x15 का है, ये बेडरूम आपका 12x18 का है। 12x18 कितना होता है, उनके घर में जाके हम बताएंगे, देखो ये कमरा देख रहे हो, ये 12x18 के करीब है, इतना बड़ा कमरा होगा। हाँ अभी समझ आया, तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ना। तो मेरे को अंदर में बहुत होता था कि ये नॉलेज है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करने का है। और दूसरा होता था, हम कहते हैं एप्लीकेशन, कि हम कितना भी पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे हमने कॉलेज में हम गए, पहले हमने पढ़ा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और मटेरियल, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहां हमको पढ़ाया गया अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स और मटेरियल। तो माना अप्लाई करना लाइफ में, तो एकदम मेरे को आने लगा कि ये ज्ञान और योग है, ये नॉलेज है, और दूसरी शक्ति है, योगा शक्ति है, माने एनर्जी जिसको हम कहते हैं। एक तरफ फिजिकल एनर्जी होती है, टाइम, मनी, स्पेस वगैरह, हमारी बॉडी की अपनी एनर्जी है। दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल एनर्जी, वो है प्यार, खुशी, शांति, आनंद। तो हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल एनर्जी इंट्रोड्यूस हो गई, तो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अप्लाई करना, एप्लीकेशन क्या है, वो है हमारे डे टू डे लाइफ में। हम कोई भी कर्म करते हैं, उसके बीच में वो ऐड कर देते हैं, माना इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारे कर्मों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरे को इस तरह का लगने लगा कि एप्लीकेशन क्या है स्पिरिचुअल एनर्जी की। तो मैं पहले अपने आप को सिविल इंजीनियर कहता था, अभी मैंने को कहना शुरू कर दिया स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग। पहले सिविल थे, अभी स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग हो गया। माना स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है हमारे डे टू डे लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारे कर्मों में काम आती है, स्पिरिचुअलिटी से हम कैसे ग्रो हो सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ को इस तरह चलाना शुरू किया, तो करते करते इतना मेरे को आगे आनंद आता था, अंडरस्टैंडिंग होती थी। तो तब मेरे को लगने लगा कि जैसे ये कहते हैं ना, मनुष्य से देवता बनना है, तो हम कई बार जब देवता शब्द
शब्द बोलते हैं हम सोचते हैं पता नहीं आकाश में होते हैं, पता नहीं उनके भुजाएं कितनी होती हैं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, रावण का 10 सिर दिखाते हैं, तो ये सारे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर मेरे को आइडिया आने लगा कि वास्तव में

0: इस सारी ये सारी सिंबॉलिक चीजें हैं, लेकिन अगर हम उसको सिंपलीफाई करें, देखो कई बार कोई मनुष्य अच्छा होता है ना, उसको कह देते हैं ये बिल्कुल देवता जैसा है, कोई बहुत थोड़ा खराब करता है तुम बिल्कुल राक्षस की तरह हो, ऐसा बोल देते हैं ना। कई बार हम ये भी कहते हैं ये आप कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, ऐसा हम कितनी बोलते हैं लोगों को। ये सिंबॉलिक होती है, तो तब मेरे को लगा कि देवता माना जिनमें दिव्यता होती है, देवता माना जिसमें दिव्य गुण होते हैं। तो एग्जाम्पल है कि जैसे हम को कहते हैं सच्चाई है, वो कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, लेकिन सच्चाई कड़वी क्यों लगती है? क्योंकि हम उसको पत्थर की तरह मारते हैं, हम उसमें क्रोध डाल देते हैं, उसमें एरोगेंस आ जाता है, हम कोई सोच समझ के बात नहीं करेंगे, 10 लोगों के बीच में उनको बुरा साबित करेंगे, तो उससे क्या होता है वो दुख देने वाली बन जाती है सच्चाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसको प्यार से समझाते हैं, ह्यूमिलिटी से बताते हैं, हमारे को फेथ है कि हमने अपना काम कर दिया, तो जब उनका समय आएगा वो उसको समझेंगे, तभी उसको फॉलो कर लेंगे। तो उस सच्चाई में प्यार, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, टॉलरेंस, इसमें फेथ आ गया, तो उससे कहते हैं वो सच्चाई प्योर बन जाती। पहले सच्चाई प्योर होती है, तो वो इम्प्योर क्वालिटी है, लेकिन बाद में वही प्योर बन जाती है जिसको हम डिवाइन कह देते हैं। तो हमारे में दिव्य गुण आ गए, तो हम देवता जैसे बन गए। तो मैंने इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट किया, और फिर मैं तकरीबन 3.5 वर्ष इंडिया में था, उसके बाद मैं अमेरिका में आया। मैंने ज्ञान लिया था 74 में, और 77 में मैं अमेरिका आया, और उसके बाद 79 में हमारे मोहिनी दीदी, मोहिनी बहन, वो न्यूयॉर्क में आए थे, मैं उनके साथ मिल गया, तो वहां से फिर मेरा जर्नी कंटिन्यू रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे ब्रह्म कुमारी से आपका जुड़ना हुआ। बड़ा अच्छे आपने बताई कि कैसे आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। पहले तो आप बिल्कुल अलग थे, और बाद में जब सामने से उनको देखा और उनके जीवन को, लाइफ को आपने एकदम नजदीक से देखा, आपके घर में ही वो लोग आए, वो रहने लगे, तो निश्चित तौर पर आपको उनके तौर तरीके, उनके बोलने का, वो सारी चीजें आपको नॉर्मली लगी और अच्छा लगा। और अच्छे खानदान से है और अच्छी चीजें कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये देखकर आपको लगा कि समथिंग इज डिफरेंट, तो फिर आपने इसकी और कदम बढ़ाए और आगे बढ़ के आपने इन चीजों को सीखा। चलिए राम प्रकाश जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने सिविल के बजाय अभी स्पिरिचुअल बोलना शुरू कर दिया है। तो अब मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, क्राइसिस, तो क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है, ये क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बताइए।
0: देखो मेरे को ना, मैं थोड़ा सा जैसे दुनिया के, जैसे दुनिया में हम क्राइसिस की बात करते हैं ना, मैंने क्या अपने जीवन में नोट किया, क्राइसिस कोई नहीं चाहता अपने जीवन में, पर आते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल होते हैं, तो इसके लिए हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे डील कैसे करना है ना, वो समझ आ जाती है। जैसे फ्लू होता है, बीमारी आ जाती है, लेकिन बीमारी सबको नहीं लगती है, थोड़ों को लगती है, कारण कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको नहीं फील होता है, उनको बीमारी नहीं लगती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वैसे उनको लग जाता है। तो मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए, आई बिलोंग टू द वेरी मॉडेस्ट फैमिली, एक समय हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होता था, मैं 9th ग्रेड में था, हमारे सारे बिजनेस में बैंकक्रप्ट हो गए, हमारे घर में खाना भी नहीं होता था, तो हमने अपना जीवन बड़ा कष्ट से व्यतीत किया। लेकिन मैंने उन जीवन में से गुजरते हुए जब अपने आप को देखा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना, तो मेरे को लगा वो जो जितने भी क्राइसिस मेरी लाइफ में आए थे ना, उसने मेरे को बंदा बना दिया, माना मेरे को ना बहुत उसको ना बाद में जाकर सीखने का मेरे को मिला कि देखो वो मुसीबतें आई थी, तो उससे क्या, तो मेरे को एक तो ये लगा गरीबी आई, अच्छे अच्छे घर में होते एकदम गरीबी आ गई, फिर गरीबों की लाइफ कैसी होती है। तो मैंने एक चीज नोट किया कि आदमी गरीब कोई कितना भी हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा प्रिय होती है उसकी डिग्निटी, वो डिग्निटी के लिए मनुष्य अपनी जान भी दे देता है। होता था किसी को पता ना चले कि हम किस बुरे समय में से गुजर रहे हैं, हमको मुस्कुराना हमने सीख लिया कि कैसे डिफिकल्टी के समय में भी मुस्कुराते हैं, और फिर हमारे अगर मैं हमारी बैंकरप्सी नहीं हुई होती, हो सकता मैं बिगड़ जाता, तो कोई कहते थे ये 10th 11th ग्रेड तक पढ़ेगा क्योंकि बिगड़ गया है, तो इसके बाद तो इसका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन लगा अरे अभी तो मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहने का है, तो मेहनत करने लगा, पढ़ाई ज्यादा करने लगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई। तो मेरे को उस समय एहसास हुआ कई बार कम होना ज्यादा से भी बेटर है, क्योंकि ज्यादा होता है तो हमारे को वैल्यू खत्म हो जाती है। और अपने लाइफ में फिर मैंने आगे क्या देखा, वास्तव में ना अभी मैं कह सकता हूँ अगर जिंदगी में ग्रो करना है, क्यों आप अपने आप से पूछ कर देखो आप जीव ग्रो कब हुए, जब आपके ऊपर कोई संकट आया, जब आपके ऊपर क्राइसिस आया था ना, उसी समय वो टाइम आप ग्रो हुए थे। बाकी समय लाइफ ना बड़ी इजी स्मूथ बोरिंग लाइफ होती है। कभी हम कभी मूवी में जाते हैं ना, देखो एंटरटेनमेंट भी है, हम कहते हैं ना हमारी लाइफ की वैल्यू, हम मूवी में भी जाते थे पहले 5-7 मिनट बड़ा नॉर्मल सी लाइफ चल रही है सभी की, फिर कहते हैं अच्छा मूवी कब स्टार्ट होगी, मूवी कब स्टार्ट होगी, फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मौत हो गई, फिर सभी ना खड़े होकर बैठ जाते हाँ अभी अभी शुरू हुई है मूवी। तो इसका मतलब जिंदगी में लाइफ जो है ना हमारी, वो संकट क्राइसिस के आधार पर बनी हुई है, क्योंकि उसी समय हम ग्रो होते हैं, क्योंकि हम डिच में चले जाते हैं, है ना, चले खाई में चले जाते हैं, समझ नहीं आता, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता है, है ना, सब मेरे दोस्त चले गए। उस समय आप अपने आप को खाई में होते हो, लेकिन आपको खड़े होते हो वहां, अपने आप को सपोर्ट करना आ जाता है, उससे आप में ह्यूमिलिटी आती है, आपके चेहरे पर ना नेचुरल जो चीजें, क्योंकि जब हम ना किसी सक्सेस के मोड में होते हैं तो एरोगेंस भी आ जाता है, वो हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है, कई बार हमारे कनेक्शन भी कट जाते हैं उससे, लेकिन जब हम क्राइसिस में होते हैं हमारे में ह्यूमिलिटी आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, और फिर हमारा जो ईगो होता है ना प्राइड, वो भी खत्म करके हम ना मदद लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो उससे क्या हो गया, हमारे चेहरे पर भी ना वो मासूमियता आ जाती है, क्योंकि कमजोर है ना। तो उससे मैंने देखा धीरे धीरे करके आप अपने आप को संभाल कर, परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर, या अपना आत्मविश्वास इकट्ठा करके और बॉटम लाइन से शुरू करना शुरू करते हो ना, फिर आप खाई से निकल भी जाते हो ना, लेकिन जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था नीचे से ऊपर आने का, वो आपको और भी ऊंचा लेकर जाता है। तो आप देखेंगे लाइफ में ग्रोथ कब होती है। अभी देखो हम कोई एग्जाम के लिए तैयार होता है क्या, बहुत बड़ा क्राइसिस है ना, लेकिन वो थोड़े दिन हम रात दिन एक कर देते हैं, खाना भी नहीं सोचते, नींद का नहीं सोचते हैं, तो जब हम पास हो जाते हैं तो देखो हमारी प्रमोशन हो गई ना। तो मेरे को बार बार इस चीज का लाइफ में, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव में कैसे लिया क्राइसिस को, क्राइसिस क्या चीज है, क्राइसिस कब आता है, जब कोई परिस्थिति आती है लेकिन आपके रिसोर्सेस, आपकी शक्ति या आपकी नॉलेज या कैपेबिलिटीज वो उसको मैच नहीं कर पाती, उससे ज्यादा होती है, माना मेरी सिचुएशन यहाँ पर है तो ये क्राइसिस हो गया। लेकिन अभी अनुभव हो गया क्राइसिस के समय हम ग्रो होते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मेरे जीवन में क्राइसिस ना आए, लाइफ बोरिंग कहती, मैंने बहुत बार देखा है जिन लाइफ लोगों की लाइफ बड़ी इजी होती ना, कहते हैं आपका क्या ख्याल है, ओ सेम ओल्ड स्टोरी, सेम थिंग गोइंग ऑन, इतना बोरिंग सा चेहरा होता है कि नहीं है, जब सब चीज ठीक होती है। लेकिन इसका मतलब क्या, अगर मेरी लाइफ को ग्रो करना है, अगर मेरे जीवन में क्राइसिस नहीं भी है ना, मैं क्रिएट कर लूं क्राइसिस। आप हंसी करेंगे, ये क्या बात करते हो, क्राइसिस को क्रिएट करना, क्रिएट क्यों करेंगे, क्राइसिस का मतलब क्या है, जिसको हम पॉजिटिव क्राइसिस बोल देते हैं, वो है कि जितनी आपकी एबिलिटी है, जितनी आपके रिसोर्सेज है, उससे ऊंचा सोचो, जो आपकी लिमिट है ना, लिमिट से ऊंचा सोचेंगे ना तो वो देखा जाएगा क्राइसिस है, लेकिन वास्तव में वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे, फिर आपके जो अंदर की जो शक्तियां हैं, इनर रिसोर्सेज, वो उभर कर आते, और जब वो उभर कर आते हैं ना, कितनी चीजें आपको अपना आइडिया नहीं होता कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है, लेकिन उस समय पता चलता, अरे मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे सब कुछ मेरे से हो गया, मैंने तो कभी नहीं सोचा था मेरे में ये क्वालिटी है या मेरे में ये शक्ति है, पता नहीं, तब कहते हैं ये भगवान ने दिया होगा। तो हमारा भगवान में भी विश्वास बैठ जाता है, अपने पर भी विश्वास बैठ जाता है, तो हमारी ऐसे ग्रोथ होती है। तो लाइफ में अगर जीना है ना, मेरे को तो लगता है कि लाइफ में जो है जीवन जो है ना, क्योंकि बाकी है मेंटेन, मकान होता है ना, मेंटेन करते रहते हैं, आई हैव टू मेंटेन माई जॉब, आई हैव टू मेंटेन माई रिलेशनशिप, आई हैव टू मेंटेन माई यू नो फैमिली, तो वो मेंटेनेंस है। लेकिन जो हम आगे करते हैं ना उसको हम कहते हैं कैपिटल इंप्रूवमेंट, माना अपनी लाइफ को ऊंचा करना। अगर जिंदगी जीना है ना, जिंदगी एग्जिस्ट करती है सिर्फ क्राइसिस के पीरियड में। अगर जीवन में मजा लेना है ना, क्राइसिस माना पॉजिटिव क्राइसिस में जीना सीख। तो ऐसा मेरे को ना ये क्राइसिस को मैंने अपॉर्चुनिटी के रूप में इस तरह लिया है। मैं ना एक छोटी सी एक सुनाता हूँ। छोटे होते थे सातवीं आठवीं क्लास में, हमने कार्टून देखा था। उसमें क्या देखा कि बच्चों की रेस लगी है, सब लोग भाग रहे हैं, एक लड़का बिल्कुल पीछे था एंड में। तो लगा पता नहीं ये रेस भी पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर बाद में फिनिश लाइन को दिखाया, उसमें देखा वो लड़का इतना तेज भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है, नंबर वन आ गया। तो सोचा ये क्या हो गया, ये तो जादू हो गया, ये क्या कारण हुआ। तो तब बाद में मिडल का पोर्शन दिखाया, क्योंकि वो लास्ट में था, एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। तो कुत्ता पीछे पड़ा, वो डर के मारे, उसमें कहां से शक्ति आई, वो इतना तेज भागा, इतना तेज भागा, नंबर वन आ गया। अभी देखो क्राइसिस आया, फियर आया, लेकिन फियर से क्या हो गया, उसकी सारी जो छुपी हुई शक्तियां थी ना वो काम में आ गई। तो आप अपने जीवन में ना ट्राई करके देख, चैलेंज लो अपने जीवन में कि मेरे को अपनी लिमिट से ऊपर रहकर सोचना है, जिसको हम कहते हैं ना मेरे ड्रीम। तो ड्रीम भी एक दो ना हो, पांच सात ड्रीम रखो। एक खत्म हो गया, दूसरे पर जंप कर जाओ, उसको खत्म हो गया तीसरे पर करो। तो लिव इन द ड्रीम लैंड। जब जब तीन चार खत्म होंगे पहला ड्रीम शायद खुल जाएगा। तो आप ना अपने जीवन में, मेरे को खासकर यंग लोगों से तो मेरे को बहुत होता है कि डरो नहीं। आप जो भी आपकी इमेजिनेशन है ना, कोई इमेजिनेशन रियलिटी के बिना नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं रियलिटी जरूर छिपी हुई है। तो कभी आपका जो थॉट आता है, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपका ड्रीम है ना, बस करने लग जाओ। तो उस तरह आप ना क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और आपको मालूम है ना भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, देखो मतलब कुछ है इसके बारे में कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।
1: जी जी जी, राम प्रकाश जी काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया क्राइसिस कैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनते हैं, ये आपने बताया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्राइसिस आने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में जो है एक पोटेंशियली आ जाता है कि उसे कुछ करना है, और वो करने के लिए जब जाता है तो वो पूरे जद्दोजहद मेहनत लगा के बीसों नफजोर लगा और वो अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। क्राइसिस नहीं आएगा तो शायद अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेंगे, जो आपने बताया बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके। थैंक यू सो मच। और आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। श्रीशा, मैं चाहूंगा कि एक और गीत आप सुनाइए राम प्रकाश जी के लिए।
2: जी।

0: प्यार की। शुक्रिया, नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया श्रीशांत, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आइए आगे बढ़ते हैं। रामप्रकाश जी, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे हम लोग कैसे इसको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, और हर व्यक्ति के पास ये मौका आता है। ईश्वर जो है सभी को कुछ करने के लिए कुछ सिचुएशन ला के खड़ा कर देता है, और वो सिचुएशन को आप अगर पूरी तरह से न्याय करते हैं, उसे अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, और अपने आप को साबित करने का मौका मिल जाता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। आपने बताया बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी ना समझकर उसे क्राइसिस के रूप में ले, तो फिर और क्राइसिस बढ़ जाता है, टेंशन आता है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते, हम लोग वहीं पर घूमते रहते हैं। उस पत्थर को लेकर, मान इतना बड़ा पत्थर है, आप आगे नहीं जा सकते, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो पत्थर एक आपके लिए ब्रिज का काम भी कर सकता है, आपको मूव फॉरवर्ड भी कर सकता है, आपको हाईजम्प देने का काम भी कर सकता है, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एडवेंचर आपके साथ जुड़ा हुआ है, इफ यू थिंक अबाउट दैट। तो वो चीजें शायद कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं, तो वो चीजें आपने
2: बिल्कुल
1: बड़ा अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि फियर, फियर की
2: बिल्कुल
1: बात कर, तो फियर हमारे जीवन में जो आता है उसको हम लोग कैसे कम करें, फियर को क्लियर करके हम लोग उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
3: मेरे को लगता है लाइफ में, देखो मैं जो फिर लड़के की भी स्टोरी सुनाई ना, वो फियर था ना, उसका फियर उसका स्ट्रेंथ में बदल गया। तो मैंने बहुत बार अपने जीवन में ये देखा है कि आप कोई कहे ना, राम प्रकाश आपको कभी फियर नहीं होता है, मैं कहता हूं मेरे को हमेशा फियर रहता है कि पता नहीं लोग मेरे को पसंद करते कि नहीं करते, पता नहीं मैं लोगों की आशाओं को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं इसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पर हमने नोट क्या किया है, आप कभी जीवन में देखना, जहां फियर होता है ना वहीं करेज, दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं। अगर जीवन में फियर नहीं होगा ना, आपको करेज की भी जरूरत नहीं। अगर जीवन में अनसर्टेनिटी नहीं हो, आपको फेथ की भी जरूरत नहीं है। आज देखो लोग एडवेंचर करने जाते हैं, जैसे कहा ना एडवेंचर करते हैं, या कहीं ना कहीं पहाड़ी पर चढ़ते हैं, इतनी इतनी खतरनाक चीजें करते हैं, डर तो होता है कि नहीं, उनकी जान भी जा सकती है, हर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको जो वो एक्साइटमेंट होती है ना कुछ नया जानने की, कुछ अकम्प्लिश करने की, वो जो अकम्प्लिश करने की आकांक्षा होती है उनका जो, या उनका जो एंथुजियाज्म होता है, वो फियर से भी बढ़कर होता। तो जो आदमी अपने फियर में करेज लाके करना शुरू कर देता है, मैंने नोट किया कितनी बार मैंने नोट किया है कि कितनी बार हमारे जीवन में ना सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आती हैं, और अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं, लेकिन मनुष्य डरते क्या है कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मतलब गलत चीजें क्या हो सकती है ना, वो ही सोचते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि इसके बजाय कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो भी तो हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, अरे इसके भी मदद मिल सकती है, अरे मेरे को ये भी क्वालिटी है, तो माना आप पॉजिटिव बनकर, होपफुल बनकर, तो जब आप में करेज होता है, आप में होप आती है, और आपका चेहरा मुस्कुराता है। कितनी बार हमने देखा है कन्वेंशनल विजडम होती ना, आजकल कन्वेंशनल विजडम इज द विजडम ऑफ फियर। कभी आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको ना कोई बहुत बड़ा काम करने का दिल होता है, फिर आप मीटिंग बुला लेते हो, तो हिम्मत दिलाते हो, चलो भी हल्ला करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो 15-20 मिनट कहते नहीं नहीं नहीं इसमें ये कैसे वो कैसे, अरे कर लेंगे कर लेंगे, तो सब में एक्साइटमेंट आ जाता है, कहते हाँ चलो चलो चलो, तो उनमें फिर एक सियाना बंदा बैठा होता आता है, वो सियाना बंदा क्या कहता है, भाई मैं ना आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, सबको उस पर विश्वास भी होता क्योंकि थोड़ा बुजुर्ग होता है, थोड़ा सियाना होता है, समझदार होता है, वो कहते हैं मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, पर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो वो 20 लोग पता क्या कहेंगे, हाँ आप ठीक कहते हो, हमको सचमुच में ध्यान से चलना चाहिए, है ना, हमको ये नहीं करना चाहिए, वो 20 जनों का एंथुजियाज्म एकदम नीचे आ जाता। होता है क्या होता है हमारे लाइफ में, 20 जनों का अनुभव जो एंथुजियाज्म, एक बंदे की कन्वेंशनल विजडम कि ये गलत हो सकता है, वो सब ठंडा हो जाता है। तो मेरे को होता है कि लाइफ में ना कन्वेंशनल विजडम को छोड़ कर ना, क्योंकि हमारे में कन्वेंशनल विजडम है, हमारी जो फेलियर्स होती है ना हम उनको अपने सामने रख लेते हैं, तब भी मेरे को लाइफ में होता है अगर जिंदगी जीना है ना इम्पॉसिबल में जियो। कभी आप जब इम्पॉसिबल टास्क अपने हाथ में लेंगे ना, आपका चेहरा ना मुस्कुराएगा, चाहे हंसी में सही, अरे मे भी वो हेल्प कर देगा, अरे वहां से हेल्प मिल जाएगा, अरे हमने पहले भी तो किया था। तो माना आप मुस्कुराएंगे जब भी आप कोई बड़ा कोई चीज करेंगे, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी चीज करेंगे ना उसमें फियर आएगा, ये गलत ना हो जाए, कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अभी जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया होगा, कहते हैं आप पागल हो गए हो। माता है 7 बिलियन कितना होता है, 700 करोड़ अच्छे कर्म आप कैसे इकट्ठे करोगे। तो हमने कहा ना, लगा तो सही लेकिन हमने शुरू कर दिया, एक प्रोग्राम किया, दो किए, तीन किए, करते कराते कराते अभी हमने 2500 प्रोग्राम कर लिए मैंने, और जहां जहां जाके प्रोग्राम किए उन्होंने आगे प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। कुल मिलाकर 25,000 प्रोग्राम इसके बारे में हो चुके हैं, 25,000 प्रोग्राम, और अभी भी मैं तो फिर निकलने वाला हूं। पर कहने का मतलब है, डर कर हम कब तक बैठे रहेंगे। तो अगर जिंदगी जीना है ना, वो करो जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था, वो करो जो आपके कभी स्वप्न में भी नहीं आया था। होता क्या है, हमारी आकांक्षाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, है ना, कहते वी वांट टू फ्लाई, हम ये उड़ना चाहते हैं, लेकिन जब ना डिसीजन लेने का मौका आता है ना तो हम ना कौन सा ग्राउंड रूट ले लेते हैं, माना ठीक है। तो 95% देखो मैं कोई कहता हूँ, If you are ready to fail, अगर आपको फेल होने से डर नहीं है ना, 95% चांसेस हैं आप फेल नहीं होंगे, लेकिन 5% आपको तैयार रहना पड़ेगा। पर कई बार क्या, तो क्योंकि ह्यूमिलिटी हो सकती है ना, मैं कि ह्यूमिलिटी कौन सी, आपको लोगों के आगे शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है, आपको लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा, उसके लिए आप तैयार हो सकते हो। अगर हो सकते हो ना, 95% चांसेस हैं आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत बार अनुभव करके देखा है, और आप, मैं समझता हूं सबका ये अनुभव होगा कि जब जब आपने हिम्मत रखी ना, आपका काम हो गया। हाँ, हो सकता है 100% ना हो, हो सकता है 60-70% हो, लेकिन 60-70% भी जीरो से तो अच्छा है ना, कुछ तो आपकी प्राप्ति हुई ना, तो उसमें होता है। तो कहते हैं हम संतुष्ट हैं अपनी प्रेजेंट अकम्पलिशमेंट से, लेकिन हमारा एम हमेशा ऊंचा रहता है। तो फियर की बात है, देखो मैं आपको ना अपनी वो सुनाता हूँ, 9/11 का सुनाऊ मैं आपको रमेश भाई के वर्ल्ड
1: शॉर्ट।
3: हाँ, देखो मैं 64th फ्लोर पर था और प्लेन आकर टकराए ना, मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 110 मंजिला के थे, दो टावर थे, तो प्लेन आके टकराया, हम 64वीं मंजिल पर थे, हमको लगा अर्थक्वेक आया है, बिल्डिंग इधर गई फिर खड़ी हो गई, लेकिन फिर हम नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि जब खड़ी हो गई तो लगा भी अर्थक्वेक तो नहीं, छोटा मोटा कोई प्लेन टकराया होगा, हमने नीचे आना शुरू, इतने में दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया। तो तब हमको पता लगा कि छोटा मोटा प्लेन नहीं टकराया, ये तो कोई आतंकवादियों का काम है। उस समय लोगों को दहशत होने लगी। फिर क्या हुआ, दूसरा टावर बाद में टकराया था लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया, तो तब अब लोगों के एकदम मतलब कि दूसरा गिर गया ऑलरेडी, तो इतना बुरी तरह से हमारा टावर हिल रहा था, तब लोग चीखने चिल्लाने लगे। और फिर क्या हुआ, हमको उसके कारण से जो मलबा था ना दूसरे टावर का, उसके कारण से हमारी जो सीढ़ी थे जिसमें आ रहे थे वो ब्लॉक हो गई, तो फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा, और थोड़े समय के बाद उस सीढ़ी में भी बहुत तेजी से पानी आने लगा क्योंकि पाइपलाइन वगैरह टूट गई। और तो फिर क्या हुआ, हम अपनी हैंड रेल को पकड़ के नीचे आ रहे हैं, तो फिर पता चला हमारी सीढ़ी वो नीचे से टूट गई दूसरे वाले भी, तो हमको फिर तीसरी सीढ़ी में आने के लिए एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा, पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे पांव के नीचे है, कपड़े भीगे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरे में हम वॉक करते हुए बाहर निकले, और हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, तो अचानक फील हुआ जमीन हिल रही है, पीछे मुड़ के देखा हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। हम उस टावर से सिर्फ इतना दूर थे, अगर वो टावर हमारी तरफ गिरा होता हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन हम भाग के दूर चले गए और टावर सीधा ऐसे नीचे आया था। तो पर क्या है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर, टेलीविजन वगैरह से वो आ रहे थे इंटरव्यू, एक वो चीज पूछते थे, अब फियर की बात चल रही है ना, उन्होंने कहा कि हम 95 मिनट्स टावर के बीच में थे और 5 मिनट पहले निकले उसके गिरने से, तो इसका मतलब आई वॉज 5 मिनट्स अवे फ्रॉम डेथ, 1 घंटा 40 मिनट्स, 1 घंटा 45 मिनट्स हम टावर से के अंदर थे। तो वो कहते थे अपना अनुभव सुनाओ जब आपको डर लगा हो कि आप बचेंगे नहीं। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ वो 95 मिनट में 1 सेकंड भी मेरे को डर नहीं लगा था। तो मैं सोचता हूँ उसका क्या कारण होगा, ये तो नहीं है कि आई एम ए माचो काइंड ऑफ पर्सन, बड़ा स्ट्रांग हूँ, सुपरमैन हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता। नहीं भी, मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ। कभी तो हम तो किसी से नाराज तो क्या होना, हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हमको पता हमारी हार होने वाली है। तो लेकिन कहीं ने डर आया तो एक ही चीज मेरे को ख्याल में आई, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया। तो लोगों की मदद करते हैं ना तो अपना डर मेरे को निकल गया। आपने अपने जीवन में देखा होगा कभी भी आपको दुख तकलीफ हो रही होती है, डर होता है ना, आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ते हो जिसको आपसे भी ज्यादा दुख तकलीफ है, तो आपका एकदम ध्यान उनकी तरफ जाता है ना, आप उनको मदद करने लग जाते हो। तो आपने नोट किया होगा आपको अपना भी भय खत्म हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो क्या था भी मदद, आप क्या कर सकते हो, सब लोग नीचे आ रहे हैं, आप भी नीचे आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फर्क क्या था, बाकी लोग जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं, लेकिन मेरे को था कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं ज्ञान में चलता हूं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं पिछले 27 ईयर से, तो मैं वैसे ही थोड़े बनूंगा। तो मैं उनको हिम्मत बढ़ा रहा था। तो क्या होता था कि जब दूसरा टावर का जब शेकअप होता है ना, तो सबके ना बड़े वो चीखे निकल जाती है ना डर के मारे। तो जैसे कोई थोड़ी अभी आवाज होती ना, तो वहां लेडीज पीछे काम करती थी, उनकी चीख निकल जाती। तो मैं फिर चुपके से क्या करता, उनको कहता आप आगे आ जाओ, उनको मैं अपने पास ले आता, सामने ले आता था, और मैं उनको कहता हम सब इकट्ठे हैं, साथ चलेंगे, डोंट वरी, अभी देखो कोई बड़ी बात नहीं है ना, 2 कदम आगे था, अभी 2 कदम मैं पीछे हो गया। लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने इतना मेरे को वो प्यार कर रहे थे, यहां तक भी कहा राम यू आर अवर एंजल, उन्होंने बोला ऐसो। तो मेरे को हंसी भी आई, मैं कह यहाँ एंजल बनने के लिए कितना कितना लोग वो प्रशारत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, यहाँ मैं 2 कदम पीछे गया और मेरे को एंजल बना दिया, ये तो बहुत अच्छा डील है, 2 कदम पीछे जाओ और एंजल बन जाओ। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि कई बार जब हम एंजल्स की बात करते हैं ना, बड़े बड़े एंजल्स होते हैं ना, नामी ग्रामी, उनकी हम बात करते हैं, लेकिन हम हैं साधारण लोग, तो क्या ये पॉसिबल है वो बड़े बड़े एंजल हैं, मैं छोटा सा एंजल बन जाता हूँ। आई कैन बिकम ए माइक्रो एंजल, आई कैन बिकम ए पार्टिकल एंजल। पर एंजल करते क्या है, जहां मुसीबत होती है आकर मदद करते हैं, कोई उनसे रिटर्न में कुछ नहीं लेते हैं, और इससे पहले लोगों को पता चलो वो फ्लाई कर जाते हैं, तो माना अपने हाथ में भी कुछ नहीं रखते हैं। तो क्या वो तो पॉसिबल हो सकता है कि हम कभी भी किसी को मुसीबत हो वहां जाके उनकी मदद करें, अपना नाम शाम के लिए नहीं करें, और इससे पहले कि वो आपको कोई गिफ्ट दें, क्योंकि अगर वो गिफ्ट देंगे, आप गिफ्ट ले लेंगे, फिर तो आप भारी हो जाएंगे, फिर उड़ेंगे कैसे। तो एंजल हल्के होते हैं, एंजल उठते रहते हैं, है ना, वो किसी से कुछ रिटर्न में नहीं लेते हैं, वो तो पॉसिबल हो सकता है। तब मेरे को लगा कि फियर यही हमारा करेज है, और फियर में ही हम देखो क्या से क्या बन सकते हैं। सिर्फ क्या है, जब कभी मुसीबत है ना, किसी ढूंढ ऐसे को ढूंढ लो जिसको आपसे भी ज्यादा तकलीफ है, उनकी आप मदद करेंगे ना, आपका फियर खत्म हो जाएगा। देखो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
1: जी जी, चलिए राम जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और दयाल जी जो है याद कर रहे हैं हमारे रेडियो स्टूडियो में पधारे मेरे सभी प्रिय मेहमानों को, मेरा प्यार भरा दिल से तहे दिल से सभी को नमस्कार, ओम शांति, थैंक यू दयाल जी। और सुभाष जी ने लिखा है वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एंड प्रोग्राम, बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माई लाइफ सर, राम प्रकाश जी एंड रमेश जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बड़े प्यार से आपने मैसेज किया। और दैया जी भी लिखते हैं ओम शांति आप सभी को, और हम सब शिव बाबा के संतान है, बहुत सुंदर विचार आपने एक्सप्लेन किया, एक्सपीरियंस शेयर किया करके लिखा है दैया का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम राम प्रकाश जी के कुछ चुनिंदा अनुभव और आप क्राइसिस और डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके बदले में हम लोग करेज और अपॉर्चुनिटीज को कैसे अपने लाइफ में देख सकते हैं, ये आपने सुना उनके अनुभव से। तो निश्चित तौर पर हमारे पास सिचुएशन आता है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, ये देखने का नजरिया आपका बदलना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन आती है आपको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए आपके लाइफ। दूसरा फियर भी है तो उसको अगर हम समझ लेते हैं और उससे ऊपर आ जाते हैं, करेज हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है और हम अपने लाइफ को आगे बढ़ के जीने लगे। तो जिंदा दिल यही है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जो है, आखिरी में उन्होंने अपने 9/11 का जो एक्सपीरियंस शेयर किया, उसी बिल्डिंग में थे जिस बिल्डिंग से प्लेन टकरा गया था, और वहां से निकलते निकलते उन्होंने देखा कि लाइफ में बहुत बड़ी चीज उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और जब उनको दूसरों को ऐसे मुश्किल के समय हेल्प करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें एंजल बनने का टाइटल मिल जाता है। ये आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो निश्चित तौर पे हम मुश्किल घड़ी में किसी को हेल्प करते हैं तो वो एंजल का ही काम होता है, क्योंकि खुद भी उसी सिचुएशन में है और तब मदद कर रहा है तो और ज्यादा उसका इम्प्रेशन, उसका अनुभव होता है। तो राम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर आप हमारे सभी दर्शक मित्रों को दें।
3: मेरे को जैसे आज फियर का बात किया ना, फियर और करेज एक जगह मिलते हैं, क्राइसिस अपॉर्चुनिटी एक जगह मिलती है, अनसर्टेनिटी फेथ एक जगह मिलता है। तो वास्तव में जिंदगी में हमको लड़ना नहीं है, जिंदगी अपने आप को चेंज करने की बात होती है। तो क्या है, एक चीज जो मैंने अपने जीवन में देखी, अगर हम अच्छे हैं लोग मेरा एडवांटेज लेंगे। होता है ना सबको के मैं अच्छा हूँ लेकिन लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, मैं अच्छा हूँ लोग मेरे को यूज कर रहे हैं। तो मेरे को होता है कि मैसेज में कि लोग मेरा एडवांटेज किस लिए लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एडवांटेज है। लेकिन जब मैं दूसरों को देता हूँ मेरे को प्रकृति परमात्मा सब तरफ से मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरा है, जब हम कहते हैं ना हम अच्छे हैं लोग हमको यूज कर रहे हैं, सबको ऐसा फील होता है ना कि हमको लोग यूज किया जा रहा है। तो मैंने अपने जीवन में क्या देखा कि अगर लोग मेरे को यूज कर रहे हैं इसका मतलब मैं यूजफुल हूँ, तभी तो वो मेरे को यूज कर रहे हैं। अगर मैं मेरे को यूज नहीं करेंगे तो मैं यूजलेस हो जाऊंगा। तो क्या मेरे को यूजलेस बनना मंजूर है कि मैं इतना यूजफुल बनूं सारी दुनिया मेरे को यूज करे? तो जितना मेरे को यूज करेंगे उतना मैं वैल्यूएबल बनता जाऊंगा। देखो यूजफुल बंदे को हर कोई बुलाता है ना, हमारे पास आओ आओ आओ होता है ना, लेकिन कोई यूजलेस है उसको बुलाना चाहेंगे, वो कहते मैं आऊं, कहते नहीं नहीं भाई बाद में आना, टाइम नहीं है, आ भी गए तो माय गॉश आ गया है, कब जाएगा, होता है कि नहीं होता। मतलब जिंदगी में अगर आपको जिंदगी जीना, यूजफुल बन जाओ, जितना आपको लोग यूज करेंगे। देखो हम सूरज को यूज करते हैं ना, हवा को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं, तो जितना आपको लोग यूज करेंगे उतना आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, आप भरपूर होते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाए। तो यही मेरा सबको, वो यूज करना क्या है, अपने रिलेशनशिप में अभी ये कोविड भी आया, जितना आपको करना है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर, थोड़ा एक्स्ट्रा। तो ये जो एक्स्ट्रा आप करेंगे ना, ये आपकी ना दुनिया के प्रति कंट्रीब्यूशन है। एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा टॉलरेंस, एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस, माना किसी के दुख तकलीफ को जान लेना, थोड़ा सा आगे बढ़कर हेलो कर देना, है ना। तो कोई खिटपिट हो गई है तो खुद झुक के सॉरी बोल दो, थैंक यू बोल दो, पहले आप बोल दो और उनको क्रेडिट दे दो, तो आपका जीवन हमेशा सुखी बन जाएगा, आपको सारे डर निकल जाएंगे। क्योंकि डर होता है लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप है ही लोगों को देने के लिए, मदद करने के लिए, हर कोई आपको प्यार करेगा, You will be accepted everywhere. तो यही मेरा सबको ये संदेश है, डरो नहीं अच्छा बनने से, डरो नहीं यूज होने से, क्योंकि ये भगवान को हम यूज करते हैं, प्रकृति को हम यूज करते हैं, तो हम भी दाता बन जाएंगे ना, तो वो एक बड़े सिंपल तरीके में हम देवता बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं। प्रैक्टिकल में बड़े बड़े फरिश्ते नहीं जो उड़ने वाले हैं हवा में, लेकिन हमारा उमंग उत्साह का जो है ना, उमंग उत्साह खुशी, उसके पंख लेकर हम उड़ते हैं, हलते रहते हैं, है ना। कहते हैं फरिश्ते उड़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि ना वो किसी से लेते हैं, खाली हाथ होते हैं और बस खुशी खुशी में उड़ते रहते हैं। तो उड़ते रहो, मुस्कुराते रहो, लोग आपको यूज करते रहें, आप लोग आपका एडवांटेज लेते रहें, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली, जीवन आपका बड़ा सुखी बन जाए। ओम शांति।
1: ओम शांति। राम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं इनको मोटिवेशन मिल गया होगा लाइफ में आगे बढ़ने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं, और इसी के साथ राम प्रकाश जी एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। और श्रीशा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं एक गीत सुनाने के लिए, थैंक यू। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगले
3: आपका भी, रमेश भाई, श्रीशा बहन, बहुत बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी।
1: सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत। ओम शांति।

0: मैं ढूंढे गांव से हूँ, आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: हस्तिनापुर साम्राज्य में आज बहुत सरगर्मी है। महल के बाहर कई महिलाएं मदिरा पान के विरोध में नारेबाजी कर रही थी। द्रौपदी ने रनिवास में जब आवाज सुनी तो सेविका से पूछा, सेविका पता करो बाहर किस बात को लेकर शोर मचा है। महारानी जी, ये साम्राज्य की महिलाएं हैं जो महाराज युधिष्ठिर के सामने दूध क्रीड़ा एवं मदिरा पान पर रोक लगाने का सत्याग्रह करना चाहती हैं। सेविका का यह कथन सुनते ही द्रौपदी तीव्रता से राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। महारानी द्रौपदी, इस तरह कहां चलती, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को टोकते हुए कहा। महाराज, बाहर नगर की स्त्रियां दूध क्रीड़ा एवं मदरापान के विरोध में सत्याग्रह कर रही हैं। मैं वहीं जा रही हूं, आपका वहां क्या काम महारानी? धर्मराज, मुझसे बेहतर दूध क्रीड़ा व मदरापान के दोष को कौन समझ सकता है, द्रौपदी ने कहा। मगर प्रिय, अब उन बातों से क्या लाभ, अब तो महाभारत ही समाप्त हो गया। तुम्हारे खुले केश दुशासन के लहू से नहा लिए, दुर्योधन से तुम्हारे अपमान का बदला भी पूरा हुआ, हमारा राज्य हमें मिल गया, तुम पटरानी बन गई। फिर क्यों द्रौपदी, महाराज युधिष्ठिर बोले। महाराज, कुरुवंश ने द्युत क्रीड़ा और मदरापान का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। मैं नहीं चाहती कि उस साम्राज्य में फिर से कोई नारी किसी युधिष्ठिर के मद्यपाई होने पर किसी दुर्योधन की बदनीयति का शिकार हो, फिर से इस साम्राज्य में कोई महाभारत हो, द्रौपदी ने व्यथित होकर कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर बोले। महाराज, मद में चूर होकर पुरुष इतना कमजोर हो जाता है कि उसे अपना पौरुष दिखाने के लिए सिर्फ नारी ही दिखाई देती है, द्रौपदी ने जवाब दिया। तो तुम कहना चाहती हो कि द्युत क्रीड़ा और मद्यपान से केवल नारी के जीवन पर संकट है, महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। महाराज, ये व्यसन नारी जीवन को तो अभिशाप में बदल ही देते हैं, साथ ही मुझे चिंता उन लाखों निरीह प्राणियों की भी है जो नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने के कारण उत्पन्न महाभारत में अकारण मारे जाते हैं। बीती पर बिंदी लगाओ द्रौपदी। कैसे बिंदी लगाऊं महाराज, आखिर पटरानी हूं साम्राज्य की, प्रजा मेरे लिए संतान तुल्य है, संतान की रक्षा करना धर्म है मेरा। ये परंपराएं जो बड़े घरानों से चलन में आती हैं, वे समाज के लिए पत्थर की लकीर बन संकट का कारण बनती हैं, अतः उन्हें बंद होना ही होगा, कहते हुए द्रौपदी महल के बाहर खड़ी स्त्रियों की अगुवाई में खड़ी हो गई। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लिखी लघु कथा घरानों की परंपरा। महाभारत का एक दृश्य उठाकर के उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे सामने रख दिया और दो ऐसे पात्रों का संवाद उन्होंने रखा जो महाभारत महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं। हम सब जानते हैं महाभारत क्यों हुआ, भले ही हम अपने घरों में ना रखते हो, मगर एक बात तो जरूर हुई है कि घर घर महाभारत पहुंच गई है, और घर घर महाभारत पहुंचने का कारण कहीं न कहीं 10 विकारों में एक विकार व्यसन भी तो है। नारी के सम्मान से खिलवाड़ होने का सबसे बड़ा बहाना यही व्यसन बनते हैं और यही महाभारत है। ये पात्र सांकेतिक हो या फिर वास्तविक, मगर अगर सीख लेने की बात है तो सीख तो ली ही जा सकती है। परंपराएं अच्छी हों, बेहतर हों, कुल का उत्थान करने वाली हों, सम्मान दिलाने वाली हों, तो ठीक भी है, मगर पौरुष या मर्दान की दिखाने के लिए व्यसन का सहारा लेना, काम विकार पर गर्व करना, ये मर्दानगी नहीं हुई, क्योंकि गंदी नाली में पैदा होने वाले पुछिल्ले कीड़े भी काम विकार में लिप्त होते हैं। इसीलिए अगर डॉक्टर लता अग्रवाल जी की ये बात समझ में आई हो तो इस सत्याग्रह में जुड़ जाना चाहिए, और सत्याग्रह हमारा सिर्फ यही हो सकता है कि हम इसका परित्याग कर दें अपने लेवल पर। दूसरों को सुधारना ये तो बहुत बात की बात है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है, परंतु औरों को परिवर्तित करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव संस्कार है और अपने स्वभाव संस्कार को बदलना, उस पर जीत पाना, किसी भी संस्कार का, किसी भी आदत लत का गुलाम न होना, यही स्वराज्य अधिकार पाना है और यही स्वराज्य का अधिकार पांडवों ने पाया था। धर्म के मार्ग पर चले थे, श्रीमत पर चले थे, श्री श्री भगवान की। श्रीमद् भागवत कहते हैं ना, भगवान के द्वारा गाई हुई अथवा दी हुई श्रीमत, इसे हमने गीता का नाम दिया। यदि कभी आप गीता पाठ करते हैं तो खुद को अर्जुन मानकर, जो ज्ञान का अर्जन करना चाहता है, जिसे यह परिचय दिया जाता है कि तुम आत्मा हो, स्वयं को आत्मा मानकर के ये समझ करके गीता पढ़िएगा कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आपसे ये बात कह रहा है जो गीता में लिखी है, तब गीता की बातें बुद्धि में भी आएंगी और धारणा हो पाएगी। अन्यथा हम ये मान करके पढ़ लेते हैं तो अर्जुन के लिए कहा गया था, परंतु वो अर्जुन मैं भी हो सकता हूं ये कभी नहीं सोचते। कैसी लगी आपको डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लिखी घरानों की परंपरा, जरूर बताइएगा। मैं अमित अगले पड़ाव पर आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: नमस्ते दोस्तों, जासूस धर्मचंद का नाम सुना है आपने?
1: क्या कहा?
0: नहीं सुना? तो चलो फिर मीना के पास, जो दीपू और सुनील को धर्मचंद जासूस की एक कहानी पढ़ के सुना रही है।
2: जासूस धर्मचंद ने एक बार फिर से लालू और कालू की तरफ देखा। लालू और कालू दोनों बहुत घबराए हुए लग रहे थे। धर्मचंद ने हमेशा की तरह एक गाजर खाई और बोला,
3: इंस्पेक्टर साहब, कालू को गिरफ्तार कर लीजिए, चोरी इसी ने की है, क्योंकि खिड़की में फंसा हुआ कपड़े का टुकड़ा कालू की कमीज का ही है। हा हा हा।
2: और इस तरह कालू को पकड़वा के धर्मचंद ने एक और मामला सुलझा दिया।
3: वाह मीना, क्या कहानी थी, है ना सुनील?
4: हाँ यार दीपू, ये जासूस धर्मचंद तो कमाल का आदमी है, चुटकियों में कोई भी मामला सुलझा लेता है।
5: मामला सुलझा लेता है, गाजर चबा लेता है।
3: मीना, ये धर्मचंद जासूस हमेशा गाजर क्यों खाता रहता है?
2: शायद इसलिए दीपू, क्योंकि सब्जियां हमारे दिमाग को तेज करती हैं।
3: मीना, सुनील, क्या हम भी धर्मचंद की तरह जासूस नहीं बन सकते?
2: क्यों नहीं दीपू, बिल्कुल बन सकते हैं।
3: हम भी चुटकियों में सबकी मुश्किल हल कर देंगे,
6: और फिर एक दिन हमारी कहानियां भी छपेंगी, जासूस दीपू सुनील और मीना के किस्से।
3: चलो गांव का एक चक्कर लगा के आते हैं, क्या पता किसी को हमारी मदद की जरूरत हो।
6: हाँ, और फिर हम जासूस धर्मचंद की तरह उस मुश्किल का झट से हल कर देंगे।
3: लेकिन सबसे पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना होगा। हमें सबसे पहले चाहिए बहुत सारी गाजर, ताकि हम भी जासूस धर्मचंद की तरह गाजर खा के हर मुश्किल का हल ढूंढ सके।
4: हाँ, ये बात तो ठीक है। एक काम करते हैं, अपने अपने घर जाते हैं और गाजर लेके आते हैं।
5: गाजर लेके आते हैं, जासूस बन जाते हैं।
0: और फिर मीना, दीपू और सुनील गाजर खाते हुए गांव का चक्कर लगाने निकले।
3: सुनील, मीना, वो देखो।
2: अरे, ये तो गीता दीदी है, लेकिन ये इतनी परेशान क्यों लग रही है?
3: लगता है कुछ ढूंढ रही है।
4: चलो उन्हीं से पूछते हैं।
2: क्या बात है दीदी, कुछ खो गया है क्या?
7: हाँ मीना, किसी ने मेरी गोभी चुरा ली है।
3: आप चिंता मत करो गीता दीदी, हम तीनों धर्मचंद जासूस की तरह आपकी गोभी चुराने वाले चोर को झट से ढूंढ निकालेंगे।
7: अरे वाह दीपू, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: और फिर मीना, दीपू और सुनील ने धर्मचंद जासूस की तरह गाजर चबाते हुए गीता दीदी से सवाल पूछने शुरू किए।
2: गीता दीदी, हमें पूरी बात बताइए
3: शुरू से।
7: हाँ, सबसे पहले मैंने बाजार जाके गोभी खरीदी।
3: सुनील, ये बात कागज पे लिखो।
4: ठीक है दीपू, अभी लिखता हूँ। सबसे पहले बाजार जाके गोभी खरीदी, लिख लिया।
2: फिर आपने क्या किया?
7: फिर मैंने घर पहुँच के गोभी को काटा,
3: चाकू से या दांत से?
7: चाकू से।
4: गोभी को काटा, लिख लिया। फिर क्या हुआ दीदी?
7: फिर मैंने गोभी पकाने से पहले उसे साफ पानी से धोया, अच्छी तरह
4: धोया। लेकिन गोभी को?
3: ओफो सुनील, तुम बस चुपचाप लिखते रहो।
4: ठीक है, गोभी को साफ पानी से अच्छी तरह धोया।

0: मैंने इसी प्लेट में ही काटी थी अपनी प्यारी गोभी।
1: दीपू सुनील, सोचने वाली बात ये है कि आखिर वो चोर सिर्फ गोभी ही क्यों लेके गया, वो ये प्लेट भी तो ले जा सकता था।
0: हाँ बात तो सही है।
1: गीता दीदी, क्या आपने गोभी के साथ साथ धनिया भी काटा था?
0: हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला?
2: वो देखिए गीता दीदी, वो रहा चोर।
0: क्या, मेरी बकरी?
1: हाँ दीदी, जरा ध्यान से देखिए, आपकी बकरी के सींगों पे अभी भी कुछ धनिया लगा हुआ है, इसका मतलब आपकी बकरी ने ही खाई थी गोभी।
0: अरे वाह, तुम तीनों तो धर्मचंद जासूस के भी उस्ताद निकले।
3: मीना, दीपू और सुनील गीता दीदी के घर से निकले ही थे कि सुनील के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। मीना और दीपू ने सुनील को नर्स बहन जी के पास चलने के लिए कहा और रास्ते में मीना और दीपू ने धर्मचंद जासूस की तरह सुनील के पेट दर्द का मामला सुलझाने की कोशिश की।
2: सुनील, आज सुबह से तुमने क्या क्या किया?
4: सबसे पहले दांत साफ किए, नहा धो के स्कूल गया, घर वापस आके खाना खाया, मीना से धर्मचंद जासूस की कहानी सुनी, फिर
1: तुम अपने घर गए।
4: हाँ, फिर मैं घर गया, रसोई में से गाजर उठाई और भाग के तुम्हारे पास आ गया। उसके बाद
1: एक मिनट सुनील, तुमने वो गाजर धोई भी होंगी है ना?
4: नहीं, गाजर साफ ही तो थी, फिर भला उन्हें धोने की क्या जरूरत थी?
1: क्या तुम कच्ची सब्जियां खाने से पहले उन्हें कभी नहीं धोते?
4: नहीं, माँ भी कभी नहीं धोती, ऐसे ही पका लेती हैं। क्यों?
2: जासूस मीना और जासूस दीपू ने सुनील के पेट दर्द होने की वजह का पता लगा लिया।
1: और वो वजह ये है सुनील कि तुमने गाजर खाने से पहले उन्हें साफ पानी से नहीं धोया था।
4: मैं कुछ समझा नहीं मीना।
5: मैं समझाती हूँ सुनील।
4: नर्स बहन जी आप?
5: हाँ सुनील, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और तुम्हारे पेट दर्द होने का कारण भी जान लिया। सुनील बेटा, ये बात तुम भी याद रखना और घर जाके अपनी माँ को भी बताना कि सब्जी पकाने से पहले उसे साफ पानी में धोना बहुत जरूरी है।
4: नहीं तो क्या होता है नर्स बहन जी?
5: बिना धुली सब्जियों में कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में जाके हमें बीमार कर देते हैं, जैसे अभी तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, समझे?
4: जी बहन जी।
5: अब चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें पेट दर्द की दवा देती हूँ। और हाँ, मेरी बातें भूल मत जाना।
6: भूल मत जाना, सब्जियाँ धो के ही खाना और पकाना।
3: समझे दोस्तों? आप भी नर्स बहन जी की बात याद रखना, सब्जियाँ खाने और पकाने से पहले बिल्कुल ठीक कहा, उन्हें साफ पानी से धोना जरूरी है। अब समय है एक नई कविता का, आओ देखें आज मीना और मिट्टू ने कैसी कविता लिखी है।
1: कह दो अपने माँ बाबा से, दादी और नानी से,
6: सब्जी पकाने से पहले उसे धोए साफ पानी से।
3: वाह वाह वाह वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और उसके प्यारे तोते मिट्टू ने, मजा आ गया। अब जब मजे की बात हो ही रही है तो क्यों ना एक मजेदार गाना भी सुन लिया जाए।

0: खाना गाना मजेदार, अब चलते हैं बिल्कुल ठीक कहा, अब चलते हैं खेलने।
1: बच्चों आज का खेल है बड़ा मजेदार, भेद खोलना है उसका जो बैठा है बीच में छुपकर। मैं तुम सबको चार खेलों के नाम बताऊंगी, उन चारों में से एक खेल ऐसा है जो बाकी तीन खेलों से किसी खास वजह से अलग है, बस तुम्हें नाम बताना है उसी अलग खेल का। तो शुरू करें ये खेल।
2: जी।
1: वो चार खेल हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और फुटबॉल। बोलो कौन सा खेल बीच में छुपा हुआ है, यानी वो कौन सा खेल है जो है बाकी तीन से अलग। सोचो सोचो, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल।
3: क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट का मैच टीवी और रेडियो पे आता है।
1: गोलू, टीवी और रेडियो पे तो बाकी के तीन खेल भी आते हैं। चलो चलो जल्दी से सोचो, कौन सा खेल है जो बैठा है बीच में छुपकर, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन या फुटबॉल।
4: बहन जी सही जवाब है बैडमिंटन।
1: बिल्कुल ठीक कृष्णा, अब ये बताओ बैडमिंटन का खेल क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल से अलग कैसे है।
4: क्योंकि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल 11-11 खिलाड़ियों की टीमों के बीच में खेले जाते हैं, जबकि बैडमिंटन 2 या 4 खिलाड़ियों के बीच ही खेला जाता है।
3: एक और भी कारण है बहन जी।
1: हाँ हाँ मीना बताओ।
3: क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल गेंद से खेले जाते हैं, जबकि बैडमिंटन में चिड़िया को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शटल कॉक। हाँ शटल कॉक, बैडमिंटन शटल कॉक और रैकेट से खेला जाता है।
1: शाबाश मीना, बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया ना बच्चों।
2: जी बहन जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना। क्या कहा, बहुत मजा आया। फिर ठीक है, अब मुझे दीजिए आज्ञा, जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
3: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन न खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नटखट बंटी, पात्र परिचय। पापा के रूप में सैंडी, मम्मी के रूप में कृष्णा, बंटी के रूप में आदित्य और नरेटर शशिकांत। बंटी के पापा घर के फिजूल खर्चों से बहुत परेशान थे।
3: बिजली का बिल, फोन का बिल, केबल का बिल, पेपर का बिल, ओ मेरी तो पूरी तनख्वाह इन बिलों में चली जाती है।
4: हाँ पापा, और मेरी स्कूल की फीस में भी तो काफी खर्चा होता है।
3: हाँ बेटा, कल्चर एक्टिविटी चार्ज, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, ना जाने क्या क्या चार्ज देने पड़ते हैं।
4: पापा, एक आइडिया है खर्च बचाने का।
3: वो क्या है?
4: पापा, मैं अपने स्कूल से नाम कटवा लेता हूँ, काफी खर्च बच जाएगा।
3: चुप रहो शरारती बंटी, जब देखो तो पढ़ाई से बचने का तरकीब सोचते रहते हो।
4: सॉरी पापा, मैं कोई दूसरी तरकीब सोचता हूँ खर्च कम करने की।
3: ये हुई ना बात, खर्च बचाना ही है तो फिजूल खर्च बचाओ, ना कि जरूर की चीजों की कटौती करके स्कूल जाना ही छोड़ दो।
4: पापा, ये फिजूल खर्च क्या होता है?
3: फिजूल खर्च मतलब बेवजह के खर्च, जैसे बगैर जरूरत के सामान खरीदना, टीवी फालतू चलाना, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए गाड़ी की सवारी और मुफ्त में पेट्रोल को बेकार जलाना।
4: पापा बस, मैं समझ गया, आज से इस घर में फिजूल खर्च बंद।
5: वाह बंटी, बहुत समझदार हो गए हो। मैंने गलती से गैस खुला छोड़ दिया था, तुमने फौरन बंद कर दिया।
4: हाँ मम्मी, आखिर फिजूल खर्च बचाना है।
3: बंटी, जाओ गोपाल के साथ मेरे स्कूटर पर और लॉटरी से मेरे कपड़े प्रेस करा लाओ।
4: नहीं पापा, स्कूटर से पेट्रोल जलेगा और लॉन्ड्री में प्रेस कराने से खर्च बढ़ेगा, मैं घर पर ही आपके कपड़े प्रेस कर देता हूँ।
2: पापा ऑफिस जाते वक्त अपना नया शर्ट पहन रहे थे, तभी चीख उठे।
3: ओ नो, ये मेरे नए शर्ट रोशनदार कैसे बन गए?
4: सॉरी पापा, प्रेस करते वक्त प्रेस जड़ा ज्यादा गर्म हो गई थी।
3: भाई बंटी, खर्च बचाने की तुम चिंता ना करो, वो तुम्हारा काम नहीं है, इस तरह तो तुम और भी मुसीबत बढ़ा दोगे।
5: बंटी जरा देख कर आना, काम वाली बाई क्यों नहीं आ रही है, कहीं बीमार तो नहीं है?
4: नहीं मम्मी, बाई को तो मैंने मना किया है, वो क्या है कि फिजूल खर्च बचाना है।
5: ओ नो, फिजूल खर्चे के चक्कर में ये लड़का जीना ही हराम कर देगा। बंटी, आज से तुम खुद की फिजूल खर्चों पर कंट्रोल करो, ना कि घर बार को डिस्टर्ब करो।
2: रात को बंटी महाराज अंधेरे में बैठकर टीवी का प्रोग्राम देख रहे थे।
5: अरे शरारती बंटी, क्या तुमने होमवर्क कर लिया और ये अंधेरे करके टीवी क्यों देख रहे हो?
4: ओ मम्मी, आपने ही तो कहा था कि खुद की फिजूल खर्चे पर कंट्रोल करो, इसलिए अंधेरा करके बिजली का बिल बचा रहा हूँ।
2: मम्मी ने समझाया कि अंधेरे में टीवी देखने से आंखें खराब होती है, और इस तरह बंटी को फिजूल खर्च क्या है ये समझाने में मम्मी पापा को काफी मेहनत लगी।
6: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
7: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
8: When I was young, I played for fun, made up the words nobody heard, but now I see all eyes on me.

Hello students, again this is Sandeep Trivedi, your English teacher, and today I am going to start part 2 of lesson number 7, which is The Lady or the Tiger. The name of the book is Golden Rays for class 10th Rajasthan Board of Secondary Education. So let's start. This is a very confusing and interesting story, students. So please listen it very, very carefully. Okay, now I start part 2. तो बच्चों ये बहुत ही कंफ्यूज कर देने वाला एक लेसन है, लेकिन आपको इस लेसन में सोचना है. कैसे सोचना है, किन किन बातों पर सोचना है, ये हमें राइटर ने ऑलरेडी इंडिकेट किया है. देखते हैं कैसे. द सेमी बार्बरिक किंग हैड अ डॉटर होम ही लव्ड डीपली. ये जो अर्ध असभ्य राजा जो था उसकी एक पुत्री थी जिसको कि वो बहुत प्यार करता था. शी वॉज एज पैशनेट फैंसीफुल एंड स्ट्रॉन्ग एज अर फादर. लेकिन वो लड़की भी इतनी ही जुनूनी, इतनी ही कल्पनाओं में खोई रहने वाली और अपने इरादों की पक्की थी जितने की उसके पिताजी थे. यहां पे समझ लेना, मतलब वो अपने पापा के जैसी थी, तो समझिए उसके सोचने का तरीका भी उनके पिताजी के जैसा ही होगा. एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, और वो अपने पिताजी के लिए पूरी तरह से समर्पित भी थी, डिवोटेड एज इज द केस इन मैनी फेरी टेल्स. जैसा कि बहुत सारी परी कथाओं में होता है, दिस डॉटर, ये पुत्री, द एप्पल ऑफ हर फादर्स आईज, जो कि अपने पिताजी की आंख का तारा है, वॉज इन लव विद अ यंग मैन हु वॉज बिलो हर इन स्टेशन. इसको एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया, एक ऐसे युवक से प्रेम हो गया जो कि कहते हैं ना, वो हैसियत में उससे कम था. जाहिर सी बात है, ये राजा की बेटी, तो एक साधारण नागरिक तो राजा की बेटी से तो कई गुना कम ही होगा ना. ही वॉज अ कॉमनर, वो एक सामान्य व्यक्ति था. ही वॉज ऑल्सो ब्रेव, हैंडसम एंड डेयरिंग. लेकिन वो बहुत बहादुर भी था, वो बहुत सुंदर भी था और बहुत साहसी भी था, डेयरिंग. एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, और वो इस राजकुमारी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था. द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर दैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक, टू ड्रामेटिक. लड़की के अंदर भी साहस की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए इनका जो प्रेम था वो बहुत ही नाटकीय, बहुत ज़्यादा नाटकीय हुआ. इतना नाटकीय हुआ कि उसका किसी ने सोचा नहीं था. इट वॉज अ सीक्रेट फॉर मंथ्स, कई महीनों तक किसी को पता नहीं था इस प्रेम के बारे में, इन दोनों के प्रेम के बारे में. बट लेकिन देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन राजा को आखिरकार पता चल गया. द किंग डिड नॉट हेजिटेट फॉर अ मिनट, राजा को एक पल भी नहीं लगा हिचकिचा, राजा एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया. ही सेंट द यंग मैन टू प्रिजन, उसने इस युवक को जेल में डाल दिया. एंड सेट अ डेट फॉर हिज ट्रायल, और जैसा कि नियम था इन द अरेना, अखाड़े में इस मुकदमे की सुनवाई की भी एक तारीख फिक्स कर दी गई कि उस दिन बस वही सब होगा. राजा ऊंचे सिंहासन पर बैठेंगे, दर्शक आएंगे और राजा के नीचे से एक दरवाजा खुलेगा, जो कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं.
और उस अखाड़े में फिर सामने वो दरवाज़ा खोलेगा, अगर उसकी किस्मत अच्छी हुई तो लड़की निकलेगी, बुरी हुई तो अंदर से बाघ निकलेगा, शेर निकलेगा। When the date arrived, जब वो तारीख आ गई, everyone

किंगडम वांटेड टू अटेंड, राज्य में जो कोई भी था वो इस समारोह को अटेंड करना चाह देखना चाहता था भाई आखिर है क्या मामला, कैसे राजा या राजकुमारी कोई चालाकी करते हैं या ये लड़का कुछ करता है, बहादुरी दिखाता है कैसे। दे ऑल न्यू ऑफ द किंग्स इंटरेस्ट इन द केस, हर कोई जानता था कि राजा की रुचि किस बात में रहती है। एंड देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द एयर, हर जगह उत्सुकता भरा माहौल था कि आखिरकार इस केस का होगा क्या। हर कोई ये जानना चाहता था। द किंग्स मैन सर्च्ड फॉर द फियरसेस्ट टाइगर इन द रियल, पूरे राज्य में, रियल में मतलब किंगडम, सिमिलर वर्ड है ये उसका, पूरे राज्य में राजा के जो आदमी थे उन्होंने सबसे खतरनाक जो बाघ था उसकी तलाश की। दे ऑल्सो सर्च फॉर द फेयरेस्ट मेडन इन द लैंड, साथ ही साथ उन्होंने सबसे सुंदर लड़की, मेडन, एक कुंवारी युवती की भी तलाश की, सो दैट ताकि ही कुड हैव अ फिटिंग ब्राइड इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट, कि इसलिए कि अगर वो निर्दोष है और लड़की बाहर आए तो उसका विवाह करवाया जा सके उसके बराबर की लड़की से, या उसके उसकी जो दुल्हन हो वो उसके जैसी उसके बराबर की हो सके। ऑफ कोर्स एवरीवन न्यू दैट, हर कोई जानता था कि ही हैड कमिटेड द क्राइम, कि उसने अपराध तो किया है ऑफ लविंग द प्रिंसेस, राजकुमारी से प्रेम करने का, बट द किंग डिड नॉट अलाउ द फैक्ट्स ऑफ द केस टू ऑल्टर हिज डिसीजन, लेकिन राजा कतई नहीं चाहता था कि उसके निर्णय में किसी तरह का कोई फेरबदल हो। राजा ने एक बार जो सोच लिया वो हो करके रहेगा। द ट्रायल वुड गो ऑन, मुकदमा शुरू हुआ एज प्लान्ड, जैसा कि तय था। द यूथ वुड बी गॉन नो मैटर व्हाट हैपेंड, सबको पता था कि जो कुछ भी हो इस लड़के का तो मरना तय है। He would either be dead or married, या तो वो मर जाएगा या उसका विवाह हो जाएगा, लेकिन राजकुमारी से तो नहीं होगा। The king could enjoy the proceedings for the sport of it, राजा एक खेल की तरह इसका आनंद उठाने के लिए बैठ गया अपने सिंहासन पर। The day arrived, वो दिन आ गया। The people were standing in every corner of the arena, अखाड़े के हर कोने में लोग खड़े होकर के देख रहे थे। ऑल वॉज रेडी वेन द मोमेंट केम, हर कोई तैयार था और आखिरकार वो पल भी आ गया, वो क्षण भी आ गया, मोमेंट। अ सिग्नल वॉज गिवन, एक इशारा किया गया, एंड द डोर ओपन्ड, दरवाजा खुला, अलाउिंग द प्रिंसेस लवर टू एंटर, और उस दरवाजे में से वो जो प्रेमी था उस राजकुमारी का वो बाहर आया। द क्राउड गैस्प्ड, लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बात करने लगे। ही वॉज हैंडसम, वो बहुत सुंदर था। हाफ द ऑडियंस डिड नॉट नो दैट वन सो अट्रैक्टिव हैड लिव्ड अमंग देम, आधी जनता तो ये जानती नहीं थी कि इतना सुंदर कोई युवक उनके राज्य में रहता भी है। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि द प्रिंसेस लव्ड हिम, कि राजकुमारी भी उससे बहुत प्रेम करती थी। हाउ टेरिबल फॉर हिम टू बी देयर, उसके लिए इस जगह पे होना कितना भयानक था। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कई दिनों से, दिन रात राजकुमारी भी इस मुकदमे के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। कई दिनों से उसके दिमाग में यह सब चल रहा था कि यार होता ही है, जिसे वो प्यार करती है अगर वो निर्दोष होता है तो किसी से शादी हो जाएगी उसकी, तो भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, और अगर बाघ ने उसको अगर खा लिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा, तो कुल ना के उसको तो खोना ही है। शी न्यू शी कुड नॉट बियर टू मिस
द स्पेक्टिकल. वो जानती थी कि जो दृश्य उसके सामने होगा उसको वो सहन नहीं कर पाएगी. बट देयर वॉज अनदर रीजन फॉर हर बीइंग देयर. लेकिन उसके लिए वहां पर होने का एक और कारण भी था. शी हैड सच पावर. उसमें इतनी ताकत थी, इन्फ्लुएंस उसका इतना प्रभाव था, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर एज वेल एज प्लेंटी ऑफ गोल्ड. उसके पास बहुत धन भी था और उसके अंदर इतनी बुद्धि भी थी दैट शी डिड व्हाट नो वन हैड एवर डन बिफोर. उसने वो किया जो आज तक पहले कभी कोई नहीं कर पाया था. शी फाउंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स. उसको दरवाजे का रहस्य पता लग गया. फॉर दैट डे, उस दिन के लिए, शी न्यू इन विच रूम स्टूड द हंग्री टाइगर. वो ये जानती थी कि कहाँ पर बाघ खड़ा है एंड इन विच वेटेड द लेडी, और किसमें वो युवती इंतजार कर रही है. शी न्यू, वो ये भी जानती थी टू दैट द डोर्स वर सो थिक, कि जो दरवाजे हैं वो बहुत मजबूत हैं, दैट देयर वॉज नो वे एनी वन कुड एवर हियर सम हिंट फ्रॉम बिहाइंड देम, कि उनमें से कोई भी कोई संकेत प्राप्त कर सके, किसी की कोई संभावना ही नहीं थी. इफ शी वर गोइंग टू वार्न हर लवर, अगर वो उसको चेतावनी देती, शी वुड हैव टू डू इट बाय सिग्नल. उसको इशारा करके ही ये सब करना था. सो शी ऑल्सो न्यू समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड. वो कुछ ऐसा भी जानती थी, कुछ ऐसा भी सोचती थी जिसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया बड़ी ही उलझी हुई सी हो गई. शी न्यू दैट, वो जानती थी कि द लेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मेडन्स इन द होल कंट्री, कि जो लड़की लाई गई है वो पूरे राज्य की सबसे सुंदर महिला है. एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद दिस वुमेन एनरेज्ड हर. और ये सोच करके कि मेरा प्रेमी किसी और के साथ रहेगा, वो ऑलरेडी बहुत ही क्रोधित हो गई. शी हेटेड द लेडी एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन. उस लड़की से भी नफरत हो गई उसको, और जो कुछ होने वाला था उस बात से भी नफरत हो गई. ध्यान दीजिएगा, व्हेन द अक्यूज्ड बाउड टू द रॉयल बॉक्स, जब सिंहासन की तरफ झुक करके अभिवादन किया उस अपराधी ने, एज वॉज द कस्टम, जो कि रिवाज था, ही लुक्ड ओनली एट द प्रिंसेस. वो केवल राजकुमारी की तरफ उसने देखा. एंड इमीडिएटली ही न्यू, वो जान गया, वो समझ गया, ही हैड एक्सपेक्टेड हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट. और जो उसने उम्मीद की थी कि उसकी प्रेमिका ने उस रहस्य को पता लगा लिया है ऑफ द डोर्स, दरवाजे के, एंड नाउ, अब ही न्यू दैट, वो जानता था कि शी हैड द आंसर, उसके पास उत्तर भी है. इट वॉज ओनली लेफ्ट फॉर हर टू टेल हिम. अब केवल राजकुमारी की बारी थी कि वो इस युवक को इशारा करके बता दे, और वो भी ऐसे करे इशारा कि राजा को या राजा के जो आदमी थे, जो सैनिक थे, उनको जरा भी शक ना हो. हिज क्विक ग्लांस एट हर आस्ट, एकदम नजरें घुमा करके उसने उसको देखा और बस पूछने के अंदाज में, विच इट वॉज एज प्लान एज इफ ही हैड शाउटेड इट. ये इतनी सावधानी से तय किया गया था जैसे कि उसने चिल्ला करके पूछा. देर वॉज नो टाइम टू लूज, द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट. और जितना तेजी से यह प्रश्न पूछा गया था, इसका उत्तर भी उतना ही जल्दी देना था ताकि राजा को किसी तरह का कोई शक ना हो. हर राइट हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन अ पिलो, उसका दायां हाथ एक पिलो, एक तकिए के ऊपर था. पिलो मतलब तकिया. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने, शी रेज्ड इट स्लाइटली, उसने हल्का सा उसको उठाया, एंड मेड अ स्मॉल फास्ट मूवमेंट, एक हल्का सा उसने एक इशारा किया टू द राइट, अपने दाईं तरफ. नो वन बट हर लवर सॉ हर,
कोई और तो नहीं, लेकिन उसके प्रेमी ने ये इस इशारे को देख लिया, इस बात को समझ लिया. एवरी आई इन द अरीना वॉज फिक्स्ड ऑन हिम. इस अखाड़े की हर एक आंख अब इस राजकुमार के ऊपर, इस युवक के ऊपर ही गड़ी हुई थी कि आगे क्या होने वाला है. ही टर्न्ड एंड विद अ फर्म एंड रैपिड स्टेप ही वॉक्ड अक्रॉस द एम्प्टी स्पेस. वो मुड़ा और बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ, पूरी मजबूती के साथ, मजबूत कदमों से दरवाजों की तरफ गया. एवरी हार्ट स्टॉप्ड, हर दिल की धड़कन रुक गई. एवरी ब्रीथ वॉज हेल्ड, हर सांस अकड़ गई. एवरी आई वॉज अपॉन हिम, हर एक आंख उसके ऊपर थी. विदाउट हेजिटेशन, बिना हिचकिचाए, ही वेंट टू द डोर ऑन द राइट, दाएं तरफ के दरवाजे के पास हो गया एंड ओपनड इट, और उसको खोल दिया. डिड द टाइगर कम आउट ऑफ दैट डोर, क्या उस दरवाजे से बाघ निकल के आया, और डिड द लेडी, या फिर कोई सुंदर सी लड़की उसमें से बाहर निकल करके आई. द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, जितना ज्यादा हम इस प्रश्न को सोचेंगे, द हार्डर इट इज टू आंसर, उतना ही इसका उत्तर ढूंढना कठिन होगा. इट इन्वॉल्व्स अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन हार्ट. इस सोच में, इस विचार में हमें मानवीय हृदय, मानवीय जो दिल है हमारा, उसका अध्ययन शामिल करना होगा. विच लीड्स टू मेजेस ऑफ पैशन, जिसमें जुनून है, लव प्रेम है, हेट है, नफरत है, एंड एक्साइटमेंट और उत्सुकता है. डू नॉट आंसर दिस फॉर योरसेल्फ, इस बात का उत्तर केवल अपने लिए मत देना. बट पुट योर सेल्फ इन द प्लेस ऑफ द प्रिंसेस, अपने आप को राजकुमारी की जगह रख करके देखना. She was hot blooded and semi barbaric. वो गर्म खून की थी और अर्ध असभ्य भी थी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अपने पिताजी की तरह. And her soul burned with the twin desires, और दो तरह की इच्छाओं को देख करके, बातों को देख करके, जो कि क्या थी, longing, प्रेम, and jealous, और जलन से उसका हृदय, उसकी आत्मा जल उठी. शी न्यू दैट, वो जानती थी कि शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम. ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट. वो जानती थी कि उसने उसको खो तो वैसे ही दिया है, बट टू हूम, लेकिन किसके लिए. हाउ ऑफन शी हैड लेन अवेक एट नाइट इमेजिनिंग द हॉरर ऑफ हर लवर बीइंग किल्ड बाय अ टाइगर. कितनी रातें उसने इस बात को सोच सोच कर, जाग जाग कर बिताई हैं कि एक बाघ उसके प्रेमी को मार डालेगा, खा जाएगा. इवन इन हर ड्रीम्स, उसके सपनों में, शी हैड कवर्ड हर फेस, उसने अपना चेहरा ढक लिया. विद हर हैंड्स, अपने हाथों से, टू हाइड फ्रॉम द क्रुएल्टी, इस अत्याचार को वो देखना ही नहीं चाहती थी. बट हाउ मच मोर ऑफन हैड शी सीन हिम एट द अदर डोर, लेकिन कितनी ही बार उसने उसको दूसरे दरवाजे की तरफ भी देखा. इन हर माइंड शी हैड स्क्रीम्ड एंड टॉर्न हर हेयर, और अपने मन मस्तिष्क में वो चिल्ला उठी, अपने बालों को उसने काट डाला. वेन शी सॉ हिज हैप्पी फेस, जब उसने उसका खुश मिजाज चेहरा देखा. एट ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, टू द लेडी, जिसमें से एक लड़की निकल रही है बाहर. हर सोल बर्न्ड, उसकी आत्मा जल उठी इन एगोनी. एज शी सॉ हिम रश टू दैट वुमेन एंड देन बी वेडेड इन द नेक्स्ट मोमेंट, कि किसी प्रकार वो तुरंत उस लड़की के पास गया और अगले ही पल उनका विवाह हो गया. वेन ऑल अबाउट हर वर जॉयस, जब हर कोई वहां पर खुश था. शी लिव्ड थ्रू द मिजरी ऑफ द प्रोसेशन, द हैप्पी कपल, द सिंगिंग एंड डांसिंग, द शाउट्स ऑफ द क्राउड.
लोगों को गाते हुए नाचते हुए विवाह होते हुए सारी भीड़ को खुश होते हुए द लाफ्टर ऑफ द वंडरिंग चिल्ड्रन और जो आसपास बच्चे थे उनकी हंसी ठिठोली हर टीयर्स उसके आंसू ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय सारी खुशी में सब कुछ खत्म हो गया. वुड इट बी बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस क्या उसके लिए मरना अच्छा है. देन ही कुड गो टू द प्लेस आफ्टर डेथ एंड वेट फॉर हर या फिर क्या वो उसका इंतज़ार कर सकता था. एंड येट दैट ऑफुल टाइगर वो भयानक बाघ दोज स्ट्राइक्स वो चीखें दैट ब्लड वो खून हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट दैट शी मूव्ड हर हैंड उसका निर्णय इतनी आसानी से हर डिसीजन हैड बीन मेड उसका निर्णय इतनी आसानी से किया गया जितनी ही आसानी से उसने अपना दायां हाथ इशारे के लिए आगे बढ़ाया. शी हैड नोन दैट वो ये जानती थी कि ही वुड आस्क वो पूछेगा बट शी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन अंटिल द लास्ट मोमेंट लेकिन अंतिम पलों तक उसने ये जाहिर नहीं होने दिया किसी को. शी फाइनली डिसाइडेड आखिरकार उसने ये निश्चय किया एंड विदाउट हेजिटेशन बिना हिचकिचाए शी इंडिकेटेड द राइट हैंड डोर उसने अपने दाएं हाथ दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली ये कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका कि जिसको बहुत हल्के में लिया जाए. हर डिसीजन वॉज सीरियस उसका निर्णय बहुत गंभीर था फॉर हर उसके लिए. सो इसलिए आई डू नॉट प्रेज्यूम टू आंसर फॉर हर मैं कोई अनुमान नहीं लगाता कि उसका क्या उत्तर रहा होगा. आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू मैं आप सबके लिए ये प्रश्न छोड़ देता हूँ विच केम आउट ऑफ द ओपन्ड डोर कि उस दाएं तरफ वाले दरवाजे में से क्या निकला होगा द लेडी और द टाइगर क्या कोई महिला या फिर बाघ फ्रैंक आर स्टॉकटन. सो स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ लेसन नंबर 7. नाउ आई विल कम अप विद द लेसन नंबर 8. टिल देन गुड बाय.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर गलती एक सबक है, आत्ममंथन के माध्यम से उनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: पलक, तुम्हें पता है मेरी क्लास में ना एक ऐसी टीचर है जो कभी हंसते ही नहीं है। मैंने कभी उनको हंसते हुए नहीं देखा।
2: क्यों, वो हंसते क्यों नहीं है? ऐसा क्या है उनके अंदर?
1: पता नहीं, मैं तो जब टीचर्स के साथ देखती हूँ तब भी हंसते नहीं है, बच्चों के साथ देखती हूँ तब भी हंसते नहीं है, मजाक की बात होती है तब भी हंसते नहीं है।
2: ओहो, इसका मतलब वो चिड़चिड़ी रहती होंगी।
1: हाँ, पूरे टाइम चिड़चिड़ी रहती है, डांट डांट के क्लास में पढ़ाती है।
3: अच्छा, यहाँ क्या बातें हो रही है भाई? हंसने की मुस्कुराने की बातें हो रही है आज तो?
2: नहीं, टीचर्स के बारे में बातें हो रही है।
3: टीचर्स के बारे में बात कर रहे हो?
2: हाँ।
3: ओके, टीचर्स से तो हमें वैसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। टीचर्स के बिना तो हमारी शिक्षा संभव ही नहीं है। तो टीचर्स के एक बारे में क्या बोलने वाले हो, चलो ये तो मैं भी सुनना चाहती हूँ। तो बच्चों की दुनिया में आज टीचर्स के बारे में भी बात करें?
4: हाँ।
3: ठीक है, तो चलो, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ बच्चों की दुनिया देखने के लिए कौन कौन है यहाँ पे?
2: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
5: मेरा नाम पलक है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ।
6: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
3: ओके, तो टीचर्स के बारे में क्या बातें हो रही थी? आप लोगों के तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स होंगे। तो टीचर्स तो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का स्टाइल सबका अलग अलग होता है ना?
2: हाँ।
3: तो क्या अच्छा लगता है आपको अपने टीचर्स के बारे में सबसे ज्यादा? पहले तो यहीं से शुरू करते हैं।
5: दीदी, मैं बताऊं?
3: बताओ।
5: क्योंकि मेरी टीचर्स अपनी बेटियों की तरह लगती है मुझे। मुझे ये बात अच्छी लगती है।
3: अच्छा, बहुत प्यार करते हैं आपको?
5: हाँ।
3: ओके,
5: पर दीदी पूरी क्लास मेरे से जलती है, किसी को ही प्यार करती है मैम।
3: अच्छा, आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? क्यों ऐसा?
5: क्योंकि मैम मैं हर काम करती।

0: हूँ, हमेशा मैं प्रेजेंट रहती हूँ मैम के काम के लिए.
1: और क्लास में भी आप हमेशा प्रेजेंट रहते हो?
0: हाँ.
1: ये तो अच्छी बात है. और राघव?
2: दीदी मेरे को कभी डांट ही नहीं पड़ती मैम से,
1: कभी भी नहीं? ओह, क्या करते हो आप ऐसा कि इतने डांट नहीं पड़ती कभी? कैसे रहते हो क्लास में?
2: मैं तो ऐसे नॉर्मल बच्चे की तरह रहता हूँ.
1: ओके, नॉर्मल रहना भी अच्छा है. नॉर्मल रहने से डांट नहीं पड़ती है, ये तो समझ में आ गया हमको आज, है ना? और शिवांशी और शिक्षा?
3: मेरे क्लास में तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि मेरे क्लास में शरारती बच्चे हैं. वो बहुत बहुत शरारत करते हैं. टीचर बोर्ड पर लिखा रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं वो, तो पीछे से अपनी बातें करने लगते हैं. फिर सर को है ना सबकी एक एक की कॉपी देखना पड़ता है कि इसने लिखा है या बातें ही की हैं, बस
1: चेक करना पड़ता है ना.
3: हाँ.
1: फिर तो टीचर्स डांटेंगे ही, है ना?
4: दीदी मेरे को टीचर्स तो सारी अच्छी लगती है, बस जो हाँ फ्री पीरियड है और कोई ऐसा टीचर आ गया जो खेल लगते, वो तो जिंदगी भर के लिए वो हमारे लिए टीचर नहीं भगवान बन जाते कि फ्री पीरियड में हमें नहीं पढ़ा है. और कई टीचर ऐसी होती हैं उनके पीरियड में भी वो इतना डांट डांट पढ़ाते हैं, जैसे हमने कोई मैम को कुछ कह दिया है इतना डांटते रहते हैं हमको, कुछ करें भी ना तो भी बिना बात के. उस टाइम वो लगता है कि क्या टीचर क्या कर रही है, उस टाइम बुरा लगता है. टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए था,
1: मतलब कोई गलती नहीं है उसके बिना भी डांट पड़ती है तो.
4: हाँ जी.
1: हाँ राघव.
2: दीदी कई टीचर्स ना ऐसे होते हैं, मतलब उनका सब्स्टिट्यूशन लगा होता है तो भी वो पढ़ाने लग जाते हैं, मतलब उनको और सब्जेक्ट का पढ़ाने के लिए देते हैं तो भी वो अपने सब्जेक्ट का ही पढ़ाते हैं.
1: उनको लगता होगा ना कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ आपका.
2: हाँ.
1: है ना, तो पढ़ाते होंगे.
2: नहीं पर सब्स्टिट्यूशन किसी और का लगता है तो उनका सब्जेक्ट पढ़ाना होता है पर वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं.
4: दीदी जिस दिन कोई टीचर पीटी पीरियड ले रहे हैं ना, उस दिन तो टीचर से बहुत दूर हो जाते हैं.
1: वो बड़ा पीटी
4: पीरियड, पीटी पीरियड ले लिया हमारा, क्यों लिया, एक ही तो आते उसको भी ले लिया. उस टाइम बहुत वो लगता है कि हाँ नहीं लेना चाहिए था इनको.
1: उस टाइम तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि पीटी पीरियड में तो बाहर जाने को मिलता है.
4: हाँ जी.
1: और उसमें भी क्लासरूम में बैठा दिया जाए
4: तो ये बुरा लगता है कि नहीं होना चाहिए था ऐसा.
2: दीदी अगर कोई टीचर हमको एक दिन पीटी लेके जाए और अगले दिन पीटी पीरियड काट ले तो ऐसा लगता है वो सीधा हेवन से नर्क में आ गए हैं.
1: अरे बाप रे. ओके. हाँ शिक्षा.
3: मेरे क्लास में तो है ना सर एक मिनट भी नहीं छोड़ते. अगर है ना क्लास खत्म होने में 2 मिनट भी बचे हो ना तो अरे हाँ ये क्वेश्चन हो जाएगा इतनी देर में, जल्दी जल्दी करो. मतलब उनके क्लास का पीरियड का एक टाइम बचा है तो नहीं छोड़ेंगे. और अगर लंच में से 2 टाइम एक्स्ट्रा ले ले तो उनको चलेगा कि हाँ बच्चों को है ना वो एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं पर कम नहीं पढ़ाते.
1: कम नहीं पढ़ाएंगे.
4: हाँ. यदि कई कई टीचर्स तो ना उनका पीरियड खत्म भी हो जाए तो भी नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे. बच्चे कॉपीज चाहे बैग में रख गए पर वो फिर भी लिखते रहेंगे, लिखो बच्चों लिखो लिखो,
1: जब तक दूसरे टीचर नहीं आ जाते.
4: टीचर बाहर खड़ी होती है फिर भी वो लिखो लिखो आराम से लिखो तुम.
1: अच्छा ओके. उनको इतना पढ़ाने का शौक होता है ना कि इनको मैं पढ़ा दूं सब कुछ.
0: दीदी हमारे स्कूल में भी ऐसा ही होता है. अगर हमारी क्लास में अगर मान लो हमारा गेम्स पीरियड है उसको काट के कोई मैम आ जाती है ना कि मैं पढ़ाऊंगी, गुस्सा बहुत आता है. और हमारी मैम की जगह दूसरी मैम आ जाती है ना क्लास की जो एकदम ऐसे ही गुस्से में देखती है सब बच्चों को, फालतू में चिल्लाती है. दीदी चुप बैठते हैं, बोलते लिखो, लिखते बोलते ऐसे किसने लिखा है, ये क्यों लिखा है, वैसे क्यों लिखा है, खूब डांट पड़ती है हमें. मैम को बोले तो बोलती है अब मेरी कोई गलती नहीं, सड़ने लगा इनका पीरियड.
1: उनको मिली है क्लास तो वो भी क्या करेंगे, तो पढ़ाएंगे.
0: पर दीदी कोई और टीचर आती है सेकंड थर्ड क्लास की.
1: अच्छा कोई और ही टीचर आ जाते हैं.
0: हाँ.
1: तो बुरा लगता है ना.
0: बुरा लगता है.
1: गेम्स पीरियड में ऐसा होता है तो बड़ा बुरा लगता है
0: बहुत ज्यादा.
1: ओके.
4: दिल तक बात पहुंच जाती
0: है वही.
1: दिल तक बुरा लगता है. खेलने को तो एक ही पीरियड मिलता है ना.
0: हाँ वो भी दीदी एंड का मिलता है, सबसे लास्ट पीरियड जब आधे बच्चे जाने के लिए होते हैं तब आके बोलती है बच्चे पढ़ो बच्चे पढ़ो बच्चे पढ़ो. लास्ट पीरियड में तो रहने दो, नहीं बच्चे पढ़ो बच्चे लिखो भर भर के होमवर्क दे देते हैं.
2: दीदी क्लास में कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि ना मतलब अगर पीटी पीरियड नहीं कट रहा होता ना तो वो कटवा देते हैं, बोलते हैं उसका काम कंप्लीट होगा ना तो वो इरेज कर देगा अपना काम. फिर बोलेगा मैम मेरा काम कंप्लीट नहीं है, तो उसकी वजह से हमारा भी पीटी पीरियड कट जाता है.
1: ओ, कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं
4: दीदी उस टाइम तो ना उस बच्चे पे जितना गुस्सा आ रहा होता है ना ऐसा लगता है कि अभी एक मार के आए उसको उनको तो जाना नहीं हमें तो जाना ना तुम बैठ जाना और कभी कटवा देते पीटी।
1: तो टीचर्स के बारे में बात आप लोग कर रहे हो टीचर्स के साथ पूरे साल जब एक क्लास बिता देते हैं हम तो बाद में नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो उनकी याद आती है फिर
3: आती है
4: सिर्फ क्लास टीचर की याद आती है
1: क्लास टीचर की तो आती होगी
0: दीदी सोचोगी नहीं हमारी क्लास में अभी भी एक मैम की याद आती है जो फोर्थ थर्ड में थी हमारी वो अनीता मैम क्योंकि दीदी वो इतने प्यार से रखती थी ना बच्चों को होमवर्क कम्प्लीट नहीं होगा बोलती बच्चों कर लो इस बार तुम्हारा पीरियड नहीं ले रही जो उनका पीरियड होगा उसको खिलाने लेके जाती है हमें उसके मतलब बाहर घुमाने लेके जाती है वो बच्चों को कभी डांटती नहीं बड़े प्यार से रखती है वो टीचर से हमें याद भी आ जाती है
1: बच्चे शैतानी करते तो भी नहीं डांटती
0: नहीं वो बोलती बस चुप रहो तुम बस आज तक उन्होंने कभी मारा नहीं बड़े प्यार से रखती है वो हर एक चीज को मानती है पर अभी वो चली गई 2 साल हो गए उनको गए हुए
1: तब भी याद आती है ना ऐसे टीचर्स की तो बड़ी याद आती
0: सब बोलते हैं अनीता मैम चली गई अनीता मैम सोचोगे नहीं वो जब वो अपना वो था ना टीचर्स डे उस दिन भी उनको सबसे ज्यादा गिफ्ट लेते हैं मैम बोलते हैं ना इंसाफी करते तुम हमारे साथ उन्हीं को ही देते जाके सारे गिफ्ट
1: तो टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो याद आती है जिनकी क्यों याद आती है उनकी
3: क्योंकि वो टीचर है ना बहुत अच्छे होते हैं वो टीचर है ना हमसे कोई गलती होती है तो बताते हैं मतलब हमने होमवर्क गलत किया है तो वो डांटते हैं पर है ना डांटने के साथ साथ वो अच्छे से बताते हैं कि तुमने इस गलती को ऐसे किया था इसको ऐसे करना है वो सिखाते हैं और वो जितना डांटते हैं ना उससे ज़्यादा तो वो है ना प्यार कर देते हैं हम लोगों को हमारे मैम मतलब क्लास टीचर की इतना याद आती है ना वो मैम का बहुत अच्छे टीचर होते हैं क्लास में पर अभी तो जैसे जैसे सीनियर क्लास में आते जा रहे हैं उतने टीचर डांटने वाले मिलते जा रहे हैं
1: हाँ क्योंकि पढ़ाई भी आपकी टफ होती जा रही है ना
3: हाँ
1: तो अभी स्ट्रिक्ट होते जा रहे होंगे टीचर्स हाँ राघव
2: दीदी हमारी क्लास इंचार्ज से मतलब फोर्थ और फिफ्थ के जब फोर्थ में उन्होंने हमको बोला मतलब फिफ्थ में तो वो थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला तो हम जब सीनियर में जाने लगे ना सिक्स में तो हमारे फिफ्थ के क्लास इंचार्ज ने बोला तुमको मेरी सिक्स में जाने के बाद याद आएगी अभी तो कोई मेरे को देखता नहीं है ना तो उनकी अब याद आती है
1: सच में आती है ना ऐसा होता है शिवांशी आप क्या बोल रहे थे
4: दीदी हमारी जो मतलब नाइन्थ की जो क्लास इंचार्ज थी ना मतलब हमें चाहे डांटते थे पर उनकी डांट में भी उतना ही प्यार होता था जितना वो डांटते थे और डांट में भी प्यार करते थे हमारे भले के लिए करते थे वो पहले हमें लगता था कि हाँ हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं हमारे हमें ऐसे कर
1: डांट रहे हैं
4: पर जब हम टेंथ में हमें फिर पता लगा वो डांट में भी उनका प्यार था हमारे लिए अच्छा ही कर रहे थे वो
1: बाद में कभी कभी पता चलता है ना उस समय तो बुरा लगता है कि डांट क्यों रहे हैं मगर हम मस्ती भी तो कर रहे होते हैं डांटते नहीं तो हम पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट तो करते नहीं है
4: हाँ जी
1: है ना सब मिलकर क्यों राघव
2: हाँ जी
1: तो मतलब पुराने टीचर्स की याद तो आती है अच्छा जो नए टीचर्स हैं उनकी क्यों सबका तो स्टाइल अलग अलग होता है पढ़ाने का सबसे अच्छा स्टाइल क्या लगता है आप लोगों को पढ़ाया किस तरह से जाए जो ज़्यादा समझ में आता है आप लोगों को ऐसा कौन सा तरीका होता है
3: मेरे जो मैथ्स के टीचर हैं मैथ समझ नहीं आता ज्यादा ज्यादा बच्चों को तो उन्होंने ना कोई क्वेश्चन सॉल्व किया उसका सॉल्यूशन पूरा बोर्ड पर लिख दिया उन्होंने पूरा हो गया उसके बाद पूछते हैं किसको आया बताते नहीं है कई बच्चे तो वो है ना खुद से बोलते हैं कि उनको देखते हैं कि कौन है जिसको लग रहा होता है नहीं आया वो खड़ा करते हैं फिर उससे पूछते हैं अगर वो बता देता है तो ठीक ऐसे हर एक बच्चे को वो जो वो करवाते हैं सॉल्व साथ में बोलते हैं तुम अपना अपना भी करो सेकंड क्वेश्चन हमने किया तो है ना फोर्थ सर ने बता दिया हमको ऐसे एक एक करवाते हैं तो हमारा मैथ्स बहुत अच्छा हो गया है तो मुझे तो लगता है ऐसे ही पढ़ाना चाहिए
1: सबको पूछ पूछ के ना किसको समझ में नहीं आया उसको बाद में फिर से भी समझा देते
3: हैं क्योंकि कुछ बच्चे बताते नहीं है शांत रहते हैं कि हमें अगर नहीं आया बच्चे क्या सोचेंगे कहना इसको इतना सा क्वेश्चन समझ नहीं आया डर जाएंगे इसीलिए नहीं बताते कुछ
1: शेयर नहीं करते ना हाथ भी नहीं उठाते डर लगता है ना मेरे बारे में क्या सोचेंगे लेकिन क्वेश्चन पूछना जरूरी है क्योंकि हमको सीखना है और ऐसे टीचर्स मिल जाए तो क्या बात है बहुत अच्छे सर हैं आपके तो हाँ शिवांशी
4: दीदी मुझे ऐसा लगता है कि टीचर्स को ना ऐसे हंसाते हंसाते पढ़ाना चाहिए उससे पढ़ने में भी मजा आएगा और मतलब हंसी मजाक हो जाएगा
1: कैसे हंसाते हैं टीचर
4: मतलब कि कई बार मतलब हमारी क्लास में एक टीचर है फिजिक्स के वो जब भी अभी आते हैं ना तो उन्होंने बच्चों के नाम रख रखे फिजिक्स के नाम पे.
1: अच्छा,
4: तो अब जैसे कोई किसी का नाम जर्क है, किसी का नाम इलेक्ट्रिक करंट है, तो जर्क

0: जिनको नहीं आता उनको दोबारा समझाना चाहिए, ये अच्छा तरीका है। और पलक को क्या लगता है?
1: दीदी हमारे स्कूल में एक टीचर है जो हम पता है कैसे पढ़ाती है, हमारी EVS की है वो, अच्छे से उसको हमें समझाती है ना, क्या बोलती है बच्चों तुम्हें समझ नहीं आया तो बताओ, मैं कोई बच्चा जल्दी से बताता नहीं तो मैं उसे जानबूझ के द्वारा समझाती है तो बच्चों को समझ आता है। और उसमें पता है जो मतलब बताती है ना तो उसमें समझाते हैं कि इसका ऐसे ऐसे, तो उसमें पता है कभी कभी वो हंसा देते हैं उन बच्चों को।
0: अच्छा, तो समझाते समझाते हंसा
1: देते। हाँ
0: ओके। अच्छा कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है इस तरह से ना पढ़ाई जाए तो हमें अच्छा है?
1: दीदी मैं बताऊँ, मैथ के सर वो पता है इतने से क्वेश्चन को इतना बड़ा करवा के लिखवाते हैं।
0: अच्छा स्टेप्स होते हैं ना मैथ्स में, तो
2: अगर स्टेप वाइज नहीं करेंगे तो याद भी कैसे होगा? अगर हर स्टेप आएगा तो ही तो मैथ्स समझ जाएगा, नहीं तो मैथ्स तो सारा सर के ऊपर से जाएगा फिर।
1: वो तो जाता है पूरी क्लास के ऊपर जाता है।
0: कभी कभी कोई सब्जेक्ट हमें टफ लगता है तो फिर हमें लगता है टीचर भी टफ है।
1: ये छोटा सा माइनस है उसमें से 10 लाइन लिखनी पड़ती है।
0: करना तो पड़ता है क्योंकि आपको किसी को सॉल्व करना है अगर मैथ्स की इक्वेशन को, तो आपको पता है स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं, हर स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। है तो कभी कभी तो सब्जेक्ट हमको अच्छा नहीं लगता तो हमें लगता है हमको टीचर भी अच्छे नहीं लगते, बट ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट की वजह से हमें कभी कभी ऐसा लग रहा होता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट टफ लगता है वो। हाँ शिक्षा,
3: मेरे स्कूल में एक टीचर है जो कि अब नहीं रहे, मतलब चले गए दूसरे स्कूल में चले गए। वो टीचर है ना हम लोग को बोलते थे कि तुम लोग हाँ के जगह ना बोलना सीखो।
0: अच्छा
3: क्या? क्योंकि कुछ भी है ना पढ़ाया सर ने, समझ आ गया हाँ, सर बोलते हैं ना बोलो क्योंकि सब लोग हाँ बोलते हैं और उनमें एक आध ऐसा बच्चा छुपा होता है जिसको नहीं आया होता है। सर बोलते हैं एक बार समझ आ गया तो भी ना बोलो, दो बार समझो, उससे आपको परफेक्ट आपको माइंड में याद रहता है। तो वो है ना हाँ बोलने की जगह बोलते हैं ना बोलो, दो बार तो समझाएंगे ही ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बच्चे सर दोबारा रिपीट कर रहे हो आप, पर फिर भी कमी निकाल देते हैं। जैसे कि जिसको नहीं पढ़ना एक बार में हो गया उसका, सर दूसरी बार जब पढ़ा रहे होते हैं तब उससे क्वेश्चन करते हैं, तब वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि है ना दूसरी बार में उसको पढ़ना नहीं है, वो बातों के वजह से नहीं पढ़ते, उनको अपना अलग बातें करना होता है
0: इस वजह से।
3: हाँ इस वजह से नहीं पढ़ते, तो वो सर है ना इसीलिए कुछ बच्चों को जो पढ़ने का मन नहीं होता तो हंसा हंसा के पढ़ाते हैं। जैसे कि किसी है ना टूथपेस्ट में कौन कौन से केमिकल्स वगैरह मतलब क्या मिला होता है, तो उसमें वो हंसा हंसा के पढ़ाते कि तुम्हारे दांतों पे चिपक गया है केमिकल, तो सब बच्चों को उनसे पढ़ने में ना अच्छा लगता है,
0: मजा आता है फिर। बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच है ये तो, है ना, सबको हंसा भी देते हैं और प्रैक्टिकल चीजें भी समझा देते हैं और दोबारा दोबारा समझाते हैं, एंकरेज करते हैं कि आप सवाल पूछो। बहुत अच्छी बात है ये तो मतलब आप लोगों को फिर दोबारा भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा ना, छप जाएगा फिर माइंड। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, सब्जेक्ट के अलावा कभी किसी टीचर ने आपके कोई ऐसी बात कही है जो आपको हमेशा याद रहती है जो पढ़ाई से संबंधित ना हो? कोई बात ऐसी बोली है कभी किसी टीचर ने, याद करो, मतलब आपके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में या लाइफ के बारे में, एनीथिंग?
4: दीदी एक टीचर थे जो बोलते थे एग्जाम में ना मतलब एग्जाम हो रहे हैं तो थोड़ा खेलना भी चाहिए, उससे माइंड फ्रेश रहता है।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना, फ्रेश रहना तो जरूरी है माइंड का, वेरी गुड। हाँ
1: दीदी वो हमारी मैम बोलती है लाइफ में पढ़ाई जरूरी है, तुम आगे बढ़ोगे इससे।
0: हाँ करेक्ट है, पढ़ाई के बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते ना, पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ शिवांशी।
2: दीदी हमारे टीचर ऐसा कहते हैं कि जब भी ऐसे तुम्हें लगे कि तुम बहुत चिंता में हो, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो, तो कोई टेंशन मत लेना, बस किसी पेड़ की छांव में जाके बैठ जाना, तुम्हें उसका आराम से सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उस बात को मैंने एक बार करके भी देखा था तो मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, माइंड फ्रेश हो गया।
0: प्रकृति बहुत मदद करती है सच में प्रॉब्लम सॉल्व करने में, हमारी रिलैक्स करने में।
2: बात को मैंने अपने दिमाग में तब से बैठा के रखा है,
0: कोई प्रॉब्लम हो तो पेड़ की छांव के नीचे जाके बैठ जाओ।
2: हाँ जी
0: कितनी अच्छी बात है, और आपने शेयर किया तो मुझे लगता है आज और लोग के भी हेल्प करेगी ये बात, है ना। हाँ राघव।
4: दीदी हमारी एक मैम ने बोला था कि ना मैंने रिवीजन करवा दिया, अब घर जाके खेलना बस, ठीक है आराम से, बस एक बार सुबह उठ के रिवीजन कर लेना तो एग्जाम अच्छी तरह जाएगा, पूरा दिन खेलना, पर हम ऐसे कभी ट्राई नहीं करते।
0: खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, मैम चाहते होंगे आप लोग टेंशन ना लो, है ना।
3: हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप लोग जब खेलते हो ना तो खेलते में भी है ना पढ़ाई को याद किया करो।

0: अच्छा
1: हाँ, जैसे कि मैथ्स में ना ये चीज दिख रही है, अच्छा है कैसी है, स्क्वायर है, इसका कितना एंगल है। तो हम लोग खेलते हैं ना कभी कभी, तो खेलते में सर की है ना पढ़ाई हुई चीज याद आ जाती है।
0: ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि पढ़ाई केवल बुक्स में थोड़ी होती है, किताबों में और कॉपियों में थोड़ी होती है, पढ़ाई तो जिंदगी में होती है। तो बाहर आप कुछ देख रहे हो तो कौन सी शेप है, क्या होगा, ना ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आइडिया है, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, जाते जाते क्योंकि हमारा टाइम तो अप हो चुका है, आप अपने टीचर्स को कोई मैसेज देना चाहोगे? आज रेडियो पे बात कर रहे हो, आप कुछ कहना चाहोगे टीचर्स को अपने?
2: टीचर चाहे जैसे भी हो, हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, तो थैंक यू।
1: टीचर्स तो यही कहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग, वो हमेशा यही करते हैं हमारे साथ, अपनी बात शेयर करते हैं, फिर हमसे कहते हैं तुम भी करो, मन हल्का होगा। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं।
3: अगर कोई बच्चा खाना नहीं लाया होता तो हमारे टीचर्स उनको खाना भी दे देते हैं, लो तुम थोड़ा सा खा लो।
0: हाउ स्वीट, वेरी नाइस।
4: दीदी, अगर मान लो किसी बच्चा, मतलब कोई बच्चा हमारा मतलब गुस्सा है या फिर वो अपसेट है, तो उसको मैम बनाती है प्यार से, जैसे मम्मी कैसे बनाती है वैसे उसको बनाती है, क्या हुआ, क्या है, क्या दिक्कत है, इसने मारा, उसने मारा, अगर मैम ने डांटा तो मैम को जाके बोलती है, तो वही बात मुझे अच्छी लगती है मैम।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
2: दीदी, आप भी बताओ ना आपके टीचर्स के बारे में।
0: हमारे टीचर्स के बारे में, हमारे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स थे जो बहुत सपोर्ट करते थे, एंकरेज करते थे, और बहुत क्लियर उन्होंने हमें कुछ बातें बताई थी कि अगर उन्होंने हमें कहा था कि आप लोग तो, एक हमारे टीचर थे वो हमें कहते थे कि आप लोग तो बहुत कहते हो कि आप लोग इतने कूल हो, आप लोग बहुत कूल हो, लेकिन थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो वो कूलनेस कहाँ चली जाती है, तो कूल थोड़ा बन के भी दिखाओ। और वो हमें फोटोग्राफी पढ़ाते थे तो हमें कहते थे कि टू ब्रेक द रूल्स फर्स्ट यू हैव टू लर्न द रूल्स, तभी आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, पहले जब आप रूल्स को ठीक से समझो, पढ़ाई अच्छे से करो, तब आप उसमें कुछ क्रिएटिव अपना ऐड कर सकते हो, बिना समझे नहीं। तो बहुत अच्छी अच्छी सीख दी उन्होंने भी, जिसके लिए हम लाइफ लॉन्ग उनको थैंकफुल हैं, क्योंकि वो चीज़ें हमें हमेशा ज़िंदगी में काम आती हैं। तो सभी टीचर्स को करते हैं हम सलाम, क्योंकि टीचर्स प्ले करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट रोल। आज कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, बिना टीचर के तो संभव ही नहीं है। तो सभी टीचर्स को थैंक यू करते हैं और अपने दोस्तों को करते हैं बाय बाय।
5: बाय बाय।
3: सुनते रहिए,
2: मुस्कुराते रहिए,
4: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: यार मोहित, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दिव्यांग व्यक्तियों का जीवन कितना नीरस है, उनके लिए दुनिया कितनी अलग है।
1: बात तो सही कह रहे हो तुम, ऐसे जीवन का भी क्या फायदा। खैर छोड़ो, चलो बाजार चलते हैं, मुझे कुर्ता पैजामा दर्जी को सिलाई के लिए देना है।
0: चलो चलते हैं।
1: बहन जी, मुझे यह कुर्ता पैजामा सिलवाना है और 5 दिन में मुझे यह चाहिए।
2: ठीक है, आप अपना नाप दीजिए, हमारे दर्जी सिलाई कर देंगे और आप 5 दिनों के बाद आकर इसे ले सकते हैं।
1: धन्यवाद। सौरभ, तुमने एक बात पर ध्यान दिया कि दर्जी ने हमारी तरफ एक बार भी नहीं देखा, वह बस अपना काम कर रहा था। मुझे लगता है वह सुन नहीं सकता था।
3: हाँ, मुझे बताया था उस दर्जी वाली बहन जी ने कि दर्जी सुन नहीं सकते हैं, परंतु मैं सोच रहा हूँ कि मैं कितना गलत था।
1: हाँ, जो शारीरिक विकलांग होते हैं वह भी तो हमारी तरह सामान्य जीवन जी सकते हैं।
4: रेडियो मधुबन की मुहिम का हिस्सा बने, पुरानी मानसिकता को बदलें और समझने का प्रयास करें। शारीरिक रचना का हमारी बुद्धिमत्ता से कोई ताल्लुक नहीं। मन स्वस्थ तो जीवन स्वस्थ।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।
6: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पिछली कड़ी में आपने जाना कि स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक वेदांत ज्ञानी, इतिहासकार एवं धर्मात्मा ही नहीं थे, पत्रकारिता में भी उनकी समान रुचि थी। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए वे सदा उन्मुख रहते थे। संपादकीय लेख हो या कविता या गीत लिखने का कार्य हो, वे समान दक्षता के साथ करते थे। पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए धन जुटाते थे। इसके लिए वे अपने शिष्य शिष्याओं के सामने हाथ फैलाने में भी संकोच न करते थे।
1: विदेश प्रवास के दौरान उन्हीं के भेजे हुए धन से कई पत्रिकाएं प्रकाशित हुईं। उनकी ही प्रेरणा से प्रकाशित उद्बोधन पत्रिका आज भी प्रकाशित हो रही है। उद्बोधन के बारे में वे बेहद उत्साहित थे। पहले अंक का संपादकीय लेख उन्होंने ही लिखा था। इस पत्रिका से वे भावनात्मक रूप से जुड़े थे। इसके बारे में शिष्यों से चर्चाएं करते हुए उन्होंने कहा था,
2: उद्बोधन के द्वारा आम जनता के सामने भावात्मा का आदर्श रखने होंगे। नहीं नहीं कि भावना मनुष्य को दुर्बल बना डालती है। तुम्हारे इतिहास, पुराण आदि सभी शास्त्र मनुष्य को केवल डराने का ही कार्य करते हैं। मनुष्य से केवल कह रहे हैं, तू नरक में जाएगा, तेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं है। इसलिए भारत की नस नस में इतनी अवसन्नता आ गई है। अतः वेद वेदांत के उच्च भावों को सरल भाषा में लोगों को समझा देना होगा। सदाचार, सदव्यवहार और शिक्षा का प्रचार कर ब्राह्मण और सर्वहारा वर्ग को एक ही भूमि पर खड़ा करना होगा। उद्बोधन में इन्हीं विषयों पर लिखकर बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आदि सभी को उठा दे, तभी जानूंगा तेरा वेद वेदांत पढ़ना सफल हुआ या नहीं।
0: उद्बोधन के लिए स्वामी जी ने जो प्रस्तावना लिखी थी, उसमें भी इन्हीं भावात्मक तथा बलप्रद विचारों के प्रचार पर जोर दिया गया था। भारतवर्ष में वे चाहते थे रजोगुण तथा सत्वगुण का मिश्रण, प्राच्य और पाश्चात्य दोनों संस्कृतियों का मिलन तथा निर्भीक रूप से सत्य मिथ्या का विचार। इन्हीं सब विषयों की मीमांसा को उद्बोधन का उद्देश्य बताते हुए उस अमर रचना में स्वामी जी ने अत्यंत तेजस्वी भाषा में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया था तथा इस कार्य हेतु सहृदय, प्रेमी, विद्वत समाज का आह्वान करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया था कि
2: उद्बोधन द्वेष बुद्धि छोड़ व्यक्तिगत, सामाजिक अथवा सांप्रदायिक कुवाक्य प्रयोग से विमुख होकर सब संप्रदायों की सेवा के लिए ही अपना शरीर अर्पण करता है।
1: उपर्युक्त प्रस्तावना स्वामी जी ने संभवतः 1897 में लिखी थी, पर उद्बोधन का प्रथम अंक प्रकाशित होते और भी एक वर्ष अधिक लग गया था। पत्रिका प्रकाशन में ढील होते देख स्वामी जी ने स्वामी ब्रह्मानंद जी को 11 अक्टूबर 1897 को लिखा था,
2: शारदा बेचारे को मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई है, क्या करूं? मैं डांटता हूं, पर मुझे भी तो बहुत कुछ कहना है। मैंने खड़े होकर हांफते हुए उसके लिए लेख लिखा है।
0: यह लेख ही संभवतः उद्बोधन की प्रस्तावना के रूप में छपा था। जनवरी 1899 में पत्रिका प्रारंभ होने के बाद भी स्वामी जी का पत्रिका के लिए ये कठोर परिश्रम चलता रहा। उसके लिए आवश्यक सुझाव आदि भी वे देते रहे और साथ में डांट फटकारों की बौछार भी। स्वामी जी के कठोर शासन से उनके गुरु भाई भी बचे नहीं थे। 10 अगस्त 1899 को उन्होंने लंदन से स्वामी ब्रह्मानंद जी को लिखा था,
2: शारदा ने लिखा है कि पत्रिका नहीं चल रही है, मेरे भ्रमण वृत्तांत को पर्याप्त विज्ञापन देकर छापे तो सही, देखते ही देखते ग्राहक बढ़ जाएंगे। पत्रिका के 3/4 हिस्से में केवल सिद्धांत की बातें छापने से क्या वो लोकप्रिय हो सकती है? अपितु पत्रिका पर सतर्क दृष्टि रखना, समझ लेना कि मैं चल बसा हूं। पत्रिका के लिए धन भी मैं एकत्रित करूंगा, लेख भी मेरे ही होंगे, तो फिर तुम क्या करोगे? न तो कोई एक पैसा ला सकता है, न ही प्रचार प्रसार कर सकता है। किसी कार्य को संचालन करने की बुद्धि किसी में भी नहीं है, एक लाइन लिखने की शक्ति किसी में नहीं है। वैसे ही सब महापुरुष हैं।
3: आज स्मरण हो आती है उद्बोधन के सर्वप्रथम संपादक तथा प्रतिष्ठाता पूज्यपाद त्रिगुणातीतानंद जी की बात। देखा है ग्रीष्म वर्षा में कितने दिनों तक कभी भूखे कभी अधभूखे रहकर उन्हें प्रेस तथा पत्रिका का कार्य देखना पड़ रहा है। कंपोजिटर नहीं आया है, उन्हें स्वयं दूसरे व्यक्ति की खोज करनी पड़ रही है। दूसरे दिन प्रेसमैन बीमार है तो कहां से नया प्रेसमैन मिलेगा, इसकी खोज में विभिन्न स्थानों में घूम रहे हैं। कभी प्रेस की साधन सामग्री जुटाने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं और कभी प्रेस के लोगों को कार्य में सहायता दे रहे हैं। इसके अलावा उनको स्वयं तो लेख लिखने ही पड़ते, साथ ही लेखों के संग्रह भी करने पड़ते थे। ठीक समय पर पत्रिका प्रकाशित नहीं होने पर वे स्वामी जी की फटकार भी सुनते। इसके सिवा प्रेस का कोई व्यक्ति बीमार होने पर उसकी चिकित्सा तथा पथ्य की व्यवस्था भी उन्हीं को करनी पड़ती थी। विभिन्न प्रकार से इतना कठोर परिश्रम करने पर भी उनके मुख पर सदा मुस्कान बनी रहती थी, थकावट का कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता था। अधिकतर कंपोजिटर तथा प्रेसमैन गलियों में निवास करते थे। वे निसंकोच उन गलियों में जाकर उन लोगों की खोज करते थे, तो भी पत्रिका में किसी प्रकार की भूल रह जाने पर या प्रूफ देखने में कोई त्रुटि रहने से अथवा गलत शब्द या भाव का प्रयोग होने पर स्वामी जी से त्रिगुणातीतानंद जी को विशेष रूप से डांट सुननी पड़ती थी।
0: उनके संस्मरणों से हमें पता चलता है कितनी मुश्किलों का सामना कर उन दिनों पत्रिकाएं छापी जाती थी, ऊपर से स्वामी जी की डांट।
3: पूज्यपाद स्वामी विवेकानंद जी की इस ओर तीक्ष्ण दृष्टि थी। एक दिन उस प्रकार की घटना मैंने प्रत्यक्ष देखी थी। प्राध्यापक मैक्स मूलर तथा श्री रामकृष्ण के बारे में स्वामी जी का लेख उसी समय उद्बोधन में प्रकाशित हुआ था। श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि के अवसर पर त्रिगुणातीतानंद जी के बेलूर मठ जाकर स्वामी जी के सम्मुख उपस्थित होने पर उन्हें देखते ही उद्बोधन में छपे उनके लेख में रह गई भूलों का उल्लेख करके स्वामी जी ने उनकी बेहद भर्त्सना की। त्रिगुणातीतानंद जी ने कहा, किस प्रकार के अनपढ़ लोगों को लेकर कार्य करना पड़ता है यह तो तुम समझना नहीं चाहते। तब स्वामी जी ने कहा,
2: रहने दो ये सब बातें, तुम लोगों ने जब काम हाथों में लिया है तो उसमें त्रुटि क्यों रहेगी? उन लोगों को सिखाने का प्रयत्न किया है क्या? इस देश के लोग ही दोष छिपाने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। उस देश में भी कंपोजिटर तो विद्वान नहीं होते। जो लोग मैनेजर हैं, जिन्होंने कार्य की जिम्मेदारी ली है, वे ही बड़ी सावधानी के साथ उसे पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। जब तक त्रुटि रहित न हो तब तक उसे छोड़ते नहीं, और इस देश में तो छपने से ही हो गया। गलतियां रहती हैं तो रहें, एक शब्द भी इधर उधर होने से अर्थ पलट जाता है। कितनी सावधानी से प्रूफ देखना पड़ता है। तुम लोग यदि पत्रिका में भूल छापोगे तो लाभ क्या हुआ, बोलो तो?
3: बाहर से भर्त्सना करने पर भी स्वामी जी के अंतर में अपने गुरु भाई के प्रति अगाध विश्वास और असीम प्रेम था। स्वामी जी का स्वभाव ऐसा अद्भुत था कि सामने डांट फटकार और पीठ पीछे प्रशंसा का वर्णन। स्वामी जी ने एक बार अपने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती से कहा था,
2: देख, मेरे आदेश का पालन करने के लिए त्रिगुणातीत साधन भजन ध्यान धारणा तक छोड़कर कर्तव्य क्षेत्र में उतर पड़ा है। क्या यह कम त्याग की बात है? मेरे प्रति कितने प्रेम से कर्म किए प्रेरणा उसमें आई है। देख तो, पूरा काम होने पर ही वो उसे छोड़ेगा। क्या तुम लोगों में ऐसी दृढ़ता है? ये लोग काम करते करते मर जाएंगे फिर भी पीछे हटने वाले नहीं।
1: सचमुच ही अमेरिका में स्वामी जी का कार्य करते हुए स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी एक पागल शिष्य द्वारा फेंके गए बम से आहत होकर शहीद हो गए थे। अमेरिका में भी उन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम।
0: शिवजी के समान एक क्षण में रुद्र रूप तथा दूसरे ही क्षण आशुतोष रूप धारण करने वाले स्वामी जी का ये व्यक्तित्व शचीन्द्र बसु की स्मृति कथा में बड़ा सुंदर निखरा है। उद्बोधन के लिए स्वामी जी की प्रेरणा, दृढ़ इच्छा शक्ति तथा कठोर अनुशासन और दूसरी ओर स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी का कठोर परिश्रम, अविराम संग्राम, गुरु भाई के प्रति प्रेम तथा आज्ञाकारिता, सबका सजीव चित्रण भी इसमें मिलता है।
4: पिछले सोमवार 6 नवंबर 1898 को मैं स्वामी जी के साथ बेलूर मठ से बाग बाजार आया। बलराम बाबू के घर के हॉल में स्वामी जी बैठे, हम लोग, मैं तथा राखाल महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी भी बैठे। कुछ देर बाद शरदचंद चक्रवर्ती भी आए। इधर उधर की बातचीत हो रही थी कि इतने में ज्वर से आक्रांत शारदा महाराज हिलते डुलते कहां से उपस्थित हो गए। हम लोगों ने एक साथ त्रिगुणातीतानंद जी की अभ्यर्थना की, क्या बाबा जी, आओ आओ, क्या समाचार है, प्रेस का कार्य कहां तक पहुंचा, इधर बैठो बोलो।
5: अरे भाई, और तो नहीं होता, ये सब काम क्या हम लोगों का है भाई, सारे दिन तीर्थ के कौओं के समान बैठे रहना पड़ता है, ना तो कोई काम है और ना अन्य कुछ। एक छपाई का काम मिला है, किंतु उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 आने मिलेंगे। मैं प्रेस को बेचने का प्रयत्न कर रहा हूँ।
2: क्या कहता है रे, इसी बीच तेरा सब शौक मिट गया, और कुछ दिन देख फिर छोड़ना, इस तरफ प्रेस को ले आना कुम्हार टोली के पास, हम सभी देख पाते।
5: ना भाई, वहीं रहने दो, एक दो दिन और देखने दो, 15-20 रुपए का नुकसान करके बेच दूंगा।
2: ओरे राखाल, ये बोलता क्या है, लगता है उसकी बहुत परीक्षा हुई है, इतने में ही तेरा सब चूर हो गया, धैर्य नहीं रहा।
4: ये बात बोलते बोलते स्वामी जी के नेत्र प्रज्वलित हो उठे, वे खड़े हो गए और सिंह की भांति गरज कर बोले,
2: क्या कहता है रे, बेच दे प्रेस को, मुझे धन की बड़ी जरूरत है, इसी पल बेच डाल, 100-150 रुपए का नुकसान करके भी बेच दे, काम के नाम से ही इन सबको वैराग्य आ जाता है। हरे भाई, और तो नहीं होता, ये सब काम क्या हमारे हैं, केवल खा पी कर तोंद बढ़ाकर सोना चाहते हैं, जिन लोगों का किसी भी कार्य में धैर्य नहीं वे भी क्या मनुष्य हैं। तुझे प्रेस चालू किए अभी 3 दिन भी तो नहीं हुए, जा जा, तेरा बहुत प्रयोग हो चुका, तेरी तो बहुत बड़ी साध थी, किसने तुझे प्रेस चालू करने को कहा था, तूने ही तो मुझे लिख लिख कर पैसे मांगे, ले आना तेरा प्रेस यहां पर, वहां रखने का तेरा मतलब ही क्या है, और ये तुझे ज्वर होता रहता है, तू अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देता है।
5: 8 रुपए किराया देना होगा, 1 माह का एग्रीमेंट है।
2: छी छी, बोलता क्या है, ये सब लोग कोई काम कर सकते हैं, तू हरमोहन के ही समान है, तुम लोगों द्वारा कभी कोई व्यवसाय नहीं होगा, वो भी 1 पैसे के आलू खरीदने के लिए 50 दुकानों में घूमेगा और अंत में ठग कर मरेगा। प्रेस हमारे मठ में पहुंचा दे, हम लोगों को भी तो एक प्रेस चाहिए, देख मैंने कितने व्याख्यान दिए हैं, कितने लेख लिखे हैं, आधे भी अभी नहीं छपे, तू मुझको दिखा रहा है, राखाल याद कर वो कितने वर्षों पुरानी बात है, 12-13 वर्ष पहले वहीं गंगा के किनारे बैठकर हम लोग श्री रामकृष्ण की चिता भस्म लेकर रो रहे थे, मेरी बात नहीं सुनी, उनकी चिता भस्म काकुड़ गांछी के उद्यान वाटी में रखी गई, मेरा हृदय बहुत व्यथित हुआ था, राखाल याद कर मैंने क्या दृढ़ प्रतिज्ञा की थी, आज 12 वर्षों तक बुलडॉग की तरह उस विचार को लेकर सारे संसार का चक्कर लगाया है, एक दिन भी सोया नहीं, आज देख उसे सफल किया, उस विचार ने मुझे एक दिन भी नहीं छोड़ा, इस प्रकार के लोगों से क्या उन्नति हो सकती है।
5: भाई, तुम्हारा मस्तिष्क कैसा अद्भुत है, अपना मस्तिष्क मुझे दोगे।
4: इस बात से वातावरण हास्य से गूंज उठा। क्योंकि बोलने की तारीफ थी। बाद में त्रिगुणातीतानंद जी ने बताया कि ज्वर होने के बाद उन्होंने सुबह कुछ साबूदाना खाया है, पर दोपहर में एक सेर रबड़ी, आधा सेर कचौड़ी और उसके साथ उचित मात्रा में सब्जी भी खाई है। ये बात सुनकर स्वामी जी ठहाका मार के हंस पड़े और बोले,
2: तू अपना पेट मुझे दे तो भला, संसार का चेहरा एकदम पलट दूं। लाहौर में सूरजमल बोला था, स्वामी जी तुम में नानक का मस्तिष्क तथा गुरु गोविंद सिंह का हृदय आ चुका है, अब केवल जगमोहन के समान पेट की आवश्यकता है।
0: ऐसा ही अनोखा संबंध था स्वामी जी का अपने गुरु भाइयों के साथ, और ऐसा ही कठोर संघर्ष करना पड़ा था उन लोगों को उद्बोधन के प्रवर्तन के लिए। इसी प्राण पण प्रयत्न, तपस्या तथा संकल्प के फल स्वरूप इस पत्रिका ने आज 100 वर्षों के बाद भी अपना अस्तित्व बनाए रखा है। इसकी लोकप्रियता का प्रमाण ये है कि आज इसके 60,000 नियमित ग्राहक हैं।
1: हिंदी तथा बंगला के अलावा अन्य देशी भाषाओं में भी पत्रिका प्रकाशित करने की स्वामी जी की इच्छा थी। डॉक्टर नजुंदा राव को प्रबुद्ध भारत पत्रिका के लिए प्रोत्साहन देने के बाद उन्होंने 26 अगस्त 1896 को लिखे अपने उस पत्र में लिखा,
2: जब तुम इस पत्र के संचालन में सिद्धि लाभ कर लोगे, तब इसी प्रकार अन्य भारतीय भाषाओं तमिल, तेलुगु और कन्नड़ आदि में भी पत्रिकाएं शुरू करना।
0: स्वामी जी की इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए एक तमिल पत्रिका प्रकाशित करने की योजना बनाई गई थी। पत्रिका का नाम रखा गया था प्रबोध चंद्रिका। प्रबुद्ध भारत के संपादक श्री राजम अय्यर ही उनके संपादक होने वाले थे, पर उनके आकस्मिक निधन से पत्रिका प्रकाशित न हो सकी। खैर, स्वामी जी की इच्छा पूर्ण हुई अवश्य, किंतु उनके देहावसान के बाद सन 1921 में श्री राम कृष्ण मठ चेन्नई द्वारा श्री राम कृष्ण विजयम नाम से एक तमिल मासिक पत्रिका आरंभ की गई। आज तमिलनाडु की अत्यंत लोकप्रिय पत्रिकाओं में इसकी गणना है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या लगभग 90,000 है। ये किसी भी धार्मिक पत्रिका के लिए गर्व का विषय हो सकता है। श्री राम कृष्ण मठ चेन्नई से ही एक तेलुगु मासिक पत्रिका श्री राम कृष्ण प्रभा सन 1944 से प्रकाशित हो रही है। वर्तमान में इसके लगभग 7,000 वार्षिक ग्राहक हैं, जिसमें लगभग 500 आजीवन सदस्य शामिल हैं।
1: वैसे ही मठ के त्रिचूर केंद्र से 1914 ईस्वी से प्रबुद्ध केरलम नामक एक मलयालम मासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है। फिलहाल इसके लगभग 10,000 वार्षिक सदस्य हैं, जिनमें करीब 2,000 आजीवन हैं। रामकृष्ण मठ नागपुर द्वारा सन 1975 से मराठी में जीवन विकास नामक जीवित मासिक पत्रिका प्रकाशित हो रही है, जिसकी प्रसार संख्या 10,500 है।
0: इस प्रकार स्वामी जी के अपने जीवन काल में ब्रह्मवादिन, प्रबुद्ध भारत, उद्बोधन तथा कम से कम और भी 3 अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रवर्तन किया गया था, तथा अन्य कई पत्रिकाओं के प्रवर्तन में परोक्ष रूप से सहायता प्रदान की गई थी, जिनमें वसुमती, डॉन आदि शामिल हैं। स्वामी जी के देह त्याग के बाद भी कई पत्रिकाओं का प्रवर्तन उन्हीं की प्रेरणा से उनकी भावधारा को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हुआ है और हो रहा है।
1: स्वामी जी ने कहा था,
2: हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र की भांति त्याग दूं, किंतु अपना कार्य बंद नहीं करूंगा। मैं सर्वत्र लोगों को प्रेरणा देता रहूंगा, जब तक कि जान न लें कि वे ब्रह्म स्वरूप हैं।
1: आज भी स्वामी जी अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा सर्वत्र अपने उदार भावों के प्रचार में लगे हुए हैं। इस कार्य के महत्वपूर्ण अंग है पत्र पत्रिकाएं। इसीलिए कभी कभी वो मानो किसी के सिर पर सवार होकर उसे पत्रिका के प्रवर्तन तथा संचालन हेतु प्रेरित तथा विवश करते हैं। इस तरह अनेक पत्रिकाओं का प्रवर्तन स्वामी जी करवा रहे हैं और भविष्य में भी न जाने कितनी पत्रिकाओं का प्रवर्तन करवाएंगे। धन्य है वे, धन्य है जिन्हें स्वामी जी ने इस महान कार्य के लिए यंत्र स्वरूप चुना है या फिर चुनेंगे। एक क विवेक ज्योति हिंदी त्रैमासिक पत्रिका 1963 में रायपुर से प्रकाशित हुई। ख विवेक ज्योति हिंदी त्रैमासिक 1999 में रायपुर से प्रकाशित हुई। दो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी मासिक 1896 में मायावती से प्रकाशित हुई। तीन वेदांत केसरी अंग्रेजी मासिक 1914 में चेन्नई से प्रकाशित हुई। चार क वेदांत फॉर ईस्ट एंड वेस्ट अंग्रेजी द्विमासिक 1952 में लंदन से प्रकाशित हुई। ख वेदांत फॉर ईस्ट एंड वेस्ट अंग्रेजी द्विमासिक 1995 में लंदन से प्रकाशित हुई।
0: बुलेटिन ऑफ रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर अंग्रेजी मासिक 1948 कोलकाता से प्रकाशित। वेदांत फ्रेंच त्रैमासिक 1965 से ग्रेड्स फ्रांस से प्रकाशित। उद्बोधन बंगला मासिक 1899 कोलकाता से प्रकाशित। समाज शिक्षा बंगला मासिक 1855 नरेंद्र पश्चिम बंगाल से प्रकाशित। प्रबुद्ध केरलम मलयालम मासिक 1914 नरेंद्र पश्चिम बंगाल से प्रकाशित।
1: 10 श्री राम कृष्ण विजयम तमिल मासिक 1921 चेन्नई से प्रकाशित हुई। 11 श्री राम कृष्ण प्रभा तेलुगु मासिक 1944 में चेन्नई से प्रकाशित हुई। 12 जीवन विकास मराठी मासिक 1957 में नागपुर से प्रकाशित हुई। 13 विवेक प्रभा कन्नड़ मासिक 2000 में चेन्नई से प्रकाशित हुई। 14 ग्लोबल वेदांत अंग्रेजी त्रैमासिक 1996 में सिएटल अमेरिका से प्रकाशित हुई। 15 आश्रम वाणी अंग्रेजी मासिक 1982 में इंदौर मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुई।
0: स्वामी जी के महानिर्वाण के 100 साल बाद भी उन्हीं से अनुप्राणित कई पत्र पत्रिकाएं आज भी प्रकाशित हो रही हैं। उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ये सभी रामकृष्ण विवेकानंद के भावधारा से अनुप्राणित हैं। प्रथम तो वे पत्रिकाएं हैं जो रामकृष्ण संघ के केंद्रों से प्रकाशित हो रहे हैं। हम आपको उनके नाम भाषा कालक्रम स्थापित होने का वर्ष एवं प्रकाशन स्थान की जानकारी दे रहे हैं।
1: दूसरे क्रम में वे पत्रिकाएं हैं जिनका विभिन्न कारणों से प्रकाशन बंद हो गया है। ये भी रामकृष्ण संघ के विभिन्न केंद्रों से प्रकाशित होती थीं। ये अधिकतर भारत के बाहर से प्रकाशित पत्रिकाएं थीं।
0: समन्वय हिंदी मासिक 1921 से 1928 मायावती से प्रकाशित होता था। 2 क मॉर्निंग स्टार अंग्रेजी साप्ताहिक 1928 से 1929 पटना से प्रकाशित। ख मॉर्निंग स्टार अंग्रेजी मासिक 1930 से 1932 पटना से प्रकाशित। 3 मैसेज ऑफ द ईस्ट अंग्रेजी त्रैमासिक 1912 से 1955 मैसाचुसेट्स। 4 वॉयस ऑफ फ्रीडम अंग्रेजी मासिक 1909 से 1916 कैलिफोर्निया।
1: 1 विवेक शिखा हिंदी मासिक 1982 से छपरा बिहार से दो क ब्रह्मवादन अंग्रेजी मासिक 1896 से चेन्नई से ख ब्रह्मवादन अंग्रेजी त्रैमासिक 1966 से चेन्नई से तीन युवा भारती अंग्रेजी मासिक 1963 से चेन्नई से प्रकाशित हुई चार संबित अंग्रेजी अर्धवार्षिक 1980 से कोलकाता से प्रकाशित हुई पांच विवेक जीवन बंगला मासिक 1969 से कोलकाता से प्रकाशित हुई
0: छह विश्ववाणी बंगला मासिक 1926 कोलकाता से प्रकाशित सात विवेक दीप बंगला त्रैमासिक 1926 कोलकाता से प्रकाशित आठ श्री मां शारदा बंगला मासिक 1956 कोलकाता से प्रकाशित नौ तोबो तोपोबोने बंगला मासिक 1946 जलपाईगुड़ी से प्रकाशित
1: दस निबोधत बंगला त्रैमासिक 1987 से कोलकाता से प्रकाशित हुई ग्यारह धर्मचक्र तमिल मासिक 1987 से तोरू पराई तराई से प्रकाशित हुई
0: बारह तुलसी सुगंधम मलयालम मासिक 1987 टोट्टा पालेम से प्रकाशित तेरह वेदांत जर्मन त्रैमासिक 1978 विस्वडन से प्रकाशित तेरह वेदांत जर्मन त्रैमासिक 1978 विस्वडन से प्रकाशित चौदह अद्वैत सत्यामृतम अंग्रेजी त्रैमासिक 2000 ओरेगॉन से प्रकाशित पंद्रह द वॉइस ऑफ इंडिया अंग्रेजी मासिक 1938 से 1946 सैन फ्रांसिस्को से प्रकाशित सोलह वेदांत एंड दी वेस्ट अंग्रेजी द्वैमासिक 1938 से 1970 हॉलीवुड से प्रकाशित सत्रह पैसिफिक वेदांतिन अंग्रेजी मासिक 1902 कैलिफोर्निया से प्रकाशित तीसरे क्रम में वे पत्रिकाएं आती हैं जो रामकृष्ण संघ के बाहर से प्रकाशित होती हैं और आज भी सक्रिय हैं।
6: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मीन्स खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मींस नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफर इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी ढेरों शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं आज विशेष, आज के शाम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलके। जी हाँ, 4 जून की बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ और आशा करूँगा कि आप 4 जून को अच्छी जो है जानते हैं। और आज के इस इतिहास के पन्नों को अगर हम लोग देख ले तो कुछ बातें हमें जो है याद दिलाती हैं और कल की भी याद दिलाएगी क्योंकि आज 4 जून है और कल 5 जून है ना। भरणी नक्षत्र है आज और अनिल शास्त्री नूतन, एसपी बाल सुब्रमण्यम, जी हाँ, ऐसे महान दिग्गज कलाकारों का जन्मदिन है आज। इसके साथ ही अभिमन्यु अनंत, अंचित लक्ष्मीपति और शुल्बा देशपांडे, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सुविचार के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, सुविचार हमारे मन को शुद्ध और पवित्र बनाते हैं और एक मोटिवेशन हमें देते हैं। और जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन जो है एक सुंदर विचारों का एक सुंदर जो ताता है वो शुरू हो जाता है। कहते हैं कि हथेली पर रख कर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रख कर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है तो आई अपनी हथेली में जो है विशेष ताकत है, शक्ति है, अपनी हथेलियों का उपयोग करें और जीवन को समृद्ध बनाए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए एसपी बालसुब्रमण्यम के बारे में बात करते हैं अभी। जी हाँ, जिनका जन्मदिन है और उनके बारे में कुछ बातें आपसे जरूर शेयर करूंगा। भारतीय सिनेमा के बहुत ही पॉपुलर पार्श्व गायकों में से एक और पार्श्व गायक होने के साथ साथ वो एक अभिनेता, संगीत निर्देशक, गायक और फिल्म निर्माता भी है। एसपी बालसुब्रमण्यम ने 6 बार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार तेलुगु सिनेमा में नंदी पुरस्कार जीता है। जब अभिनेता सलमान खान ने नए नए फिल्मों में आए थे तो कई सालों बाद एसपी बालसुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज़ समझा जाता था। फिल्म मैंने प्यार किया के गाने हो या साजन या फिर हम आपके कौन, इन सब फिल्मों में सलमान खान को एसपी बालसुब्रमण्यम ने आवाज़ दी थी, इसीलिए उनकी आवाज़ सलमान खान की आवाज़ समझी जाती थी। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में सफर कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते रहो। तो आइए एसपी बालसुब्रमण्यम की कहानी को आगे सुनते हैं।
2: ये दास्तां है श्रीपति पंडित आराध्योला बालसुब्रमण्यम की, जिनका जन्म हुआ 4 जून सन 1946 में, जिन्हें हम प्यार से एसपी बालसुब्रमण्यम या फिर एसपीबी या बालू कहकर पुकारते हैं।
3: गुपचुप

एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का जन्म नेल्लौर शहर में हुआ था। इनके पिता एसपी सम्ममूर्ति हरिकथा कलाकार थे जो कि नाटकों में काम किया करते थे। इनके माताजी का नाम रहा शकुंतला अम्मा। दो भाई और पांच बहनों के साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का भरण पोषण हुआ। बचपन में ही बाला सुब्रमण्यम साहब ने संगीत के प्रति अपनी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। इन्होंने फिर संगीत सीखा और JNTU कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अनंतपुर से इन्होंने इंजीनियरिंग करने की बिठानी, लेकिन टाइफाइड की वजह से इनकी पढ़ाई छूट गई, पर संगीत का प्रशिक्षण चलता रहा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ

इन्होंने ठान लिया था कि आगे जाकर ये गायक ही बनेंगे। कई जगह पर ये ऑडिशन देते पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कलाकार आगे जाकर महानतम कलाकारों में से एक बनेगा, जो कि सिर्फ गायक ही नहीं संगीतकार भी बनेगा, अभिनेता भी और डबिंग आर्टिस्ट भी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, मलयालम जैसी जबरदस्त भाषाओं में ये बहुत से गाने गाएगा और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनेगा।

एसपी बालासुब्रमण्यम साहब को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर से 6 बार नवाजा गया है। सन 2001 में पद्मश्री से नवाजा गया और उसके बाद सन 2011 में पद्म भूषण से। इनके करियर की तरफ रुख करें तो पता चलता है श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना के साथ इन्होंने तेलुगु फिल्म में गाना गाया था, जिसका संगीत एसपी कोडान्नपन्नी ने दिया, जिन्हें ये गुरु की तरह मानते थे।

सन 1980 में शंकरा भरणम नाम की फिल्म से इन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। ये एक तेलुगु फिल्म थी जिसे के विश्वनाथ ने डायरेक्ट किया था। एस पी बाला सुब्रमण्यम ने बहुत से गाने तमिल भाषा में गाए, खासतौर पे इलैयाराजा और एस जानकी के साथ।

70 और 80 की दहाई में ये सबसे बड़े गायक बनकर उभरे थे। एआर रहमान साहब की पहली फिल्म रोजा में एसपी बालासुब्रमण्यम ने 3 गाने गाए थे और इत्तेफाकन के बालाचंदर की फिल्म मनमाधा लीला के लिए ये एक डबिंग आर्टिस्ट भी बन गए, जिसमें इन्होंने कमल हासन साहब की डबिंग करी थी। फिर तो वॉइस ओवर्स बहुत सारे करे, कमल हासन रहे के रजनीकांत, विष्णु वर्धन रहे के सलमान खान, के भाग्यराज रहे के मोहन, अनिल कपूर रहे के गिरीश कर्नाड या फिर रहे जेमिनी गणेशन, इन सभी के लिए इन्होंने वॉइस ओवर्स भी दिए।

सलमान खान साहब की फिल्म मैंने प्यार किया में ये सलमान खान की आवाज बनकर उभरे और इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिया गया। आगे जाकर हम आपके हैं कौन में भी यही सलमान खान की आवाज बने थे। ये इतने अजीम कलाकार हैं कि इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बाला सुब्रमण्यम साहब जरूर तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में जन्मे थे पर इन्होंने अलग अलग भाषाओं के लिए बहुत से गीत गाए।

इनका विवाह हुआ सावित्री जी से। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हुए, बेटी पल्लवी और बेटा एसपीबी चरण, जो एक प्लेबैक सिंगर और फिल्म प्रोड्यूसर बना। 5 अगस्त 2020 में एसपीबी कोविड पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल में इनको दाखिल कर दिया गया। इनके बहुत से चाहने वालों ने इनके लिए ढेर सी प्रार्थना

気に。यकीनन एसपी बाला सुब्रमण्यम अद्वितीय कलाकार हैं, इनकी प्रतिभा को हमारा सलाम।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज जितनी बीमारियां हो रही हैं, जबकि हम आज हेल्थ के बारे में ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा ध्यान रखते हैं, ज्यादा हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, फिर भी बीमारियां ज्यादा हैं। ठीक है, चाहे वो हमारी साइकोसोमैटिक इलनेसेस हो गई कि हाई कोलेस्ट्रॉल हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, या आज के जो समय में है वो है ज्यादा मेंटल हेल्थ इलनेसेस, कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक, दिस आर बिगिनिंग स्टेजेस। अब ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि बहुत बहुत बहुत सालों से हमारा जो थिंकिंग पैटर्न था वो एक अलग तरह से चलते चलते चलते, चाहे वो गुस्से को कहें, चाहे हर्ट को कहें, कोई भी इस तरह का जो कंफर्टेबल नहीं था, ना मन के लिए ना शरीर के लिए।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं। एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं अभी, अनिल शास्त्री के बारे में। जी हाँ, एसपी बालसुब्रमण्यम की कहानी भी और साथ में आप गाने भी सुने तो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो चलिए अनिल शास्त्री के बारे में बात करते हैं। एक विशेष व्यक्ति रहे हैं और इनकी कहानी, राष्ट्रीय राजनेता के रूप में इनको याद किया जाता है और वरिष्ठ नेता है पार्टी में। इन्हें इनकी स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है और वर्तमान में अनिल जी अखिल भारतीय कमेटी के विशेष कार्य समिति के रूप में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हेतु विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और 1990 में वाराणसी से 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे और वित्त मंत्रालय भारत सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। और अनिल शास्त्री का जन्म आज के दिन 1948 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और माता ललिता शास्त्री थी। इन्होंने दिल्ली के सेंट कोलंबिया स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की और बाद में इन्होंने एस्ट्रीस बिजनेस स्कूल यूके से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का अध्ययन भी किया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में 24 फरवरी के दिन इनका विवाह हुआ मंजू श्रीवास्तव के साथ। इनके तीन बेटे हैं, आदर्श, लगन और मुदित। इसके साथ फिर बाद में धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ इन्होंने राजनीति में भी अपना कदम रखा और अनिल शास्त्री अपने एक कॉपीराइट ऑफिस में काम करते थे और वहां इन्होंने 17 वर्षों तक वरिष्ठ पदों पर कार्य किया। वहां से रिटायरमेंट लेने के बाद, त्यागपत्र देने के बाद ये सीधे राजनीति में आ गए और फिर अपनी स्पष्टवादिता के लिए विशेष रूप से जाने गए और फिर वरिष्ठ नेता बनकर वाराणसी के 9वें लोकसभा में इनको वित्त मंत्रालय का पोस्ट मिल गया और इसे संभालते हुए संसद सदस्य 9वीं लोकसभा वाराणसी 1990 और मंत्री वित्त मंत्रालय भारत सरकार, ये पद इनको मिल गया। अनिल शास्त्री की प्रबंधन क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु अहम भूमिका रही है और अनिल शास्त्री अपने पिता के नाम पर सीमित साधनों से शुरू किए गए लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली के चेयरमैन तथा लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी बरेली के भी अध्यक्ष हैं। अनिल शास्त्री का नाम लाल बहादुर शास्त्री नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टियों में भी शामिल है और ये ट्रस्ट कई सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालन करता है। तो ये थी कुछ खास बातें अनिल शास्त्री के बारे में। जी हाँ, अनिल कुमार शास्त्री इनका पूरा नाम है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को अनिल शास्त्री के बारे में सुनकर लाल बहादुर शास्त्री जी की भी यादें ताज़ा हो गई होंगी। आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी आपके लिए आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM हबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। अनिल शास्त्री की बातें सुनकर आपको कुछ पुरानी यादें तो जरूर ताजा हो गई होगी। आइए अब एक लेजेंडरी के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, आप समझ गए, नूतन जी के बारे में बात करते हैं। इनका भी जन्मदिन आज है और हिंदी सिनेमा की सबसे पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक रही। भारतीय सिनेमा जगत में नूतन को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों के मजहब सोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की परंपरा विचारधारा को बदलकर उन्हें अलग पहचान दिलाई। सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी, तेरे आंगन की सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसे कई फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय से नूतन ने यह साबित कर दिया था कि नायिकाओं में भी अभिनय क्षमता है और अपने अभिनय की बदौलत वे दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में सक्षम है। जी हाँ, आइए इनके बारे में बहुत सारी बातें आपको सुनाएंगे। अभी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: रात जितनी ही संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी।
3: इनकी मुस्कुराहट, इनकी सादगी, इनका स्टाइल दिलों में घर कर गया। ये दास्तां है लेजेंडरी आर्टिस्ट नूतन जी की।

0: हुआ। नूतन जी का जन्म 4 जून सन 1936 में हुआ। पिता कुमार सेन समर्थ डायरेक्टर भी थे और एक कवि भी। माँ शोभना समर्थ एक जानी मानी अभिनेत्री रहीं। 4 भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थीं। इनकी माताजी शोभना समर्थ ये चाहती थीं कि नूतन बतौर हीरोइन फिल्मों में आए। खुद उन्होंने एक फिल्म बनाई और उसमें नूतन जी को लॉन्च किया। फिल्म का नाम था हमारी बेटी।
1: कहने से क्या, कुछ करके दिखा। जब तुम विलायत में थे तो मैं सोचा करती थी पता नहीं क्या बनकर आओगे, और यहाँ जब कुछ बनकर आए हो तो उसे अमल में भी नहीं ला सकते।
0: ये बात कम लोग जानते हैं कि सन 1952 में नूतन जी ने मिस इंडिया का टाइटल जीता था। ये वो वक्त था जब किसी भी हीरोइन के लिए एक्सपोज करना बड़ा कठिन था, और उस दौर में नूतन नजर आई थी स्विम सूट में। उन फोटोग्राफ्स ने हंगामा जरूर मचा दिया था, पर यह बात भी साफ कर दी थी कि इनकी माँ शोभना समर्थ वाकई बड़े आजाद ख्यालों की हैं। इनकी माँ ने ही इन्हें स्विट्जरलैंड भेजा था ताकि ये विधिवत तरीके से एक्टिंग सीख सकें, और फिनिशिंग स्कूल के बाद फिर इंडिया आए।
2: नीनू काका, देखो कौन आया।
3: अरे तुम दोनों ने एक दूसरे को पहचाना कैसे?
2: इसमें कौन सी बड़ी बात थी, एक दूसरे को देखा और पहचान लिया।
1: बड़े आए पहचानने वाले, घूर घूर के ताक रहे थे मुझे और मेरी चारों ओर चक्कर लगा रहे थे।
0: एक तरफ देवानंद साहब के साथ तेरे घर के सामने पेइंग गेस्ट सुपरहिट साबित हो रही थी, तो दूसरी ओर राज कपूर के साथ अनाड़ी और छलिया ने भी बॉक्स ऑफिस पे धूम मचा दी थी।
1: मैं क्या कहूँ, जब तुम नहीं होते तो मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ये कहूंगी वो कहूंगी, पर कुछ नहीं कह पाती, बस झगड़ा शुरू करती हूँ।
0: इमोशनल और रोमांटिक फिल्में करने के साथ साथ नूतन जी को साथ मिला महान डायरेक्टर बिमल रॉय का। बिमल रॉय साहब के साथ इन्होंने फिल्म बंदनी और सुजाता में काम किया। इन दोनों ही फिल्मों में नूतन ने साबित कर दिया था कि इनकी जैसी अभिनेत्री कोई और नहीं, जिसके पास मासूमियत है, जज्बात है, अभिनय क्षमता है और

0: कैसे लोगों से पाला पड़ा है, मेहमानदारी करना भी नहीं जानते।
1: और कमाल की बात यह है, स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन जब फिल्म सौदागर में नजर आए थे तब उन्हें भी नूतन जी के सशक्त अभिनय का सहारा मिला था।
2: तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, जो कहोगे करूंगी, लेकिन मुझसे हर रोज मिलना होगा।
1: नूतन के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनकी शादी हुई 11 अक्टूबर सन 1959 में। इनके पति बने नेवल लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश भाल।
3: आपके साथ राज के काटे भी फूल बन जाएंगे। आप ही ने तो कहा है कि राज जितनी भी रंगीन हो सुबह उतनी ही रंगीन हो।
1: ऐसा माना जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन जब शादी कर लेती है तब वो फिल्मों से किनारा कर लेती है, पर नूतन जी ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। ये फिल्मों में काम करती रहीं और ऐसी फिल्मों में नजर आईं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल किया, और उस जिम्मेदारी को निभाते हुए भी ये फिल्मों के साथ जुड़ी रहीं।

पुत्र मोहनीश बहल भी फिल्म और टेलीविजन पे एक्टिंग के जरिए खूब नाम कमा चुका है। इनकी छोटी बहन तनुजा भी फिल्मों में बतौर हीरोइन नजर आईं और इनकी भतीजियां काजोल और तनिषा ने भी सिल्वर स्क्रीन पर कमाल किया और काजोल ने तो वो मुकाम हासिल किया जो बहुत कम अभिनेत्रियां हासिल कर पाती हैं। ये बात भी कम लोग जानते हैं कि नूतन एक प्रशिक्षित गायिका भी रहीं। अक्सर स्टेज शोज पर वो गाने गाया करती थीं।

0: इनका करियर काफी लंबा रहा, पर एक कसक इनके दिल में रह गई थी। राज कपूर, देवानंद, बलराज साहनी, धर्मेंद्र जैसे जबरदस्त अभिनेताओं के साथ ये नजर आई थी, पर इन्हें कभी मौका नहीं मिला कि ये दिलीप कुमार के साथ काम करें।
1: मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए।
0: और 80 के दशक में ये मौका भी इन तक पहुंचा। सुभाष घई साहब ने फिल्म बनाई कर्मा, जिसमें नूतन दिलीप साहब की वाइफ का किरदार निभाती नजर आई।
2: देखिए, मैंने दुनिया में अपने लिए कभी किसी को नहीं सोचा था, जो मेरा भगवान था वो मुझे मिल गया है।
0: ये वो वक्त भी था जब ये धीरे धीरे कैरेक्टर रोल्स की तरफ बढ़ रही थी, और फिल्म मेरी जंग में इनके अभिनय को कौन भूल सकता है।
2: आपके उपकारों का बदला मैं 100 जन्म में भी नहीं चुका सकूंगी।
0: ऐसा लग रहा था कि अभिनय के क्षेत्र में नूतन जी नए कीर्तिमान स्थापित करेंगी, पर तभी किस्मत ने वो करवट ली जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। इन्हें कैंसर से पीड़ित पाया गया और सन 1991 तारीख 21 फरवरी मात्र 54 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ चली गईं।
2: जब तक दुनिया को सच्चाई मालूम ना हो जाए मैं नहीं मरूंगी।
0: यकीनन नूतन जैसी अभिनेत्री ना कोई थी और ना ही होगी।
2: फिर वही। नमस्ते।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायू, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए, नूतन जी की कहानी आपने सुनी और कुछ फिल्मों की बातें भी उन्होंने आपको बताई, तो आइए। वैसे नूतन जी को बहुआयामी प्रतिभा के धनी माना जाता है, और जिस तरह से उन्होंने मदर इंडिया में जो काम करके दिखाया, वो लोगों के बीच में एक जो है इतिहास रच दिया उन्होंने। और फिल्म बारिश में भी उनके जो है अलग अलग आलोचना हुई उसके लिए, लेकिन फिर भी बाद में सुजाता बंदिनी जैसे फिल्मों को आने के बाद सभी दर्शक जो हैं उनकी कला और उनकी बातों को समझने लगे। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, वक्त हो गया है इजाज़त का, और जाते जाते आप सब के लिए एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। अपनी ज़मीन अपना नया आसमान पैदा कर, मांगने से जिंदगी कब मिली है दोस्त, खुद ही अपना नया इतिहास पैदा कर। तो ये इस विचार के साथ फिर मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम खुश बैठे हैं, हम प्यार से वो चीज खा रहे हैं जो हमें पसंद है, तो पूरी सिचुएशन तो हमारी एक्चुअली। सी द सिचुएशन इज ऑल अबाउट मी। मैं आराम से इस कुर्सी पे बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी फेवरेट मिठाई है, मैं प्यार से खा रही हूँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट, हैप्पी हैप्पी। और सामने से कोई आया, किसी ने एक लाइन बोल दी। इस केस में लाइन इतनी बहुत ज्यादा कड़वी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने कोई कड़वी लाइन भी बोल दी, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर ली, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने डांट दिया। इस केस में तो कुछ भी नहीं था, इस केस में थोड़ा सा बोला कि आपको थोड़ी परहेज करनी चाहिए थी। हियर माई वर्ल्ड वॉज परफेक्ट, सब कुछ मेरे अनुसार था, लेकिन सामने से कोई आया, सामने से किसी ने एक लाइन बोली और वो एक लाइन ने मेरे पूरे वर्ल्ड को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। मन डिस्टर्ब्ड, फीलिंग्स डिस्टर्ब्ड, फिर वर्ड्स डिस्टर्ब्ड, काफी देर तक डिस्टर्ब्ड। मीनिंग वन लाइन, किसी की एक लाइन मेरी इस दुनिया को एक घंटे के लिए डिस्टर्ब कर सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आप उनसे मिलेंगे तब भी आपको वो वाली बात याद आ जाएगी। सो इट विल नॉट इवन रिस्ट्रिक्ट टू दिस वन आवर। ये हो सकता है कि इट स्टेज ऑन माई माइंड and it comes back to my mind later on. शायद कभी जब वो लड्डू खा लिया तब वो बात याद आ जाएगी, या शायद वो बहन सामने कभी आ जाएगी तो वो बात याद आ जाएगी। मतलब my mind, ये हमारा एक्सरे है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: कितनी बेशरम और ढीठ औरत है, पिछले साल भर से तो अकेली रहती है और अब ये इतना बड़ा पेट लेकर घूम रही है।
1: मोहल्ले की औरतों में चर्चा चल रही थी।
0: हाँ, पता नहीं क्या चक्कर है, अरे अगर पति है तो रहता क्यों नहीं साथ में,
1: एक और बोल पड़ी।
0: अरे हाँ, और देखो ना, मांग में सिंदूर भी लगाती है,
1: अगली ने भी सुर मिलाया। अब तो लगभग रोज ही उसे आदत हो गई थी इस प्रकार के ताने सुनने की, लेकिन उसने भी तय कर लिया था, नहीं बताएगी किसी को भी इसके पीछे की सच्चाई। कहां थे ये दुनिया वाले, ये रिश्तेदार, आस पड़ोसी, कोई नहीं आया मदद के लिए। जब एक दिन अचानक पति ने कहा, बस अब नहीं होता मुझसे ये सब, तंग आ चुका हूं मैं इस गरीबी और तंगहाली से, मिथ्या भरे संसार की मोह माया से, जाना चाहता हूं कहीं दूर शांति और मोक्ष की तलाश में। और कुछ समझती समझा पाती इससे पहले ही निकल गया घर से दुधमुही बच्ची को छोड़कर। कैसे काटूंगी ये पहाड़ सा जीवन, कहां से आएंगे इसे पालने के लिए पैसे, क्या करूं। और फिर जब काम ढूंढने निकली तो पता चला आज भी समाज में अकेली औरत का जीना इतना भी आसान नहीं है। लोगों की आमंत्रण देती वो चुभती हुई भेदक निगाहें केवल व्यापार समझती हैं अकेली स्त्री को। तभी एक अखबार में इश्तेहार पढ़ा, सरोगेट मदर, चाहिए एक किराए की कोख, शुल्क 5 लाख रुपए दिया जाएगा। दिल और दिमाग में फिर चिर परिचित द्वंद शुरू हुआ। हे भगवान, कोक का भी सौदा, वैसे तो भी बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, क्या करूं, कैसा धर्म संकट है प्रभु, एक तरफ संस्कार और दूसरी तरफ सच्चाई। संस्कारों वाला दिमाग अभी भी शंकित था। तो क्या ये लेन देन नहीं हुआ, क्या ये उचित है, लेकिन मां का दिल जीत गया तो क्या हुआ, कोई गलत काम तो नहीं है ये, यदि एक स्त्री को, एक मां को अपने बच्चे को पाने की और दूसरी मां को अपने बच्चे को पालने की इच्छा है, लालसा है, तो इस प्रकार के लेन देन में कोई भी पाप नहीं है। और ऐसा निश्चय कर वो चल पड़ी मां के स्वप्न को पूरा करने के लिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे रश्मि प्रणय वागले जी की लिखी हुई लघु कथा पवित्र पाप।
2: हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
1: जी, और गीत की ये पंक्तियां इस कहानी को पूरी तरह से सार्थक कर देती हैं। करना भी, छुपाना भी, और साबित करना तो दुनिया तो ऐसी ही है, हर एक अपनी परिस्थितियों को जानता है। अगर ये पाप था तो वाकई में बिल्कुल ठीक टाइटल दिया, बिल्कुल ठीक सोच के साथ इस कथा को लिखा रश्मि प्रणय वागले जी ने, पवित्र पाप। उम्मीद है आपको आज की ये लघु कथा जरूर पसंद आई होगी, और कमेंट करके बताइए कि समाज, ये दुनिया, और कहां कहां आपने अनुभव की है जब दोहरा बर्ताव अपना लेती है। और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि अपनी उलझनों से लड़ रहे लोगों को ताकत मिल सके। कमेंट करके बताइए। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चुलबुली चीनी।
2: चीनी अपनी 3 मंजिला बिल्डिंग की छत पर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी।
3: अरे तेज भागो, नहीं तो हम हार जाएंगे।
4: हुर्रे, हम जीत गए।
2: अचानक
5: इस बिल्डिंग में कोई है क्या?
3: लगता है कोई हमें आवाज लगा रहा है। चलो देखे कौन है।
2: चीनी ने छत से ही आदमी से पूछा,
3: तुम्हें क्या चाहिए?
5: बच्ची जरा नीचे आओ, फिर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा।
3: ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ।
2: चीनी तेजी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई।
3: हाँ अब बताओ क्या बात है।
5: मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे खाने के लिए या कुछ रुपये दे दो बेटी।
3: ये आदमी हट्टा कट्टा है और अपाहिज भी नहीं है, फिर यह भी क्यों मांग रहा है?
2: चीनी सीढ़ियों पर आ गई और बोली,
3: मेरे पीछे आओ।
5: लगता है ये लड़की मुझे खाने के लिए अच्छी चीज देने वाली है।
2: चीनी के साथ भिखारी भी छत पर पहुंच गया।
3: माफ करना, पर तुम्हें देने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही खाना।
5: क्या?
3: मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मम्मी कहती है कि भीख मांगना गंदी बात है। तुम तो हट्टे कट्टे हो और अपाहिज भी नहीं हो, मेहनत करके क्यों नहीं कमाते हो? अब तुम जाओ।
5: ये तो तुम नीचे भी कह सकती थी, फिर मुझे ऊपर क्यों लाई?
3: अगर तुम मुझे खाना मांगने के लिए नीचे नहीं बुलाते, तो मैं भी मना करने के लिए तुम्हें ऊपर नहीं बुलाती।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाए।

0: नमस्कार श्रोताओं, युवा मंच में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं 2000 तो युवा मंच पे जैसे हम हर बार आपकी मुलाकात किसी ऐसे युवा से कराते हैं जो आपको प्रेरित भी करते हैं, तो आज हम आपको मिलवाना चाहेंगे ओम से। अच्छा, ओम मिश्रा जी जो हैं वो बाय प्रोफेशन एक डेटा साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने MIT लीडरशिप इनोवेशन की बूट कैंप की हुई है। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के गोल्डन डेलीगेट हैं, कंट्रीब्यूटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैलेंज के फिनिशर हैं। यानी आज हम ऐसे एक व्यक्तित्व से आपकी बात करा रहे हैं जो फिजिकली फिट एंड मेंटली फाइन है। आज क्या आप तैयार हैं फिजिकली फिट और मेंटली फाइन होने के लिए? आइए मिलते हैं ओम जी से। नमस्कार ओम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है युवा मंच पर।
1: किस सोमवार ये हमको यहाँ पे एक अनुमति से शेयर करने के लिए हमारे सारे ऑडियंस के साथ, आप सब इसे कुछ सीखें एंड कुछ नया आपके जीवन में हो। चलो हम इस बात पे शुरू करें।
0: थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, ये बताइए कि और फिटनेस ये तो समझ में आती है, बट आपका जो इंट्रोडक्शन है उसमें स्पोर्ट्स के साथ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी दिल और दिमाग तो हम सुनते ही थे, फिजिकली फिट एंड मेंटली फाइन। सबसे पहले बात करते हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल फिटनेस की तरफ, इसमें आपकी रुचि कैसे जाएगी?
1: मेरे बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रही है मेरी
0: जी।
1: मैंने काफ़ी टाइम से अपने स्कूल और मैराथन्स में काफ़ी जाता रहता हूँ। पिछले साल मैंने हाफ मैराथन इंडिया लेवल पे कंप्लीट किया था एंड उसके साथ साथ मैंने इवन अपने कंट्री को प्रेजेंट करने के लिए गोल्ड मेडल पाने के लिए मैंने ट्राई किया था इसमें लाइक, और मैंने रिसेंटली 75 हार्ड चैलेंज का भी लेके उसको भी ख़त्म किया है। मैंने टारगेट किया कि मतलब 15th ऑफ अक्टूबर स्टार्ट करूं एंड बाय द एंड ऑफ दिसंबर 31st ऑफ दिसंबर ये चैलेंज ख़त्म की जाए, ताकि पूरा साल का जो सार है मैं 2023 में अच्छे से निकाल सकूं।
0: वाह, एक्सप्लेनेशन के दौरान आपने कोई चीज़ बताई 75 हार्ड चैलेंज, ये 75 हार्ड चैलेंज क्या चीज़ है?
1: सो 75 हार्ड चैलेंज एक चैलेंज है जो लोगों का मेंटली टफनेस टेस्ट करता है। अच्छा। कि वो कितना अपने लेवल को पुश कर सकते हैं। अच्छा। तो इसमें चीज़ें करनी होती है जो रोज़ के रोज़ होती है
0: जी।
1: सो फर्स्ट है कि आपको रोज़ 1.5 आवर्स ऑफ एक्सरसाइज करनी होती है।
0: 1.5 आवर्स पर डे?
1: पर डे।
0: ये क्या एक ही टाइम पे करना होता है स्ट्रेच, या पूरे दिन में आधा आधा घंटे के सपोज 3 स्लॉट्स में भी कर सकते
1: हैं? नहीं, इसमें 2 स्लॉट्स होते हैं, मतलब 45 मिनट्स का एक आउटडोर स्लॉट होता है और 45 मिनट्स का एक इनडोर स्लॉट होता है।
0: अच्छा।
1: और उसके साथ हमको 3-4 लीटर ऑफ पानी पीनी होती है, कोई भी नॉन फिक्शनल किताब पढ़नी होती है 10 पेज,
0: और नॉन फिक्शनल
1: के साथ एक सेल्फी रोज लेनी होती है ताकि हम अपने को ट्रैक कर सकें कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है ओवर द पीरियड ऑफ 75 डेज। एंड थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमको क्लीन डाइट खानी होती है।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: तो ये मुझे अगले सवाल पे ले आता है कि क्लीन डाइट से फिर आप क्या समझते हैं?
1: सो क्लीन डाइट का मतलब ये है कि ज़्यादा ना मसालेदार या ऑयल में ज़्यादा ये हो कि चीज़ वगैरह हो, वो सब ना होना चाहिए। ज़्यादा रियलिस्टिक बाय ज़्यादा जिसमें प्रोटीन वगैरह हो, जिसमें मतलब हम क्या खा सकते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स हो गया, सुबह उठ के स्प्राउट्स, देन डेट्स हो गया खाने, दलिया नहीं तो ओट्स मील, ये ब्रेकफास्ट में आ गया। फिर लंच के लिए हमने ले लिया रोटी दाल और उसके साथ थोड़ा पनीर की सब्जी। फिर रात से पहले शाम में हमने छेना खा लिया, फ्रूट्स की बाउल खा ली।
0: माय गुडनेस, आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर सकता हूँ, कहीं बात ही नहीं की।
1: रात को सोने से पहले दूध पी के सो जाता था ताकि सुबह उठ के फ्रेश पेट खाली पेट स्टार्ट कर सकूं।
0: नो वंडर आप इसको 75 हार्ड चैलेंज बोलते हैं, मेरे से तो 5 दिन भी ना हो। तो 70, ये बताइए इसमें आपको रैंक कौन करता है, या ये सेल्फ असेस्ड है, या जैसे आपने कहा कि हर दिन आप अपनी सेल्फी भी लेते हैं प्रोग्रेस चेक करने के लिए, खाना आपको जैसे एक फिक्स्ड या बड़ा रेजिमेंटेड सा डाइट खाना होता है, इतनी एक्सरसाइज करनी होती है, किसी दिन सपोज आपने चीट कर दिया, कौन जज करता है?
1: सो ये एक सेल्फ कॉन्शियस रूल है, मतलब गेम वो 75 हार्ड चैलेंज का, कि अगर आपने कभी चीट भी किया या आपका कोई भी एक इनमें से पांचों चीज में से कोई छूट भी गया
0: जी,
1: तो आपको डे वन से स्टार्ट करना पड़ेगा।
0: और कोई वर्ल्ड वाइड संस्था है, मतलब कैसे जुड़ते हैं और कैसे प्रमोट करते हैं?
1: यूएस में एक जन ने स्टार्ट किया और उसके बाद काफी लोग इसमें फेल होने लगे, तो ये काफी ये जो चैलेंज है वायरल चला गया। इसका मोटिव था कि लोग काफी मोबाइलों पे आते हैं, स्क्रीन पर टाइम बिताते हैं और अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं देते
0: जी,
1: तो उसको प्रमोट करने के लिए, मतलब अपने को फिट रखना प्रमोट करने के लिए ये स्टार्ट हुई थी। फिर धीरे धीरे इंडिया में आने लगी, इंडिया में आने के बाद काफ़ी लोगों ने इसको सीरियसली लेकर ट्राई किया, फिर इंडिया में भी लोग फेल होने लगे। उसके बाद एक यूट्यूबर थे इन्फ्लुएंसर अंकित वानापुरिया करके, अच्छा। राम राम भाई साड़िया ने बोलते हैं, उन्होंने ये कंप्लीट किया, फिर काफ़ी लोग उसके बाद कंप्लीट करने लगे।
0: वो क्या भारत के पहले थे जो कंप्लीट करने वाले?
1: एक उनमें से एक थे जो भारत के,
0: अच्छा।
1: जो कंप्लीट किया एंड या तो उसके बाद ही मैंने भी सीखा कि ये लोग हम लोग भी कर सकते हैं, तो मैंने भी ये चैलेंज उठाया एंड रोज के रोज करते हुए फाइनली ऑन 28th of December 2023 मैंने कंप्लीट कर दी।
0: अरे 75 डेज का चैलेंज, वाह, मान गए आपको। तो एक तो ये आपने 75 डेज की फिटनेस वाली बात कही, अब हम आपसे AI के बारे में थोड़ा पूछना चाहते हैं। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक गाना सुनते हैं, उसके बाद हम आएंगे AI पर।

नमस्कार श्रोताओं, वेलकम बैक टू 107.8 एफएम रेडियो मधुबन। आप सुन रहे हैं युवा मंच, जिसमें आपके साथ हैं आपके सबसे युवा आरजे रवि, और साथ में हमारे हैं आज के युवा गेस्ट श्री ओम, जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और जैसा कि आप सुन रहे होंगे, हमने जाने से पहले कुछ बातें करी थी एआई के बारे में। इसी ब्रेक के दौरान मेरे दिमाग में एक गाना आ रहा था, एआई आओ आया। आपके मन में भी क्या यही गाना आया? लेकिन

0: एआई का मतलब ये नहीं है, एआई का मतलब है, चलिए उनसे ही पूछ लेते हैं।
1: सो एआई को लेके अभी हम देख रहे हैं कितना विकास हो रहा है, एंड हम जब भी YouTube वगैरह खोलते हैं ये काफ़ी बार आता रहता है, AI क्या है, ChatGPT क्या है, ये प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, ये लोग पूछते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप लोग YouTube में कुछ भी सर्च करते हो, सपोज़ फॉर एग्जांपल अब जूता खरीदना है, जूता के लिए आप सर्च करते हो कौन सा है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आते हो आपको दूसरे जूतों के ब्रांड के बारे में बताता रहता है, तो ये कैसे होता है, ये सब है AI को लेके।
0: ओम जी, आपने तो मेरे मन की सवाल पूछ ली, बल्कि मैं जो है बहुत ही क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो एक बार जब मैंने क्रिकेट देखा तो उसके बाद से मुझे ये आश्चर्य हुआ कि हर बारी वो क्रिकेट की वीडियोज ही कैसे दिखाता है। अब जाकर मुझे आपकी ये चीज समझ में आई। तो AI के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे काम करता है?
1: सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या करता है कि जैसे हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल कि कोई भी एक चीज़ को हम जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं उसका पीछे का जो चीज़ मतलब उसके पीछे एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, तो मशीन क्या करता है कि जब भी हम कोई एग्जांपल सर्च करते हैं वो डेटाबेस में जाता है, उसके रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होता है, जितना भी डेटा होता है वो लाके आपको जो रोमांचक लगे वो इन्फॉर्मेशन शो करता है। ये कैसे करते हैं? सो इसके पीछे एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं मशीन लर्निंग। आपका डेटा लेता है, समझता है आपको क्या चाहिए और उसके रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है, रिकमेंड करता है। सो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो जैसे कि आप अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हो या आप इंस्टाग्राम कर रहे हो, आप सपोज कोई एक भूत का फिल्म देखे या कोई एक कार्टून का फिल्म देखे ऐसा कुछ, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप उसको, आप फिर से वो आपको वही चीज़ें रिकमेंड करता है। तो वो क्या करता है कि आपके सारा डेटा लेता है, चेक करता है कि आपको क्या क्या पसंद है और उसको रिलेटेड क्या क्या बैकएंड में और है वो आपको थोपता है, ताकि आप क्या करो उससे उस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टिको, उस पर ये अमेजन पे टिको ज़्यादा टाइम या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे
0: जी,
1: तो उस टाइप सो इस उसको ये जो पूरा प्रोसेस है इस पर लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
0: जी जी, अच्छा, पर एक बात बताइए, अगर चलो ये तो हमारे फेवरेट चीज़ों के लिए तो समझ में आ गई, बट आपको अगर उससे हटके या कुछ अलग चीज़ें देखनी हो तो क्या ये भी संभव है उसमें?
1: यस, उसमें ये भी संभव है। हमने देखा है कि सब बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, रिसर्च किए हैं इसको लेके, कि अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है स्पोर्ट्स, फिर अचानक से वो सर्च करने लगे अबाउट कार्स, तो वो क्या करता है कि स्पोर्ट्स और कार्स को मिलकर स्पोर्ट्स कार्स दिखाता है जिसमें आपको दोनों में रुचि है।
0: अच्छा,
1: एंड कल जाके अगर आपने सपोज सर्च किया Formula 1 जो गाड़ियों का स्पोर्ट्स रेस है, तो उसके रिलेटेड जो क्लॉथिंग ड्रेसिंग सेंस है या उसके रिलेटेड जो फेमस स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उसमें, वो सब शो होना स्टार्ट होता है, नॉट ओनली इन यूट्यूब बट इवन इन गूगल और इवन इन अदर लाइक स्पॉटिफाई में म्यूजिक सेट, वहाँ से आने स्टार्ट हो जाता है। सो ये सब इंटरकनेक्टेड है एंड ये ट्राई करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस प्लेटफॉर्म में हुकअप करके रख सके, तो ये उनका बिजनेस मॉडल है।
0: अरे वाह, तो ये तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट मेंटली फाइन रहने के लिए आप खुद क्या करते हैं?
1: सो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो युवा लोग हैं वो ये मोबाइल्स पर बहुत टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं
0: जी,
1: जाने और अनजाने में, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जिंदगी में इम्पोर्टेंट पल होते हैं जो गवा देते हैं लोग जस्ट बिकॉज ये मोबाइल में हुक्ड अप रहते हैं ऑल द टाइम।
0: बल्कि अगर आपको इंटरप्ट करके मैं अपनी बात कहूँ तो कई बार रात को सोते हुए भी ये लगता है कि चलो यार एक यूट्यूब का शॉर्ट्स तो देख के सोएं, और वो करते करते क्या होता है फिर वो रात को काफ़ी टाइम खींच जाता है।
1: हाँ,
0: सेल्फ डिसिप्लिन मेरे ख्याल बहुत जरूरी होती
1: है, बहुत ज़रूरत होती है। एंड मैं जब 75 हार्ट चैलेंज कर रहा था तब भी ये एक बहुत बड़ी पाबंदी थी मेरे पे कि ये कैसे मैं ओवरकम करूँ, तो मैंने उस टाइम क्या किया था कि हर डिवाइस, हर मोबाइल में, एंड्रॉयड हो कि एप्पल की हो, उनकी एक है डिजिटल वेलबींग करके एक है, मतलब सेटिंग्स पे अगर उस पर क्लिक करें तो आपको वार्निंग देती रहती है कि देखो आपने इतना टाइम स्पेंड कर दिया अपने मोबाइल पे, तो इससे क्या होता है ना एक सेंस ऑफ गिल्टीनेस आप में जनरेट करने की कोशिश किया जाता है।
0: जी, एक रुचि की बात बताऊं, अगर आप देखें तो ये स्क्रीन के साइज जो है ये प्रोग्रेसिवली कम होते जा रहे हैं। मतलब मुझे याद है जब बचपन में हम जाते थे 3 घंटे की फिल्म देखने, तो सारे 300-350 लोग इकट्ठे बैठ करके और फिल्म देखते थे बड़े से पर्दे पर
1: जी।
0: वो फिर छोटा होते होते टीवी बना, टीवी छोटा होते होते लैपटॉप बना, लैपटॉप छोटे छोटे होते होते अब तो एंड्रॉयड फोन बन गया, जिसके अंदर आप वही सारी चीजें इतने से स्क्रीन पे देखते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी आंखों में एफर्ट उतना ही ज्यादा या स्ट्रेस ज्यादा होगा।
1: राइट राइट राइट। और सिंस आपने इसकी बात की है तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट भी इसके पीछे रहते हैं, ये जो लोगों को स्क्रीन टाइम में पकड़ के रखने के लिए। तो हम जो जीमेल का देखते हैं या कोई खाने का ऐप जैसे स्विगी वगैरह देखते हैं, उसमें जो आइकॉन्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बटन्स
0: जी,
1: उनके पीछे भी काफ़ी कैलकुलेशंस किए गए, मेंटल कैलकुलेशंस किए गए थे कि साइकोलॉजिस्ट को यूज़ करके कि कहाँ पे कौन सा बटन प्लेस करें, कहाँ पे कौन सा कैसे कलर करें।
0: अच्छा, मतलब आपका कहना है कि कौन स्क्रीन पे कौन सी बटन किस फॉन्ट की और किस कलर की होगी और कहाँ प्लेस होगी।
1: हाँ, ये भी पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंड करके किया गया ताकि लोग बार बार आते रहे और उस पोजीशन उसको सीमलेसली टच करते रहे।
0: वाह, क्या बात है। इससे जुड़ा एक और इश्यू कल देखा था, जैसे कि अभी तो काफी लोग यूट्यूबर्स भी हो गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, और कंपनीज क्या है, एडवर्टाइजिंग से ही, लिहाजा यही बात है कि उसी से कमाते हैं।
1: हाँ,
0: कंपनीज से वो कमाते हैं ऐड डालने के लिए, और आपसे कमाते हैं ऐड फ्री देखने के लिए।
1: राइट राइट।
0: है ना।
1: यस।
0: अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और अब आप देखते होंगे कि जैसे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही तो नेचुरल इंटेलिजेंस कितनी कम हो गई है इन दिनों में, कितना बदल गया है इंसान, है ना। आइए सुनते हैं।

0: नमस्कार श्रोताओं, फिर से एक बार आपका स्वागत है युवा मंच में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी येट युवा ओम मिश्रा जी हैं साथ में, और हम उनसे बात कर रहे हैं। ही इज एन एआई एक्सपर्ट एज वेल एज
1: अ फिटनेस एंथुजियास्ट।
0: हमने बात की थी कि किस तरह से आजकल हमारी जिंदगी में कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और हर वक्त आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लाइफ में किस तरह से एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कितने की बात है ना, वेरी आयरोनिकल कि मनुष्य ने कंप्यूटर को बनाया और आज कंप्यूटर आपको किसी भी काम करने से पहले पूछता है कि या तो कैप्चा एंटर करो या प्रूव दैट यू आई एम नॉट अ रोबोट, यानी आप अपने आप को एक मनुष्य प्रूव करो। तो कल को ऐसा भी एक दिन आ सकता है कि कंप्यूटर्स माइट रूल आवर वर्ल्ड, बट इसके लिए हमें अपना मेंटल बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और इस सिलसिले में आइए हम ओम जी से पूछते हैं कि हाउ डज ही मेंटेन हिज मेंटल बैलेंस। आप क्या करते हैं अपने मेंटल फैकल्टीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए?
1: जी रवि जी, तो ये जो मेंटल हैबिट्स आ गए अपने पास, सो मैं काफ़ी टाइम से, मतलब अराउंड 2010 के आर पास मेरे दादाजी का देहांत हुआ था, उसके बाद ही मैंने काफ़ी मतलब रिसर्च करना स्टार्ट किया कि आत्मा क्या होती है
0: जी।
1: एंड उसके बाद मैंने खोजते खोजते मैं शिवानी बहन तक पहुंचा, बीके शिवानी बहन। तो उनके एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि आत्मा जो है, हम सब आत्मा। तब मेरा मन में लगा कि हम जीवित हैं, हम आत्मा भी हैं, ये कैसे हो सकता है
0: जी।
1: तब मैंने और मैं उनके थ्रू मैंने काफ़ी वीडियोस देखे, और फिर मुझे पता चला कि हमारे घर के पास भी एक सेंटर है ब्रह्म कुमारी का,
0: बहुत अच्छा।
1: और फिर मैं वहाँ गया एंड मैंने 7 डेज के कोर्सेज किए, एंड उसके बाद ही मैं बाबा का ज्ञान में आ पाया। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने मुरली सुनना स्टार्ट किया,
0: बहुत सुंदर।
1: स्टार्टिंग में मुझे उतना समझ में नहीं आया क्योंकि सिंधी में था मोस्ट ऑफ दैट, एंड मुझे हिंदी आती थी, सिंधी का कुछ वर्ड्स समझ में नहीं आते थे।
0: अच्छा।
1: पर धीरे धीरे जितना मतलब कंठस्थ होते गए हम एंड उसके अंदर जाते गए, मुझे गहराव समझ में आई मतलब मुरली की। एंड रोज मुरली सुनने के बाद मैं लाइफ में काफ़ी मिरेकल्स होने लगे।
0: अरे वाह। एंड कुछ इसके बारे में कोई कुछ एक एग्जांपल जो शेयर करना चाहिए?
1: का बहुत शौक था जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने, लेकिन मैं कुछ उस टाइम पे आईआईटी जे के प्रिपरेशन के टाइम पे मैं काफ़ी मोटा हो गया था, एंड आई वाज 120 kgs दैट टाइम। एंड लाइक मेरे क्लास में सब टाइप के लड़के थे, लंबे पतले छोटे मोटे सब थे, एंड सब मैं भागने गया, और ताज्जुब की ये बात है कि मैं सिलेक्ट हो गया।
0: अरे
1: फाइनल के लिए
0: बड़ी खुशी की बात है। तो ये आप एट्रीब्यूट करते हैं अपने उस मेंटल फैकल्टीज की वजह से?
1: यस। मैं खुद शॉक था कि इतना वेट होने के बाद भी, इतने क्लास में इतने टाइप के लोग होने के बाद भी मैं सिलेक्ट हो गया।
0: अरे
1: एंड फिर मैं गया फाइनल डे में, एंड फाइनल डे हम भागे, एंड आई गॉट 100 meters में गोल्ड मेडल मिला मुझे।
0: क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। वाह वाह वाह वाह। और
1: एंड इसके बाद से ही स्पोर्ट्स में तो इच्छा थी ही, एंड मैं और एक रोमांचक चीज़ थी कि मैं उसके बाद जेई का एग्ज़ाम दिया, मेंस देके आया। मेंस देने के बाद आई वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो न्यूज़पेपर के थ्रू टैली करते थे आंसर शीट के ठीक हुआ है कि नहीं।
0: अच्छा।
1: और उनको लगा कि मैं पास नहीं होऊंगा, तो मैं दूसरे एग्जाम्स के लिए बैठाने लगे, दूसरे एंट्रेंस एग्जाम के लिए,
0: मतलब वो एक प्लान बी तैयार करने लगे कि
1: प्लान बी एग्जैक्टली
0: इसमें सक्सेस ना हो तो।
1: यस। तो फिर लेकिन मुझे अपने पे भरोसा था, मुझे बाबा पे भरोसा था।
0: वाह।
1: मैं मेडिटेशन करता गया
0: जी,
1: और फिर जब रिजल्ट आई वो भी शॉक हो गए कि मैं सिलेक्शन हो गई।
0: तो ये पहली बार आपके साथ हुआ कि फिजिकल और मेंटल फैकल्टीज दोनों साथ में ही, 100 meters का गोल्ड मेडल और IIT के एंट्रेंस एग्जाम में।
1: यस। yes.
0: क्या बात है।
1: तो मेंस वैसे मेरा क्लियर हो गया और मैं एडवांस के लिए प्रोसीड किया। तो ये थी मेरी वहाँ। और आज के आज टाइम पे जहाँ पे हम मोबाइल में इतने डूबे हुए हैं
0: जी,
1: तो मैं अपना ये मेंटल हेल्थ संभालने के लिए मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करता हूँ, मेडिटेशन करने के बाद मुरली सुनता हूँ, बाय नॉट फेलिंग इट बाय एनी चांस।
0: वाह।
1: तो इससे क्या होता है कि मैं दिन एक पॉजिटिव नोट में शुरू हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे शरीर के चारों तरफ एक गोल्डन कवच आ गई है
0: एक ऑरा, एक कवरिंग है आपकी, पॉजिटिव कवरिंग आपके बॉडी के ऊपर।
1: फिर दिन में कुछ भी हो,
0: यानी आपने अपने ख्यालों को इतने सुंदर खूबसूरत तरीके से बनाया है कि वो सारा दिन वो कवच आपके ऊपर ही अवेलेबल रहे। आइए इसी बात पे हम सुनते हैं एक बड़ा सुंदर सा गाना, ख्यालों को यूं खूबसूरत बनाऊं।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है। सर
1: सावधान रहें, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।
2: वेलकम बैक टू युवा मंच, और आपका युवा आरजे रवि के साथ हैं युवा ओम। अभी जैसे आपने सुना, ख्यालों को खूबसूरत बनाएं। जैसे हम देख रहे थे कि आजकल कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा बोलबाला है हमारी ज़िंदगी में, और एक ऐसा स्टेज आ रहा है जब कंप्यूटर्स हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। बट कंप्यूटर को बनाया किसने? मनुष्य ने। अगर मनुष्य को कंट्रोल कंप्यूटर्स को करना है, तो लिहाजा उसको अपने थॉट को भी कंट्रोल करना है। और थॉट को कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है मेडिटेशन, जो हमें ओम जी ने बताया। आइए अभी उनसे पूछते हैं कि वो अपना बैलेंस किस तरह मेंटेन करते हैं, और आगे अगर इस फील्ड में किसी को जाना है तो वो क्या और कैसे जा सकते हैं।
3: सर कौन से फील्ड के बारे में आप बोल रहे हैं? फिटनेस?
2: अच्छा सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आप तो हरफन मौला है। आप तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी एक्सपर्ट हैं और फिजिकल फिटनेस। आपको श्रोताएं बता दें कि हम दोनों के बीच की दूरी कम से कम 2 फीट की रखी हुई है। उनके आर्म्स लेंथ के बाहर बैठा हूं ताकि कहीं गलती से नजदीक ना बैठ जाऊं। वैसे मैं आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछना चाहता था पहले, कि अगर आज का कोई युवा इस फील्ड में जाना चाहे तो उसको क्या, व्हाट शुड ही फॉलो, कैसे तैयारी करनी चाहिए और कैसे इसको परस्यू करना चाहिए?
3: जी रवि जी, सो किसी को अगर इस फील्ड में आना है, डेटा साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों में, तो वो सबसे पहले अपना पाइथन पढ़ना स्टार्ट करें। पाइथन एक कोडिंग लैंग्वेज है।
2: पाइथन? आज तक तो पाइथन में सिर्फ सांप को समझता।
3: एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पाइथन है, तो उसको लोग पढ़ना स्टार्ट करें। उसके लिए यूट्यूब पे काफ़ी फ्री रिसोर्सेस हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, लोगों को पैसे देके खर्च करके पढ़ने की जरूरत नहीं।
2: आपका कहना है कि यूट्यूब सिर्फ मेरे जैसे क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए नहीं है, इंस्ट्रक्शनल भी है।
3: जी जी।
2: सबसे पहले पाइथन पढ़ना शुरू करें, उसमें से इंस्ट्रक्शनल वीडियोस देखना शुरू करें। आगे
3: आगे उसके बाद एक कैगल करके एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा कम्युनिटी बैठती है।
2: अच्छा।
3: वहाँ पे लोग अपना कोड वगैरह डालते हैं, और लोग वहाँ पे दूसरों का कोड भी पढ़ते हैं, और वहाँ पे लोग कॉम्पिटिशन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं।
2: अरे वाह।
3: और उससे नौकरियाँ भी लगती हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ,
2: तो यानी सिर्फ यूट्यूब से पढ़कर ही आपकी नौकरी तक लग सकती है?
3: यूट्यूब में पढ़ के कैगल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेके
2: जी।
3: हाँ, ज़रूर। और उसको छोड़ के भी, और एक प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन बोल के, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म।
2: ओके।
3: तो वहाँ पे क्या होता है कि काफ़ी जॉब पोस्टिंग आती है। ये
2: तो आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है?
3: हाँ हाँ हाँ।
2: अच्छा,
3: तो लोग अपना रेज्यूमे बना सकते हैं एंड प्रोफाइल वहाँ पे पोर्टफोलियो बना के डाल सकते हैं, और फिर अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए।
2: जी।
3: तो उसके थ्रू काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। बाकी कंपनी से काफ़ी करियर पेजेस होते हैं।
2: अच्छा।
3: उसमें भी डिस्प्ले होता है कि किसको AI इंजीनियर चाहिए या AI कंसल्टेंट चाहिए, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और
2: तो यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा, तो ये क्या प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, या जैसे अगर कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया तो जैसे पुराने ज़माने में होता था, चलो टाटा बिरला ज्वाइन कर लिया तो थ्रू आउट आप उस कंपनी के साथ रहेंगे, वैसा होता है, या आजकल प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है कि एक प्रोजेक्ट दिया आपको वो ख़त्म, तो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट सा?
3: या तो दो टाइप के जॉब्स होते हैं, एक तो फुल टाइमर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं
2: जी,
3: लेकिन उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन GD जैसे बोलते हैं, उसमें क्लियरली मेंशन रहता है कि वो जॉब किस टाइप का है। मोस्टली जो जॉब्स के लिए लेते हैं लोग, वो फुल टाइमर्स जॉब्स होते हैं।
2: अच्छा।
3: और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के लिए भी वहाँ पे काफ़ी naukri.com हो गया कि monster.com हो गया, उन सारे वेबसाइट्स में भी कॉन्ट्रैक्ट बेस मिलते हैं, बट जनरली लोग जो जाते हैं वो फुल टाइमर्स के लिए जाते हैं, एंड मोस्टली जॉब्स जो होते हैं वो फुल टाइमर्स की होती है।
2: तो एक बात बताइए, मतलब ये अब जैसे मुझे अचानक कोई बोले कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट, तो ओवरनाइट तो नहीं आ सकता?
3: नहीं नहीं।
2: तो ये बल्कि स्कूल टाइम से ही किसी बच्चे की प्रवृत्ति अगर ऐसे हो तब इट विल बी ईजियर, या ऐसा फील्ड है जो आप से यू कैन ब्लूम लेट, आप बाद में भी आ सकते हो?
3: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फील्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको बचपन से ही कंप्यूटर में होना है। आप इवन आपका किसी का करियर अगर एग्रीकल्चर में है
2: जी,
3: या किसी का करियर अगर इसमें क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल मटेरियल का है, सिविल इंजीनियर है, वो लोग भी आ सकते हैं इसमें. जस्ट आपको पाइथन और पाइथन में आपको थोड़ा पॉलिश करना है अपना स्किल को
2: जी,
3: और उसके बाद थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के आपको कैगल हो गया या हो गया लिंक्डइन पे अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा. उसके थ्रू आप हाईलाइट कर सकते हो कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे कि जॉब के लिए.
2: अच्छा, तो इसमें स्टार्टिंग में कई रिजेक्शंस भी होती होंगी.
3: ज़रूर.
2: क्योंकि कहते तो हैं ट्राई ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड. अच्छा, अभी हम आते हैं आपके सेकेंड पार्ट पे,
3: फिटनेस,
2: फिजिकल फिटनेस.
3: Yes.
2: अब देखिए, हमारे कंट्री भी धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ जा रहा है अभी. जैसे आप देख रहे हैं, एक जमाना वो था जब एक सिंगल मेडल लाने के लिए ओलंपिक्स में हम पूरी मतलब देश एक हो जाता था. मुझे याद है 96 में लियांडर पेस ने टेनिस में, 2000 में शायद करनाम मलेश्वरी जी थी जो वेटलिफ्टिंग,
3: राइट
2: है ना. और उसके बाद शायद हर साल मतलब हर चार साल में एक या दो मेडल ही थे. और बलगत पिछले ओलंपिक्स में ही शायद हमने 6 या 7 जीते थे. अभी तक हम डबल फिगर्स तक नहीं पहुंच पाए. बट एक चीज ये जरूर हो रहा है कि द कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स जो है वो इंडिया में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. तो फिजिकल फिटनेस के लिए आप अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहे तो आप क्या सलाह देंगे उसको?
3: जरूर. सो फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने कॉलेजेस के लिए स्कूल्स के लिए एक स्पोर्ट्स कोटा करके रखा है.
2: अच्छा.
3: ताकि लोगों को उसके थ्रू जॉब्स मिल सके आगे जाके. और उसको छोड़ के कॉलेजेस एंड
2: पर इसके लिए तो आपको कुछ एक लेवल तक कंप्लीट किया होना चाहिए ना, तभी तो आप उस कोटा के लिए एलिजिबल होंगे.
3: वो कोटा आप अगर आपके स्कूल लेवल में या इंट्रा स्कूल लेवल पे आपने किया है तो आप उसके लिए लेवल अप हो सकते हो. बाकी उसको छोड़ के भी अगर आप कभी काफ़ी कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे फिटर कम्युनिटी एक है स्पोर्ट्स को लेके फिटनेस को लेके, वो काफ़ी लोगों को इंकरेज करती है कि वो आगे चल के स्पोर्ट्स को प्रमोट करे.
2: अच्छा.
3: नॉट ओनली लाइक मतलब क्या रीजन वाइज स्टेट वाइज इवन अंडर 19 अंडर 20 ऐसे करके वो लेवल अप करते रहते हैं. और बाकी एक है कि मतलब कम्युनिटीज तो एक हो गई स्पोर्ट्स के लिए, बाकी अब स्टेडियम्स काफ़ी हैं जो स्टेडियम्स के थ्रू भी लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलती है. स्टेडियम्स एंड इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी ट्रेनिंग्स होती है. जैसे मुंबई काफ़ी फेमस है क्रिकेट्स के लिए, एंड अब हैदराबाद आओगे तो इट्स वेरी फेमस फॉर बैडमिंटन. यहाँ पे गोपीचंद बैडमिंटन है,
2: वेरी नाइस.
3: सो उस टाइप का मतलब हर सिटी में एक एक स्पेशलिटी होती है स्पोर्ट्स को लेके. एंड अब कोलकाता जाओगे तो फुटबॉल को भी वो काफ़ी इंकरेज.
2: मैं बोलने ही वाला था अब कोलकाता और फुटबॉल का नाम अभी तक आया नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है.
3: सो वहाँ पे डिफरेंट क्लब्स होती हैं, क्लब्स जहाँ पे लोगों को इंकरेज करते हैं. एंड और एक है कि एक यूथ क्यूबिनेटर करके एक है कम्युनिटी जो स्पोर्ट्स के लिए हेल्प भी करती है लोग, यूथ क्यूबिनेटर्स करके.
2: ओके. तो ये तो आपने जनरल बात बताई, अब मैं बिल्कुल आप पे ही आता हूँ. आपने हैदराबाद की बात बताई, आपने कैलकटा की बात बताई, तो आप अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में कुछ बता सकते हैं कि हाउ यू केम टू बी एसोसिएटेड विद दीज टू सिटीज?
3: राइट राइट. सो कमिंग टू कोलकाता, मैं लाइक इट्स द प्लेस वेयर माई पेरेंट्स वर्क, तो वहाँ से मैं तो वहाँ पे मेरा स्कूलिंग वगैरह हुई थी. तो उधर मेरी काफ़ी स्पोर्ट्स के लेके लाइक फुटबॉल में मेरी काफ़ी रुचि रही है बचपन से, फुटबॉल एंड क्रिकेट. तो मैं काफ़ी कंट्रीब्यूटिंग था अपने कॉलेज में सॉरी स्कूल में क्रिकेट में, इंट्रा क्रिकेट एंड क्रिकेट खेलने में. बाद में जाके मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट आ गई, तो मैं काफ़ी फुटबॉल इंटर हाउस हो गया, इंटर स्कूल हो गया, फुटबॉल में भी कंट्रीब्यूट करने लगा. एंड जैसे जैसे मैं वहाँ से निकल के यहाँ हैदराबाद आया, बिकॉज मेरी जॉब लोकेशन हैदराबाद थी
2: जी,
3: तो मैं उसके बाद मैराथन्स में काफ़ी इंटरेस्ट होने लगा. तो लास्ट ईयर मैं 21 किलोमीटर्स की मैराथन कंप्लीट की.
2: यहाँ पे मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैराथन भी मैंने देखा है इंडिया में काफ़ी मतलब अप एंड कमिंग, बहुत पॉपुलर हो रहा है. मैंने देखा है स्पेशली मिडिल लेवल एज के लोग भी आजकल रनिंग पे बहुत ध्यान दे रहे हैं. क्या कारण हो सकता है इसका? इज इट बिकॉज इट इज लाइक वेरी चीप, यू डोंट नीड मच ट्रेनिंग, ऐसा कुछ है? क्योंकि देखिए कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए आपको जैसे कुछ बैट बॉल रैकेट कुछ तो खरीदना पड़ता है, लेकिन रनिंग के लिए क्या है, आपको रनिंग शूज खरीद लिए तो और आपके अंदर जिगर होना चाहिए.
3: राइट. सो मैराथन को लेके ना रिसेंटली वर्ल्ड वाइड एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है. जैसे कि आपको पता होगा कि आयरन मैन करके एक कॉन्सेप्ट है.
2: जी जी yes.
3: जो पहले आती है मतलब फले होता है उसमें अपना साइकिलिंग, फिर स्विमिंग, फिर रनिंग.
2: जी.
3: सो रनिंग जो है ना, मतलब अभी काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, बहुत सारे एनजीओज भी हैं, वो लोग कम टुगेदर करके डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं रनिंग को फोकस करके. जैसे एक पिंक मूवमेंट हुई थी पुणे में
2: जी,
3: वो ब्रेस्ट कैंसर को बचाने के लिए
2: उसके
3: हाईलाइट करने के लिए हुई थी. तो वो भी मैराथन के बेसिस पे हुई थी हर साल.
2: बल्कि यहाँ फिर से थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा.
3: sure.
2: जैसे आपने क्रिकेट की बात कही तो ग्लेन मैकग्रा वो हर साल अपने वाइफ जो कि ब्रेस्ट कैंसर से शी हैड डाइड उनके बिहाफ पे एक टेस्ट हमेशा वो खेलते हैं जिसमें वो उसको पिंक टेस्ट भी बोलते हैं.
3: राइट राइट राइट.
2: बिकॉज आई थिंक द कलर पिंक इज एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर.
3: यस यस.
2: तो सॉरी, हाँ मैंने आपको इंटरप्ट किया था.
3: हाँ
2: बताएं.
3: और लास्ट ये है कि अभी एक रिसेंटली हैदराबाद में भी एक डेविल सर्किट करके स्टार्ट हुई है जहाँ पे डिफरेंट पीपल ऑफ मैराथन दे कम टूगेदर एंड दे कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर टू सी लाइक हु इज द फास्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आयरन मोस्ट मैराथन पर्सन इन द वर्ल्ड. सो हैदराबाद इंडिया में, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, इसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में ये कॉम्पिटिशन हो रहे हैं. और इसको छोड़ के भी अभी इंडिया में एक इंडिया लेवल का मैराथन भी आने वाला है जहाँ पे लोग स्टार्ट करेंगे. मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी एक मैराथन होगी, लंबा मैराथन. तो उसके भी अभी प्लानिंग चालू है मैराथन कम्युनिटी के अंदर.
2: पर एक बात बताइए, इतनी लंबी मैराथन हो भी सकती है? मैराथन मतलब एज इन 42 का ही होता है ना?
3: राइट राइट राइट, 42 का होता है. लेकिन ये क्या है कि एक ग्लोबल लेवल पे नया इंडिया के अंदर एक नया ट्रेंड स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ताकि कुछ वंदे भारत मैराथन उसका नाम होगा ऐसा, जहाँ पे वो लोग मतलब नॉट ए सिंगल डे, ब्रेक्स होंगे, चेक पॉइंट्स होंगे, चेक पॉइंट्स कवर करते हुए मैराथन के लोग आएंगे लास्ट तक. तो जैसे कि अल्ट्रामैन है, अल्ट्रामैन में क्या होता है कि पहले वो जाते हैं साइकिलिंग करके, साइकिलिंग करने के बाद वो स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग करने के बाद लास्ट का पड़ाव जो होता है वो भागने का होता है, 17 घंटे के अंदर करना होता है. सिमिलरली अल्ट्रामैन एक आया है जो 3-4 दिन तक स्ट्रेच करता है मैराथन.
2: तो एक इवेंट एक दिन में, ऐसे
3: ऐसे इस टाइप का. तो सिमिलरली इंडिया में एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं उसको, जो कश्मीर टू कन्याकुमारी का एक रनिंग होगा, उसमें स्विमिंग होगा, उसमें इवन ये होगा कि क्या बोलते हैं, बाइकिंग होगा. तो ये सब मिला के कॉम्पिटिशन आने वाला है.
2: वेरी नाइस. तो हमने सुना आपसे कि आप अपना फिजिकल फिटनेस और मेंटल बैलेंस दोनों कैसे मेंटेन करके रखते हैं. तो श्रोताओं आइए एक गाना सुन लिया जाए, कर्म करो ऐसे. अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह मेंटल और फिजिकल बैलेंस मेंटेन किया जा सकता है ताकि आप ऐसे कर्म करें ताकि लोग आपको याद रखें. आप सुन रहे हैं युवा मंच 107.8 FM.

0: दोस्तों वेलकम बैक, आप सुन रहे थे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर युवा मंच, और आज हमारे साथ जुड़े थे ओम मिश्रा जी, जो कि न केवल एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं बल्कि फिजिकल फिटनेस के एक्सपर्ट भी थे, और उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से हमें बताया कि किस तरह अपनी बॉडी को फिट, माइंड को ट्यून्ड, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अगर किसी ने जाना है तो कोई युवा किस तरह बिना पैसे खर्च किए आराम से कैसे उस फील्ड में जा सकता है। यानी उन्होंने आम के आम, गुठलियों के दाम दोनों कवर करते हुए बड़े प्यार से बताया, पर मुझे लगता है एक सेशन इनके लिए कम था। मुझे खुद भी आज इसको होस्ट करते हुए मैंने खुद कई ऐसी नई चीज़ें सीखी जो मुझे कभी वैसे ही पता न थी। तो ऐसा सोचते हैं कि क्यों ना इन ओम मिश्रा जी को हो सकता है हम बाद में भी बुलाएं। दोस्तों आपको ये प्रोग्राम कैसे लगा अगली बार ज़रूर बताइएगा, और हमें रहेगा आपके फ़ोन का इंतज़ार 94 1415 1415 पे। अगली बार ज़रूर कॉल करिएगा। तो आज हम लेते हैं अलविदा आपसे युवा मंच पर, और हम करते हैं धन्यवाद ओम मिश्रा जी का। ओम जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग सच वंडरफुल इनसाइट्स विद अस, एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अवेलेबल रहेंगे, कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़े। अच्छा, बिफोर एंडिंग मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? एनी मैसेज यू वुड लाइक टू लीव विद अस?
1: जरूर रवि जी, मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि हम जो इतना इस आधुनिक दुनिया में इतना खो जा रहे हैं, कभी कभार हम अपना थोड़ा सा भी टाइम अपने फिटनेस को दें, इवन इफ लाइक थोड़ा सा, मतलब 15 मिनट भी हो, 10 पुशअप कर लो या थोड़ा सा जॉगिंग के चले जाओ, तो इससे क्या होता है कि पूरा बॉडी ना वार्म अप रहती है नेक्स्ट डे के लिए। तो बस यही थोड़ी सी गुजारिश है लोगों से कि वो
0: आपके इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, आजकल फोन स्मार्ट हो गया है और आदमी डंब हो गया है, ये बात ना हो। तो यहाँ हम क्लोज करते हैं आज का युवा मंच प्रोग्राम, और ओम जी को थैंक्स देते हुए आप सभी सुनते रहिए 107.8 FM रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

वो कहे गुजरात मेरा, एक का पंजाब घर है, एक का मद्रास डेरा। आग में जलता बिहार, जोश में बंगाल है, उस तरफ देखो के सरहद पर खड़ा भोचाल है।

मत बनो फिर से गुलाम, एक दिल हम एक लौ हम एक हमारी सुबह शाम। रंग कितने ही हमारे एक मगर तस्वीर है, जो हमें बांधे वो धागा है नहीं जंजीर।

0: गुड इवनिंग नमस्ते, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। तो चलिए दोस्तों, कुछ कहानियां लेकर आएंगे हम और रूहानी, साथ ही साथ बातचीत करने वाले हैं। यदि आपका कॉल आता है तो हमें खुशी होगी, ज़रूर कॉल कीजिए। लेकिन सबसे पहले लकड़हारे और भाग्य का विचित्र गधा, ये कहानी लेकर आ रहे हैं मैं और रूहानी आपके लिए सिर्फ उड़ान में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM।

0: बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे, ये जानवर मुझे मार डालेगा।
1: धर्मदास जान बचाकर भाग रहा था, उसके पीछे एक विशाल काय जंगली कुत्ता दौड़ रहा था।
0: हाय भगवान, आज मेरी मौत आ गई। इतने साल जंगल में लकड़ी काटता रहा, आज पहली बार।
1: अचानक धर्मदास का पैर एक जड़ से अटक गया, वो जमीन पर गिर पड़ा। कुत्ते ने झपट्टा मारा, बस अब कुछ ही पल बाकी थे। तभी कुत्ते ने अपनी गति रोक दी, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो तेजी से वहां से भाग गया। धर्मदास ने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक रहस्यमयी सा गधा खड़ा था, लेकिन ये साधारण गधा नहीं था।
0: तू कौन है? तूने मेरी जान क्यों बचाई?
2: मैं साधारण गधा नहीं हूँ, मेरा नाम हेमंत है, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ।
0: गधा बोल रहा है? मैं पागल तो नहीं हो गया?
2: तू पागल नहीं है, सुन मेरी कहानी। मैं कभी एक राजकुमार था, एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे इस रूप का श्राप दे दिया। सैकड़ों सालों से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ।
0: राजकुमार, तू सच कह रहा है?
2: सच, और श्राप तभी टूटेगा जब कोई नेक दिल इंसान मुझे बिना किसी स्वार्थ के अपना लेगा।
1: धर्मदास को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो गरीब था, बेबस था। पास में केवल एक बोरी लकड़ी थी जो वो कल बाजार में बेचने वाला था।
0: ठीक है, तू मेरे साथ चल, मेरे पास तुझे खिलाने को कुछ नहीं है, मैं खुद भूखा रहता हूँ। लेकिन तूने मेरी जान बचाई, अब मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा।
2: धन्य है तू मनुष्य, तू सच में नेक है।
3: आज भी वो नहीं लौटा? पूरी रात जंगल में कहीं उसे कोई जानवर तो नहीं खा गया? हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है?
0: सावित्री, देख मैं क्या लाया हूँ।
1: धर्मदास के पीछे एक अजीब से गधा खड़ा था। सावित्री पहले तो डर गई, फिर गुस्से से बोली,
3: तुम पागल हो गए हो धर्मदास? हमारे पास खुद खाने को नहीं है, और तुम एक और पेट ले आए, ये गधा क्या खाएगा?
0: सुन सावित्री, ये साधारण गधा नहीं है, ये
2: मुझे कुछ नहीं चाहिए धर्म भगिनी, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए।
3: सच में बोलता है ये?
1: उधर गांव के सबसे अमीर आदमी पुरंदर के घर में चीखें सुनाई दे रही थी।
4: ये धर्मदास कैसे अचानक इतना बदल गया? कल तक मर रहा था, आज उसके पास एक अनोखा गधा है। मैंने सुना है वो गधा रोज 10 बोरी लकड़ी काट लाता है।
5: और सुनो, उस गधे का दूध भी अमृत जैसा है। किसी ने बताया उसके दूध से बनी मिठाई खाने के बाद बीमारियां ठीक हो जाती है।
4: दूध? गधे का दूध? ये तो असंभव है।
5: मैंने खुद सुबह देखा, धर्मदास की पत्नी दूध बेच रही थी बाजार में, लोग पागलों की तरह खरीद रहे थे, 4 सिक्के में एक छोटी सी कटोरी।
4: ये गधा मेरे पास होना चाहिए, मैं इसका रहस्य जानूंगा।
5: तो जाओ ना उसके घर, दोस्ती करो, पता करो ये सब कैसे हुआ। या तो तुम जाओ, या फिर ये गधा हमेशा के लिए उसी के पास रहेगा। अगले महीने राजा का कर जमा करने का समय है, अगर धर्मदास ने कर चुकता कर दिया तो लोग गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन जाएगा, तुम्हारी क्या इज्जत बचेगी।
4: ठीक है, मैं जाऊंगा और मैं उस गधे का रहस्य निकाल कर रहूंगा। धर्मदास भाई, राम राम। देखो तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अरे भाई, पड़ोसी हैं हम, कभी नाराजगी हो गई हो तो माफ करना। बस इतना बताओ, ये गधा कहाँ से लाए?
0: ये कोई साधारण गधा नहीं है पुरंदर जी, ये राजकुमार हेमंत हैं, श्रापित हैं।
4: क्या मजाक करते हो भाई, राजकुमार गधा?
2: मैं सच कह रहा हूँ पुरंदर, मुझे एक तांत्रिक ने श्राप दिया था, अब मैं एक अच्छे इंसान के

0: रहा हूँ। मैं फिर लौटूंगा, लेकिन जब लौटूंगा तो किसी और रूप में।
1: नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हो।
0: धर्मदास, सावित्री, तुम्हारे प्यार ने मुझे बदल दिया है। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, बस विश्वास रखो।
2: अगली सुबह हेमंत गायब था। उसकी जगह एक छोटा सा बच्चा रो रहा था, 10 साल का लड़का, चमकती आंखों वाला, जिसके माथे पर राजकुमार का तिलक था।
1: ये हेमंत है? ये तो
0: माता, मैं हेमंत हूँ। श्राप टूट गया, अब मैं मनुष्य हूँ। क्या तुम मुझे अपना बेटा बनाओगी?
3: तुम हमारे बेटे हो हमेशा।
2: जब पुरंदर को ये बात पता चली तो वो आग बबूला हो गया। गधा गायब, एक बच्चा आया और धर्मदास को राजा से सम्मान मिलने वाला था। उसकी जलन सातवें आसमान पर थी।
3: कल धर्मदास राजा हर्षवर्धन से मिलने जा रहा है। अगर राजा को सब पता चल गया तो पुरस्कार मिलेगा, और हमारी तो हमने उसकी बकरियां चुराई थीं, वो भी पता चल जाएगा।
1: तो क्या करोगे?
3: आज रात ही हम धर्मदास के घर में घुसेंगे और उस बच्चे को अगवा कर लेंगे। बच्चे के बिना धर्मदास क्या सबूत देगा?
1: ये तो बहुत बड़ा अपराध है पुरंदर।
3: चुप, मैंने तय कर लिया है।
2: रात के अंधेरे में पूरा गांव सो रहा था। पुरंदर अपने दो साथियों के साथ धर्मदास की झोपड़ी के पास पहुंचा।
3: अंदर घुसो, बच्चे को उठाओ और ले आओ।
4: मालिक, ये तो गलत है।
3: काम कर, नहीं तो तेरा भी काम तमाम।
2: वे अंदर घुसे, सामने स्वयं राजा हर्षवर्धन खड़े थे।
4: पुरंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है?
0: महाराज, ये तो मैं। महाराज, मैंने आपको सब बता दिया है। इसने मेरी बकरियां चुराई, इसने हेमंत को मारने की कोशिश की, और अब मेरे बेटे को अगवा करना चाहता है।
3: महाराज, मुझे माफ कर दो, जलन में मैंने ये सब किया, मुझे माफ कर दो।
4: तुझे कारावास की सजा सुनाई जाती है पुरंदर। तेरी सारी जायदाद जब्त, और धर्मदास को इस बहादुरी और सच्चाई के लिए इनाम दिया जाएगा। धर्मदास, तूने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसकी नेकी उसे बड़ा बनाती है। आज से तू रामपुर का नेतृत्व करेगा।
0: महाराज, मैं इस योग्य नहीं हूँ।
4: तू इस योग्य है, और तूने मुझे सिखाया कि एक सच्चा इंसान कैसे दूसरों का भला करता है।
0: माँ, पिताजी, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा, तुमने मुझे जीवन दिया।
2: सच्चाई और नेकी का रास्ता कभी खाली नहीं जाता। भले ही देर लगे, लेकिन मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, जबकि प्यार और त्याग उसे दैवत्व प्रदान करते हैं। असली जादुई ताकत कोई गधा या गाय नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव है।
5: रघुवीर, अब भी समय है। पूरे गांव के सामने स्वीकार कर लो कि तुमने उस चुड़ैल इंद्रावती के साथ मिलकर कितनी और मासूम लड़कियों की बलि देने की योजना बनाई थी। सच बोलोगे तो शायद महाराज तुम्हें माफ कर दें।
6: मुखिया जी, जिस सच को देखने के लिए आंखें नहीं कलेजा चाहिए, वो सच मैं कह चुका हूँ। मौत के इस दरवाजे पर खड़े होकर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने किसी को नहीं मारा।
7: झूठ मत बोलो। जब से तुम उस काली पहाड़ी की तरफ जाने लगे, गांव की खुशियां छिन गईं। तुम हत्यारे हो।
6: सुमन, रोना मत, मेरी बात याद रखना। जो बीज जमीन में दब जाता है, वही कल को पेड़ बनता है। मेरा अंत व्यर्थ नहीं जाएगा।
8: आपने हमेशा सबका भला चाहा रघुवीर, फिर विधाता ने आपके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया?
9: साहस रखो रघुवीर, तुम्हारी दी हुई ये आहुति व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी बहन का श्राप बस टूटने ही वाला है।
6: इस निर्जन वन में ये कैसी शांति है, ऐसा लगता है जैसे कोई तारा जमीन पर उतर आया हो।
9: आगे मत आना लकड़हारे, लौट जाओ, वरना तुम्हारा जीवन भी इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा।
6: आप कौन है देवी? इस डरावने सन्नाटे में अकेले क्या कर रही हैं? क्या आपको डर नहीं लगता?
9: डर उसे लगता है जिसे मौत का डर हो। मैं तो खुद एक चलती फिरती मौत हूँ। क्या तुमने सोनापुर की उन लड़कियों के बारे में नहीं सुना जो सोते सोते मर गई?
6: सुना है, पूरा गांव खौफ में है। लोग कहते हैं कोई अदृश्य साया उन्हें ले जाता है।
9: वो साया मैं हूँ रघुवीर। मेरे पिता ने मुझे एक ऐसी शक्ति दी थी जो किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन इस शक्ति की जड़ें खून से सींची गई हैं। जब भी मैं किसी की मुराद पूरी करती हूँ, बदले में एक निर्दोष की बलि चढ़ जाती है। ये मेरा अभिशाप है।
6: तो आप रुक क्यों नहीं जाती? आप मना क्यों नहीं कर देती?
9: चाह कर भी नहीं। जो लालची इंसान मुझसे कुछ मांगता है, उसकी मांग इस काली शक्ति को सक्रिय कर देती है, मैं बस एक जरिया हूँ।

0: कैदी हूँ।
1: यानी इंसान का लालच ही उन मौतों का कारण है। आपकी आंखों में पश्चाताप है इंद्रावती, पाप नहीं। क्या इसका कोई अंत नहीं?
0: है, लेकिन वो असंभव है। यदि कोई ऐसा मनुष्य मिले जो अपनी इच्छा के लिए नहीं बल्कि दूसरों के दुख दूर करने के लिए अपनी जान देने का संकल्प ले ले, तो ये शक्ति नष्ट हो जाएगी। पर इस दुनिया में ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति कहाँ मिलेगा?
1: मुझे समय दीजिए इंद्रावती, मैं कल फिर आऊँगा।
0: अगले दिन जब रघुवीर उसी स्थान पर पहुँचा तो वहाँ इंद्रावती नहीं बल्कि एक युवती कुसुम खड़ी थी। मेरा नाम कुसुम है, मैं इंद्रावती की छोटी बहन हूँ। उसने मुझे बताया कि एक इंसान है जिसके मन में करुणा है, क्या वो तुम ही हो?
1: हाँ, मैं रघुवीर हूँ। मैं इस अभिशाप को खत्म करना चाहता हूँ। मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा?
0: क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? कल रात तुम्हारे ही मित्र घनश्याम ने गुप्त रूप से आकर अपने व्यापारिक सफलता के लिए वरदान मांगा है।
1: घनश्याम ने? क्या उसे पता है कि इसकी कीमत क्या होगी?
0: उसे पता है कि कोई मरेगा, पर उसे लगता है कि वो कोई और होगा। उसे नहीं पता कि आज रात उसकी अपनी बेटी नैना की जान जाने वाली है। रघुवीर, अगर तुम इंद्रावती को मुक्त करना चाहते हो तो तुम्हें पूर्णिमा की रात अपनी ऊर्जा उसे सौंपनी होगी। वो फूल जो उसकी शक्ति सोख लेगा तुम्हारी जान भी ले लेगा।
1: अगर एक जीवन देकर सैकड़ों बेटियों की जान बचती है और इंद्रावती को इस नर्क से मुक्ति मिलती है तो मुझे ये सौदा मंजूर है।
2: भाग जाओ रघुवीर, आज की रात मुझ पर हावी है, शक्तियां अपनी बलि मांग रही हैं।
1: मैं भागने नहीं आया इंद्रावती, मैं यहाँ उपहार लेकर आया हूँ। तुम मुझसे मेरा जीवन मांग लो, पर बदले में इस गांव को और खुद को इस अंधकार से मुक्त कर दो।
2: नहीं रघुवीर, पीछे हटो, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती।
0: रघुवीर, ये नीला फूल पकड़ो और अपनी पूरी इच्छा शक्ति इसमें लगा दो। ये फूल तुम्हारी आत्मा की पवित्रता से उसकी शक्तियों को खींच लेगा। जैसे ही रघुवीर ने फूल को स्पर्श किया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। इंद्रावती की आंखों की लाली खत्म हो गई और वो एक सामान्य स्त्री की तरह गिरकर रोने लगी। घटना के बाद गांव में शोर मच गया। घनश्याम की बेटी नैरा बीमार तो हुई पर मरी नहीं। घनश्याम समझ गया कि रघुवीर ने कुछ किया है।
3: तुमने क्या किया रघुवीर? मेरा सारा धन मिट्टी में मिल गया, मेरा व्यापार उजड़ गया, तुमने उस औलत की शक्ति छीन ली।
1: घनश्याम, तुम्हारी बेटी की जान बच गई, क्या तुम्हें इसकी खुशी नहीं?
3: मुझे पैसा चाहिए था, तुमने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं गांव वालों को बताऊंगा कि तुम उस डायन के साथ ही हो।
0: घनश्याम ने पूरे गांव में झूठ फैला दिया। मामला महाराज विक्रमादित्य के पास पहुंचा।
4: रघुवीर, तुम्हारे विरुद्ध आरोप है कि तुमने निषिद्ध शक्तियों का प्रयोग किया और गांव की शांति भंग की, क्या तुम्हें कुछ कहना है?
1: महाराज, मैंने केवल वही किया जो न्याय संगत था, शक्तियाँ अब समाप्त हो चुकी हैं।
0: महाराज, इस व्यक्ति के चेहरे पर कोई डर नहीं है। जो अपराधी होता है वो न्याय से कांपता है, लेकिन इसके चेहरे पर संतोष है। कुछ तो रहस्य है जो छिपाया जा रहा है।
4: रानी, जनता न्याय चाहती है, अगर ये दोषी पाया गया तो सजा मृत्यु दंड ही होगी।
0: फांसी का समय आ चुका था, जल्लाद ने रस्सी पकड़ी थी। तभी रानी तारावली के इशारे पर कुसुम और घनश्याम को सामने लाया गया। महाराज, अंतिम निर्णय से पहले इस व्यक्ति घनश्याम की गवाही सुन लीजिए, जिसे मैंने सत्य उगलवाने के लिए विशेष कक्ष में रखा था।
3: महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं लालच में अंधा हो गया था। रघुवीर ने तो मेरी बेटी की जान बचाई है, उसने अपनी जान दांव पर लगाकर उस अभिशाप को खत्म किया जो वर्षों से गांव को डस रहा था।
4: रघुवीर, तुमने राज्य के लिए जो किया है वो कोई वीर योद्धा भी नहीं कर पाता। तुम अपराधी नहीं, इस राज्य के रक्षक हो।
0: पूरा सोनापुर गांव रघुवीर के जयकारों से गूंज उठा। वो लकड़हारा जिसे लोग कल तक मौत का दूत समझ रहे थे, आज उनके लिए जीवन का मसीहा बन चुका था।

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बनाएंगे।

0: चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है?
1: मर गया रे, इस धोबी ने तो कपड़े लात लात कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान।
2: इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन,
0: ले खा खा खा के तो गेंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल।
1: ओह हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ।
3: यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए।
2: ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए।
3: मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं।
4: हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर?
1: भगवान तो ये हो नहीं सकते, ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है।
3: अरे क्या सोच रहे हो गधे, मांगो क्या मांगते हो?
4: मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ।
3: अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे?
4: अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग है, मेरे सींग क्यों नहीं है?
3: तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो।
4: मेरा सींग आपके पास है? इसका मतलब आप सच में भगवान हैं?
3: हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूँ।
4: तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं?
3: अरे नहीं नहीं, तुम तो गधे राज हो।
2: गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा,
4: भगवान मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है, मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चले प्रभु।
3: मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ गधे राज, ऐसा ही होगा।
2: गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया।
4: भगवान आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए, अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा।
3: हाँ गधे राज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो।
2: अब गधा वहाँ खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया।
5: कौन है ये गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है।
4: अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई, मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चलाया खाने के लिए।
5: आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत दिखना, चल निकल जा यहाँ से।
4: आज तो बुरा फंसा था, वो तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था।
2: कुछ दिन बीतते हैं, अब गधे को वहाँ बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हाल चाल जानने आए।
3: क्यों गधे राज, दिन तो मौत से बीत रहे हैं ना?
2: वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है,
4: भगवान मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ, मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान।
3: जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ।
2: ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए।
3: ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया, अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा।
2: अब गधा बहुत खुश हुआ, अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए।
3: ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज, तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है।
4: हम तो गाना गा रहे हैं भगवान, हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान।
3: लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है, और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा।
4: भगवान, तब तो ये सरासर जस्ती हुई, क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा?
3: गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है, ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो।
4: भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ, हमें हमारे धरती पर भेज दो, वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं।
3: जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ।
2: गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी,
0: चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, हैं? न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है।
2: गधा घबरा कर उठता है।
4: हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था?
0: अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है, और हाँ, दोबारा सो मत जाना।
4: चलो, सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ।
2: एक दिन,
5: भाई वाह, आज तो हरी हरी घास खाकर मजा आ गया, मेरा पेट तो भर ही चुका है, अब इस पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लूं फिर आगे चलूंगा।
2: ऐसा सोच गधा पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा, और आराम करते करते इधर उधर की उटपटांग बातें सोचने लगा।
5: मेरे जैसा बुद्धिमान इस जंगल में कोई नहीं, तभी तो समस्या आने से पहले मैं उससे बचने का रास्ता निकालता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मैं यहाँ बैठा हूँ और जंगल में आग लग जाए तो मेरा क्या होगा, मैं तो बेमौत ही झुलस के मर जाऊंगा।
2: तभी उसकी नजर जंगल के दूसरे छोर से उठ रहे धुएं पर पड़ी। धुआं देखकर गधा घबरा गया।
5: अरे, यह तो सचमुच जंगल में आग लग गई, इसका मतलब अब मैं मारा जाऊंगा? नहीं नहीं, इससे पहले कि आग मुझे अपनी चपेट में ले ले, मुझे यह जंगल छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागना चाहिए।
2: ऐसा सोच गधा घबरा कर उठा और तेजी से भागने लगा। गधे को इस तरह बेतहाशा भागते एक सियार ने उसे देखा। वह गधे को रोकते हुए पूछा,
6: अरे क्या हुआ गधे भाई, तुम इस तरह से क्यों भागे जा रहे हो, कोई खजाना मिल गया है क्या?
5: अरे फालतू की बातें मत करो, कोई खजाना लेकर नहीं भाग रहा मैं, अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ, वह देखो पीछे जंगल में आग लगी है।
2: इतना बोल गधा फिर भागने लगा। सियार ने देखा तो उसे कुछ दूर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया।
6: अरे हाँ, यहाँ तो सच में आग लगी है।
2: धुआं देखकर सियार भी घबरा गया, उसे भी डर हो गया कि कहीं वह इस आग में घिर ना जाए। यह सोचते ही वह भी गधे के साथ भागने लगा। भागते भागते सियार को कुछ सूझता है और वह रुक जाता है।
6: कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, हो ना हो मैं कहीं उसी कहानी को तो नहीं दोहरा रहा हूँ जिसमें पेड़ से पपीता गिरने पर हिरण ने समझ लिया कि जंगल में कोई खतरनाक दानव आ गया है और बचने के लिए वह स्वयं तो भाग ही रहा था, उसके पीछे दूसरे जानवर भी बिना सोचे समझे भागे जा रहे थे। नहीं नहीं, मैं उस आग को बिना देखे यकीन नहीं करूंगा। मुझे उस धुएं के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर वह धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है।
2: ऐसा सोच सियार उठ रहे धुएं की दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक हिरण मिला। हिरण को देखकर सियार रुका और उससे पूछा,
6: हिरण भाई, क्या तुम ये बता सकते हो कि वह धुआं कहां से और क्यों उठ रहा है?
2: हिरण ने धुएं की तरफ देखकर कहा,
7: वह धुआं तो झरने के पास से उठ रहा है। झरनों के किनारे खरगोश, लोमड़ी, बंदर और मैं, हम चारों दोस्त पिकनिक मना रहे हैं। हम लोग वहीं आग जलाकर बाटी चोखा बना रहे हैं। लकड़ियां कम होने से मैं इधर लकड़ी लेने आया था, परंतु यह सब तुम क्यों पूछ रहे हो?
6: मुझे उस धुएं से क्या मतलब हिरण भाई? वह तो अपना गधा भाई उस धुएं को देखकर डर गया और इधर से दौड़ते हुए जा रहा था। उसे लगा कि शायद जंगल में आग लग गई। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब तक तो वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा।
7: तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुम्हें उस मूर्ख गधे को रोकना चाहिए था।
6: उसे रोकने की छोड़ो, एक पल के लिए तो मुझे भी उसने डरा ही दिया था।
7: परंतु सियार भाई, यदि उसे नहीं रोका गया तो ऐसे भागते भागते सभी जानवरों को वह आतंकित करता जाएगा और जंगल में बिना मतलब की भगदड़ मच सकती है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए और उसे रोककर सच्चाई बताना चाहिए।
6: हाँ, तुम ठीक कह रहे हो हिरण भाई, हमें गधे को रोकना चाहिए।
2: ऐसा बोल हिरण और सियार दोनों उसी दिशा की ओर दौड़े जिधर गधा भागते हुए गया था। काफी दूर जाने के बाद उन्हें गधा दिखा।
8: बहुत जल्दी ये जंगल छोड़कर मेरे साथ भाग चलो, वरना आग को यहाँ आते देर नहीं लगेगी। भाइयों, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भागो।
6: कोई कहीं नहीं भागेगा, जंगल बिल्कुल सुरक्षित है। इस मूर्ख गधे की बात सुनकर तुम लोग भयभीत मत हो, जंगल में कहीं भी आग नहीं लगी है।
7: हाँ भाइयों, हम वहीं से आ रहे हैं। मैं वहां झरने के किनारे अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मना रहा था और उसी आग से उठ रहे धुएं को देखकर यह गधा समझ लिया कि जंगल में आग लगी है और यह बेवकूफ बिना सोच विचार किए भागने लगा।
2: आग की वास्तविकता सुनकर गधा झेप गया और सभी जानवरों ने अब चैन की सांस ली।
9: हिरण भाई, तुम्हारा यह काम बहुत सराहनीय है, जो समय पर आकर हमें घटने की सही जानकारी दी, वरना आग की खबर सुनकर हमारी तो सांसें ही रुक गई थीं।
10: मुझे माफ कर दो दोस्तों, आज मेरे कारण पूरे जंगल वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं वादा करता हूँ कि बिना सच्चाई जाने कभी भी कोई कदम नहीं उठाऊंगा।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये तंबाकू क्या होता है?
1: अरे टिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी म्हारो गांव म्हारो अंचल। इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि जब गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी में जाते हैं, तो सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे महिलाएं हो, हमारा आई लोग हो, चाहे हमारा बच्चे स्कूल बच्चे हो, चाहे प्रशासन हो, सभी से मिलते हैं, सभी अपना अपना बात को रखते हैं, क्योंकि हमारा आसपास हमारा गांव और अंचल में जो ढाणी में जो काम हो रहा है सब तक पता चले और यहाँ का रीति रिवाज संस्कृति का साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा गांव आदर्श तब बनेगा, हमारा आंगनबाड़ी आदर्श तब बनेगा जब हम सब अपना बात को जन जन तक पहुंचाएंगे। तो इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गणका पंचायत स्थित तलवार नाका में पहुंचे, यहाँ का आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता महोदय भी उपस्थित है, जब एक उनको मिला मौका तो आज रेडियो मधुबन में सभी माताएं बहनों को बुलाए, क्योंकि आंगनबाड़ी में क्या गतिविधि हो रही है और पंजरी के साथ साथ किशोरियों को जो जांच करना होता है, उनका जो तकलीफ होता है, कभी कुछ होता है तो उनको आयरन गोली के साथ साथ देखभाल करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को पंजरी से लेकर उनका जो भी पोषाहार भी आता है तो उसको देते हैं, और बच्चों को जीरो अवस्था से लेकर 6 साल तक देखभाल करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ कार्यकर्ता भी उपस्थित है, हम तलवार नाका आंगनबाड़ी में पहुंचे, तो कार्यकर्ता को स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से और खासकर तलवार नाके के सभी गांववासियों की तरफ से। मैडम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, खासकर आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम, थमरहू नाम और गाँव रहू नाम और क्या क्या काम करते हैं, और जैसे आपने इतना माताओं को बहनों को बुलाए है ना, एक इशारा से बुलाने से वो आ गए, मीन्स आपका स्नेह प्यार और आंगनबाड़ी के साथ ताल्लुक है, तो आप अपना परिचय दीजिए।
1: मेरा नाम हन्नू देवी, तलवार नाका कार्यकर्ता। चलो जी,
0: 20 साल से काम कर रहे हैं आंगनबाड़ी में, पहले डायरेक्ट आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता रूप में आए, ना आशा रूप से आए, ना सहायक रूप से आए, आपका प्रमोशन हुआ ना, डायरेक्ट आप आंगनबाड़ी का कार्यकर्ता बनकर आए। तो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम में, लेकिन बोलते कम है, खाली हंसते रहते हैं हंसाते रहते हैं, लेकिन बच्चों को हंसाते हुए माने भाषा ज्ञान में खुशी करा देते हैं, और उनका साथी सहयोगिनी जो भी है, उनका टीम, उनका जो आशा कौन है और सहायिका कौन है, उनका नाम तो बताएंगे।
1: आशा रो नाम ने गंगा देवी।
0: अरे वाह, आज नहीं है यहाँ पे, डोर टू डोर गए,
1: फील्ड में गई।
0: आशा हो गया, अभी सहायिका
1: सहायिका नवली बाई
0: नल, अभी है हाथ उठा
1: नवली बाई,
0: हाथ उठा जोर से बड़ा। अरे वाह, और दूसरा तो बच्चों को कैसे सिखाते आप?
1: बच्चे

0: निकालो मर जाएगी,
1: बाहर निकालो मर जाएगी,
0: बाहर निकालो मर जाएगी,
1: बाहर निकालो मर जाएगी।
2: श्रोता मित्र, ग्रामवासी और छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं ये गीत, तो सबको पसंद है और सबको मालूम है। जैसे पानी बिना मछली रह नहीं सकता, तो आंगनबाड़ी का बिना हमारा बच्चे रह नहीं सकते, क्योंकि आंगनबाड़ी में आएंगे तो उनको भोजन मिलता है। क्या क्या मिलता है बच्चों को?
0: फेनाए मुमराए नाश्ता में मिलते, भोजन में खिचड़ी चावल है, एक दिन मीठी डलिया, एक दिन फीकी खिचड़ी।
2: इसलिए बच्चे आते हैं और माँ बाप तो घर में पूरा निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को आंगनबाड़ी में भेज देते हैं और आई लोग काम धाम में जाते हैं, रोजगार में जाते हैं कोई, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज किसको इसको बुला, सबका नाम बताएंगे जो जो आए आज, क्योंकि आपका कहने पर रेडियो को सजाने के लिए, अपना बात गीत का माध्यम से बताने के लिए जो जो आए आज, हमारा बहने माताएं आई लोग आए हैं, तो वो खुद बताएंगे अपना नाम, ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। आप अपना नाम बताए था मेरे।
3: नाम रेखा है।
2: हाँ, रेखा। और आयो नाम? आयो नाम।
3: मेरी मम्मी की नाजू गाँव दरबंदा का।
4: हमारा नाम सेविता, कौ करता।
5: हमारा नाम रकमा बहन, काम नाम दरबंदा का पढ़े की थे।
6: मेरा नाम मंजू है, दरबंदा का की हूँ।
7: मेरा नाम बादली कुमारी है, चट्टी तक पढ़ी हूँ मैं।
8: मेरा नाम रिंकू है, सेवन तक पढ़ी।
9: मेरा नाम ललिता है, मैं अब की बार आठवीं में आई हूँ।
10: मेरा नाम इंद्रा है, मैं आठवीं क्लास में आई हूँ, तलवाना का।
11: मारा नाम राधा है, मैं तेरा ना कर रही हूँ।
12: मारा नाम नेवली भाई है, नेवली भाई है मारा नाम।
2: सायका
12: आंगनबाड़ी तरवाना का।
11: मारू नाम कने भाई है, तरवा ना खो रहे बासू, दस पंद्रह साल आंगनबाड़ी लड़के में।
13: कने भाई तरवाना कमारे।
2: हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अभी एक गीत सामूहिक रूप में प्रस्तुत करेंगे, लेकिन हमारा श्रोता मित्र सुन रहे इस समय, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। वाह वाह वाह, ताली बजा कर तो खुशी कर देते हैं, है कि नहीं? ताली बजाने में पैसा नहीं लगता है, कोई टैक्स नहीं लगता है, सभी को आता है। छोटे बच्चे भी ताली बजा देते, लेकिन माइक में तुम्हारा नाम बताओ, फिर इसको वो देखता है, उसको ये देखता है। लेकिन ताली बजाने में होशियार है, लेकिन अपना बात को भी बताने में भी होशियार होना चाहिए। जैसे वो बच्चिया पढ़ा लिखा किए इसलिए तुरंत बोल दिया, और ये धीरे धीरे बोल रहे, कोई बात नहीं, सभी अच्छे हैं, ठीक है, सभी अच्छे हैं।

0: पुनः हम मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। चलिए, लोकगीत न हो, आदिवासी गीत न हो, ये हो ही नहीं सकता। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारा साथ आईमा है, तो उनको भी स्वागत करते। आज एक प्रस्तुति सामूहिक रूप में गीत गाएंगे। तो थेवर हूँ नाम
1: कौन है भाई?
0: कौन है भाई, शुरू करो एक गीत।

बहुत बहुत धन्यवाद माता जी को आईना को इतने सुंदर प्रश्न दिए रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, और कभी आएंगे ठीक है। तो बहुत ताली बजा सभी रेडियो मधुबन कार्यक्रम में, खासकर तलवार नाका में हमारा जो आसपास गांव के जो रीति रिवाज संस्कृति और जो त्यौहार होता है तो सभी बच्चों को हिस्सा लेते हैं। आज भी एक झलक जो कि हमारा माता है आई लोग और उनको साथ देने के लिए आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता है इतना देखभाल करते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी, लेकिन सुनेंगे उनका आवाज को भी अल्प विराम का बात सुनते हैं कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल रेडियो मधुबन। अच्छा धन्यवाद, तालियों के साथ उनको स्वागत करेंगे लेकिन अल्प विराम का बात।

महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

धन्यवाद उनका टीम और कार्यकर्ता का साथ साथ सहायिका भी है और जो आंगनबाड़ी केंद्र खासकर सालदार नाका में जो पहुंचे जो कि सीडीपीएस आबरोड के जो बाल विकास अधिकारी महिला और बाल विकास अधिकारी का तत्वावधान में आंगनबाड़ी खासकर तलवर नाक में हम पहुंचे और यहाँ का आवाज जो कि माताएं और किशोरियाँ आते हैं और छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं क्योंकि आंगनबाड़ी पहला स्कूल है, इसके बाद बड़े स्कूल में जाते हैं, लेकिन आज बड़े हो चुके किशोरियाँ अपना आवाज़ को सुना रहे हैं गाँव में। जो त्यौहार होता है कभी विदाई के समय में इस तरह गीत गाते हैं और छोटे बच्चे भी दूसरों को देखते देखते सीख जाते हैं। तो चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और कुछ गीत वगैरह सुनेंगे, लेकिन और प्रोग्राम के बाद सुन रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा 91.9।

0: हेलो, हाँ हाँ पहुँचा दूंगा, समय से पहुँचा दूंगा।
1: इधरा इधरा इधरा, क्या पहुँचा दोगे? कहाँ पहुँचा दोगे? मुझे तो लगता है ऐसे ही बीच रोड पे मोबाइल लेकर घूमोगे तो तुम ही ऊपर पहुँच जाओगे। सड़क क्रॉस करते समय मोबाइल जेब में रखो और जहाँ मन किया वहीं से रोड क्रॉस कर लोगे। ये जेबरा क्रॉसिंग क्या जेबराओं के चलने के लिए बनाई है? जब भी रोड क्रॉस करना है तो जेबरा क्रॉसिंग से ही करना, क्या समझे? मुझसे गाड़ी वाले तो क्या पैदल वाले भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: पैदल यात्री सड़क क्रॉस करते समय हमेशा जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है जब उसके बच्चे और बच्चों का साथ साथ बच्चों का बहन जो बड़े हो चुके हैं अपने आवाज को सुना रहे और एक प्रस्तुति हो जाए है ना और एक गीत हो जाए सामूहिक में और इसका साथ गीत जो गीत अभी गाए हैं कार्यकर्ता महोदय कौन सा गीत और किस ऊपर में गाए मैंने बच्चों का ऊपर में ना शादी का समय में कि त्यौहार का समय का ये जो गीत अभी गाए ना पढ़ाई का ऊपर में किस ऊपर गीत गाए हिंदी में बोलिए
2: शादी का
1: गीत
2: शादी का
1: शादी जो विदाई होता है उस समय गीत गाते हैं। अच्छा चलिए क्या नाम है तुम्हारा
2: ललिता
1: एक गीत आपकी गाड़ी गाए तो आपको क्या है होता है ना खुशी से ना दुख से
2: खुशी से
1: गाए खुशी से विदाई दी। अच्छा पहले और एक गीत गाएंगे इसके बाद समाप्त करेंगे ओके और गीत रेडी है।

0: बाद में कुमारी पढ़ाई लिखाई किए तब तो इतने सुंदर में मैंने निर्भय थे, कोई झिझक नहीं, आराम से पूरा लय ताल सुर का साथ इतना सुंदर फिर मन से पूरा एकाग्रता से गीत गाए। वो गीत भी पढ़ाई का ऊपर, शिक्षा का ऊपर है ना, मुझे तो भणा भणा शब्द जो है ना पढ़ाई के ऊपर में गीत है ना। तो पढ़ाई हमारे जीवन में कितना आवश्यकता है, नहीं पढ़ेंगे तो हमको ठग देंगे, लोग ठगेंगे, चोर भी ठगेगा, दुकानदार भी ठगेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो। इसलिए पढ़ाई बहुत आवश्यकता है। बच्चियां स्कूल में जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं, कुछ पढ़ाई करेंगे तो आगे उनको सही समझ मिलेगा, तो हाउ लगेगा ठीक है नहीं। और पुलिस भी डंडा मार नहीं सकता है पढ़े लिखे नहीं करेंगे तो वो मुझ में वो मार देता है ना। लेकिन हम पढ़ेंगे लिखेंगे, नवाब होंगे, सरपंच बनेंगे, वकील बनेंगे है कि नहीं, प्रधानमंत्री भी बनेंगे, मुखिया भी बनेंगे और कार्यकर्ता भी
1: बनेंगे।
0: हमारा कार्यकर्ता जैसे है कि बहुत बहुत धन्यवाद बहन के लिए और सभी जो उसको साथ देने के लिए, सभी के लिए और एक बार जोर दे ताली बजाने से क्या फायदा होता है, क्या
1: नाम है,
0: खुशी
1: जाता है,
0: खुशी मिलता है और एक्सरसाइज हो जाता है ना। तो चलिए आपको ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अंतिम प्रस्तुति लास्ट एक लिंक होगा और एक गीत ठीक है, और एक गीत हो जाएगा। हमारा श्रोता मित्र ग्रामवासी ध्यान से सुन रहे और खासकर हमारा आदिवासी जो आई लोग सुन रहे, बच्चे भी सुन रहे, तो अंतिम प्रस्तुति के लिए तैयार होंगे। लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुन रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आम चलो।

संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।

ब्रेक के बाद पुनः मिल रहे हैं और आप सब सुन रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र तलवारा नाका जो कि गन का ग्राम पंचायत में आता है, हाईवे में ही, लेकिन आंगनबाड़ी थोड़ा दूर में है। तो आज आंगनबाड़ी में जो है बच्चे तो अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, और किंतु किशोरियां माताएं सब आए इस कार्यक्रम में करने के लिए। मंजू एक गीत गाएगी और उनका साथ सपोर्टिंग करेंगे, है ना, साथ ही सहयोगी। चलिए शुरू करते हैं।

0: Hidup kau di selam.
1: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यकर्ताओं को और उनका साथी जो आंगनबाड़ी को चलाते हैं और जो किशोरियाँ और माताएं आज इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, ये तालिबान नाका का आवाज़ और इस तरह बढ़ चढ़ कर जब बहनें भाग लेते हैं तो छोटे छोटे बच्चे बहन भी सीख जाते हैं दूसरे को देखते देखते, क्योंकि बड़े बहन गा रहे हैं छोटे बहन भी उसको साथ दे रहे हैं, तो इस तरह गीत कोई गीत सीखने के लिए कहाँ जाना नहीं पड़ता, लेकिन इसे सामूहिक रूप में गीत गाते हैं तो सीख जाते हैं अपना भाषा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज का कार्यक्रम को जिन्होंने सजाया नाम का साथ कार्यकर्ताओं को, और उनका जो CDPO हो चाहे उनका सुपरवाइजर को भी धन्यवाद देते हैं। जब भी आंगनबाड़ी में जाते हैं तो आंगनबाड़ी में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुँचाने के लिए रेडियो मधुबन हमेशा तत्पर रहता है, चाहे पोषण को लेकर हो, चाहे बच्चों का, चाहे धात्री महिला हो, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे उनका अन्नप्रसाद वगैरह जो कराते हैं, है ना, गोद भराई भी कराते हैं, तो हर जगह में हम जाते हैं और किशोरियों को बहुत ध्यान देते हैं। उनका कोई भी तकलीफ होता है तो आंगनबाड़ी में आकर पहुंच जाते हैं, उनका खून का कमी होता है कि आयरन गोली चाहिए, जो भी चीज़ ज़रूरत हो तो कार्यकर्ता को बताते हैं। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। हमें खुशी लगा इस तरह कार्यक्रम में अचानक जब आए और कार्यकर्ता का सहयोग से सभी को बुलाकर अपना प्रस्तुति किए, और कुछ बच्चियां थोड़ा स्कूल में जाते हैं तो उनका भी आवाज़ थोड़ा पूछेंगे। देखो पढ़ाई करने से कितना फ़ायदा, जो नहीं पढ़ते उनको झिझक लगता है और क्या होगा क्या, लेकिन एक पढ़ी लिखी है, क्या नाम है?
2: ललिता।
1: कौन सा क्लास में?
2: आठवीं।
1: कौन सा स्कूल का?
2: तलवान।
1: देखो कितने सुंदर से अपना बात को रख पा रहे। अच्छा रेडियो मधुबन नाम कभी सुना है? रेडियो मधुबन सुना है। अच्छा तुम्हारा स्कूल के जो मैडम है ना, अच्छी मैडम, बताओ नाम।
2: जानकी मैडम।
1: अरे वाह, ताली बजाओ जानकी मैडम को। जानकी मैडम का एक विशेषता गुण जो आपको बहुत अच्छा लगता है, आप भी बड़े होंगे मैडम जब बनेंगे तो वो गुण को फिर बच्चों को देंगे, आप कौन सा गुण जानकी मैडम से लिए? उनका खुशी, उनका पढ़ाई कराने का तरीका और उसने हमें बुलाने का तरीका, ऐसे कौन सा गुण था अच्छा लगता था आपको ललिता?
2: खुशी।
1: खुशी में रहते हैं और खुशी कराते हैं। अच्छा वो मैडम खुशी से रखते हैं बच्चों को और खुशी बांटते हैं। बड़े होकर क्या बनेगी ललिता तुम? सरपंच? वो ललिता तो सरपंच है अभी तुम्हें छोटी सरपंच ऐसे काम करेंगे ना, पढ़े लिखे, वो MA किए, तुम भी पढ़ेगी लिखेगी तो तुम भी गांव की बन पाएगी, पाएगी कि नहीं
2: जी?
1: क्या बनेगी बड़े होकर?
2: मैडम।
1: मेहनत करना पड़ेगा और आज्ञाकारी होना पड़ेगा और दिन रात 20 नाखून लगाकर कोई भी प्रोग्राम होगा तो भाग लेना, ठीक है? ललिता के लिए धन्यवाद, ताली बजाओ ललिता के लिए। चलिए और एक सखी गुड़िया आए, सखी है हमारा, क्या नाम है?
3: इंद्रा।
1: अरे बाप रे इंद्रा। अच्छा इंद्रा कौन सा नाश्ता आपको, भोजन अच्छा पसंद है आपको, क्या पसंद है? खाना खाते हैं ना, दाल बाटी खाते हैं, हाँ चूरमा, कौन सा अच्छा लगता सब्जी?
3: कोई भी।
1: कोई एक नाम बता, कोई भी बता।
3: आलू।
1: आलू का सब्जी, आलू बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आलू का गीत है ना, आलू का चालू बेटा हाँ आंगनबाड़ी में लिखा है आलू, इसलिए उसको अच्छा पसंद है ना। चलो मैडम कितना है स्कूल में?
3: दो।
1: क्या क्या नाम है?
3: पूना मैडम और कविता मैडम।
1: अच्छा तुम भी मैडम बनेगी, अच्छा वेरी गुड। पढ़ाई करते हैं? कितने घंटा पढ़ाई करते हैं?
3: 8 घंटा।
1: बहुत अच्छा, वेरी गुड। कोई गीत बरा रुचि है? अच्छा कोई कलर का नाम, तुम तो ड्रेस तो बहुत सुंदर ड्रेस पहने, कौन सा कलर तुमको पसंद है? कौन सा कलर? लाल। ओह तुम ड्रेस लाल पहने, इसलिए लाल भी बन गया, जैसे हमारा सफ़ेद है, ये खराब है आपका तो अच्छा है, लेकिन हमारे लिए अच्छा है हमारा यूनिफॉर्म है। चलो बहुत अच्छा। समय को देखते हुए सभी को धन्यवाद देते हैं, इस तरह कार्यक्रम में अचानक आए, पहला वाला चेहरा देखे, फिर भी नया हम आप लोगों के लिए, फिर भी आप लोग अपना भाषा को रखें, धन्यवाद सहयोग के लिए। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे। अनु देवी को भी, ललिता को भी और इंदिरा को, सबको धन्यवाद। आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, सभी का नाम को धन्यवाद, है ना। चलिए सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

सिंह चौहान, हमारा देश और प्रदेश और दुनिया प्रगति और विकास की दौड़ में आगे बढ़ते जाए लेकिन मानवीय गुणों के साथ। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: ओए रुक रुक।
2: हाँ कहिए।
1: और जी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
1: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। तो ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने दोषों पर ध्यान देने की बजाय अपनी अच्छाइयों को पहचाने और उन्हें विकसित करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने मन की कमजोरियों को देखना कमजोरी नहीं बल्कि साहस है, यही साहस आपको मजबूत बनाता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

ओम शांति, मैं हूँ मोनिका पटेल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी जो है इसी तरह से जो है हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो है ईश्वरीय ज्ञान जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय ज्वाइन करके प्राप्त करते रहिए मेरी तरह। और सदा सदा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।

0: यही खुशी है यहाँ की जो दो बूंद पानी में बह जाती है। जानते हो अगर हम शहर में होते तो चाहे आंधी तूफान या बारिश जो कुछ भी आ जाता हम लोग मजे से इसी क्लब या रेस्टोरेंट में डांस कर रहे होते। लेकिन यहाँ
1: अच्छा अब देखो

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: क्यों रे शैतान, तूने क्यों बताया मैं गाना जानती हूँ?
3: मेरा तारीफ कर रही थी, वरना तुम गाती क्या हो?
4: रोती हो पिया बिन नाही चैना, रोती हूँ दिन रहना, हाय हाय हाय।
2: मैं ऐसा गाती हूँ?
3: मैं तो ऐसा ही सुनता हूँ।
2: और तुम?
3: मैं

0: किससे सीखा तूने ये?
1: अच्छा है?
0: हाँ बहुत अच्छा है।
1: हेडमास्टर साहब से?
0: तब तो बहुत बुरा है।
2: मेरा नाम इंदु है, मैं ढूंढे गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 एफ

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कितना सुंदर बात है ना, अगर जीवन में कोई मोड़ ऐसा आए और हमें पता चले कि मुझे ऐसा ही जीना है, और इसी को कहते हैं कि जीना इसी का नाम है। कुछ ऐसे ही अनुभवों को लेकर के हमारे बीच में आए हैं आज के हमारे मेहमान ओंकार चंद शर्मा जी। आप ब्रह्म कुमारीज की मुख्यालय शांतिवन में 2014 से समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए एक कार्य को करना, कैसा वो फर्क पड़ता है और किस मोड में उनको ऐसा लगा कि मुझे यही जीवन जीना है, चलिए जानते हैं। और उससे पहले हम स्वागत करते हैं ओंकार जी आपको जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में। नमस्कार।
1: नमस्कार। ओम शांति।
0: ओम शांति। भाई जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो बचपन रहा है, आप कहाँ से और आपका पारिवारिक जीवन कैसा था और आपने क्या पढ़ाई किया और कब आपको ये महसूस हुआ कि मुझे आध्यात्मिक पढ़ाई भी करनी चाहिए?
1: मेरा लौकिक जन्म हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा कस्बा है, जिला है बिलासपुर, वहाँ पर 1980 में हुआ। तो मैं वहाँ रहता था। हमारा परिवार एक हिंदू ब्राह्मण परिवार है, जहाँ पर सभी के अंदर भक्ति के संस्कार थे। बचपन से हम लोग भी नित स्नान इत्यादि करके बड़े प्यार से, घर में एक कोना था जहाँ पर सभी देवी देवताओं के मूर्तियाँ या उनकी पिक्चर्स वगैरह रखी होती थी, मंदिर की तरह था। वहाँ जाकर हम सब पूजा करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, और बचपन से ही मेरा शिव के प्रति ज़्यादा प्यार था। मैंने शिव पुराण सुन रखा था, तो शिव पुराण सुनने के बाद मुझे लगा कि शिव ही सबसे बड़े हैं, तो उनको ही मन याद करता था। कभी कभी सोमवार का व्रत भी रख लेता था। तो बचपन बड़ा प्यारा बचपन था। हमारे घर में मेरे पिताजी, जब 93 में मैं 13 साल का हुआ, तो वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम के संपर्क में आए और वहाँ पर बहनों ने उन्हें इनवाइट किया, तो वो जाने लगे। तो जैसे ही वो जाने लगे, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने जो नियम मर्यादाएं वहाँ बताई जाती थी कि आपका भोजन शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, तामसिक नहीं होना चाहिए, वो सारी उन्होंने घर पर भी घर वालों को, मदर को समझाने की कोशिश की कि आज से हम ये नॉनवेज और तामसिक भोजन वगैरह नहीं लेंगे। तो घर वालों ने कहा ठीक बात है, पर उन्हें थोड़ा लगा कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्या इनमें चेंज हो गया। पिताजी मुझे भी सुनाते थे, मैं 9th क्लास में पढ़ता था, पर मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा वो ज्ञान जो वो सुनाते थे कि वहाँ पर परमात्मा का बड़ा अच्छा ज्ञान दिया जाता है और परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण हो चुका है और वो आकर फिर से सतयुगी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं और ये दुनिया बदलने वाली है। तो जो वो सुनाते थे मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगता था। तो मैंने इच्छा व्यक्त की, अभी 3-4 दिन ही हुए थे, कि मैं भी चलता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर वहाँ जाना है तो ये नियम है, तो अगर तुम इनको फॉलो करोगे तो मैं लेके जाऊँगा। पर मेरे अंदर इतनी इच्छा थी, मैंने कहा मैं सब फॉलो करूँगा, मुझे लेके चलो। 9th क्लास में पढ़ता था, बहुत छोटा था, लेकिन भगवान को जानने की इच्छा भी थी और भगवान का जो परिचय मैंने पिताजी से सुना कि वो निराकार हैं और परमात्मा शिव हैं, तो वो मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगा और अच्छा भी लगा। तो मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं जाऊंगा और मैं गया। मेरी सिस्टर भी साथ में गई। तो हमें पहले दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बैठा दिया गया। योग चला हुआ था, रेड लाइट थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि रेड लाइट में बड़े अच्छे अच्छे आध्यात्मिक भजन गीत चल रहे थे। तो मैंने देखा वहाँ का वातावरण इतना अट्रैक्टिव है और वो गीत इतने पावरफुल हैं जो दुनिया में कभी सुने नहीं थे, और उसमें परमात्मा के प्रति इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान। तो मैं उन गीतों से बड़ा प्रभावित हुआ और साथ में वहाँ का जो वातावरण था, सब लोग योग कर रहे थे, किसी ने ज्ञान नहीं सुनाया पहले, केवल 1 घंटा मैं वहीं बैठा रहा पिताजी के साथ। तो मुझे लगा कि ये चीज़ अच्छी है, जहाँ मुझे आना चाहिए वो चीज़ यही है। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमें 7 डेज का कोर्स कराया। तो कोर्स करने के बाद फिर निश्चय हुआ कि सचमुच ही इस संस्था में जुड़ने से हमें फ़ायदा होने वाला है और यहाँ आकर हमारे अंदर जो बुराइयाँ हैं, जो विकार हैं, वो बड़ी आसानी से छूट सकते हैं, ऐसा ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। साथ में जो ब्रह्मा कुमारी बहनें थी वहाँ जो रहते थे, उनका व्यवहार इतना अच्छा था, इतने स्नेह से, इतने सम्मान के साथ वो बात करते थे, तो उसने भी हमें बड़ा प्रभावित किया। घर में मुझे छोटा बच्चा था तो लोग ओंकार ही बोलते हैं, वहाँ ओंकार आश्रम में जाने लगा तो वहाँ ओंकार जी तो क्या, वो तो भाई जी बोल के बात करते थे। मैंने कहा यहाँ तो बड़ा सम्मान मिलता है भाई, सब लोग बड़े रिस्पेक्ट से एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और अच्छे लोग हैं, और ऐसा लगा इन लोगों से जुड़कर इन जैसा मुझे भी बनना चाहिए।
0: इस बीच में आपकी लौकिक पढ़ाई का क्या हुआ? हाँ, लौकिक पढ़ाई की उम्र में स्कूल में जा रही हूँ।
1: जी मैं नाइन्थ में पढ़ता था, पढ़ाई में मैं पहले एवरेज था, लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ मेडिटेशन ज्वाइन किया तो मेडिटेशन और राजयोग के से मेरे अंदर इतना अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आया कि मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिलने लगी कि मुझे पढ़ाई में टॉप करना चाहिए, मुझे कुछ बन के दिखाना है। और ये ना लोग कहें कि ये भगत बन गया है, वहाँ जा रहा है और अब इसने दुनिया भी छोड़ दी, नहीं, तो मुझे पढ़ाई में टॉप करना है। और उसका रिजल्ट आया, मेडिटेशन से मेरी मेमोरी पावर बढ़ी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ी, मेरी फोकस करने की पावर बढ़ी और मेरी कंपनी अच्छी हो गई। जो लोग बैड कंपनीज में आके, बैड फ्रेंड्स के आके बिगड़ जाते हैं, वो उससे मैं बच गया और अच्छे लोगों की संपर्क में रहा, तो उससे ये बेनिफिट मेरी पढ़ाई का हुआ कि मैंने पढ़ाई में टॉप करना स्टार्ट कर दिया। और 3-4 साल 9th, 10th, +1, +2, +2 के बाद मेरी सिलेक्शन इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में से एक NIT कुरुक्षेत्रा में हो गई।
0: अच्छा।
1: और वहाँ भी टॉप की ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग उस वक्त मुझे मिली, स्कॉलरशिप भी मिलता था, तो मुझे तो बहुत बेनिफिट हुआ मेडिटेशन करके। चलो शांति मिली, ये तो एक कॉमन चीज़ है, सबको मिलती है, खुशी मिली, वो भी मिली, पीस ऑफ माइंड हो गई। लेकिन जो दुनियावी लाइफ में मेरा जो एक प्रगति हुई, एक लाइफ अच्छी बन गई, एक लाइफ का गोल मिल गया, उसका भी बेनिफिट हुआ। तो उसका असर ये हुआ कि जो मेरे साथ दूसरे फ्रेंड्स थे, उनके पेरेंट्स मुझे कहते थे कि हमारे बच्चों को भी आश्रम लेके जाया करो, ताकि वो जैसे आप इंजीनियर बन गए, आप पढ़ाई में अच्छे हो गए हैं, तो वो भी अच्छे हो जाए। तो वो खुद मुझे कहते थे कि हमारे बच्चों को भी आश्रम के साथ जोड़ो और वहाँ जाने से उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर सिटी में बना, सबको लगा कि ब्रह्मा कुमारीज में जो बच्चे जाते हैं वो उनकी सिलेक्शन ऐसे टॉप के कॉलेजेस में भी हो जाती है और वो कुछ बनते भी हैं। नहीं तो लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि जो धर्म से जुड़ता है वो पलायन कर जाता है, वो सब छोड़ देता है। लेकिन मेरे अंदर ये लक्ष्य था और जो वहाँ आते थे लोग हमारे
0: मतलब बेसिकली ये है कि अगर अध्यात्म से जुड़ते हैं या ब्रह्म कुमारी संस्थान से जो मेडिटेशन सीखते हैं वो आपकी लाइफ के अंदर एक्सेलेंस बढ़ाता है, लेकिन वैरागी या सन्यासी नहीं बनाता है।
1: हाँ, सन्यासी तो हमें सीखा फिर हमने यहाँ से जुड़े कि सन्यास तो बुराइयों का है, सन्यास तो आपकी कमी कमजोरियों को उनको छोड़ने का है, जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, गुस्से का सन्यास करना है, आपने अपने ईगो को छोड़ना है, ईर्ष्या को छोड़ना है। तो हमें लगा ये बात तो सही है, घर बार छोड़ना तो बड़ा आसान है। कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, ना घर त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भगवान को भी नहीं भूलना है, घर भी नहीं छोड़ना है। और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान तो घर को अच्छा बनाने के लिए है कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए एक जीवन को बेटर वे में, मूल्य आधारित जीवन, एक वैल्यू बेस्ड लाइफ कैसे जी सकते हैं, वो हमने यहाँ से सीखा।
0: तो ज्ञान की वो कौन सी बात थी? 13 साल की उम्र में तो आप थोड़ा बहुत तो दुनिया को भी समझ रहे हैं, जीवन में आगे भी बढ़ रहे, टीनेज बहुत चंचल वाला होता है, डिसीशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है, हमको लगता है कि हम जो सोचते वो जानते वही सब कुछ है, वही सही है।
1: जी।
0: तो ऐसे में आपको जब ये राजयोग मेडिटेशन के बारे में सीखा, यही सत्य ज्ञान है, वो कौन सी बात थी जब आपको लगा कि हाँ

0: भगवान नहीं हो सकता। भगवान वो नहीं होता जो जन्म मरण में आता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा देवी देवता हो सकता है, देव आत्मा हो सकती है, महान आत्मा हो सकती है, पर परमात्मा तो ज्योति बिंदु निराकार है। एक हमारे स्कूल टीचर थे, वो भी हमें मेडिटेशन कराते थे, कहते थे आपके अंदर ना लाइट प्रकट होगी, लाइट लाइट दिखेगी। तो हम करते थे, सिक्स्थ क्लास से मैं थोड़ा बहुत करता था, तो जब यहाँ आया तो वही रेड लाइट, वही शिव बाबा, मतलब शिव नाम नहीं वो बताता था, तो कहता था लाइट होगी। तो मुझे लगा ये भी वही चीज़ कुछ है, तो ज़रूर भगवान लाइट ही होगा, प्रकाश रूप होगा। और दूसरी बात, जब भगवान के वर्जन जो थे, जो उनके महावाक्य जिन्हें हम यहाँ मुरली कहते हैं, वो जब पढ़े तो और पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया कि अभी ये चीज़ें जो हमें सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है, यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई बहन जी या भाई जी नहीं है जो हमें बता रहा है, बताने वाला साक्षात वो निराकार परमात्मा जिसने स्वयं गीता ज्ञान दिया, वो ज्ञान समझा रहा है। और वो ज्ञान की एक एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, वो बुद्धि में मतलब इतनी स्टीक लगती थी कि ये मुझे करके ही छोड़ना है, ये मेरे जीवन से ही रिलेटेड है। जैसे कहा गया कि बदला ना लो, बदल के दिखाओ। मैं क्या, सही बात है, बदला लेना तो अच्छी बात नहीं है। हमने सुना कि माफ़ कर दो, तो माफ़ करना भी अच्छी बात है, क्या गलत है इसमें। हमने सुना कि निंदा नहीं करनी किसी की, किसी की आलोचना नहीं करनी, सबकी प्रशंसा करनी है, शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। हमने कहा ये भी बिल्कुल सही बात है। हर चीज़ यहाँ की, अच्छा अन्न आपने शुद्ध खाना है, किसी को दया भाव मन में रखना है, किसी को मार के, और हम अगर अब सच्चे ब्राह्मण हैं और सच्चे सनातन वाले मानने वाले हैं, तो सनातन धर्म तो सिखाता है दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। तो दया तो सबसे बड़ी चीज़ है। पहले हम चाहे लौकिक में ब्राह्मण थे, पर हम नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन यहाँ आके समझ आया कि ये तो असुरों का भोजन है, ये तो अच्छे लोगों का, धार्मिक लोगों का भोजन नहीं है।
1: तो फिर जैसे आपने कहा कि आप लौकिक में ब्राह्मण थे और आपका अपना एक कल्चर और एक परंपरा होती है, और सनातन के हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण जो होते हैं उनको सबसे ऊंचा मानते हैं
0: जी।
1: तो फिर आपकी अपनी कम्युनिटी, फिर जब आप अपनी व्यवहार और आपके जो भी लाइफस्टाइल है, खान पान सब बदल दिया, आपने संग बदला, तो कभी आपको विद्रोह नहीं हुआ आपके परिवार समाज में या आपकी जो कम्युनिटी है?
0: हमारे जो आसपास के रिश्तेदार और लोग थे, मैं समझता हूँ वो काफ़ी समझदार थे, बुद्धिजीवी थे, थोड़े मॉडर्न भी थे, ओपन माइंडेड भी थे, तो उनको तो लगा कि ये अच्छी जगह जुड़े हैं। मुझे नहीं लगता एक आधे को छोड़ के किसी ने हमारा थोड़ा बहुत मजाक तो चलो सब उड़ा लेते हैं, पर ज़्यादातर के आगे मेरा इम्प्रेशन अच्छा पड़ा कि ये वहाँ जुड़ा है, इसने पढ़ाई भी अच्छी की, कुछ लाइफ में अचीव भी किया। उनके जो बच्चे थे, जो हमारे रिलेटिव्स थे, वो उतने नहीं कुछ कर पाए क्योंकि वो बैड कंपनी में आके इधर उधर घूमते रहे, पढ़ाई नहीं की, और मेरा सारी चीज़ें पॉजिटिव जा रही थी, तो उनके आगे और ही अच्छा हुआ कि ये अच्छी जगह जुड़ा, तो इनकी लाइफ बन गई। उसका रिजल्ट ये आया कि बहुत से रिश्तेदार स्वतः ही संस्था से जुड़े, वो भी बीके बने, कोई 2 साल बाद बना, कोई 10 साल बाद बना, पर बने जरूर। तो किसी ने रोका नहीं हमें, और पेरेंट्स हमारे जुड़े हुए थे तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स साथ में अगर हैं तो फिर कौन किसको रोकेगा। हाँ, पेरेंट्स ये कहते थे आप वहाँ जा रहे हैं, हम भी जाते हैं, पर आपको बाबा का, शिव बाबा का नाम बदनाम नहीं करना, मतलब पढ़ाई में टॉप करना है, और कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे कोई आपके ऊपर उंगली उठाए। तो वो हमने करके दिखाया तो सब लोग हमें सपोर्ट करते थे, और सबके आगे एक अच्छा मैसेज आता था, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा
1: जी। तो इस तरीके से आपका जो जर्नी रहा है, 13 साल की उम्र में आपने इस ब्रह्मा कुमारी की राजयोग मेडिटेशन से आप जुड़े, और उससे आपके जीवन में प्रभाव तो आपने देखा। तो आपकी पढ़ाई पूरी कब हुई, और फिर आपके भाई बहने इस चीज़ को लेकर के आपका कितना फैमिली में सपोर्ट था?
0: जैसा मैंने कहा कि फैमिली का तो फुल सपोर्ट था, सबको था कि ये अच्छी जगह जुड़े हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने तो हर मोड़ पर हमें मोटिवेट ही किया, क्योंकि वो खुद रेगुलर स्टूडेंट थे। उसके बाद पढ़ाई में फिर हमने पहले बीटेक किया, जब बीटेक कर रहे थे तो भी दूसरे शहर पे गए, कुरुक्षेत्र गए, वहाँ भी ब्रह्मा कुमारी के सेंटर पे रोज जाना आना।

0: प्रोफेसर्स की सेवा करना। एक बार कॉलेज में भी मैंने अपने आदरणीय उषा दीदी जी का प्रोग्राम रखवाया, कॉलेज के खर्चे पे करवाया, आना जाना रहना सारी चीज़ें, और कॉलेज में भी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ा। मैं फाइनल ईयर में पढ़ता था तो माइंड मैनेजमेंट एंड मेडिटेशन के ऊपर उनका 2 घंटे का प्रोग्राम कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुआ, और अराउंड 500-600 की स्ट्रेंथ, सारे प्रोफेसर्स विद फैमिलीज। तो कॉलेज में भी अच्छी सेवा होती थी। बीच बीच में उनको कभी माउंट आबू भी किसी प्रोग्राम में बच्चों को, अपने साथियों को या जो प्रोफेसर्स थे उनको लाता रहता था। तो उस लाइफ में भी, कॉलेज लाइफ में भी मेरा मतलब एक मटेरियलिज्म की ओर झुकाव नहीं हुआ। मेरे मन में था कि मैंने जहाँ मेरा रास्ता है, जो भगवान के रास्ते पे हम चल रहे हैं वही सही है, जो दुनिया कर रही है वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम सही रास्ते पे हैं। कॉलेज में दोस्त ट्राई करते थे, परखते भी रहते थे ये कितना पक्का है, कच्चा है, क्या कहता है, पर हम लगे रहे, डटे रहे, तो उसका बेनिफिट भी होता था। कॉलेज में भी हुआ, एक पढ़ाई की, उसके बाद मैं उसी कॉलेज में जैसे ही मेरी डिग्री पूरी हुई वहीं मेरे को टीचिंग की जॉब मिल गई। तो फर्स्ट जॉब मेरी डिग्री करने के 1 महीने के बाद उसी सेम NIT कुरुक्षेत्र में एज ए लेक्चरर लग गई। तो लोगों को लगा अच्छा ये तो यहाँ टीचर भी लग गया। तो टीचर इसलिए लगा क्योंकि मैं वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे, प्रोफेसर से सबसे मिलता जुलता रहता था, उनको ज्ञान सुनाता रहता था, तो प्रोग्राम भी कराए थे। तो जैसे ही मेरा हुआ तो उन्होंने कहा तो अच्छा आदमी है, तो उन्होंने मेरे को, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब थी, एडॉक पे थी, पर रही। उसके बाद फिर मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। तो चंडीगढ़ में ब्रह्मा कुमारी इसका क्षेत्रीय मुख्यालय, जोनल हेड ऑफिस है, बड़ा सेंटर है, 1 एकड़ में है, राजयोग भवन। तो वहाँ संस्था के जो अच्छे टॉप के लोग हैं, हमारे आदरणीय अचल दीदी जी, आदरणीय अमीर चंद भाई जी, वो एक बहुत टॉप के तपस्वी योगी आत्माएं थी, तो उनके संपर्क में आया। तो फिर इस ज्ञान योग में थोड़ी और रिफाइनमेंट आई और हम एक्सपर्ट बने, और झुकाव हमारा योग के प्रति और इस आध्यात्मिक पढ़ाई की ओर हुआ। फिर वहाँ रहते ही चंडीगढ़ के एक टॉप के कॉलेज में NITRR, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 4 ही NITRR है। फिर MTech मैंने की, वो भी स्टडी लीव पे आके अपने कॉलेज से, अच्छा चलता रहा, वहाँ भी सेवाएं करते रहे।
1: इतना सब कुछ आपका जीवन में अच्छा चल रहा था, तो आपको वो संकल्प क्यों आया कि मुझे अभी समर्पित होना है, मुझे अभी ये दुनिया की कोई काम नहीं करना है और मुझे मधुबन जाना है और मुझे समर्पित जीवन जीना है?
0: देखो, मैंने 10 साल जॉब की, प्रोफेसर रहा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहा, हर साल सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया जाता था, उनको अच्छी बातें सिखाई भी जाती थी, तो और जगह भी मैं ब्रह्मा कुमारीज की सर्विसेज में लेक्चर वगैरह देने जाता था, और भी सेवाएं करता था। लेकिन एंड में मैंने एक रिजल्ट लाया कि ये मैं लोगों को कर रहा हूँ एक लिमिट दायरे में। मैं कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे मिल जाते हैं, 100-200 बच्चों को पढ़ा के मेरा अर्निंग तो हो रही है, उनको मैं कुछ अच्छी बातें मान लो सिखा भी रहा हूँ, तो एक लिमिट दायरा है। लेकिन मैंने सोचा मुझे ये अपना जीवन ना केवल एक छोटे से कॉलेज के लिए, ना कि एक छोटे से कम्युनिटी के लिए, बल्कि पूरे देश और पूरी दुनिया के लिए, चलो दुनिया बहुत बड़ी बात होगी, कम से कम अपने देश में बड़े लेवल पर रह के लोगों के अंदर उनको सही जीवन जीने की कला सिखानी है। मेरे जीवन में पैसा है, प्राप्तियां हैं, सब कुछ है, खुशियां हैं, लेकिन मैं अकेला खुश रह के क्या करूंगा? जीना उसी का नाम है जो दूसरों काम आए, जो दूसरों के लिए कुछ कर सके, अपने देश के लिए कुछ कर सके, अपने समाज के लिए कुछ कर सकें। और दुनिया में कितने दुख हैं, कितनी समस्याएं हैं, कितनी परेशानियों टेंशन में लोग गुजर रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में आ गए हैं, कोई डिवोर्स हो रहे हैं। मैं कह इन लोगों को सही ज्ञान कैसे दिया जाए? अब मैं जॉब में हूँ तो बंधन है, कहीं जाना है तो छुट्टी नहीं मिलती, कहेंगे जी कॉलेज में आज बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आज तो मिलेगी नहीं, तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब पैसे के पीछे नहीं भागना, मैं अकेला हूँ, कोई परिवार का बंधन नहीं है कि मुझे माँ बाप मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, उनका खर्चा करना है। माता पिता से डिस्कस किया, कहते हैं बहुत अच्छी बात है, लग जाओ सेवा में, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा माँ बाप भी कह रहे हैं, दिल भी कह रहा है, शिव बाबा का तो मैसेज रहता ही है कि बेहद की सेवा में लगो, देश की सेवा में लगो, लोगों को ये ज्ञान, ईश्वर का पैगाम सब तक पहुंचाओ, सब सबको एक हैप्पी जीवन जीने की कला सिखाओ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैंने भौतिक प्राप्तियों के पीछे ना लग के दुनियावी इस रेस में ना जाकर, कितना भी कमा लेंगे हम, टाटा बिरला अंबानी अडानी बनने वाले तो रहे नहीं, कितना भी कमा ले यार वो भी बन जाए तो उससे भी ऊपर बैठे हुए हैं बहुत लोग, कोई परमानेंट तो यहाँ है रिच रहता नहीं। लेकिन जिन लोगों ने दूसरों के लिए काम किया वो देखो क्या से क्या बन गए। तो फिर मैंने भी संकल्प किया कि मुझे भी अब ये लाइफ अपने लिए ना जीकर अब ये लाइफ, और ये ब्रह्मा कुमारी जी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है समाज सेवा करने का, लोगों से जुड़ने का, लोगों तक सच्चा ज्ञान पहुंचाने का। तो मुझे ऑफर मिला, उन्होंने कहा जो हमारे बड़े थे कि आप आइए, आपकी संस्था में पैसे देने वालों की ज़रूरत से भी ज़्यादा उन लोगों की ज़रूरत है जो टाइम देते हैं, जो अपनी एनर्जी फुल लगाते हैं। पैसा देने वाले कोई और भी दे सकता है, पर जो टाइम दे और अपनी एनर्जी पूरा यहाँ के लिए लगाए, ऐसे वॉलंटियर्स की हमें ज़रूरत है। तो मैंने कहा मैं इसके लिए तैयार हूँ, और जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल जाती है, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ वे। और मुझे, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ब्रह्मा कुमारीज के सबसे बड़े केंद्र माउंट आबू शांति वन में मुझे आने का सौभाग्य मिला।
1: अभी आप क्या सेवाएं करते हैं यहाँ पर?
0: यहाँ पर मुझे मुख्यतः मेरी सेवा रहती है जो संस्था का इंग्लिश मैगजीन है, मंथली मैगजीन है द वर्ल्ड रिन्यूअल, तो उसकी एडिटिंग, उसका मैं एडिटर हूँ। उसके लिए आर्टिकल्स लिखना, आर्टिकल्स तैयार करना, जो दूसरों के आर्टिकल जाते हैं उनको एडिट करना, सिलेक्ट करना, तो जो भी उसकी पब्लिशिंग से रिलेटेड जो भी काम होते हैं मेन वो रहता है। साथ में रही पूरे देश की बात, तो सारे स्टेट्स में बीच बीच में जाना रहता है सेवाओं के लिए। तो जहाँ हमारी ज़रूरत होती है लोग बुलाते हैं, हम किसी को मना नहीं करते वहाँ जाकर।
1: ओंकार जी, आपकी ये जो लंबी सफ़र है, हमने ये तो जाना कि जब आप 10 साल की उम्र में ब्रह्म कुमारीज के संपर्क में जब आए, जो मेडिटेशन सीखा, आपका संग बदल गया, आपका खान पान बदल गया, आपका जीवन में एक डिसिप्लिन आया है। लेकिन जब से आप समर्पित जीवन जीना शुरू किया
0: जी,
1: जैसे आपके अंदर एक श्रेष्ठ भावना जागृत हुई कि मुझे 2 कौड़ी की पैसों के लिए नहीं लेकिन देश के लिए जीना है, तो वो श्रेष्ठ भावना ने आप हद की प्राप्तियों के पीछे भागने की जगह एक अच्छी सेवा की भावना के लिए आप समर्पित हुए हैं। तो जब से आप समर्पित हुए हैं, लगभग 10 साल से आप ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में शांतिवन में रहते हैं, सेवाएं कर रहे हैं, ये 10 साल में आप अपने अंदर किस प्रकार की परिवर्तन या क्या नया सीखा आपने, कैसे आपने जीवन को और बेटर किया है?
0: यहाँ रह के देखो, जब हम घर में रहते हैं, अकेले रहते हैं या छोटी जगह पे रहते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, वहाँ रहना बड़ा आसान होता है। सबसे बढ़िया यहाँ सीखा कि कैसे एक बहुत बड़े ग्रुप के में, आप संगठन में रह के एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, जहाँ 2000 लोग परमानेंट रहते हैं, 24 घंटे वही मिलने जुलने वाले, जहाँ हर 15 दिन में 20-25 हज़ार लोगों का एक ग्रुप बाहर से भी आता हो, इतने अलग अलग वैरायटी तरह के लोगों में रहकर एडजस्ट करना और उनके साथ तालमेल बनाना और हर एक के लिए गुड विशेज रखना, कॉपरेशन रखना, सबके प्रति इतने बड़े संगठन में रहते हुए भी दूसरों की बुराइयां या कमियां कमजोरियां ना देखते हुए उनकी पॉजिटिविटी पे ही फोकस करना, ये चीज़ें यहीं आके हो सकती हैं। परिवार में भी होती हैं, 4-5 लोगों के बीच में हम कर लेते हैं, थोड़ा अपनापन भी होता है, पर यहाँ बेहद का अपनापन लाना पड़ेगा। यहाँ आपको तमिलनाडु के लोग भी मिलेंगे, पंजाब के भी मिलेंगे, आसाम के भी मिलेंगे, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के भी मिलेंगे, कईयों की लैंग्वेज बैरियर है, कईयों की वे ऑफ थिंकिंग का बैरियर है, अच्छा कईयों की हैबिट्स का बैरियर है, लेकिन फिर भी सबके साथ रहना है। और सबसे कहीं ना कहीं अगर आपने सेवा करनी है तो उनको कोऑपरेशन भी लेना है, तो ये कला यहीं डिवेल्प हो सकती है, जिसे टीम स्पिरिट कहते हैं। टीम भावना मतलब इतनी बड़ी टीम में रहकर काम करना, वो यहाँ आके मैंने सीखी। और ये भी सीखा कि कैसे इतना बड़ा संगठन कैसे चलता है, क्या क्या इसके लिए गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, और कैसे इस संस्था के जो हमारे बड़े हुए हैं, दादियाँ हुई हैं, बड़े भाई हुए हैं, उनमें भी वो गुण हैं कि उन्होंने कैसे सबके बीच में तालमेल बनाया, क्योंकि एक व्यक्ति का विचार और दो का विचार कभी मिल ही नहीं सकता, पता है सबको, हर एक का वे ऑफ थिंकिंग है। फिर भी सबको एक विचार पे ला के एक काम करना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कर रहे हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि उनके साथ तालमेल बैठा के हम भी उसमें कुछ कॉपरेशन करें। उसके लिए अच्छा टॉलरेंस पावर यहाँ डिवेलप होगी। जब आप बड़े ग्रुप में रहेंगे तो आपको सहन शक्ति भी आएगी आपके अंदर, और सबके अंदर अड़जस्ट समाने की पावर भी आएगी,
1: रेजिलियंस भी आएगा।
0: हाँ, वो भी आएगा। तो यहाँ रह के मतलब आपकी पर्सनैलिटी में वो निखार आता है, लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाएगी। अगर कोई काम किसी से कराना है तो आपको लीडर भी बनना पड़ेगा, और बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो वो हमें आती हैं, तो वो एक यहाँ का रहने का प्लस पॉइंट है जो घर में रह के नहीं हो सकता। वहाँ तो हमारे नखरे होते हैं माँ बाप के साथ, वहाँ तो हम सोचते हैं कि हम हक है हमारा, हमारे माँ बाप हैं, परिवार वाले हैं। लेकिन ये भी परिवार है, पर बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, एडजस्ट करने की भावना भी पैदा होती है, जो मुझे यहाँ आके सीखा। बाकी यहाँ टाइम हमारे पास काफ़ी है, तो हम उस टाइम में अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, अच्छी चीज़ें पढ़ते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते हैं। किसी को अच्छी गाइडेंस देनी है, एडवाइस करना है, उसमें हेल्प कर देते हैं। तो लगता है कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी। आखिर में कोई ऐसा गीत आपको लगता है कि यह आपके जीवन को डिफाइन करता है?
0: गीत तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब मेरे जीवन के लिए जो डिफाइन करता हो उसके लिए कौन सा ऐसा गीत हो सकता है, ये तो सोचने का विषय है। फिर भी मैं सोच के बताता हूँ। किसी ने अपना बनाकर मुस्कुराना सिखा दिया,
1: किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच ओंकार जी। सच में जैसे रेडियो मधुबन का भी स्लोगन है, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जब अच्छे लोगों के संग में रहते हैं तो हमारी मुस्कुराहट ऑटोमेटिक निखर जाती है। और हमारी पर्सनालिटी में जिस तरीके की बदलाव आते हैं और हमारा जो व्यक्तित्व विकसित होता है वो भी बिना मेहनत का होता है। तो जिस तरीके से सरलता के साथ आपने अपने जीवन के बारे में बताया है, आसान तो नहीं है, लेकिन आपने जो सच्चा संग अपनाया है उस कारण से वो इतना सरल हो गया है आज जो हम देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने समय निकाला, रेडियो मधुबन के स्टूडियोज में आई और आपकी आध्यात्मिक जीवन के उन चंद पलों के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद, थैंक यू।
1: दोस्तों, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। ऐसे ही अनुभवों को आपके बीच में लेके आते रहेंगे और हम और आप साथ में मिलकर के सीखते रहेंगे। हमारे मेहमानों के जीवन से जीना इसी का नाम है।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: पक्का?
1: अब ये बात तो कोई घर वालों से पूछे क्योंकि ये एक दूसरे का हाल बेहाल करते ही रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं राठौड़ परिवार की आम सुबह में। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर।
2: अरे, इस घर में कोई चाय पिलाएगा या नहीं?
3: आई मासा।
2: अरे, चाय मुझे पिलानी है, मेरी साड़ी को नहीं राजकुमारी।
3: हाँ, ये लीजिए, एकदम दमदार चाय है।
4: अरे बेटा, ऐसा क्या डाल दिया है चाय में?
5: दादी, मुझे लगता है कल दमदार डिटर्जेंट पाउडर का एड आ रहा था, कहीं वही तो नहीं डाल दिया मम्मी ने।
6: हे राम।
3: चल शैतान, स्कूल के लिए तैयार हो जाके।
5: अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो।
2: शांति, ओ शांति, अरे कोई इसके म्यूजिक को शांत कराओ।
7: शांति, शांति।
8: अरे शांति, क्यों नाम रखा आपने इसका? मैं तो जा रही हूँ बच्चों का टिफिन बनाने, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है।
9: अरे राजकुमारी।
3: अरे चलो उठो बच्चों, स्कूल का टाइम हो गया।
5: नहीं मम्मी, थोड़ा और सोना है।
10: 10 मिनट और बस।
3: अरे चलो, 8 बज गए, स्कूल बस आने वाली है।
5: अरे 8 बज गए? क्या मम्मी, 6 ही तो बजे है।
3: नहा लेना दोनों, सिर्फ बाल्टी और मग हिलाकर बाहर मत आ जाना।
5: ये मम्मी की पुरानी ट्रिक है उठाने की, और हम फिर से बन गए इसके शिकार।
11: हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है दुनिया में? देखो, अपने घर से चोरी करके भाग गया बेटा।
8: अरे हमें तो पता ही है, ये लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ये सब आजकल के चोचले हैं। पढ़ लिख कर दिमाग खराब होता जाता है, फिर ये सब काम करती हैं।
12: कोई भाभी को बताओ कि बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
13: इनको मैं बताती हूँ।
12: अरे दीदी, आप रहने दो, आप फेमिनिज्म का झंडा सुबह सुबह बुलंद मत करो।
13: ऐसे कैसे? रुक जरा भाभी जी, खबर ध्यान से तो सुन लीजिए। बेटा भागा है पैसे लेके, बेटी नहीं।
8: हाँ, वही बोल रहे हैं, मतलब तो किसी लड़की ने ही करवाया होगा। है छोड़ो, हमारे लाडले को स्कूल बस लेने आती होगी, हमको जाना है।
14: अरे भाई साहब, किसकी बात कर रहे हैं? कौन भागा सोसाइटी में जिसके बारे में मुझे पता नहीं?
15: लो जी, खबर पूरी पड़ी भी नहीं और आ गए हमारी पड़ोसी माधुरी जी। इनके कानों में कोई एंटीना लगा है क्या जो खबर को सीधा कैच करता है?
1: आप दिन को रात कह देंगे तो चलेगा, आप प्लेन को रेलवे स्टेशन पर उड़ने को कहेंगे वो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने राठौड़ परिवार की सुबह को शांत कह दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, अब माधुरी माहेश्वरी जी आगे कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने वाली हैं?
14: भाभी जी, आपको तो पता ही है, माधुरी मुंह खोले तो हमेशा मीठा ही बोले, लेकिन ये किसके भागने की बातें हो रही है? पड़ोस वाले शशि की क्या? मुझे तो न उस पर पहले से ही शक था, देखा न कैसे मॉडर्न कपड़े पहनकर घूमती है।
8: अरे नहीं नहीं नहीं माधुरी जी, वो बस खबर छपी है।
16: आपको खबर की क्या जरूरत माधुरी जी, आप तो खुद चलता फिरता न्यूज़पेपर है।
14: हैं? क्या जी?
16: नहीं नहीं, मतलब आपसे क्या छिप सकता है, आपको तो सब पता रहता है ना।
13: हाँ, कभी कभी तो जो नहीं हुआ वो भी।
17: फ्यूचर प्रेडिक्शन, वाह वाह माधुरी जी, आप तो टैलेंटेड हो।
1: अब इस फैमिली में किसके कौन से टैलेंट हैं, ये तो आपको जल्दी पता चल जाएंगे, क्योंकि कुछ टैलेंट सामने नजर आते हैं तो कुछ छिपे हुए होते हैं। वैसे छिपे हुए से याद आया, कोई है घर में जो आज बुरी तरह से फंसने वाला है। आइए आपको लिए चलते हैं वहां, जहां कहानी में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट।
17: ये वाला ऑर्डर कर लेती हूँ। वाओ, ये तो कितना अमेजिंग है, मेरी सिल्वर ड्रेस पर कितना अच्छा लगेगा। ये भी अभी ऑर्डर कर लेती हूँ।
2: ये देखो इस लड़की को, इधर फोन में लगी हुई है। बेटा शांति, तू अब बच्ची नहीं है कि मैं बार बार तुझे समझाती रहूं।
7: अरे छोड़ो ना माँ, क्यों बेचारी को सुबह सुबह डांट रही हो?
2: अरे क्या हो गया मेरे बच्चे को, खांस रहा है, देखो कोई पानी लाओ।
15: ला रही हूँ मासा।
7: अरे कुछ नहीं हुआ बस मुझे।
13: वैसे तो औरतों की आवाज को हमेशा दबाया जाता है, आज भैया की आवाज चली गई।
0: अरे मैंने तो सुबह ही कहा था सीधे हाथ से पानी लेना, हो गया ना सब उल्टा काम।
11: तुम भी कहीं भी शुरू हो जाती हो। क्या हुआ वीरेंद्र को, डॉक्टर को दिखाते हैं चलो।
1: सुना आपने, यहाँ बात बात पर बात बढ़ तो जाती है लेकिन चुप्पी पर कैसे बातें बनती हैं, ये देखना होगा। डॉक्टर तो गले का इलाज करेगा लेकिन अब वीरेंद्र सिंह राठौड़ की आवाज गई तो घर में क्या क्या होगा, आइए सुनते हैं।
11: देखो डॉक्टर ने कहा है वीरेंद्र की आवाज को 2-3 दिन लगेंगे ठीक से वापस आने पे, उसको बस दवाई टाइम से देते रहना है, ठीक है ना?
15: जी मैं समय पे खिला दूंगी। ये सुबह की, ये शाम की, इतनी बापरे सारी गोल गोल गोलियां हैं, इसमें तो मैं ही गोल गोल घूम जाऊंगी।
0: कुछ कहा राजकुमारी?
15: नहीं नहीं कुछ नहीं भाभी जी।
7: ओ ओ ओ ओ ओ
2: प, अरे ये कह रहा है ऊपर।
9: अरे नहीं नहीं नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं, कुछ ढूंढ रहा होगा, कुछ ऊपर होगा वही ढूंढ रहा होगा।
4: अरे उसको बैठना है।
7: ओ
15: हाँ लेकिन उसे पपीता कहाँ से होता है, अरे कोई और फल चाहिए क्या?
9: पैर में दर्द है क्या?
15: अरे पानी मांग रहे हो, पानी लेकर आओ।
18: अरे पापा से कुछ कहना होगा।
15: अरे पिताजी कहाँ गए?
7: पापा
4: अरे वो मुझे बुला रहा है, क्या बात कर रहे हो? पापा पापा बोल रहा है।
15: पापा गाने को लेटेस्ट गाना तो नहीं गा रहे? पापा पापा पापा वाला
4: पापा कहते हैं।
15: हाँ आवाज चली गई और गाने का मन कर रहा है बताओ।
13: अरे भैया के पैर के ऊपर आपने अपना पैर रख दिया है माधुरी जी।
14: अरे रे माफ करना भाई साहब, माफ करना मुझे, मैं है ना अब चलती हूँ अपने घर। चल माधुरी नहीं तो तेरी ही न्यूज बन जाएगी।
1: बेचारे वीरेंद्र जी अपने पांव का पा ही बोल पाए। क्या लगता है आपको, इनकी पत्नी मतलब राजकुमारी जी क्या सही दवा देंगी? इनके आवाज जाने पर और कितने कारनामे होंगे ये तो अब भगवान ही जाने, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आपके लिए होंगे ठहाके ही ठहाके। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर फिर मिलेंगे कार्यक्रम घर ऑन एयर के अगले एपिसोड में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
13: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौड़ परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

समय सुबह का तब बनता है खास जब आती है उषा अर्चना के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणी सा। हर बात के दो पहलू होते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधु, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। अब कौन सा पहलू जीवन में लाना है वो जरा विचार करिए। और जी हाँ, आम किस तरह फायदा करता है, कौन सी बीमारियां ठीक करता है जरूर जानेंगे आप। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो भला व्यंजन कैसे भूल सकते हैं। आज भी आपको सिखाने वाली हूँ अचार, लेकिन कौन सा वाला वो आप बताएंगे, नहीं तो फिर हम तो बैठे ही हैं। और आज की पहली बहुत ही शानदार रहेगी, तो ये सब कुछ सुनेंगे आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: गुड मॉर्निंग आशियाना में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार है, नकारात्मक और सकारात्मक सोच का परिणाम क्या होता है वो जानिएगा। तो आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। पुराने समय की बात है, एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। दोनों के पास थोड़ी थोड़ी जमीन थी। दोनों उसमें ही मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। एक दिन अचानक कुछ समय, मतलब थोड़ा सा समय गुजरा, उसके बाद दोनों की एक ही दिन एक ही समय पर मृत्यु हो जाती है। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें देख के उनसे पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनाकर मैं पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर के उनमें से एक किसान बड़े गुस्से से बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया जीवन दिया था। आपने कुछ भी नहीं दिया था मुझे। पूरे जीवन मैंने बैल की भांति खेतों में काम किया है। जो कुछ भी कमाया वह बस पेट भरने में लगा दिया। ना ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया, ना ही कभी अपने परिवार को अच्छा भोजन करा पाया। जो भी पैसे मैं कमाता था कोई आकर के मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। देखो कैसी जानवरों जैसी जिंदगी जी है मैंने। उसकी बात सुनकर भगवान कुछ समय मौन रहे और पुनः उस किसान से पूछा, तो अब क्या चाहते हो? तुम इस जन्म में क्या चाहते हो? मैं तुम्हें क्या बनाऊं? भगवान का प्रश्न सुन करके वह किसान पुनः बोला, भगवान आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे कभी किसी को कुछ भी देना ही ना पड़े। मुझे तो केवल चारों ओर से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात करके करवे किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने पुनः दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ तुम्हें क्या बनना है? तुम्हारे जीवन में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगू? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया, मुझे कुछ जमीन दी जिस पर मेहनत से काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को भरपेट भोजन दिया। मैं और मेरा परिवार कभी भूखे पेट नहीं सोए। बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे अपने पूरे जीवन अफसोस रहा और आज भी है। मेरे दरवाजे पर कभी कुछ भूखे और

अब दोनों का पुनः उसी गांव में एक साथ जन्म हुआ। दोनों बड़े हुए। पहला व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे चारों ओर से केवल धन मिले और मुझे कभी किसी को कुछ देना ही ना पड़े, वह व्यक्ति उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। अब उसे किसी को कुछ देना नहीं पड़ता था और जो कोई भी आता उसकी झोली में पैसे डाल के ही चला जाता था। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से कहा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके द्वार से कभी कोई भूखा प्यासा ना जाए, वह उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति बना। हर बात के दो पहलू होते हैं मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, सकारात्मक और नकारात्मक। अब यह आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप चीजों को नकारात्मक रूप से देखते हैं या सकारात्मक रूप से। अच्छा जीवन जीना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए, चीजों में कमियां मत निकालिए, बल्कि जो भगवान ने दिया है उसका आनंद लीजिए और सदैव दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखिए। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे फिर से बहुत सुंदर गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में देंगे आपको बहुत ही सुंदर घरेलू नुस्खे। भाई आम खाने के क्या फायदे हैं और कौन सी बीमारियां ठीक करता है आम? आम का सीजन है ना और आम तो सभी को पसंद है, छोटे बड़े बुजुर्ग सभी पसंद करते हैं और आम ऐसी चीज है कि आसानी से खा भी सकते हैं। नहीं तो कोई कड़क चीज होती है तो बुजुर्ग नहीं खा पाते, कभी नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं खा पाते, लेकिन आम ऐसी चीज है नन्हे मुन्ने बच्चों से लगा करके बुजुर्गों तक सब पसंद करते हैं। तो आम स्वादिष्ट होने के साथ साथ कई गुणों से भरपूर फल है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। देखे आम में फाइबर होता है जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। आम आंखों के लिए लाभदायक है क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है। कैसे? तो इसमें विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को सहयोग देते हैं। क्या होता है? इसमें विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को सहयोग देते हैं। देखिए आम ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत है। कैसे? पका हुआ आम प्राकृतिक शर्करा से भरपूर होता है जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है मेरे प्यारे श्रोता बंधु। त्वचा के लिए भी बड़ा ही लाभदारी है। कैसे है? संतुलित मात्रा में आम खाने से त्वचा को आवश्यक पोषण मिलता है। अब मैं आपको घरेलू उपाय बता रही हूँ। लू से बचाव के लिए आप आम का पन्ना, मतलब कच्चे आम को उबालकर उसका पन्ना बनाकर पीजिए। ये परंपरा है, गर्मियों में ताजगी देगा, ठीक है। पाचन के लिए कच्चे आम के छोटे टुकड़ों पर थोड़ा सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा डाल करके खा सकते हैं, पाचन शक्ति अच्छी रहेगी। पाचन शक्ति के लिए कच्चे आम के छोटे टुकड़े पर थोड़ा सा सेंधा नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल करके आप खाइएगा, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? पके आम को दूध के साथ मिला करके मैंगो शेक बनाइए और फिर पीजिएगा। ये ऊर्जा देने का बहुत ही सुंदर पेय है। तो पके आम को दूध के साथ मिला करके मैंगो शेक बनाइए और फिर आप पीजिएगा। तो ये ऊर्जा देने का बहुत ही अच्छा स्त्रोत है। आप इस तरह मैंगो शेक बनाकर पी सकते हैं। आम खाने का पारंपरिक तरीका भी आप जान लीजिए। कई लोग पके आम को कुछ समय पानी में भिगोकर खाने की सलाह देते हैं। यह एक पारंपरिक घरेलू प्रथा है। तो आप जरूर पानी में भिगो करके ही उसके बाद ही खाइएगा। तो इस तरह आम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बहुत अधिक मात्रा में आम खाने से कुछ लोगों को पेट की परेशानी या शुगर बढ़ने जैसी समस्या भी हो सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में सेवन करना बेस्ट माना जाता है। कहते हैं ना कि हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर कोई भी चीज़ हो हम लिमिट में खाते हैं तो फायदा करता है, और अनलिमिट में खाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा ओवर हो जाता है तो नुकसान भी करता है। तो बैलेंस रख करके खाना है, ठीक है। एक आम आप रोज खा सकते हैं। तो ये हुआ आज का सुंदर सा घरेलू उपाय जो आपने सुने हैं और आप आजमा सकते हैं। और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली है, ना मैं सेब ना मैं अनार, गर्मी में होता मेरा इंतजार, रस से भरा मीठा मेरा नाम, बच्चे बुड्ढे खाए सुबह और शाम। जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और आज की पहेली का जवाब दे सकते हैं। अब यहीं पर एक अल्पविराम लेकर के पुनः लौटेंगे। बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में फिरोज भाई जुड़ चुके हैं पालनपुर से। नमस्ते फिरोज भाई।
1: हाँ नमस्कार दीदी।
0: हाँ जी,
1: कैसे मधुबन परिवार को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और मालिक सभी श्रोताओं का और सभी रेडियो मधुबन परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रखे, ऐसे मालिक के प्रार्थना
0: जी। और आज का विषय मैं रख रही हूँ, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। क्या कहेंगे आप?
1: तो इसमें ऐसा है बहन जी के हमारे जो बड़े सेठ थे भाई जो इंतकाल हो गए, तो उन्हें बुरा वक्त भी देखा है और अच्छा वक्त भी देखे थे कि वो जो जो इनका बचपना था और इनकी पढ़ाई लिखाई का जमाना था, उसी टाइम में ये मैंगो के जमाने के अंदर वो बैल के अंदर मैंगो लेके जाते थे दूसरे गांव बेचने के लिए, और वो इनका ये खराब वक्त था, ऐसे मजदूरी करने का वक्त था, और फिर बाद में पढ़ाई लिखाई करके वो अपना ये फूड एंड ड्रग्स के डायरेक्टर बने गांधीनगर सचिवालय।
0: जी क्या बात है।
1: और इनका आयुर्वेदिक इनका मानसिक था, तो आयुर्वेदिक फार्मेसी भी बनाई डांग जिले के अंदर, वहाँ के जो जो बंजर इलाका के जो आदमी आदिवासी लोग हैं इनके लिए, इनकी रोजी रोटी के लिए सभी 60-70 जन अच्छा वेतन सरकारी धारा दौड़ मुझे पगार बोनस सब मिलता है इनको, और एक आदमी इनका रिटायर होने पर एक आदमी इनका घर का बच्चा रख दे इनका नौकरी।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय के बारे में?
1: इस विषय के अंदर हम कहना चाहेंगे कि कोई भी मुश्किल हो, खराब वक्त हो या अच्छा वक्त हो, उसमें खुशखुशाली रहना और ये अपने दिमाग में नहीं लगाना है। दिमाग में लगाओगे तो पागलपन भी आ सकता है और ऐसे अपना
0: नहीं के अंदर थोड़ा विषय समझिए फिरोज भाई। देखिए, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ज्यादा हो, दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही देखा हो, वो ही अनुभव की बातें कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप?
1: हमने भी अच्छा वक्त भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है, क्या अनुभव में हम देखो ये हम मेरे ड्राइंग टीचर तो वो हम उसी टाइम में बॉम्बे के अंदर ये रोजी रोटी के लिए हम लोग मैं 16-17 गाड़ी धोता था सुबह उससे कूदता था और
0: क्या बात है
1: धोता तो हाँ, और वो हमारा समझो कि बुरा वक्त भी था अच्छा वक्त भी समझो
0: जी,
1: उसमें पैसा भी मिलता था उसी जमाने में
0: जी। तो और एक अच्छा देखिए यंग एज होती काम भी हो जाता है, जुनून रहता है
1: जी। और अभी ये देखो मेरी इस उम्र के अंदर मेरी 69 चल रही है, अभी इस उम्र में भी मैं एक्टिव हूँ।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया। जिन्होंने शुरू से मेहनत की है ना वो लास्ट तक करते ही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। विषय भी बहुत ही अच्छा है, आज की पहेली भी बहुत ही सुंदर है। पहले तो मैं आज का विषय दोहरा रही हूँ, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों ज्यादा हो और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी कंचन भाई नमस्ते, कैसे हो आप?
2: नमस्ते नमस्ते बहन जी। कल तो इसमें थोड़ा काम था तो गया था, तो रात को 9 बजे आया
0: जी,
2: और पूरे दिन काम था इसमें थोड़ा जुआर बोया था तो वो काटे की तो इसका निकालना था भागीदार का और ये सब करने का
0: जी जी जी जी।
2: आज तो दुकान पे हूँ तो सुन रहा हूँ, अभी फिरोज भाई ने बातें बताई और सवाल बहुत अच्छा है रे
0: जी।
2: समझदारी की बात दो ही लोग करते
0: हाँ जी,
2: एक तो क्या उम्र
0: हाँ जी, एक तो क्या है कि थोड़े अधिक उम्र वाले ठीक है जो बुजुर्ग हो चुके हैं या तो वो कर सकते हैं ठीक है, उम्र और अनुभव दोनों होते हैं उनके पास, या फिर वो ही कर सकते हैं जो कम उम्र में भी अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। जैसे आपका भी हम कह सकते हैं आपके भी पिताजी के बचपन में ही डेथ हो गई, तो आपने कैसे भाइयों को पाला पोसा, तो अनुभवी तो आप भी है।
2: हाँ, वो ही तो बात मैं करना चाहता कम उम्र में ऐसी घर परिवार में जवाबदारियां कहा जाती है नहीं। तो एक तो अच्छे लोगों का संग, बुरे लोग भी मिलते हैं इसमें, और इसमें चला जाए और ये सब हमें मिल जाए, जमीन जायदाद सब हमें मिल जाए, तो ऐसे भी मिलते हैं। लेकिन ऐसे कुछ होते हैं लोग तो ये सलाह अच्छी देते हैं, तो ये ग्रहण करनी चाहिए
0: जी,
2: और आगे बढ़ना चाहिए, ये व्यसन व्यसन कुछ छोड़ देना चाहिए। हमारा भी ऐसा था, कम उम्र में आठवीं कक्षा से निकल गया मैं, कटता था तो पिताजी थोड़े ऐसे ही थे, कोई जवाबदारी नहीं थी
0: जी,
2: समाज से तो वो तो इधर उधर तालुका जिला में चले जाते थे, तो पूरी जवाबदारी मेरे माता जी ने बोला कि भाई तू नहीं पढ़ पाएगा, तू निकल जा
0: जी।
2: निकल गया और खेती की जवाबदारी ले ली मैंने
0: जी जी जी,
2: खेती की जवाबदारी ली इसमें। और हमारे कुटुंब घर परिवार गाँव वाले तो बोलते थे कि ये घर अब निकल जाएगा, घर घर नहीं रहेगा
0: जी,
2: जाएगा
0: जी,
2: ऐसी परिस्थिति
0: जी जी जी।
2: लेकिन
0: जब घर का मुखिया ही अगर लापरवाह हो जाए तो फिर घर बिखरेगा, स्वाभाविक लोग ऐसे ही सोचेंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि इन्हीं के बीच
2: पिताजी का भी कोई दोष तो नहीं था, लेकिन ऐसे लोगों का संग किया ना तो उन्होंने
0: जी, संग का रंग लगता है ना।
2: हाँ, तू ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा, वो तू ही तालुका में जिला में जाके तू ही ये बात कर सकता
0: जी जी जी। ऐसे
2: ये लोग मिले ना तो ये ऐसे करने लग गए, कोई जवाबदारी है, पांच बेटे है मेरे, ऐसा है वैसा है, तो कोई पीछे देखा भी नहीं
0: जी जी जी जी।
2: तो मुझे ये छोड़ना पड़ा पढ़ाई और सिलाई काम में सीखने, और खेती तो भागीदार करता था, ये भी देखभाल करते थे मेरे माता जी
0: जी,
2: और सिलाई का काम सीख गया एक साल में आया, और ये मकान भी नहीं था, दुकान भी नहीं था, तो किसी के कपड़े की दुकान थी ना वहाँ, आंगन था थोड़ा उठला, तो वहाँ बैठ के मैं सिलाई का काम करता था। ऐसा कर करके फिर ये दुकान का आयोजन किया, पंचायत में दिखाया, ये सब किया, दुकान बनाई
0: जी।
2: तो अभी इसके बाद तो मैंने 8-10 युवाओं को सिखाया ये काम की हमारी परिस्थिति कैसी
0: जी जी जी, अनुभव हो गया ना आपको, अनुभव हो गया, कम उम्र में तकलीफें आई तो आप समझदार समय से पहले बन गए।
2: तो
0: वो कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि कम उम्र में भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब बुद्धि से।
2: हाँ, बुद्धि
0: जी।
2: मैंने अच्छे लोगों का ही किया, और मेरे दोस्त भी ऐसे मिले कि तुम ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो
0: जी, ये भी देखे,
2: ये सब बताने वाले लोग भी, इसका ही मैंने संग्रह, और इसका आभार मानता हूँ मैं, और अब अच्छी परिस्थितियाँ है
0: जी
2: की।
0: वो तो
2: मैंने चार बेटा और एक बेटी हुई, तो सबको कॉलेज तक पढ़ाया
0: जी जी, बहुत बढ़िया।
2: तो जॉब करते हैं, मेरी बेटी बीएड किया है, तो वो भी लग जाएगी, वो भी कोशिश कर रही है आगे एग्जाम देने की
0: जी जी जी।
2: तो बिल्कुल कुल मिला के बहन जी बहुत अच्छा परिस्थितियाँ है, लेकिन ये सब क्या है कि भाई हमारा संग, और हमें संघर्ष करना पड़ेगा
0: जी,
2: संग करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, हमारे पास अनुभव नहीं होता तो दूसरों का अनुभव लेना पड़ता
0: जी जी जी, बिल्कुल।
2: कोई तो ऐसे है कि ये कैसे डूब जाए, और ये सब हमें
0: मौके का फायदा उठाना चाहते हैं ना लोग, और ऐसे ही क्या ये टूट जाए तो अच्छा है जी।
2: ये बात मैंने बताई बहन जी, दूसरे लोगों को भी चुनना है तो।
0: चलिए, बहुत बहुत आभार। आज की पहेली का जवाब देंगे
2: आप? पहेली तो मैंने सुनी है, लेकिन थोड़ी देर बताऊंगा।
0: अच्छा, ठीक है चलिए, बहुत बहुत आभार। हाँ जी, तो ये थे कंचन भाई मंडाली से। आपने भी अपना अनुभव सुनाया है, विषय को स्पष्ट किया है। कहते हैं ना कि जो भुगत भोगी होते हैं तो उनसे बढ़कर और कौन अनुभवी होंगे। खुद के अनुभव होते हैं ना, प्रैक्टिकल विषय है। हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है कि उस समय इंसान कम उम्र में भी जब वो परिस्थितियों का सामना करता है तो करते करते स्ट्रगल करते करते आखिर एक दिन वो कामयाब हो जाता है और अच्छे पोजीशन में आकर के बता देता है कि देखो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उनके पास ही अनुभव होते हैं और ऐसे लोगों के अनुभव कभी भी गलत नहीं होते। इसलिए कभी सलाह लेनी हो ना तो ऐसे लोगों के पास बैठिए जो जीवन में अनुभवी है। अब जिसने वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ ले लीजिए, चलिए आम ही ले लीजिए, किसी ने आम नहीं खाया और फिर उससे पूछोगे आम का टेस्ट कैसा है, कभी उसने देखा ही नहीं तो उसको पूछोगे आम का कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, वो क्या जवाब देगा। लेकिन जिसने खाया है वो अच्छी तरह बता सकेगा कि भाई पहले ग्रीन होता है, पकने के बाद येलो हो जाता है, फिर ऐसा हो जाता है, फिर वैसा हो जाता है, ऐसा है वैसा है, पूरा स्पष्ट करके रख देगा। ऐसे ही कभी कोई बातें होती है या जीवन में कभी देखे, ऐसा नहीं है कि सभी आराम से ही बड़े होते हैं। परिस्थितियाँ कभी भी किसी भी उम्र में आ सकती है और उस समय हमें सलाह की बहुत ज़रूरत होती है। उस समय ऐसा लगता है कि हम किससे बात करें, किससे शेयर करें कि उसका सॉल्यूशन निकल आए। तो ऐसे लोगों से आप शेयर करिए जो भुगत भोगी होते हैं, जो जीवन में काफ़ी स्ट्रगल करते हुए एक दिन सफल होकर के दिखाते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बैठिएगा और ऐसे लोगों से राय लीजिएगा, ठीक है। चलिए और भी इस विषय पर अधिक चर्चा करेंगे। हम तो चाहते कि आप जुड़े और आप अपनी बात को रखें, लेकिन एक ब्रेक के बाद जुड़िएगा। समय हो चला एक ब्रेक का। चलिए फिर भी फोन की घंटी बजी है तो उठा देंगे। हेलो,
3: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
3: हाँ जी बेन नमस्ते, जगदीश भाई बोलू।
0: हाँ जगदीश भाई, केम छो? बहु दाड़ा पछे जोड़ाया।
3: बहु दाड़ा प्रोग्राम तो सब रही तमारो
0: तो क्यारे क्यारे जोड़ाओ।
3: નાની ઉંમર માં જેને મા બાપ ગુજરી ગયો હોય, મા ના હોય બાપ ના હોય, એને નાની ઉંમર માં પણ અનુભવ ઘણા થઈ જતા હોય
0: જે
3: કહેવાનો મતલબ એ છે, એને જો બાપ ના હોય તો બધી જિમ્મેદારી એટલે બધું એના ઉપર આવી જાય, એટલે એને બધી રીતે સમજણ પડી જાય।
0: સાચી વાત છે તમારી।
3: નાની ઉંમર માં પણ એનો અનુભવ બહુ મોટી ઉંમર ના હોય કે એમના જેટલો અનુભવ થઈ જાય
0: જી। બહુ સરસ જગદીશ ભાઈ, આજની પહેલીનો જવાબ આપશો?
3: પહેલી બોલજો બેન।
0: હા આજની પહેલી સંભળાવું છું, સાંભળજો તમે। ન મે સેબ ન મે અનાર, ગરમી મે હોતા મેરા ઇંતજાર, રસ સે ભરા મીઠા મેરા નામ, બચ્ચે બુઢે ખાએ સુબહ ઓર શામ।
3: બેન કહી દઉં?
0: તમે ઇશારો કરી શકો છો, ડાયરેક્ટ નામ નહીં લેતા તમે।
3: જવાબ આપ્યો છે આજે, ટિપ્સ આપી ઘરેલું ઉપચારમાં।
0: ઓકે હું સમજી ગઈ, તમારો ઈશારો સમજી ગઈ। ઓકે હા, બહુ બહુ આભાર ઓર વચ્ચે જોડાયા કરો હો।
3: હા હા બેન, ચલો થેન્ક યુ।
0: ઓકે તો યે થે જગદીશ ભાઈ ઈડર સે, ઓર अब आइए यहाँ पर एक अल्पविराम ले लेते हैं, उसके बाद इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर. डायल कीजिए 101 अपने फोन से. सजग रहिए, सुरक्षित रहिए. रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी.

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है। विषय बहुत ही सुंदर है, समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं। एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। क्या कहेंगे आप? हेलो,
1: हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम जानते
0: हैं। हाँ जी, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: जी, बहुत अच्छे हैं। हमारे सभी मित्र जुड़ रहे थे तो मैंने सोचा चलो मैं बाद में बात कर लूँ।
0: जी जी, हाँ, बहुत अच्छा है।
1: सभी हमारे मित्र जुड़ रहे हैं, हमारे जगदीश भाई को भी नमस्ते। जगदीश भाई बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं।
0: जी,
1: तो वो भी हमारे जगदीश भाई भी हमारे मित्र जो सतीश भाई के फादर हैं, तो सतीश भाई का भी मुझे कॉल आता है कभी कभी।
0: जी
1: इडर, इडर से।
0: जी जी, बहुत बढ़िया। आपके तो पास में पड़ता होगा इडर?
1: नहीं, हमारे तो इडर तो बहुत दूरी पर थी, कम
0: अच्छा।
1: सौ किलोमीटर है।
0: ओहो,
1: 100।
0: बहुत दूर है। जी
1: बहुत दूर है वो तो।
0: जी,
1: तो आज का जो विषय है दीदी एक बार दोहरा दीजिए क्योंकि।
0: हाँ जी, आज का विषय आप पर भी सूट करता है। समझदारी की बातें केवल दो ही लोग करते हैं, एक वे जिनकी उम्र और अनुभव दोनों अधिक हो और दूसरे वे जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो।
1: बिल्कुल सही दीदी। देखो मेरी मैं खुद की बात करूँ दीदी, मैं तो छोटा सा 20 साल का था तो मेरे फादर ऑफ गए हैं, पिताजी गुजर गए। पूरी जिम्मेदारी दीदी मेरे पर आई क्योंकि मैं तो 5 बहन, इस वक्त मेरी 5 बहन थी, तो शादी मेरी नहीं हुई, शादी होने के बाद मेरा फादर ऑफ गया था।
0: अच्छा, शादी तो होते
1: शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद पिताजी गए थे। लेकिन फिर भी जवाबदारी जितनी छोटा था, 20 साल का तो मैं, 22 साल का तो गुजर छोटी सी उम्र कहलाती है ना।
0: जी बिल्कुल,
1: तो सभी जवाबदारी तो सभी
0: 20 साल की उम्र में तो आज शादी भी नहीं होती है।
1: नहीं होती है
0: जी,
1: तो सब कुछ देख लिया। देखो इतना अनुभव हुआ, इतना अनुभव, सबसे व्यवहार त्योहार सभी एक दूसरे को मनाना ये तो सभी रहता है शादियों में।
0: जी,
1: कई सारी अनुभव है, लेकिन इसीलिए तो दीदी मैं आज बिल्कुल अच्छा हूँ क्योंकि मेरे छोटी सी उम्र में मेरा सब कुछ मैंने सीख लिया, देख लिया।
0: जी जी जी,
1: और सुख दुख भी देख लिया, दुख भी देख लिया।
0: जी,
1: और अब अच्छा है, बेटे है, बेटे काम से को जॉब है, बहुत अच्छा है, अब कुछ टेंशन नहीं है। सभी टेंशन जो हम छोटे थे सब चले गए। छोटी सी उम्र में कोई भी दुख आता है दीदी अच्छा रहता है।
0: जी जी,
1: लेकिन जब
0: अनुभवी हो जाते हैं जल्दी।
1: हाँ, बहुत उम्र होती है, बाद में जो दुख आता है दीदी वो सहन नहीं पाते।
0: बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाता है सहना।
1: हाँ, मुश्किल हो जाता है, इसलिए कई सारे अनुभव है। बस मैं तो दीदी इतना कहूँगा कि कोई भी जो प्रॉब्लम आए तो उसको खुशी खुशी को सहन कर लो, तो आप कोई प्रॉब्लम आए तो सहन कर लो, तो आपको आगे
0: देखिए रो के भी सहन तो करना ही है ना, तो इससे अच्छा हंसते हंसते सहन करिए।
1: हाँ, सहन करना है, सहन करेंगे तो दीदी आगे आएंगे। तो देखो आज हम सहन नहीं करेंगे, देखो आज कई लोग क्या करते हैं दीदी, कोई ऐसा टेंशन आता है तो खुदकुशी कर लेते हैं।
0: जी,
1: कई सारे हमने ऐसे देखे हैं कि जब टेंशन आता है, कोई कर्जा हो जाता है, भाग जाते हैं, चले जाते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं।
0: जी,
1: तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि दुख के दिन बहुत नहीं रहते, सुख के भी नहीं रहते, तो दुख के ज्यादा नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अंधकार के बाद प्रकाश आना ही है।
1: हाँ, प्रकाश आता है, तो बस हम तो कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसा टेंशन मत लो क्योंकि दुख सुख तो हमारा साथ ही है, चले जाएंगे।
0: जी
1: जी, नमस्ते
0: जी। जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई चोटाना से, बहुत ही कम उम्र में पिताजी गुजर गए, तो स्वाभाविक है पूरे घर की जिम्मेदारी, 5 बहनें, माताजी, खुद और बीवी, बच्चे भी, तो इतने बड़े परिवार को एक साथ लेके चलना और ऊपर पिता का साया न होना, बहुत ही वो पल मुश्किल वाले होते हैं। वो पल बीत जाने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उस परिस्थिति में जब हम गुजरते हैं तब पता चलता है कि परिस्थिति किसे कहते हैं, है ना। समय तो निकलना ही है, लेकिन समझदारी से आगे बढ़ते हैं वो ही इंसान कहलाता है। हेलो
2: हेलो, नमस्ते दीदी, मैं सुरेश भाई दानेदार।
0: हाँ जी, नमस्ते सुरेश भाई।
2: नमस्ते,
0: कैसे हैं आप
2: जी? नमस्ते नमस्ते दीदी, बस बहुत अच्छे हैं दीदी, और आपकी और मित्रों की बात सुन रहा हूँ, और विषय भी बहुत अच्छा है
0: जी।
2: और तो आज का विषय मैंने सुनकर मेरे बचपन की पिछली जिंदगी जीवन याद आ गया, कितने कष्ट भरी रही मेरी
0: जी, मेरा जी, भी जी। जीवन। आप एक एक की कहानी है, आपके भी जीवन में काफी तकलीफें आए हैं और आज आप अच्छा जीवन जी रहे हैं, है ना? जी।
2: और वो तो चलो कष्ट आ गए, हमने तो हमारे माता पिता ने अच्छा संस्कार दिया था, तो चलो समझदार हो गए, और समझदार जैसी बातें और हमारा जीवन में धारण कर ली। लेकिन दीदी मैं बात करूं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बचपन में या कोई भी तकलीफ दुख आती है तो वो क्या करते हैं, गलत रास्ता अपना लेते हैं, चोर उचक्का गुंडा वगैरह बन जाता है, और नहीं तो नशीली चीजों में
0: जी,
2: जाता है, तो
0: बिल्कुल,
2: जीवन
0: बिल्कुल,
2: ही बर्बाद हो जाता,
0: नशे के आदि हो जाते हैं।
2: हाँ, तो हर एक इंसान की समझदारी से काम कैसे ले वो इंसान को खुद तय करना है। और रही बात जो कंचन भाई ने बात बताई दोस्तों की संग की बात
0: जी,
2: तो ये भी हमें समझना जरूर होगा कि हम किसके संग में है और किस में संग में रहना चाहिए। अगर अच्छे संग में रहे तो अच्छा ही हमारा संग मिलेगा। ये तो बहुत सारे जितनी कहे बात इतनी कम है दीदी, तो बस मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं कि चलो बचपन में जो कष्ट आया तो हमने झेल दिया, ये जब तक जीवन है तो सुख आएगा दुख आएगा, लेकिन समझदारी से साथ लीजिए। और अगर कोई बुजुर्ग या कोई उम्रदराज व्यक्ति है तो अपने आसपास अपने बच्चों को सभी को बात बतानी चाहिए और कहनी चाहिए कि देखो बेटा ये जो आप कर रहे हैं ऐसे हमारे जीवन में भी आया था, लेकिन हमने अच्छी समझदारी से काम लिया। अपने बच्चों को या किसी भी को मैं ये मोटिवेशन कर सकते हैं, तो मैं यही कहूंगा सभी को सुनने वालों को कि अपने जीवन में तो लाइए अच्छे संस्कार समझदारी, लेकिन दूसरों के जीवन में भी समझदारी लाने की कोशिश करेंगे।
0: जी
2: जी जी दीदी,
0: और आज की पहेली का जवाब देंगे?
2: हाँ, आज की पहेली तो आपने जो नुस्खे है ना उसमें ही बता।
0: अच्छा, ठीक है।
2: जी नमस्ते दीदी
0: जी, बहुत बहुत आभार। तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अभी सुरेश भाई धानेरा से जुड़े थे। आपने भी देखे बचपन में बहुत तकलीफें उठाई है, तो हर एक का अनुभव है। रेडियो मधुबन के हमारे इतने सारे श्रोता बंधु है जिन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में, और आज वो पारस की तरह निखर गए हैं और नेक कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कि पहले अगर दुख तकलीफ आता है जीवन में तो अच्छा है, बुढ़ापे में नहीं आना चाहिए, फिर भी मान लीजिए किसी के बाद में आता है, या किसी का ऐसा होता है कि जिंदगी भर वो दुख तकलीफों से ही गुजरते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि उन्होंने स्वस्थ तन दिया, स्वस्थ मन दिया, है ना, दिव्य बुद्धि दी। कम से कम लोगों के पास ये भी नहीं है, किसी के आँख नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, हमें ईश्वर ने ये तो दिया है, इसलिए धन्यवाद दीजिए। और जिंदगी भर अगर दुख तकलीफ है तो ईश्वर का, वो कहते हैं ना, ईश्वर भजन करते रहिए, ईश्वर की याद रहती है उसमें, और ईश्वर को मत कोसिए। हो सकता है किसी जन्म का हमारा कोई भी हिसाब किताब हो, ठीक है, और हम तो चाहते हैं कि जिंदगी भर किसी के जीवन में तकलीफ ना हो। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति उषा बहन जी।
0: हाँ जी, नमस्ते दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: मैं बहुत ही अच्छा हूँ, बाबा की कृपा है, सभी मेरे प्यारे मित्रों की, बहनों की, सभी आरजे भाइयों की, दादियों की कृपा है, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। इस वक्त
0: राजस्थान
3: में हूँ तो अभी थोड़ी तेज हवाएं भी चल रही है
0: जी,
3: और दो दिन पहले आंधी बांधी कुछ बारिश भी थोड़ी हुई
0: जी,
3: और कहीं कहीं बिजली भी गिरी तो कहीं नुकसान भी हुआ, कहीं पेड़ भी गिर पड़े और बिजली के खंभे भी उखड़ के गिर गए, तो चार पांच दिन से बिजली अभी ठप पड़ी हुई है
0: जी जी जी जी बिल्कुल,
3: और काम चल रहा है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा
0: जी जी जी। जरूर होगा।
3: रेडियो सुनने वाले सभी मेरे प्यारे मित्र, मेरे सुरेश भाई, कंचन भाई, सुरेश भाई धानेरा, जगदीश भाई और भी मेरे सभी साथियों को, हमारे रेडियो परिवार को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, ओम शांति
0: जी। और आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे
3: जी? विषय बहुत ही सुंदर विषय आप लेके आए हो, तो बहुत ही बढ़िया है दीदी। जो समझदार होता है तो उसके जिंदगी में कई, उसने अपने जिंदगी में आपत्ति और कई अटकलें झेली है, तो उन्होंने उसके अंदर बहुत बहुत उनके अंदर अनुभव है जिंदगी में। जो जैसे गाड़ी के उतार चढ़ाव आता है, तो जिंदगी भी हमारी ऐसी है। जब दीदी मैं छोटा था तो मेरा एक भाई था, मेरी दो बहनें थी
0: जी।
3: और मेरा भाई इतना बड़ा समझदार नहीं था, तो मेरे पिताजी जब गुजर गए तो सब जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर आ गई
0: जी।
3: तो मैंने अपनी जिंदगी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ले ली और मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत की और भाई बहनों को साथ में लेके चला और उन्होंने भी मेरा बहुत सपोर्ट दिया। तो उस वक्त दीदी, हम आज लगभग मेरे ख्याल से 35-40 साल पहले की बात है, तो उस वक्त हमारे को हमारे ऐसी प्रॉब्लम थी, तकलीफ होती थी, तो क्योंकि खाने को अनाज भी नहीं मिलता था, मजदूरी नहीं मिलती थी हमारे पढ़ने के लिए। कहीं मजदूरी पर हमारे पिताजी जाया करते थे तो हमको भी साथ लेके जाया करते, तो हमारी पढ़ाई में बहुत रुकावटें आई, हमने पढ़ाई सही तरह से नहीं की
0: जी जी।
3: लेकिन बहुत जिंदगी में हमने उतार चढ़ाव देखा है। अभी अभी हम जो हम काम कर रहे हैं, बाबा से खुश है, हमारे ऊपर से हम भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम इतनी जिंदगी में ठोकरे खा के आज हम अपने पैरों पर खड़े हुए, आत्मबल और शक्ति और आत्म शक्ति हमारे भीतर है, तो हम खुशी से जी रहे हैं, हम तो खुशी से जी रहे हैं। और हमारे साथ भी जो हमारे रिश्तेदार है, हमारे जो आते जाते हमारे साथ है, वो भी उनको भी हम उसका भी मार्गदर्शन करते हैं
0: जी जी जी। बहुत बढ़िया।
3: हमारा तो गुरु रेडियो मधुबन है, आप जैसे आरजी है, तो आपने हमारे भीतर इतनी सकारात्मक सोच भरी है, सोच करके तो हम अच्छी जिंदगी जीते है और दूसरों को भी मार्गदर्शन बताती है।
0: बहुत
3: सभी सुनने वालों को नमस्कार, ओम शांति। और आज की पहली क्या तो जवाब मैंने
0: जी जी दे दिया आपने,
3: माध्यम से भेजा है।
0: हाँ जी हाँ जी, देख लिया,
3: धन्यवाद
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे दयाराम जी रामपुरा से, बहुत ही सुंदर भी आपने भी बात कही है कि देखिए आपके भी कम उम्र में पिताजी गुजर गए, घर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, लेकिन कह रहे थे कि ठोकरे खाते खाते आखिर संभल गए और आज एक ऊंचे मुकाम तक पहुंच चुके हैं। आज आप खुश हैं अपने जीवन में, बहुत अच्छी बात है। हर एक के जीवन में ऐसा होता है, हर एक के नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों के जीवन में इस तरह की बातें होती है। इसलिए कहते हैं समय से पहले वो परिपक्व हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, अनुभवी हो जाते हैं। और ऐसे लोगों से अगर हम अपनी बात शेयर करते हैं तो सॉल्यूशन सही निकलता है। इसलिए जिन्होंने जीवन का मर्म ही नहीं समझा हो, उनसे कभी सलामत मांगिए, उनसे बैठिए, देखिए। ऐसे नहीं कि उनको अकेले छोड़ देना है, उनके पास भी बैठेंगे तभी उनको दुनिया से, जीवन से अवगत करा पाएंगे। बाकी हाँ, जहाँ सलाह मशवरा की बात आवे तो वहाँ पर आप समझदार अनुभवी लोगों के साथ बैठिए, या तो उम्र वालों के साथ बैठिए कि उम्र वालों को पता होता है, पूरा जीवन उनका गुजर चुका होता है, तो उन्हें पता होता है कि क्या उतार आया, क्या चढ़ाव आया। और कम उम्र वालों के पास बैठते हो तो ऐसे लोगों के पास ही बैठिए जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ सहा हो और सहते हुए भी जीवन में उनको कामयाबी हासिल हुई हो। ठीक है, तो बस इस विषय को यही समाप्त करते हैं और आइए अब आज की पहेली की तरफ बढ़ते हैं। आज की पहेली बहुत ही सुंदर है। न मैं सेब न मैं अनार, गर्मी में होता मेरा इंतजार, रस से भरा मीठा मेरा नाम, बच्चे बूढ़े खाए सुबह और शाम। तो क्या क्या है जो बच्चे बूढ़े सभी पसंद करते हैं और गर्मी में सभी को इंतजार रहता है इसका? जवाब देने के लिए नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और यहीं पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्वादिष्ट और चटपटा कच्ची केरी और चने का अचार। तो आइए जानते हैं इसकी आसान विधि आपको सिखाते हैं। तो तैयार हो ना आप सभी सीखने के लिए। हमने कहा था कि आप अपनी पसंद रखिए, आप अपनी पसंद नहीं रखते तो चलिए हम हर प्रकार का अचार आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो आज कच्ची केरी और चने का अचार, ये भी आप बना करके देखिए, बहुत अच्छे लगेंगे। तो सामग्री लिख लीजिए, कच्ची केरी ले लीजिए, 500 ग्राम कच्ची केरी ले रहे हैं तो काबुली चना या देसी चना जो भी आप ले रहे हैं एक कप ले लीजिए, ठीक है। सरसों का तेल लेना है आपको, राई ले लीजिए, दरदरी पीसी हुई मतलब राई की दाल ले लीजिएगा, और अगर आप मात्रा कहे तो सरसों का तेल एक कप लीजिएगा, दरदरी पीसी हुई राई की दाल 3 बड़े चम्मच लीजिएगा, 2 बड़े चम्मच सौंफ लीजिएगा, हल्दी 1 छोटा चम्मच लेना है, लाल मिर्च पाउडर 2 छोटे चम्मच लीजिएगा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। फिर से दोहरा रही हूँ, सामग्री ध्यान दीजिएगा। कच्ची केरी 500 ग्राम ले रहे हैं तो एक कप आपको या तो काबुली या देसी चना जो भी पसंद है लीजिएगा, एक कप सरसों का तेल लेना है, दरदरी पीसी हुई राई ले लीजिएगा मतलब राई की दाल लीजिएगा 3 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच सौंफ लेना है, 1 छोटा चम्मच हल्दी लीजिएगा, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर लीजिएगा और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। फिर आपको तीखा पसंद हो या सामग्री आपको ऐसा लग रही हो तो कम ज्यादा कर सकते हैं। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। सबसे पहले कच्ची केरी को धोकर के अच्छी तरह सुखा लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लीजिए। अब रात भर भीगे हुए चनों का पानी, मतलब पूरी रात आपको चने को भिगोना है, कोई से भी चने ले रहे हो, देसी या काबुली, पूरी रात पानी में भिगोना है। भिगो करके पानी से निकाल करके उन्हें कपड़े पर फैला दीजिए ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए। फिर अब आप सरसों के तेल को हल्का गर्म करिए और गर्म करने के बाद ठंडा कर दीजिए, ठीक है। इधर 1 बड़े बर्तन में केरी, चना, राई, सौंफ, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डाल करके अच्छी तरह मिला लीजिए। अब जैसे ये सरसों का तेल गर्म कर रखा है और थोड़ा सा ठंडा हो गया हो तो इस मिश्रण में मिला दीजिए, ठंडा कर देना है, पूरा ही ठंडा करके मिलाना है, ठीक है। फिर तैयार अचार को साफ और सूखे कांच की बरनी में भर दीजिए, 3 से 4 दिन तक रोज एक बार साफ चम्मच से इसको हिलाइए। बस तैयार है आपका स्वादिष्ट कच्ची केरी और चने का अचार। तो बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाना सिखाया है, जरूर बना करके खाइएगा। तो श्रोताओं, इस गर्मी घर पर बनाइए कच्ची केरी और चने का ये स्वादिष्ट अचार और बढ़ाइए अपने भोजन का स्वाद। तो चलिए यहाँ पर सुना देते हैं गीत, उसके बाद पुनः लौटेंगे। अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाना है, कोई भी सात्विक चीज बनाते हैं अपने इष्ट देव को भोग जरूर लगाना है। और अब एक ब्रेक लेने के बाद पुनः रूबरू होते हैं। तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: इसे पी जा। ये क्या है माँ जी? ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ, मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल, मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता, आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद? नहीं ना।
3: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम तो काफी अच्छे रहे हैं, सुंदर सा जो विचार दिया है उस पर जरूर आपने गौर किया होगा, नुस्खे भी बहुत ही अच्छे दिए। आम किस तरह फायदा करता है हमारी हेल्थ के लिए वो आप सभी ने जाना है। खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई, तो जो रेसिपी में आपको कच्ची केरी और चने का अचार सिखाया है जरूर बना करके खाइएगा भाई, 12 महीने की चीज है, अभी सीजन चल रहा है, अभी ही आपको बनाना है, ठीक है? कभी भी कच्ची केरी लेकर के आ जाइए, चने तो वैसे ही मिल जाते हैं मार्केट में, घर पर भी रखते हैं, तो ज़रूर बनाइएगा। साल भर का इकट्ठा करके रख दीजिए ताकि कभी भी आप खा सको, ठीक है? और आज की पहली बड़ी सुंदर थी, न मैं सेब न मैं अनार, गर्मी में होता मेरा इंतज़ार, रस से भरा मीठा मेरा नाम, बच्चे बुड्ढे खाए सुबह और शाम। तो आज हमारे सभी श्रोता बंधुओं ने जवाब सही दिया है, सभी के लिए ढेर सारी तारीफ। नाम भी बोलूंगी मैं, अभी नाम सुनाने जा रही हूँ। मीना बहन तलेटी से, आबू तलेटी से, मंजू जी बाड़मेर से, लीला जी कपासन से, वेदांत उदयपुर से, ललिता तलेटी आबू रोड से, दयाराम जी रामपुरा से, सुरेश भाई जोटाना से, सुभाष भाई मुंबई से, फिरोज भाई पालनपुर से, कंचन भाई मंडाली से, जगदीश भाई इडर से, सुरेश भाई धानेराव से, शोभा सोमानी कपासन से, अलका जी काबरा कपासन से। आप सभी का जवाब सही है और विषय में भी हमारे बहुत सारे श्रोता बंधु जुड़े, उन सभी के लिए भी ढेर सारे। आज का मीठा मोती है, बहुत ही सुंदर है आज का मीठा मोती। संबंध नियमों को लागू करने से नहीं सुधरते, स्वयं को बदलने से सुधरते हैं, इसलिए स्वयं को बदलिए। अब मैं आपको एक प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक अच्छे से टंग ट्विस्टर के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM। श्याम प्रभु के रूप को जो निरखे एक बार, दुख दरिद्र सगला मिटे, फले सदा परिवार।

टेर सुनो, बस भक्ता के संग में बाबा मारे सिर पे हाथ धरो। भजन सुनाऊं मैं थाने, दर्शन दे दो अब माने, थारी भक्ति दे।

0: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
0: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इतना ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है जागृति इस कार्यक्रम में। जागृति ये कार्यक्रम महिलाओं के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए डेडिकेट किया हुआ कार्यक्रम है और हम अभी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और पिछले कड़ी में हमने मानसिक स्वास्थ्य किसे कहा जाता है और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है और हमें मदद किया है इन चीज़ों को समझने के लिए हमारे विशेषज्ञ हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आप दोनों साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, लेकिन आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है अनिद्रा के बारे में। यानी कि कई बार हम ये महिलाओं के अंदर देखते हैं कि दिन भर की मेहनत करने के बावजूद, थकान होने के बावजूद रात को चैन से सो नहीं पाते हैं या नींद नहीं आती है। वो कारण कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या फिर वो किसी बात की चिंता में पड़ी हुई है या मानसिक रूप से अस्वस्थ है, कारण कुछ भी है, लेकिन उसका जो रूप है उनके जीवन में वो अनिद्रा के रूप में दिखता है। तो कई बार वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा क्या है जो अनिद्रा का कारण बनता है और हम एक चैन की नींद सोना क्यों जरूरी है और नींद अच्छी होने से हमारी मानसिक स्वास्थ्य पे कैसे प्रभाव पड़ता है, आज इन विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ, जैसे हमने कहा कि पिछली कड़ी में हमें जिस तरीके से हर्षिता जी और वीरेंद्र जी ने मदद किया है आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से, आप हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में अब अपनी सेवाएँ दे रहे हैं हरियाणा में और आज रेडियो मधुबन पे बने हुए हैं अपने अनुभवों से आप सभी को मदद करने के लिए। तो हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस दूसरी एपिसोड में।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: धन्यवाद
3: जी। तो हम आज आपसे ये सीखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि एक जो कॉमन बीमारी है, या शायद इसको बीमारी कहे या ना कहे आप बता सकते हैं, अनिद्रा होना या सो नहीं पाना। महिलाएं दिन भर काम करती हैं बावजूद उनको ये कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है, घर पे ही तो बैठी हुई थी। मगर उसका एक रिजल्ट, एंड रिजल्ट में ये देखने को मिलता है कि वो सो नहीं पाती है। तो उसका क्या कारण हो सकते हैं और नींद ना होने से उनके जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है?
5: नींद मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा इंडिकेटर या सबसे बड़ा इशारा है। एक अच्छी नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अब वो नींद कितनी उचित है वो पर्सन से पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग शॉर्ट स्लीपर होते हैं जो 4-5 घंटे सोकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं और उन्हें कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होती। कुछ लोग लॉन्ग स्लीपर्स होते हैं जिनको 10-11 घंटे का नींद चाहिए, बट उन्हें एवरेज अगर देखा जाए तो 7-9 घंटे का नींद जो है वो एक नॉर्मल मनुष्य को चाहिए होता है अपने अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अगर कभी भी नींद में कुछ दिक्कत आ रही है, अनिद्रा आ रही है, अनिद्रा हो रही है, तो हमें समझना होगा कि वह क्यों आ रही है, उसके कारण हमें ढूंढकर निकालने होंगे। अब अनिद्रा की जो बीमारी है वो या तो प्राइमरी इंसोम्निया हो सकता है जिसको हम बोलते हैं, जो अपने आप आ रही है जिसके पीछे और कोई कारण नहीं है, सिर्फ नींद कम हो रही है। वो या तो सिर्फ नींद कम हो रही है या फिर उम्र के साथ साथ नींद कम होती जा रही है। इंसान की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है उसके नींद का समय कम होने लग पड़ता है। हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे जब पैदा होते थे वो 16 घंटे 17 घंटे 20-20 घंटे सोते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है नींद की ड्यूरेशन कम होती रहती है। अडल्ट लाइफ आने के बाद में आपकी नींद 7 से 8 घंटे की सेट हो जाती है, वो फिर काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और जब उम्र ढलने लगती है या जेरियाट्रिक एज ग्रुप आने लगती है, जब आप 50-55 साल के ऊपर के हो जाते हैं, तब आप नींद आपकी धीरे धीरे कम होकर 5 घंटे 4 घंटे की रह जाती है। अगर आप उतनी नींद लेकर भी खुद को फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, जब आप सुबह उठे तो आपका दिमाग एकदम स्वस्थ है, फ्रेश महसूस कर पा रहे हैं, आपको काम करने में कोई थकान महसूस नहीं हो रही, तो मतलब आपकी नींद बिल्कुल ठीक ठाक है। पर जब ऐसा नहीं हो रहा तो वो अनिद्रा है। अब अनिद्रा के अगर कारणों में जाएंगे, जिसको हम सेकेंडरी इंसोमनिया बोलते हैं, तो वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी लिस्ट है। अब उसके कारण कुछ शारीरिक हो सकते हैं, आपको बुखार है, आपके शरीर में कुछ दर्दें हैं, आपको कोई और शारीरिक परेशानी है, डायबिटीज़ के अंदर में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हाइपरटेंशन में भी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से अनिद्रा हो सकती है। या फिर कोई मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन में नींद ज़्यादा भी होती है कम भी होती है, एंग्जाइटी की दिक्कत, बेचैनी की दिक्कत जिसे बोलते हैं, उसमें भी नींद की दिक्कत आती है, या और कुछ गंभीर मानसिक बीमारियां लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, डिल्यूजन डिसऑर्डर, जो ऐसी बड़ी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें भी नींद कम या ज़्यादा होती रहती है।
3: जी सर, ये आपने बात तो सही कहा कि बीमारियां हो तो फिर नींद नहीं आती है, वो समझ में आता है कि ये इस कारण से हो रहा है। लेकिन एक आम तौर पे महिलाओं का अगर हम टेंडेंसी देखते हैं, ऐसी बड़ी बीमारियों के आइडेंटिफिकेशन तो उनके अंदर नहीं होता है, लेकिन वो सो नहीं पाती है, चाहे वो उनको आने वाली कल की चिंता हो या पूरे दिन में जिस प्रकार की बातें या फिर जिस तरीके के व्यवहार उसने सामना किया है वो उसको दिमाग में खा रहा है, या जो भी है मन को शांत नहीं कर पा रही है, अगर हम सरल भाषा में कहें तो, उस कारण से भी जब सो नहीं पाती हैं, तो ऐसे में वो क्या प्रैक्टिस करे ऐसे दिन भर में, या फिर रात को सोने से पहले वो ऐसा क्या खुद के लिए ऐसा करे जिससे वो मन को शांत कर सके और वो सो सके।
5: अच्छी नींद के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे स्लीप हाइजीन बोलते हैं। जैसे हमारी डेंटल हाइजीन है, फिजिकल हाइजीन है, वैसे ही नींद, अच्छी नींद के लिए स्लीप हाइजीन होती है। उसके अंदर में कुछ प्रमुख चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको करेंगे तो आपकी नींद लगभग ठीक हो जाएगी, अन्यथा वो किसी बड़ी बीमारी का संकेत नहीं है। अगर सिर्फ कुछ चिंता या कुछ कारणों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही तो वो उससे ठीक हो जाएगी। उसमें सबसे जो ज़रूरी है वो है आपको अपनी नींद का समय फिक्स रखना पड़ेगा कि मुझे हर रोज इस समय सोने के लिए जाना है और इस समय उठना है, हफ्ते के 7ों दिन, रविवार को लेकर। अधिकतर हम देखते हैं कि लोग शनिवार रात को लेट नाइट तक जागते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका असर अगले दिन भी रहता है, अगली नींद भी आपकी ख़राब होगी। तो रोज़ाना एक समय पर सोना शुरू करें। रात को 9 बजे के बाद में किसी भी ब्राइट लाइट का एक्सपोजर कम से कम रखें, लाइक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद, टीवी का इस्तेमाल रात को 9 बजे के बाद ना करें, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स स्टेट में चला जाना चाहता है। अगर वो एक्टिवेटिंग स्टेट में है तो हमें कभी भी अच्छी नींद नहीं आएगी। जब हम बहुत देर तक फ़ोन या टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को 10-11-12 बजे तक फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सोने के लिए जा रहे हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो इमीडिएटली रेस्ट स्टेट में नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक उन्हीं वीडियोज़ को सबकॉन्शियस लेवल पे घुमाता रहेगा और चलाता रहेगा। इसलिए जब हम सुबह उठेंगे तो हम सो भी गए हैं, साथ वाला आदमी बोलेगा कि तू तो अच्छा खासा सो रहा था, खराटे ले रहा था और ये कर रहा था, बट आप जब सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, आपकी नींद की क्वालिटी भी खराब हो गई। तो उसको ठीक करने के लिए आपको रात को 9 बजे के बाद ब्राइट लाइट एक्सपोजर और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम करना है। तीसरी चीज़ जो होती है वो शाम को 5 बजे के बाद कैफीन इनटेक को कम कर दीजिए, जैसे चाय, कॉफ़ी, रेडबुल, जो ऐसी चीज़ें जो एक्टिवेटिंग या जगाने वाली चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल शाम को 5 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर दीजिए, ताकि ब्रेन को कूल डाउन होने के लिए 3 से 4 घंटे मिले। अपने बिस्तर का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करें, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। बिस्तर पर बैठ के अगर टीवी देख रहे हैं, बिस्तर पर बैठ के अगर खाना खा रहे हैं, तो उस चीज़ का अवॉइड करें, क्योंकि बिस्तर का आविष्कार सिर्फ सोने के लिए हुआ था। तो जब बिस्तर पे सिर्फ सोने के लिए जाएंगे तो ब्रेन को ये ऑटोमेटिक सिग्नल जाएंगे कि यहां पे मैंने सिर्फ सोना है। सोते समय कोशिश करें कि एब्सोल्यूट डार्क रहे कमरा, बिल्कुल अंधेरा रहे, रोशनी ना रहे बिल्कुल भी, टेम्परेचर हमेशा ठीक ठाक हो कि आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा हो। और सोने से पहले कभी भी भारी काम मत करें, मतलब बहुत ज्यादा थकाने वाला काम मत करें कि शरीर में कोई पीड़ा रह जाए, तो उस वजह से भी नींद गड़बड़ होने लग पड़ती है। तो शाम के समय अगर एक्सरसाइज करनी है तो एकदम हल्की फुल्की।

0: एक्सरसाइज करी 10-15 मिनट का, सैर कर लिया हल्का, बिना शरीर को ज़्यादा कष्ट दिए हुए। और आई थिंक ये अगर चीज़ें करेंगे तो स्लीप हाइजीन बहुत अच्छी रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। डॉक्टर हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं?
1: जब हम सोने जा रहे हैं, सर ने बहुत अच्छी स्लीप हाइजीन एक हमारे लिए 6 से 7 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे अच्छे ऐड ऑन करे हैं। इसमें बस मैं 2 से 3 पॉइंट्स और है जो ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब आप सोने के लिए जा रहे हैं तो जो आपका पिलो है उसका मेजर ध्यान रखें कि वो 3 से 4 इंच का पिलो है जो आपकी नेक के लिए, और बिना पिलो लिए नहीं सोना है। या तो आप बेडशीट को फोल्ड करके सोएं, क्योंकि आपकी जो गर्दन की शेप है वो उस हिसाब से डिजाइन है। जो पिलो का साइज है वो कम से कम 3 से 4 इंच का होना चाहिए। आप उतना पिलो लगाकर ही सोएं, आपकी गर्दन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और रात को सोते हुए एक एक्सरसाइज है जो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसको हम जैकॉब्सन रिलैक्सेशन मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो JPMR आप ये लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप करके सोते हैं, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपको सोने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। ये एक्सरसाइज आप एक ऐसे नाइट रूटीन बना लें कि ये तो मुझे करके ही सोनी है, इसके बिना मुझे सोना ही नहीं है। आप फील करेंगे कि अगर ये पूरी स्लीप हाइजीन आप मेंटेन कर रहे हैं, नेक्स्ट डे ऑटोमेटिकली आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा और फ्रेश होगा। लास्ट चीज़ जो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि जब भी हम स्टिल कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही है, सब कुछ तो कर लिया, एक बुक उठाएं, पढ़ने लग जाएं, नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोरिंग काम हमें लगता है। बोरिंग काम करते हुए हम कैसे बच्चों को नींद आने लग जाती है पढ़ाई के नाम पे। बोरिंग से बुक उठाएं या फिर कुछ ऐसी जो कुछ शिक्षादायक हो, कुछ पॉजिटिव हो, कुछ भी नेगेटिव, कोई नोवेल, वो चीज़ें पढ़ने की जगह आप कुछ पॉजिटिव उठाएं, वो पढ़ें, पढ़ते पढ़ते आपको ज़रूर नींद आ जाएगी। एक प्रॉपर 10 से 12 पॉइंट्स जो हमने मिलके बताए हैं, ये आप अगर करेंगे बहुत ही अच्छी आपको नींद आएगी।
2: जी, ये बहुत सारी अपने टिप्स दी हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मैं एक और बात जानना चाहती हूँ। वो महिलाएं जो शाम को निकल नहीं पाती हैं या जो भी हैं, ये सारी चीज़ें अपनी बाहरी तौर पे एक फिज़िकल कंफर्ट दे सकें और एक कॉन्शियस लेवल पे हमको अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि मुझे अभी सोना है तो सोने के लिए मुझे ये चीज़ें नहीं करना है, मतलब शाम से ही अपने आप को प्रिपेयर कर रहे, रात को मुझे ये सोना है तो ये चीज़ें करनी है। उसके साथ साथ जो सुबह से हमारे दिमाग में जो लोड है, सुबह से जो कैरी किया है हमने चीज़ें, वो भी कई बार सताते हैं। और जैसे आपने कहा कि लाइट होने से भी नींद नहीं आती है, तो वो भी एक फिज़िकल ऐड ऑन वर्क है। लाइट्स बंद कर दिया, सब कुछ बंद किया, लेकिन जो दिमाग में जो चल रहा है, जो पीड़ा वो पकड़े हुए हैं या वो पीड़ा जो सता रही है, अगले दिन की चिंता हो या फिर जो सुबह से बातें हुई है, वो खुद को जवाब नहीं दे पा रहे हैं या फिर उसको स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे मोमेंट में उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल करें?
1: इसका बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि जब सुबह से हम उठे, ऐसा तो नहीं है जीवन में चीज़ें होनी बंद हो गई, रिश्तेदारों ने कुछ कहना बंद कर दिया, या फिर परिवार वालों से टोन नहीं मिले, या फिर बच्चों ने कुछ गलत नहीं बोला। नॉर्मल है, सुबह उठते हैं उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, रात तक जब तक वो सोते हैं उनके लिए काम करते ही रहते हैं, और उनके अगले दिन उठने से पहले महिलाएं उठ जाती हैं। तो सुबह से लेकर रात तक आप जिनके लिए काम करते हैं उन्हीं से आपको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमें प्यार तो है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने आसपास के लोगों से, लेकिन जब हम चीज़ें सुनते हैं तो हमें बुरा लगता है, फिर हम कहते हैं कि हम हर्ट होते हैं, हमें ये जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमें एट द एंड कर तो हर्ट ही रहे हैं, अपनी बातों से करते हैं, अपने एक्शन से करते हैं। अब आते हैं कि चीज़ें हम नहीं बदल सकते, हम लोग नहीं बदल सकते, हम परिवार नहीं बदल सकते, लेकिन इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमें निकालना है। तो इसका जो सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है कि हमें कुछ अपने मेंटल हेल्थ में चेंज करना है, वो ये है कि आपको वेंट आउट करना है, अपनी चीज़ों को बाहर निकालना है। अगर आप बाहर निकालते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, आप अच्छा फील करते हैं, आपको हल्का फील होता है। अब वेंट आउट करने के 3 से 4 तरीके मैं आज आपको बता सकती हूँ। एक जो लोग या महिलाएं लिख सकती हैं, वो एक डायरी राइटिंग करना शुरू करें, सुबह से लेकर रात तक जो भी आपको कुछ भी ऐसा फील हुआ, जो आपको नेगेटिव फील होता है, किसी की कोई बातें फील होती हैं, वो आप लिखना शुरू करें। बेस्ट सॉल्यूशन है अपनी फीलिंग्स को ओवरकम करने के लिए। दूसरा, जिनको आलस आता है कि मुझे लिखना नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो नहीं लिख पाऊंगी इतना ज्यादा।
2: कई बार हो सकते हो महिला को लिखना भी नहीं आता हो।
1: हाँ एग्जैक्टली, उसी के लिए मैंने बताया। तो दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आप उसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दें। वहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको किसी को बुरा भी लग रहा है किसी को कुछ कहना, लेकिन आप उसके फेस पे नहीं कह पा रहे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो राई का पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए आपको उसको पहाड़ को नहीं बनने देना है, उसको वहीं के वहीं खत्म करना है। उसको खत्म करने के लिए आप बोलिए, आप बात करिए, ठीक है। तीसरा है कि अगर जिनको लिखना आता है वो उस इंसान के लिए डायरी राइटिंग कर सकते, जैसे हमने बोला वैसे ही लेटर राइटिंग कर सकते हैं। ये तीन सॉल्यूशंस हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके वो जो विचारों का एक लूप चल रहा है, जो टर्न ऑन की जगह ऑफ नहीं हो पा रहा, वो स्विच आप ऑफ कर सकते हैं।
2: जी, तो कुल मिला के यही है कि हम उसको स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। जो कुछ भी हुआ है, जो चीज़ बीत गया है, उसको पकड़ के बैठे तो फिर उसका समाधान नहीं है। या तो हम उसके लिए सोल्यूशन खुद से ढूंढें, अगर नहीं ढूंढ पाता है तो किसी और से सोल्यूशन ले, लेकिन उसको वहाँ पे उसको ख़त्म कर दे।
1: नहीं, अंदर ना रखें, उसको बाहर निकालें। उसको जितना अंदर रखेंगे आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं, उसको बाहर निकालें। जैसे मैंने चार तरीके बताए, चारों में से ये उनके लिए भी है जो लिख सकते हैं, उनके लिए भी है जो नहीं भी लिख सकते, नहीं भी पढ़ सकते। चारों में से जो आपको सेट बैठता है आप वैसे वेंट आउट करें, बट करें जरूर। किसी को अपना फ्रेंड बनाएं या कुछ कैसे भी, बट आप वेंट आउट जरूर करें।
2: जी, मैं आप दोनों से एक और सवाल करना चाहती हूँ। हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें हमारी लाइफस्टाइल में कि ये मेरी नींद की डिसऑर्डर या इंसोमनिया या निद्रा, जिस भी कारण से जो नींद डिस्टर्ब हुआ है, उस कारण से ये मेरे लाइफस्टाइल में चीज़ें आ रही है या फिर मेरी ये लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो कई बार जैसे हेडेक है, क्रॉनिक हो जाता है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इरिटेशन है, ऐसी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो कई बार ये हम नहीं समझ पाते हैं कि ये मैंने नींद पूरा नहीं किया या फिर टाइम पे खाना नहीं खाया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो ऐड ऑन होकर के उसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरीके से होता है। तो फिर ये अनिद्रा से किस प्रकार की हमारी लाइफस्टाइल में डिस्टर्बेंसेस होते हैं या फिर हमारे जीवन शैली में क्या ऐसे नुकसान दिखते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करें कि हाँ, मुझे ये नींद ना करने के कारण मेरे अंदर ये दिख रहा है। मुझे सामने वाले व्यक्ति को या किसी को ब्लेम करने की जगह मुझे खुद को ठीक करना है।
0: देखिए, सबसे पहले एक अच्छी नींद का इंडिकेटर जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, वो है अगली सुबह आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप सुबह उठे तो आप अपने आप को कितना फ्रेश महसूस कर रहे हैं अगले दिन के चैलेंजेस को लेने के लिए। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि आपकी नींद अच्छी हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नींद का समय से उतना लेना देना नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो 5 घंटे सोकर भी अगले दिन सुबह एकदम फ्रेश होते हैं, और कुछ लोग 12 घंटे सोने के बाद में अगले दिन सुबह फ्रेश फील करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप सुबह उठे तो आपका मन कितना शांत है, आपका मन कितना संतुलित है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, अगले दिन के काम करने के लिए। सिर्फ मन ही नहीं, शारीरिक भी। अगर आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको शारीरिक रूप से भी थका थका लगेगा, आपको काम करने में एनर्जी महसूस नहीं होगी। जिस तेजी से आप भाग सकते हैं आप उस तेजी से नहीं भाग रहे होंगे। तो ये सबसे बड़ा साइन है अच्छी नींद होने का। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि आप बिना बात के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं, बातचीत में सबके साथ में थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो रहा है, किसी की छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत बुरी लग रही हैं जो कि पहले नहीं लगती थी, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद के ऊपर ध्यान देना होगा कि मेरी नींद ठीक हो रही है या नहीं, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ या नहीं सो पा रही। उसके अलावा अगर आपकी शारीरिक कुछ बीमारियाँ, अगर आपका हाइपरटेंशन अचानक से बीपी बढ़ने लग पड़ा है, आपकी शुगर ठीक नहीं रह रही है, आप खाना ठीक ठाक परहेज कर रही हैं फिर भी दवाई भी ले रही हैं फिर भी शुगर ठीक नहीं रह रही, तो तब भी आपको उसी समय आप ध्यान कीजिए कि आपकी नींद 90% चांस है कि आपकी नींद ठीक नहीं हो रही, क्योंकि नींद से फिजिकल और मेंटल दोनों इश्यूज आते हैं। तो आपके जो बीमारियां आपको चल रही हैं, थायराइड की, शुगर की, बीपी की, उसमें गड़बड़ आएगी, आपका मन शांत नहीं रहेगा, आप एनर्जी, आपके काम के लिए प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ेगी और आपके बिहेवियर में लोग देख पाएंगे और आपको बोल पाएंगे कि पहले तो तू इतना चिड़चिड़ी नहीं हुआ करती थी, अब तू क्यों छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा कर रही है, क्यों हर बात को इतना दिल से लगा रही है, और आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि मैं चीज़ों को ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ।
2: जी, तो हमारी जीवन में जब अनयूजुअल बिहेवियर को हम खुद नोटिस करते हैं तो उसमें हम अपनी नींद को चेक करना बहुत जरूरी है।
0: जी,
2: इसके अलावा कोई और मेथड्स या कोई और पैरामीटर्स जो आपको लगता है कि इन चीज़ों पे नींद के लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, खास करके एज वाइज स्लीपिंग ऑर्डर्स में? जैसे आपने कहा कि एज के अनुसार स्लीप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होते जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। आजकल हम यंग एज गर्ल्स को देखते हैं, वो नौकरी के कारण है या जैसे भी, लेट नाइट सोना, और फिर वो लेट नाइट सोने से कई बार हम ये भी डॉक्टर्स के साथ या किसी से सुनने को मिलता है कि मोटापा बढ़ने में भी नींद का बहुत
0: बिल्कुल मोटापा बढ़ने में, हॉर्मोन्स चेंज होने में, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है लड़कियों के अंदर में, मोटापा बढ़ता है, पीसीओडी जैसी दिक्कत आती है, हॉर्मोनल चेंज होने लग पड़ते हैं लड़कियों के अंदर में, वो सबका नींद के साथ में रिलेशन है। तो एक अच्छी नींद जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियों को इधर पूरा कंट्रोल कर देती है या फिर एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका कंट्रोल करने में मदद करती है, और दवाइयों का असर भी ज़्यादा बेटर होता है अगर आपकी नींद ठीक ठाक है।
2: जी, ये तो यंग एज गर्ल्स के लिए आपने कहा कि इस प्रकार की बीमारियों से वो बच सकती हैं अगर वो अपनी स्लीप साइकिल को मेंटेन करती हैं। तो ये जो 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे के बाद जो सोते हैं उससे क्या असर पड़ता है लाइफ में?
0: जब आप लगातार 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे ऐसा करके, देखिए सबसे पहले मैं चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब भगवान ने चीज़ों को बनाया तो दिन और रात जब बने तो रात नींद के लिए दी गई, तो इसलिए समय को उसी तरह से बनाया गया कि हमारे शरीर के अंदर में क्लॉक होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सिकार्डियन रिदम, वो डिसाइड करती है कि हमें कब सोना है। जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमारी बॉडी के अंदर में कुछ केमिकल चेंज होने लग पड़ते हैं अपने आप से, और वो भगवान ने वैसे ही बना के दिए। जब वो केमिकल चेंज आने लगते हैं तो हमें अपने आप से नींद आने लग पड़ती है और हम एक समय के बाद सो जाते हैं, और जैसे ही सूरज निकलता है तो उसके बाद फिर से हमारी बॉडी में केमिकल चेंज होने लगते हैं और हम दोबारा से जाग जाते हैं, जो कि नॉर्मल रूटीन है, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो कर रहे हैं जो भगवान ने बनाकर भेजी है। पर जब हम उस क्लॉक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, जो किसी भी भगवान की बनाई हुई चीज़ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस या उसके रिजल्ट तो आएंगे। तो जब हम बहुत देर तक रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं पर सोने को अवॉइड कर रहे हैं और उसकी जगह हम लोग उसको दिन में सोने को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो सोने का समय उन्होंने चेंज कर दिया, वो रात को 3-4 बजे सोते हैं फिर सुबह 12-1 बजे तक सो रहे हैं, तो उसके शरीर को अपने नुकसान होते हैं, उसके शरीर को नुकसान होते हैं, मानसिक नुकसान होते हैं उसके, क्योंकि हम नेचर की बनाई हुई चीज़ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं।
2: तो ऐसे में क्या डिस्टर्बेंसेस देखते हैं साइकोलॉजिकली या फिजिकली?
0: लोग बहुत चिड़चिड़े रहने लग पड़ते हैं, बिहेवियरल इशू आने लग पड़ते हैं, जब आप सुबह नहीं उठ रहे, जब आप लेट उठ रहे हैं तो आपका दिन काम करने का बहुत छोटा हो जाता है, आपका लोगों से मिलने का समय बहुत छोटा हो जाता है। देखिए अगर आप 4 बजे तक जाग रहे हैं रात को तो रात के समय तो कोई आपसे नहीं मिल रहा, तो जो आपका ह्यूमन टच का जो काम है जिसमें आप लोगों से मिल रहे हैं वो आपका समय अपने आप से छोटा हो जाएगा अगर आप 2 बजे सोकर उठ रहे हैं, 2 से लेकर शाम को 6 बजे तक 3-4 घंटे ही आप अपने काम कर पाएंगे, बाकी सब काम ऐसे हैं जो आप अकेले कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लग पड़ते हैं। आप देखेंगे कि इस तरह के लोग बिना वजह गुस्सा रहते हैं, काम करने में उनका जो ध्यान है वो कम होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लग पड़ती है और उनको जो शारीरिक नुकसान है वो भी होने लग पड़ते हैं, जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए कि आपकी बीपी, शुगर की समस्याएं और ये सब प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती हैं।
2: लेकिन कई युवा महिलाएं जो इस तरीके से नाइट शिफ्ट में काम करती है या ऐसा, उनका ये कहना होता है कि दिन में हमारा काम नहीं होता है, वो क्रिएटिव प्रोडक्टिविटी जो है वो रात को ही होती है।
0: ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि सिर्फ क्रिएटिव काम में सिर्फ रात को कर सकती हैं, दिन में नहीं कर सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना है, अगर आपका मन आपके कंट्रोल में है तो आप दिन में भी सभी प्रोडक्टिव और सभी क्रिएटिव काम कर सकती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ रात में बैठकर ही क्रिएटिव काम कर पाएंगे और सुबह नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और हम तो बचपन से मतलब सिखाया गया है कि सुबह का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, सुबह अगर आप 4-5 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं तो आई थिंक उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव समय आपको कोई नहीं मिलेगा।
2: जी, सो लास्ट में व्हाट इज़ द आइडियल टाइम कि यही लास्ट आवर है, इसके बाद जागना नहीं चाहिए, इस समय वो सोना है एंड दिस इज़ द लास्ट आवर, इसके बाद सोना नहीं है।
0: देखिए, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से तो हमें बहुत जल्दी सो जाना चाहिए। हमारा जो नींद का समय है वो 8-8:30 बजे बनता है और सुबह जल्दी उठना उसके साथ में, लगभग 4-4:30 बजे उठ जाना, तो 8 घंटे की नींद भी हो रही है और हम बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं। बट फिर भी आज के मॉडर्न जनरेशन के हिसाब से अगर आप 10 बजे के आसपास भी सो रहे हैं और सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं तो आई थिंक वो समय आपके लिए बहुत ठीक है।
2: जी, लेकिन 10 के बाद फिर जागना कोई फायदेमंद नहीं है।
0: नहीं।
2: थैंक यू सो मच आप दोनों को, वीरेंद्र जी और हर्षिता जी। हमारी जो ये स्लीप हाइजीन, आज एक नया शब्द हमको सीखने को मिला है, और आइडियल टाइम क्या है सोने का और नहीं सोने के कारण समय पे हम और सही तरीके से उससे क्या नुकसान होता है और उसको कैसे ठीक करना है, सबसे बड़ी बात है कि सॉल्यूशन कि हम उसको कैसे ठीक करें, आज आप दोनों ने हमें उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम। अनिद्रा के बारे में, खास करके महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जागरूकता इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज एक और जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है मन की आंखों से, आज मन की आंखों से कार्यक्रम लेकर के हाजिर हूं। और मन की आंखों से, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम में हम ऐसे साथियों से आप सबको रूबरू करवाते हैं जिन्होंने आंखों संबंधित समस्या होने के बावजूद भी अपने जीवन को बहुत ही आसानी से जिया है, और न सिर्फ जिया है बल्कि सफलता के नए नए आयाम स्थापित किए हैं विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए, और कहीं ना कहीं समाज को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। तो ऐसे ही एक मेहमान आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं कोमल अग्रवाल मैम का। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार आप सभी को और रेडियो मधुबन के हमारे तमाम श्रोताओं को भी मेरी तरफ से सादर अभिवादन।
0: श्रोताओं, मैं बताऊं आपको, कोमल मैम दृष्टिबाधित हैं और कोमल मैम बहुत ही अच्छी लेखिका हैं जितना मैं इनके बारे में जानता हूं। इसके अलावा वो क्या क्या हैं, उन्होंने कौन कौन से संघर्षों से किस किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और वर्तमान में वो क्या कर रही हैं, ये सब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज मन की आंखों से के इस अनोखे सफर पर। तो कोमल मैम बताइए जरा अपने बारे में, बिल्कुल शुरुआत से जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी जरूर, सर्वप्रथम तो संदीप सर पहले आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है, आप जिस तरह से पूछ रहे हैं वो बहुत कंफर्टेबल है। और मैं अपने बारे में बताऊं तो एक लेखिका होने से पहले मैं एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर और एक लाइफ कोच रही हूँ। ये जो सफर शुरू हुआ ये आफ्टर ब्लाइंडनेस शुरू हुआ। अच्छा। वो सब कहते हैं ब्लाइंडनेस इज अ कर्स, मैं कहती हूँ ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। ब्लाइंडनेस मेरे लिए एक वरदान साबित हुई, क्योंकि अगर ये नेत्रहीनता नहीं होती तो हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते ना। ऐसा होता है ना कि फैमिली में औरतें जो होती हैं या तो पति पर डिपेंड है, पहले पिता पर डिपेंड, फिर पति के ऊपर डिपेंड, उसके बाद बच्चों के ऊपर डिपेंड। यस, तो ये चीज मेरे साथ नहीं हुई। ये मैं इसके लिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि ईश्वर ने कुछ ऐसा किया मेरे जीवन में कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई, अपना आत्मनिर्भर होना सीखा। जब हम आत्मनिर्भर नहीं थे, ब्लाइंडनेस नहीं था, तब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करते थे। अब हम स्वयं आत्मनिर्भर हो गए हैं तो मुझे लगता है ब्लाइंडनेस इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। तो ये बात है। और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं सर। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी विकराल समस्या है उन लोगों के लिए जो लेट ब्लाइंड होते हैं।
0: निश्चित रूप से,
1: क्योंकि जैसा ये बिल्कुल वैसा ही है संदीप सर, जैसा कि आपने ट्रेन की टिकट कटाई है मुंबई के लिए और आपको रास्ते में उतार दिया गया हो।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
1: तो जो, और फिर ना ऐसे वक्त पर हो जाती है कि जहाँ पर हमारे करियर का एक मोड़ होता है ना, जहाँ से हमारे करियर की जर्नी शुरू होती है वहीं पर जाकर ये ब्लाइंडनेस होती है। और दिस इज रेटिनाइज पिगमेंटोसा वट एवर आई है। और ये जो डिजीज है, जैसे कि लोग कहते हैं जेनेटिक है, ओके, तो बचपन से ही कम दिखता था। तो क्लास 7 तक आते आते मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि मुझे बाकी लोगों की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोग देख पा रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड इतना अच्छा से दिखाई नहीं देता, फर्स्ट रो से भी ब्लैक बोर्ड इतना क्लियरली मतलब देख नहीं पाती थी। तो मैथमेटिक्स में इसलिए कमजोर है, बाकी तो देखिए थ्योरेटिकल होते हैं सब सब्जेक्ट, तो वो सारे सब मैं आसानी से कर लेती थी। लेकिन जहाँ मैथमेटिक की, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री की बात आती थी तो वहां पर मैं बिल्कुल मतलब निराश हो जाती थी और अपने फ्रेंड्स की कॉपी से चीटिंग मार मार के लिखती थी आंसर। यस, तो क्या होता था कि 7th में आते आते जैसे कुछ नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, पूरा तो नहीं लेकिन काफी हद तक नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, तो जिसकी वजह से कभी किसी ड्रेन में गिर जा रहे हैं, चलते चलते ठोकर लग जा रही है ना, थाली परोस रहे हैं, तो ट्यूबुलर विजन की वजह से क्या हो रहा है कि भाई राइट साइड का आपको लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा है, सेंट्रल आपका विजन है, राइट लेफ्ट का विजन नहीं है, तो ये चीजें ऊपर नीचे की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी चीजें। और स्क्विंट भी आई मेरा, हाँ, तो इसकी वजह से लोग थोड़ा सा ना कि भाई अब चेहरे की सुंदरता खत्म हो गई, बेसिक स्क्विंट आ गया आई में कि एक आंख से तिरछा देख रहे हो और एक आंख सही दिख रही है, तो लोग इसके लिए हमको थोड़ा सा क्रिटिसाइज करने लगे, ताने मारने लगे कि ये
0: अच्छा,
1: लड़की
0: परिवार में
1: देखो।
0: ही?
1: हाँ मतलब परिवार में भी और जैसे कुछ भी, मतलब नॉट इन माई फैमिली, लेकिन जो रिलेटिव होते हैं जैसे चाचा ताऊ में मामा ऐसे होते हैं ना लोग, हमारे रिलेटिव होते हैं तो होता है, तो वो एक इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना वो भीतर कहीं ना कहीं बस गया। ठीक है, तो बस गया ना इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये कुछ बोलने के लिए आगे नहीं दिया। और चूंकि मेरा जीवन बहुत अभावों में गुजरा, पिता बहुत ही कह सकते हैं बहुत सामान्य, मतलब मध्यम वर्गीय भी नहीं करेंगे, लोअर मिडिल क्लास बोलेंगे कि उस तरह
0: जी
1: से रहे, बिजनेस बिजनेस पापा का पहले शुरू में अच्छा चलता था, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास 7-8 तक पास किए तब तक पापा का बिजनेस है ना ठप हो गया किसी पर्सनल कुछ कुछ रीजंस की वजह से, तो
0: जी
1: बिजनेस ठप हो गया, दुकान वगैरह बंद करनी पड़ी, तो इस वजह से पापा भी बहुत परेशान रहे, तो हम लोग का जीवन अभाव में गुजरा, तो क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टर के पास दिखाओ, है ना। तो ऐसे करके 10th आ गया, 10th में जब स्कूल में मेडिकल चेकअप के लिए आते हैं जैसे कुछ कैंप वगैरह लगते हैं, तो वहां
0: बिल्कुल
1: पर
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर ने मुझे सीरियसली बोला कि आप जाकर के अपने घर में बोलो कि आपको कोई मतलब एकदम कोई सीरियस मेजर प्रॉब्लम है, ओके, और आप जाके घर में ये बात बोलो, ओके। तो आई वेंट, ओके, और मैं पापा के पास जाके बोली कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बोले हैं, तो फिर उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, तो वहां पर इन
0: अच्छा
1: डॉक्टर ने कहा देखो कि ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है और आप लोग कहीं बाहर दिखाइए, मैं इसमें कुछ समाधान नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो चूंकि बाहर जाने के लिए ना तो फाइनेंशियल है ना दशाएं ऐसी थी, ठीक है, तो ये सब चीजें रही, तो कहीं बाहर दिखा नहीं पाए, ये रही, ये चलता रहा, चश्मा का पावर बढ़ते जा रहा है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये समस्याएं चलती रही। सर क्लास 10 में मैथ्स में मैं फेल हो गई इसी वजह से, और उसी
0: ओहो,
1: दौरान
0: अच्छा
1: मुझे टाइफाइड हो गया, तो उस
0: जी
1: समय पेंसिलिन इंजेक्शन लगते थे और उसका साइड
0: जी
1: इफेक्ट हुआ या क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जब ये इंजेक्शन लगते थे उसका मैं काफी बीमार हो गई, तो उस समय ब्लाइंडनेस काफी बढ़ी, मतलब काफी, मतलब जो दिखता था वो विजन भी काफी लॉस हो गया, लेकिन तब तक ये पता नहीं था कि ये बीमारी है, तो आगे इस तरह से चलता रहा। +2 में फिर भी मैंने जैसे तैसे पढ़ाई करके पूरे हमारे जिले में टॉप किया,
0: क्या
1: तो
0: बात है वाह।
1: वहाँ जी, तो क्योंकि पढ़ना बहुत, मतलब पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा एक क्रेज था, तो एक सर से इंग्लिश भी सीखी उस दौरान, वो बहुत अच्छा गाइड किए हमारे
0: ये
1: टैलेंट
0: प्लस टू का
1: चेक
0: बता रहे हैं आप,
1: करके।
0: 12th का बता रहे हैं जिसमें आपने
1: जी
0: टॉप किया
1: ट्वेल्थ
0: है
1: का
0: ना?
1: बता रही हूँ, जी 12th में मैंने
0: क्या
1: फर्स्ट डिविजन
0: सब्जेक्ट उस
1: स्टेट,
0: समय,
1: हाँ
0: 12th में सब्जेक्ट
1: जी,
0: क्या रहे आपके?
1: जैसे पॉलिटिकल साइंस था और हिस्ट्री लाइक था, ओके, तो और
0: अच्छा, हिंदी
1: हिंदी
0: मीडियम
1: जो
0: या इंग्लिश
1: पास्ट में
0: मीडियम?
1: हिंदी इंग्लिश मीडियम, 10th तक
0: इंग्लिश
1: देखिए,
0: मीडियम।
1: मैं 7th तक हिंदी मीडियम में पढ़ी, फिर हमारी तरफ इंग्लिश मीडियम का इतना चलन नहीं था, पैसे बहुत लगते थे, तो मैं उड़िया मीडियम में गई, 10th तक उड़िया मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम, एक वुमेन्स कॉलेज था वहां पे मैंने +2 किया, प्राइवेट कॉलेज था, तो वहां पर मैं जितने कॉलेजेस थे हमारे जिले में उस समय 2 ही कॉलेज थे, तो उस समय दोनों कॉलेज में मैंने टॉप किया उस समय, तो
0: जी
1: इसके बाद जो अब आई +3 के बाद, तो +3 में हिंदी ऑनर्स को एज अ सब्जेक्ट चुना, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने की सिचुएशन नहीं थी, पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए,
0: जी
1: फिर एक गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट कॉलेज था शहर से बहुत दूर और कोएड भी था, तो पिता थोड़ा सा मतलब कंजर्वेटिव भी फैमिली से हम लोग रहे, मारवाड़ी फैमिली है ना,
0: जी
1: और तो इसलिए फिर अकेले जाने का सुविधा भी नहीं था इतना दूर कॉलेज, तो क्या किए प्राइवेट में पढ़ाई की, अब घर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं क्या करें, प्राइवेट कितना पढ़ेंगे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि व्हाई डोंट आई टेक अ जॉब, ओके, सो आई गेव इंटरव्यूज इन मेनी स्कूल्स, लेकिन सभी स्कूल वालों ने कहा कि यू आर नॉट बीए, ग्रेजुएशन नहीं आपका, बीएड नहीं, कुछ नहीं है, आई कैन नॉट टेक यू। फिर एक स्कूल वाले ने मेरे स्पीकिंग को देखते हुए और जो भी हमारे पढ़ाने का तरीका है, एक उन्होंने मेरा क्लास भी लिया बच्चों के साथ में, एंड दे वर सेटिस्फाइड और उन्होंने मुझे रख लिया फाइनली, यस। तो उसके बाद फिर वहां पर एक साल का मेरा ये चला, +3 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने प्राइवेट पढ़ते पढ़ते वो स्कूल में नौकरी की, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि नियति एक कुचक्र चलाती है, तो वो भी नहीं था कि भाई जिसको इंसान दुख देता है ना उसको हर तरीके से देता है, इधर से भी दे रहा है उधर से भी दे रहा है, पहले अभाव में गुजरा, फिर ब्लाइंडनेस हो गई, ब्लाइंडनेस हुआ, जॉब लगी, पहली सैलरी 900 रुपए मिली सर, दैट वाज द फर्स्ट सैलरी ऑफ माय लाइफ, ओके, ये जो कि इंग्लिश मीडियम में
0: जी
1: मैंने पढ़ाया, तो आई वाज सो हैप्पी, लेकिन 10th सेकेंड ईयर जब फाइनल एग्जाम हुआ, तो मेरी जो ग्रैंड मदर थी जिनका पापा के ऊपर काफी दबदबा था, तो वो कहने लगी कि भाई आपके इनके शादी कर दो क्योंकि मेरे जीते जी कर दो, तुम्हारे पास तो पैसे हैं नहीं, है ना। तो हाँ जी, समझ आया। तब तक आंखों का स्क्विंट काफी हद तक अपने आप ही ठीक हो चुका था, एंड आई वॉज लुकिंग यू नो कि चलो भाई पढ़ी लिखी लड़की है, सुंदर लड़की है, इसकी शादी कर दो और क्या चाहिए, है ना। हमारा
0: आंखों का
1: मतलब
0: क्या ठीक हो गया था, वापस बताएं आंखों का क्या ठीक हो गया था?
1: आंखों का जो तिरछापन है वो काफी हद तक अपने आप ठीक हो गया था
0: अच्छा, मतलब आपकी
1: जी।
0: रोशनी वापस से ठीक होने
1: नहीं
0: लग गई थी?
1: रोशनी,
0: ओके,
1: नहीं रोशनी नहीं हो रही थी, जो स्क्विंट था
0: टेढ़ा
1: तिरछापन जो था पुतलियां वो अपनी सही जगह
0: टेढ़ापन
1: पे,
0: था।
1: हाँ,
0: ओके
1: वो सही हो रहा था। तो बस वो प्लस थ्री सेकेंड ईयर में फिर एंगेजमेंट कर दी गई, एंड आई वॉज फोर्स टू मैरी के।
0: ओके, तो
1: तो
0: आपकी
1: इन द ईयर
0: एंगेजमेंट आपके जैसे
1: जी,
0: व्यक्ति से हुई थी या
1: नहीं
0: सामान्य
1: नहीं
0: व्यक्ति से?
1: साइटेड, क्योंकि तब तक तो सर रेटिनाइज पिगमेंटोसा क्या होता है उसका आर नहीं पता था हमें,
0: आप
1: कहीं
0: इस
1: था
0: स्थिति
1: कोई
0: में नहीं रहे
1: डॉक्टर।
0: कि आप कुछ कह सकें, अपनी बात रख सकें
1: हाँ बिल्कुल
0: परिवार
1: बिल्कुल। तो इवन आई वॉज अनेबल टू, मैं लोगों को ये भी नहीं बता पाई कि मुझे ये, मैं बोल रही हूँ कि मुझे 20-30% दिख रहा है, आई एम नॉट एबल टू सी राइट। जैसे तैसे जितना भी दिख रहा था आई वॉज मतलब बीइंग मैरिड। ओके, तो 99 में हमारी शादी हो गई जून के समय में, इस वजह से जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो धरा करता रह गया, वो हम दे नहीं पाए जी। तो ये चीजें रही। फिर उसके बाद सर लाइफ होनी चाहिए थी भाई कि आप सपनों की जिंदगी शुरू हो गई है, यही अरमान लेकर के, है ना, हर कोई मैरिज करता है।
0: हर कोई यही सोचता
1: हाँ
0: है
1: जी,
0: बिल्कुल।
1: कि चलो आप जो जितना दुख झेले हो गया, अब सुख दिन के दिन आए रे भैया, वो कहते हैं, है ना।
0: हाँ,
1: तो यहाँ भी मैं
0: दुख
1: बहुत
0: भरे
1: अनलकी
0: दिन भी
1: रही
0: तेरे भैया।
1: जी। हाँ, लेकिन कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट से, मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि ये सब हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं उसका फल होता है। तो मैं इन सब बातों को अभी समझती हूँ, उस समय तो हम लोग भगवान को, तकदीर को बड़ा दोष देते थे और कहते थे कि मैं ही क्यों विक्टिम हूँ, मतलब वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे भाई बहन मेरे सब लोग फैमिली मेंबर एवरीवन इज हैप्पी, वाई आई एम नॉट। तो ये क्वेश्चन बहुत आता था और बहुत मतलब शिकायत करते थे भगवान से। तो मैरिड लाइफ भी कोई सुखी नहीं रही। फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वॉज द विक्टिम ऑफ डाउरी,
0: ओहो,
1: दहेज, ये बहुत बड़ी समस्या रही। पहले तो जैसे होता है ना कि भाई लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, चलो शादी कर दो, है ना, हो गया। उसके बाद दहेज प्रताड़ना शुरू हो गई, ठीक है। वहां जाके पता चला कि द पर्सन इज ऑल्सो नॉट, मतलब डिजर्विंग पर्सन नहीं था, थोड़ा एंटी सोशल क्रिमिनल माइंडेड,
0: जॉब वगैरह थी?
1: कुछ नहीं था सर, अपने
0: कुछ भी नहीं
1: फैमिली के
0: था?
1: टुकड़ों पर, हाँ अपने भाइयों के थे ना, वो चल रहा था। तो खैर उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, देखिए इतना बस,
0: नहीं, कोई
1: क्योंकि
0: बात नहीं,
1: यहाँ
0: कोई
1: पे,
0: बात
1: हाँ जी हाँ,
0: नहीं।
1: क्योंकि अब वो बीत गई है तो
0: वो
1: जो
0: वैसे भी
1: भी
0: पर्सनल,
1: भाग गए
0: हाँ वो वैसे भी
1: जी।
0: पर्सनल लाइफ है,
1: हाँ
0: रही है
1: जी,
0: आपकी, तो कोई बात
1: तो
0: नहीं।
1: हाँ जी, तो फिर वो चल नहीं पाया, ठीक है। देन माई सन वॉज बॉर्न इन द ईयर

0: आप
1: एक
0: इस
1: ऐसी
0: अरे
1: परेशानी से आप जूझ रहे हैं जो ठीक
0: सालों
1: नहीं हो
0: से,
1: सकता।
0: कई सालों से मतलब है ना, पिछले 10-15 सालों से आप ये बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको पता ही नहीं। और डॉक्टर साहब जो थे विशाखा, मैं छोड़िए नाम लेना तो सही नहीं है, तो डॉक्टर साहब जो थे उन्होंने फाइल बिल्कुल मतलब ऐसे फेंक दिया, मेडिकल फाइल जो
1: अच्छा।
0: थी, एक्सरे जो रिपोर्ट आई थी जितनी, सब ऐसे फाइल को मेरे तरफ इधर फेंक करके बोल रहे हैं कि यू को मतलब वो यहाँ कुछ नहीं हो सकता आपका, यू कैन गो। यस आई सेड टू हिम कि ठीक है कुछ नहीं हो सकता, बट आप पोलाइटली बोल सकते हैं इसको, है ना, थोड़ा सिंपथाइज कर सकते हैं।
1: डॉक्टर तो नॉर्मली मतलब ऐसा करते नहीं है, न जाने क्या
0: हाँ, तो
1: हुआ
0: बोले
1: है जो।
0: कि हाँ, वो कहते नहीं यू कैन गो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब वेरी रूडली। यस फिर उसके बाद एक और आई हॉस्पिटल में, उन डॉक्टर्स ने काफी कोऑपरेट किया और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि देखो तुम्हारा ट्यूबुलर विजन है और अब तुम घर में ही रह सकती हो, यू शुड नॉट गो टू मतलब लाइक रोड पे मत जाना, अब रोड पे जाने की तुम्हारी स्थिति नहीं है कि तुम सड़क खुद से सोचोगे मैं क्रॉस कर लूँ और मैं आराम से खाना पका लूँ या कुछ भी ड्राइविंग मैं कर लूँ, इस तरह का स्विमिंग, इस तरह का काम तुमको नहीं करना, यू शुड स्टे एट होम, है ना। तो उन्होंने कुछ कुछ मेरे को गाइड किया कि आप इस तरह से अब आप घर पे रहो एंड यू कांट डू एनीथिंग लाइक, है ना। ओके फिर उन्होंने मेरे थोड़ा सा यू नो कंसोल करने के लिए, भाई सेटिस्फेक्शन के लिए दे दिया कुछ मेडिसिन, खाते रहो अगर ठीक हो गया तो ठीक हो गया, है ना, विजन जितना है शायद इतना रुक जाए, जो थोड़ा बहुत 10% विजन बचा है वो शायद रुक जाए, लेकिन जो 10-15% बचा था ना विजन, सर वो माइंड की ऐसी प्रोग्रामिंग हुई कि वो उसी साल चला गया। आई वॉज इन यू नो डिप्रेशन, पूरा होता है ना एक आदमी का पूरा डिप्रेशन में मैं चली गई कि अब क्या जिंदगी में कुछ बचा नहीं है, एवरीवेयर इट इज डार्कनेस
1: और
0: एंड
1: उन्हें
0: है नहीं। हाँ
1: बेटे का लालन पालन भी साथ में चल
0: वो
1: रहा
0: सब
1: है
0: तो
1: ये
0: मैं,
1: सब।
0: हाँ वो सब तो देखिए, सिंस आई एम अ क्विक लर्नर, तो शायद एक पहले से एक काफी होता है ना कि भाई हम लोग सुनते हैं कि एक भगवान कुछ और देता है हम लोग को और शक्तियां दे देता है, तो उन शक्तियों की वजह से मैं सारे काम खुद करने लगी, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, एवरीथिंग मतलब बच्चे का लालन पालन सब कुछ अपने आप चलता गया। यस और आई वॉज हैबिचुएटेड टू सर्वाइव विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस के साथ ही मैं जिंदगी को आसानी से जीने के लिए अपने आप को तैयार करने लगी। फिर भुवनेश्वर में मैंने 3 दिनों की ट्रेनिंग की, वहां पर भुवनेश्वर में 3 दिनों की ट्रेनिंग की, मेरे पापा मेरे को लेके गए, तो वहां पर जैसे व्हाइट केन चलाना थोड़ा सीखा, कंप्यूटर में जैसे आपको थोड़ा दिख रहा है तो उन लोग जूम करते थे स्क्रीन को और जॉज वगैरह के बारे में पता चला, सॉफ्टवेयर के बारे में, फिर उसके बाद में वहीं से मेरे को सक्षम ट्रस्ट के बारे में भी पता चला जो कि दिल्ली में है, और आई एम सो थैंकफुल टू सक्षम ट्रस्ट कि उन्होंने मुझे काफी गाइड किया, सक्षम ट्रस्ट वालों ने, और
1: आपने
0: उन्होंने
1: ब्रेल लिपि
0: मुझे
1: भी सीखी
0: काफी,
1: मैडम?
0: जी मैंने ब्रेल भी ट्राई किया सर, एक हमारे नोन में मेरे एक दूर के अंकल है उनको भी यही आती है, तो मैंने उनसे थोड़ा ब्रेल भी बेसिक सीखा, और लेकिन मैं उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाई, मैं झूठ नहीं कहूंगी, मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया बिकॉज मैं फिर कंप्यूटर सीखने लगी अपने आप, है ना, कंप्यूटर मैंने लोन लिया सक्षम से, और फॉर्चुनेटली उन लोगों ने लोन दिया मुझे, और धीरे धीरे करके लैपटॉप एक बाय किया उसी लोन के पैसों से, देन कंप्यूटर में जो NVDA सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके साइबर कैफे वालों से करवा लिया, फिर धीरे धीरे करके हम समझने लगे कंप्यूटर की चीजें, और क्योंकि मैं 2008 में मेरा डिवोर्स भी हो गया था और इट वाज अ डोमेस्टिक वायलेंस केस भी मैंने फाइल किया था, तो उस तहत आउट ऑफ द कोर्ट एक सेटलमेंट हुआ और मैंने सन की कस्टडी और डिवोर्स ये दोनों चीजें मांगी थी जो मुझे मिल गई, थोड़े बहुत मेरे पापा ने जो पैसे दिए थे कुछ 2-3 लाख रुपए वो मुझे मिल गए, दैट्स इट, और उसके बाद लाइफ चलो कि भाई अब अपनी जिंदगी है ना, तो मतलब अकेले की जिंदगी, आपके कोई तलवार नहीं लटक रही है सर पर, तो
1: नहीं
0: ये
1: लटक रही,
0: चीज जब
1: सही
0: दूर
1: बात
0: हो
1: है।
0: गई ना तो हम थोड़ा शांति से जीवन जीने लगे। यस तो बस 2008 में मैंने एक कोचिंग शुरू की जो कि मेरी विनर्स एजुकेशन है कोटा में एक, तो उन सर से कांटेक्ट किया, वहां से मैंने फ्रेंचाइजी बाय की, सर से ट्रेनिंग ली ऑनलाइन, मतलब ऐसे क्योंकि जाना तो पॉसिबल नहीं था, तो ऑनलाइन ही सीखा उनसे, जो भी नोट्स वगैरह सब सर ने मुझे दिए, गाइड किया कैसे पढ़ाते हैं स्पोकन इंग्लिश, तो मैं खुद भी मतलब खुद भी अपना रिसर्चर है कि खुद भी पढ़ रही है कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना है, सक्षम वालों ने मुझे इतना बताया मैंने इतना सीखा, लाइक है ना, उन्होंने चीटी बताया मैंने हाथ ही सीखा कहते हैं, है ना, तो खुद ही एक्सप्लोर कर कि कंप्यूटर में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है सब कुछ ऐसे, और मेरे पिताजी इस मामले में मुझे बहुत उन्होंने सहयोग किया, मतलब ही वॉज लाइक कह सकते हैं कि आज मैं कहूँ कि जो

0: भी कुछ हम पिताजी की वजह से हूँ। वो मुझे किताबें पढ़ पढ़ के सुनाते थे, इंग्लिश की ग्रामर की किताबें पढ़ते थे, पूरी रेनिन मार्टिन किताब उन्होंने मेरे लिए पढ़ी, और भी
1: ओ
0: जितनी
1: क्या
0: इंग्लिश की
1: बात है।
0: किताबें होती थी सब मुझे, बैठते थे पढ़ के पढ़ते रहते थे, मैं सुनते रहती थी। ही वॉज लाइक डूइंग दैट, तो मेरे को हर जगह पे ले जाना, जैसे उनके पास एक एक्टिवा थी तो हर जगह पे मुझे को ले जाना, झारसुगड़ा में जैसे इनवाइट करते थे कि कहीं पे आइए पोइट्री पढ़िए, कहीं पर कुछ के लिए बुला रहे हैं, तो हर एक इवेंट में मुझे ले जाना, हर एक फंक्शन में हाथ पकड़ के ले जाना। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग फॉर मी। मेरे मैंने जो डोमेस्टिक वायलेंस केस दिया था, मुझे कोर्ट ले जाना, सब कुछ उन्होंने किया। तो आज वो नहीं है, बट वट एवर आई एम, मैं उनके लिए क्रेडिट देती हूँ पिताजी को।
1: आपके जीवन
0: और
1: में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, ऐसा समझ में
0: बहुत
1: आ रहा
0: बड़ा
1: है।
0: रोल रहा है जी, पढ़ाई लिखाई में भी, पूरे कोचिंग की स्थापना में, उसके पूरे पैम्फलेट छपाना, बैनर सब जगह लगवाना, पूरी कोचिंग की पब्लिसिटी करना, सारा कुछ सब कुछ मेरे पिताजी ने किया। अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती,
1: हम समझ
0: सबको
1: रहे हैं
0: एक
1: कि
0: एक
1: आप
0: मेहनत बन के रहते हैं जी।
1: भावुक भी हो रहे हैं उनको याद करते हुए,
0: जी
1: निश्चित रूप
0: तो
1: से, क्योंकि बहुत ये जो दौर था वो मतलब उनके सपोर्ट के बिना आप बिल्कुल नहीं निकाल पाते हैं।
0: तो ही वॉज अ बैकबोन टू मी, एंड मेरे हीरो भी रहे हैं सच कहूँ तो बस पिताजी की सहायता से, सहयोग से। वो कहते थे मतलब जैसे कोई उनको कहता था ना, सर मैं आपको एक सेंटेंस बोलती हूँ कि बेटी आपके पास रह रही है, कितना बड़ा बात है आप लोग बेटी को रखे हैं, तो मेरे पिताजी कहते थे कि मैं तो पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरी बेटी पैसे कमाती है, तो सच में मायने में कहा जाए ना तो बेटी हमको रखती है, हम बेटी को नहीं रखते हैं।
1: हाँ वाह क्या
0: जानते
1: बात है।
0: हैं मतलब इतनी बड़ी बात, मतलब वो कहते थे लोगों को कि बेटी हमको रखी है, हम बेटी को नहीं रखे हैं, ऐसे कहते थे डैड। तो
1: जी
0: उन लोगों का मुंह बंद कर देते थे जो लोग ये कहते थे कि अरे ये ब्लाइंड है, इसको कहाँ, मतलब तुम लोग इसको बोझा ढो रहे हो, ऐसे कहते थे, है ना। ऐसे
1: जी
0: भी लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो कहते हैं कि आप ब्लाइंड पर्सन खाना नहीं खा सकता था, ब्लाइंड पर्सन पानी कैसे पीते हो तुम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर, अजीबो गरीब।
1: जी
0: मैं
1: बिल्कुल
0: आपको
1: नहीं,
0: बताऊं,
1: बिल्कुल
0: हमारी सोसाइटी में ब्लाइंड लोगों के प्रति दो रुख है। मैंने क्योंकि मैं साइटेड के बीच में ही रही हूँ, मैं कभी कोई ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में रही नहीं हूँ, तो मुझे सिर्फ साइटेड का रुख पता है कि या तो नकारात्मक है, पूरा नकारात्मक है आपके प्रति, या फिर
1: जी
0: आपके प्रति बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि सहानुभूति वाला, कि मतलब एकदम सहानुभूति, अपने से लो देखेंगे कि या छूट टाइप है ना, सहानुभूति दिखा रहे हैं बस, कि हाँ दया दिखा रहे हैं, तरस खा रहे हैं, वैसा एक ये रुख है लोगों का। और दूसरा रुख है कि भाई ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों ने तो मतलब बिल्कुल कोई काम के नहीं, यूजलेस पीपल है, इनका होना नहीं होना समाज में नहीं होते तो ज्यादा बेटर होता हमारी सोसाइटी, ऐसा भी इन लोगों का रुख है। यस, तो ये नेत्रहीनों के साथ सिर्फ नहीं है सर, अदर दृष्टि दिव्यांगों के साथ भी है, अदर दिव्यांग जो जन है उनके साथ भी है ना। लाइक मतलब वी कैन बी बैगर्स और वी कैन बी सिंगर्स, राइट। मैं कड़वे शब्दों में यही कहूंगी कि वो लोग यही समझते हैं सर
1: ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं
0: जी,
1: आप।
0: है ना। तो ये बात है, तो जब कोचिंग चलने लगी और बहुत नाम कमाया सर, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ शायद, क्योंकि कोई मेरे बिहाफ में यहाँ बोलने वाला नहीं है,
1: जी
0: बट मैंने बहुत नाम कमाया। स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट जो मैंने स्थापना की, वन एंड ओनली बेस्ट कोचिंग सेंटर ऑफ आवर सिटी रहा,
1: वाह
0: और
1: क्या
0: भगवान
1: बात है।
0: ने बहुत बहुत तरक्की दी। मोर देन 4 to 5 thousand स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया, और सब साइटेड, और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, हाउसवाइफ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, जॉब सीकर, अच्छे अच्छे प्रोफाइल पे हैं। टीचर्स
1: क्या
0: ट्रेनिंग दी
1: बात
0: है मैंने लोगों को, प्रिंसिपल्स तक को पढ़ाया है स्कूल के, तो बहुत टीचर्स, पूरा
1: बहुत है।
0: स्टाफ पढ़ाया है कि बहुत सारे हमारी, जैसे झारचूड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है तो यहाँ पर कई इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि वेदांत, आदित्य बिरला, भूषण, ऐसे बहुत से हमारे तो इंडस्ट्रियल जो है उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे बुलाया जाता था, तो उसमें भी मैं जाती थी, पिताजी लेके जाते थे, तो ये सब भी है। इसके अलावा उसके बाद टाई अप भी हुआ, कई लोगों ने अप्रोच किया अदर कोचिंग सेंटर्स ने, तो दो कोचिंग सेंटर से मेरा टाई अप हुआ, विद्या गुरुकुल है ना एंड शिक्षा कोचिंग सेंटर, ऐसे अपना एक है स्कूल, उन लोगों ने टाई अप किया, तो
1: जी
0: इन सब में भी मैंने उनके यहाँ भी जा रखे, मैं सैटरडे संडे पढ़ाती थी, जैसे अपना मंडे टू फ्राइडे अपना कोचिंग चला रहे हैं और बाकी दिन मिलकर सैटरडे संडे इनके यहाँ जा करके पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से भी ट्रेनिंग दी लोगों को। तो तो पूरा फुल बिजी, लाइफ वॉज फुल बिजी, मतलब सिंस 9 o'clock
1: उस समय, मतलब आपने यही लक्ष्य बना लिया कि बस अब तो मुझे
0: हाँ पूरा 9 बजे से सुबह रात के 9 बजे तक, मतलब मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं होती, इतनी बैचेस, मतलब 9 से 10 बैचेस में पढ़ाती थी सर, 1 घंटे की हमारी एक बैच होती थी दैट। तो बहुत बहुत सक्सेस मिला कोचिंग बिजनेस में, और फिनेंशियली भी बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई, और उसके बाद में बुक्स लिखना शुरू किया सर बाकी टाइम पे, फिर किताबें लिखना शुरू किया। तो स्पोकन इंग्लिश के ऊपर मैंने 4 किताबें लिखी हैं और एक ग्रामर की बुक लिखी है, तो 2 मैंने कोर्स बुक लिखी सर और 2 लिखी वर्क बुक हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और ये हमारे जो विनर्स एजुकेशन के सर रहे डॉक्टर आनंद पियाहुजा उनके गाइडेंस में मैंने लिखी, तो उन्होंने भी काफी इसमें करेक्शन मुझे बताए। तो ये जो 2 कोर्स बुक है और जिससे मैं पढ़ाती हूँ जिसके, और 2 हमारी वर्क बुक है जो हम स्टूडेंट्स को देते हैं, तो ये चीजें हैं। और मैं आपको अच्छी बात एक और बताती हूँ सर, आप खुश हो जाएंगे सुन के। तो मैंने जितने भी डिजेबल स्टूडेंट्स हमारे रहे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी हूँ शुरू से, ये मेरा
1: एक बात।
0: और कई लड़कियां आती थी जैसे बहुत पुअर बैकग्राउंड से, किसी के जैसे फादर नहीं है तो मामा क्या रह रही है नहीं है, तो उन लड़कियों को भी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दिया है, जिसका कहते हैं ना उनका आशीर्वाद होता है, तो उस आशीर्वाद से हम इतना फले फूले, तो ये मैंने किया कोशिश की। लेकिन बट चूंकि वो जो हमारा एरिया था ना वहाँ पे कोई ब्लाइंड स्टूडेंट था ही नहीं, तो क्या किया जाए, तो भाई हम कोशिश करते थे कि कहीं से कोई मतलब इस तरह के लोगों की हेल्प मिले, तो कुछ गरीब लड़कियों को भी जैसे पढ़ाया जो मिले सो मिले है इस तरह के, तो ये चीजें हमने की। उसके बाद इस तरह से सिलसिला चलता गया और किताबें लिखी, और चूंकि किताबें भी लिखी और कोचिंग भी पॉपुलर हो रही थी और उड़ीसा में काफी नाम हो गया था कि भाई ऐसे ऐसे एक ब्लाइंड लड़की है और पढ़ाती है और किताब भी लिख डाली है, तो एक अजूबा होता है सर कि सब देखने आते हैं। तो काफी इंटरव्यूज हुए उस दौरान, जैसे हमारे उड़ीसा में एक OTV है, ये उड़ीसा का सबसे बड़ा चैनल है, तो उसमें इंटरव्यू हुआ और उसको 4 लाख लोगों ने देखा था उस इंटरव्यू को तो उस समय पे, और तो काफी मतलब बहुत बहुत फोन आते थे। और अच्छा इसमें सर मैं आपको एक बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अच्छा कई लोग ना शादी का प्रस्ताव रखते थे, अच्छा जी जी
1: आपने कहा होगा भाई ये गलती दोबारा नहीं करनी है।
0: नहीं नहीं सर देखिए, एक तो मारवाड़ी फैमिली और हमारा इस तरह का अपब्रिंगिंग नहीं है ना हमारे समाज में, हम जिस तरह के माहौल में,
1: और फिर क्या होता है ना कोमल जी, जब जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तो फिर इन सब बातों के बारे में फिर सोचने का कोई मतलब भी नहीं
0: सोचता इंसान है ना, नहीं सोचता बस है ना, क्योंकि उस समय हमारे सर पे देखिए पहले फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधरे, वो सही हुई है ना, उसके बाद देखिए बेटे की जिम्मेदारी रही एज अ सिंगल पेरेंट, उसमें भी मैंने बहुत से चैलेंजेस फेस किए है ना, और ईश्वर की दया से और पेरेंट्स के आशीर्वाद से देखिए आज बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, 25 इयर्स का है और अपना पार्ट टाइम कुछ कुछ कर रहा है, अपने कंप्यूटर का भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला है धीरे से करके, शॉप भी एक ओपन करेगा अभी और स्टार्टअप है उसका अभी। हाँ जी, तो अब जब वो मुझे कहता है कि मम्मी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन, यस आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आई एम डूइंग एवरीथिंग फॉर यू, लेकिन मैं फिर भी सोचती हूँ नहीं, मैं जब तक मैं मेरी सांस है तब तक मैं काम करना है मुझे, तो ये मेरे जीवन का लक्ष्य रहा। तो भगवान की दया से देखिए पापा ने बेटे ने, इवन मेरी मदर के बारे में जरा बात करूंगी कि मेरी मदर शुरू से मतलब कोई काम नहीं घर का करना है, देखिए अगर हम घर का कुकिंग करने लगे सब करने लगे तो बड़ा फिर कुछ का काम नहीं कर सकते, तो मदर ने बहुत सपोर्ट किया कि घर का कोई काम तुमको करना नहीं है, तुम अपना सेटल, तुम अपना काम करो, तुम अपना लिखो पढ़ो, तो अध्ययन अध्यापन लेखन ये तीनों चीजें मेरी मदर के सपोर्ट की वजह से चलता रहा, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हम ये सारे काम एक साथ नहीं कर सकते थे जी, तो ये बात भी। लेकिन कहते हैं कि सब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती है, तो क्या हुआ कि 2017 में पिताजी को कैंसर हो गया,
1: अच्छा
0: ओरल कैंसर जी, तो ओरल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर की वजह से फिर वो काफी सफर किए, और मेरे मदर फादर जैसे ट्रीटमेंट के लिए फिर बाहर रहे, भोपाल में रहे काफी समय तक, वहाँ इलाज चलते रहा, तो मैं यहाँ पे बेटे के साथ मैं अकेले रहती थी, अपना लाइफ इंडिपेंडेंट थोड़ा ठीक है, अपना काम भी कर रहे हैं, कुकिंग भी कर रहे हैं, सब काम भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सर्जरी भी हुई पिताजी की, है ना, लेकिन बस ये समस्या हुई कि 2018 में फिर उनका देहांत हो गया, वो सफर नहीं, वो कीमोथेरेपी वगैरह बर्दाश्त नहीं कर सके। तो इन द ईयर 2018 ही वाज एक्सपायर्ड। तो दैट वाज अ ग्रेट लॉस टू आर फैमिली। तो बहुत ग्रेट लॉस हुआ। और सर मेरी ऐसे लैब पे उन्होंने इसे रखा हुआ था व्हेन ही गॉट एक्सपायर्ड। इट वाज द लास्ट उनका था। एंड उनका मेरा बहुत हार्ट एक फुल कनेक्शन है ना, वो रहा। तो पिताजी के जाने के बाद काफी हम लोगों ने मदर को बहुत संभाला। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि देखिए, क्योंकि अगर हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। तो मदर को संभाला, मदर संभल भी गई, वो भी समझी बातों को कि नहीं उसको लेकर के नहीं बैठना है, आगे बढ़ना है जीवन में। तो फिर उसके बाद में पिताजी की डेथ के बाद इन द ईयर 2022 2022 में हमने शहर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा पापा की प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट था भाई से, है ना। तो फिर उसके बाद में उसको सेल आउट करके हम लोगों का जो भी बंटवारा होता है दैट इज वो होके, फिर उसके बाद में हम छत्तीसगढ़ आ गए। और यहाँ से फिर कहते हैं ना, अभी तो मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस कर रही हूँ दैट इज। तो ये
1: छत्तीसगढ़ में
0: रहा।
1: कौन से
0: और
1: शहर में आप?
0: छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के थोड़ा पास में सर, इट्स अ कस्बा टाइप एक जगह है, बिलाईगढ़ एक प्लेस है, वहां
1: अच्छा
0: पे
1: अच्छा
0: मैंने
1: अच्छा
0: रहा
1: हाँ
0: जी।
1: तो आपने छत्तीसगढ़ ही आने का कैसे सोचा?
0: जी हाँ, क्योंकि मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं और उन्होंने हमको सपोर्ट किया।
1: ओके
0: एंड उन्होंने
1: ओके
0: ही
1: ओके
0: हमको यहाँ पर ला करके कि भाई अब मैं हूँ, है ना, एज अ फादर तुम्हारे यहाँ पर। फिर जमीन वगैरह खरीद
1: 2008 से
0: के
1: लेके 2022 तक पूरा आपने ओडिशा में
0: जी
1: ही आपने आपको
0: बचपन से
1: मतलब
0: ही पूरा
1: सरवाइव
0: मतलब
1: भी किया,
0: हाँ
1: फ्लरिश
0: बिल्कुल
1: भी
0: हाँ
1: किया और सारे मतलब अच्छे बुरे दौर
0: बिल्कुल
1: वहीं देखे आपने।
0: सब
1: एक बात
0: सब
1: बताइए मैम, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ब्लाइंडनेस को लेकर के यानी दृष्टिबाधित लोगों को लेकर के
0: यस
1: जानकारी का बहुत अभाव था और जागरूकता भी नहीं थी लोगों में, तो
0: जी
1: ये बात समझ में आती है और ऐसा है भी। लेकिन जब आपने
0: यस
1: कोचिंग शुरू की
0: जी
1: तब लोगों के मन में नहीं आया कि एक ब्लाइंड टीचर हमें क्या पढ़ाएगी, कैसे पढ़ाएगी, हम कैसे इसके इनके
0: जी
1: पास जाएं पढ़ने के लिए और
0: यस
1: फिर आपको इतने सारे स्टूडेंट्स कैसे
0: बिल्कुल
1: मिलने लगे?
0: जी। मैं वही बताती हूँ। सी देखिए, एक तो रेटिनाइज पिगमेंटोजा जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें आपकी आईज की बनावट वगैरह सब कुछ अच्छी है, तो नो बडी कैन जज बाय सीइंग यू कि आप ब्लाइंड है, पहली बात तो ये। तो हम अच्छे खासे दिख रहे हैं, स्मार्ट दिख रहे हैं और फिर प्रेजेंटेबल भी हैं। तो ये भी चीजें रही, है ना, जिसने एक प्लस एड ऑन
1: यानी
0: किया।
1: किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनको
0: जी
1: पढ़ाने वाला
0: हाँ
1: टीचर जो है वो शायद
0: हाँ
1: ब्लाइंड है।
0: ब्लाइंड है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन देखिए, क्योंकि चूंकि मैं हमेशा ऑनेस्ट रही हूँ सब चीजों के प्रति, तो मैं हमेशा कोई भी पर्सन मेरे पास एडमिशन करता था तो मैं उसको पहले बताती थी, है ना, ताकि आप शिकायत ना करो कल को। ओके। और वो लोग वैसे भी देखिए सर, मेरी जो पब्लिसिटी हुई ना वो ओरल रही, माउथ टू माउथ रही, कि भाई एक ने किसी को बताया ये अच्छा पढ़ाती है इनके पास, और सबको पता था मैं ब्लाइंड, मैक्सिमम सबको पता था कि मैं ब्लाइंड हूँ जो भी आता था। और जिसको दो चार इक्के दुक्के को नहीं पता होता था तो वो पता चल जाता था एक दूसरे से। और कई कई तो सर ऐसे भी थे कि 6 महीना पूरा कोर्स का डाला, उनको पता नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ। एक एक ऐसा भी इंसिडेंट मेरे साथ रहा, ऐसे भी रहे मेरे साथ में, है ना। तो क्योंकि मैं आई कांटेक्ट भी करती हूँ बहुत अच्छी तरह से, कर लेती हूँ, आवाज को रिस्पॉन्ड भी मैं बहुत
1: तो
0: तरीके
1: वहां
0: से
1: आपने
0: करती हूँ
1: रेंटल जो बिल्डिंग है वो रेंटेड ले रखी थी, अपना कुछ खुद का ही खरीद
0: जी।
1: लिया था,
0: हाँ
1: कैसे कर रहे थे आप?
0: जी नहीं, पहले तो मेरे पिताजी का जो थोड़ा छोटा हाउस था, एक थोड़े अबंडेंट हाउस भी कह सकते हैं उसको, फिर तो वो बहुत काफी दुर्दशा हो गई उसकी, खराब हो गया हाउस, तो फिर रिपेयर कराने की स्थिति नहीं थी। तो फिर हमने रेंट पे हाउस लिया, वहीं पर एक कोचिंग सेटअप डाला, जैसे एक बड़ा सा हॉल
1: उसी पर ही
0: पहले
1: करते रहे
0: था,
1: थ्रू आउट आप?
0: हाँ बस एक हॉल जैसे था, तो उस पर कोचिंग सेटअप डाली, अंदर में अपने रूम्स वगैरह है, क्योंकि अब जाने आने की तो सर सुविधा नहीं है। देखिए रोज कौन जाएगा, फिर उसको मेंटेन भी करो, स्टाफ भी रखो, ये सब मैं नहीं सक सकती थी। तो मैंने सोचा जो अपनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग काम किया जाए, तो घर पे ही एक हॉल में सेटअप डाला कोचिंग का, दैट वहीं पर डेस्क वगैरह बेंच वगैरह लगा के सेटअप कर लिया, और बस इस तरह से कोचिंग चलने लगी हमारी। और बाकी फिर जहां भी जाती थी पिताजी के साथ जाती थी, और वहां पे जो स्टाफ रहते थे वो सब लोग को ऑपरेट करते थे। तो
1: ये
0: इस तरह
1: ओडिशा में
0: से
1: कौन सा शहर बता रहे हैं
0: झारसुगुड़ा
1: आप? जादू जादूगोड़ा है?
0: जी, झारसुगुड़ा सर, JHAR
1: झारसुगुड़ा
0: झारसुगुड़ा, हाँ ये बिल्कुल राउरकेला के नजदीक है सर, और ये
1: ओके
0: वेस्टर्न उड़ीसा में आता है और इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत फेमस है।
1: जी।
0: यस
1: तो एक बात बताइए,
0: जी
1: जब आपकी कोचिंग चल निकली और जब कहना चाहिए कि आपके अच्छे दिन आ गए,
0: जी
1: तो आपके हस्बैंड की साइड से लोगों ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की आपसे कभी या नेवर?
0: कोशिश किया था बट कभी डिड नॉट, हम लोगों ने कभी पलट के नहीं देखा।
1: ये क्योंकि मेरे मन में एक बात आ रही थी कि शायद ऐसा हुआ हो कि मन में थोड़ा उनके भी आया हो कि यार चलो
0: वो थोड़ा सन का थोड़ा था सर, तो सन के प्रति थोड़ा रुझान रहा होगा, तो लेकिन सन ने फिर नहीं देखा कि जिसने मतलब हमको पहले नहीं अपनाया है ना, एक बार जो ठुकरा दे सर उसके तरफ पलट के देखने का कोई सेंस नहीं है, तो ये बात बेटे को भी पता है बहुत अच्छी तरह से। जी
1: बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जबरदस्त मतलब संघर्षों से आपने आज एक तरह से मुझे लगता है कि कहना चाहिए ब्लाइंड जगत की नीतू मैम हैं आप, दिल्ली में है एक नीतू सिंह मैम है, इंग्लिश की कोच हैं शायद, उनका भी ऐसे ही कोचिंग सेंटर चलता है। तो दुनिया मतलब वही बात है कि आपके संघर्ष की कहानी मेन स्ट्रीम में मुझे लगता है जानी चाहिए, उनके बारे में लोग बातें करते हैं, उनकी कहानियां आती हैं, लेकिन आपका संघर्ष किसी भी मायने में उनसे कम नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक कदम ज्यादा ही है। खैर सबका अपना अपना संघर्ष होता है,
0: अब
1: कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग आपको सुनेंगे उन्हें पता चलेगा डेफिनेटली, और लोग इस बारे में आगे भी चर्चाएं करेंगे। और श्रोताओं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, कार्यक्रम है मन की आंखों से, और आज क्या कहना चाहिए, बहुत सारे आयाम हैं, अभी तो हमने इनके लेखन कार्य के बारे में तो चर्चा ही नहीं की है। बात कर रहे हैं कोमल अग्रवाल मैडम से, जो कि अपना कोचिंग सेंटर चला चुके हैं, लाइफ कोच रह चुके हैं, लेखिका तो वो हैं ही, बहुत अच्छी और दृष्टिबाधित यानी ब्लाइंड होने के बावजूद उन्होंने ये सब काम किए हैं, और वो भी तब जब समाज ने उनके संघर्ष को पहचाना नहीं, समझा नहीं, और कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया। खैर तो अब आपके बारे में कोमल मैम बात करते हैं कि लेखन कार्य की शुरुआत दरअसल कैसे हुई।
0: जी मैं सर तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने रखती हूँ, अभी आपने एक रुख स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग और मेरे पर्सनल लाइफ से संबंधित सुना, अब मैं आपको सुनाती हूँ जो हार्ट के बहुत नजदीक रहा, बहुत नजदीक के दिल का रिश्ता है जिसे, तो वो है लेखन और कनेक्टिंग ड्रीम्स।
1: एक बात तो हमें ये समझ में आ रहा है मैडम, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि चूंकि आपने जिंदगी के इतने आयाम देखे हैं, आपकी लाइफ के इतने शेड्स हैं, तो कहीं ना कहीं लेखन के फील्ड में तो मतलब जाना लगता है कुदरत भी चाहती थी कि आप जाएं उस ओर तो।
0: और मेरे पिताजी भी शायर थे, वो भी लिखते थे कविता वगैरह और शायरी लिखते थे, तो मैं उनसे भी कहीं ना कहीं एक जीन आता है
1: जो रहता है।
0: क्लास 10 में सर मेरी पहली जो कविता जिसकी है मुझे तलाश, ये संवेद शिखर एक अखबार में प्रकाशित हुई, जिसकी मेरे पिताजी जिसको बेचते थे हॉकर जैसे, मतलब यू नो जैसे कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना न्यूज़पेपर के, तो वो काम कर रहे थे उस समय पे, तो काफी अखबारों के वो मतलब सेलिंग करते थे और लड़कों को।
1: आपको याद हो तो मैम दो लाइनें हो जाए।
0: जी बिल्कुल सर होती है। तो वो पहली कविता थी सर जिसकी मतलब इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं सुनाती हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचती हूँ आखिर वह क्या है, सोचती हूँ आखिर वह क्या है जिसकी मुझे तलाश है, है वह मंजिल यहीं कहीं या पूरा आकाश है, सपनों का वह नीड़ कहाँ, कागज की वह नाव कहाँ, मेरे बचपन के वो साथी अब तक मन के पास हैं, मन मेरा बेचैन है, अधरों पर भी प्यास है, अस्तित्व खोजती मैं अपना, कहो किसी ने देखा क्या, मेरी मंजिल मेरा आकाश, जिसकी है मुझे तलाश, जिसकी है मुझे तलाश।
1: बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त।
0: तो ये सर प्रथम कविता जब पब्लिश हुई ना, तो मैं हवा में उड़ने लगी, अब मुझे लिखना आ गया है ना, काफी मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद सर जो यू नो ब्लाइंड लोग आप जानते हैं बहुत इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार होते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, कोई बात भी नहीं करता है उनसे, इतना दोस्त नहीं कुछ नहीं, तो मेरी डायरी मेरी दोस्त बनी, सिर्फ डायरी में सिर्फ लिखना लिखना अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें, कहीं पढ़ रहे, पढ़ना और लिखना बहुत शौक रहा, और चूंकि मेरे ताऊ जी की किताब की दुकान थी तो मैं वहां से किताबें लाती थी, बहुत राइटर्स को पढ़ी सर, एक से बढ़कर एक राइटर जिनका नाम कहाँ कहाँ सुनते थे, कोर्स की किताबों के साथ जनरल रीडिंग बहुत किया, रामधारी सिंह दिनकर, निराला,
1: आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही थी तो तब ये हाल है ना,
0: तब किताब ऐसे घुस घुस के पढ़ रहे हैं सर, इतना शौक है मतलब आंखें खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन पढ़ना है।
1: तो मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि श्रोताओं देखिए पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं होता है।
0: जी
1: जी
0: तो मैं किताब लाती उनसे है ना, और पढ़ के वापस एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से रख के कि किताब खराब नहीं होनी चाहिए, तो किताब ला करके वापस पढ़ के वापस लौटा दी थी। ऐसे कर करके सर किताबें पढ़ती रही, तो ये एक बहुत एक अच्छी चीज रही। और उसके बाद पहला उपन्यास मैंने शुरू किया था जिसका नाम था खामोशी से आवाज तक, लेकिन वो जला दी गई थोड़ा सा, है ना, लॉस किया। हाँ, तो अब मेरे पास वो उपन्यास नहीं है जिसका मैंने आधा से भी ज्यादा उपन्यास लिख चुकी थी मैं, है ना। तो हाँ, तो वो कहते थे कागज काले करती है, तो है ना, लिखने आई मतलब पांच पांच छह छह डायरी ऐसे भरी हुई रहती थी, खाली लिख रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, ये काम चलता रहा। मतलब डेली रूटीन जो चल रहा है, चल रहा है कि भाई खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं घर का, इसके अलावा जितना भी समय मिलता था ना वो पठन पाठन अध्यापन ये सब में स्टूडेंट्स को भी, जैसे कुछ बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं शाम को, इससे अपनी जीविका भी चला रहे हैं, ये सब चलता रहा सर। और रात रात भर पढ़ती थी। उसके बाद सर जब पढ़ने का आया कि भाई अब ब्लाइंड हो गए अब कैसे पढ़े, तो सक्षम प्रेस ने मुझे बहुत हेल्प किया सर। मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने सैकड़ों किताबें वहां से सीडी में मंगाई, मैं उन लोग को बोलती थी मेरे को इतनी भेज दो, उन लोग मेरे को बोलते थे नहीं इतने अलाउड नहीं है, आप लिमिट में मंगवाइए। 10 रुपए सर एक का, एक सीडी का लेते थे। और मैं बहुत जनरल रीडिंग बहुत किया, चूंकि मुझे फिक्शन पढ़ने का बहुत शौक रहा और नॉन फिक्शन मैं बहुत कम पढ़ी हूँ मैं, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा उसका नॉलेज नहीं है। तो कल्पनावादी संसार होता है ना, उसमें बस उड़ रहे थे कि उसमें बस उड़ान, तो बस
1: हाँ। एक बार जब घुस गए तो निकलने का कोई मतलब नहीं।
0: तो फिक्शन बहुत पढ़ा, शिवानी को पढ़ा, महादेवी वर्मा को पढ़ा, डॉक्टर सूर्य बाला सिन्हा, ये सब मेरी फेवरेट राइटर रही हैं, प्रेमचंद जी रहे, है ना, विमल मित्र, तो इन सब लोगों को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। एक जैसे राइटर की पसंद आती तो उनकी और मंगाती, और कोई बुक है क्या, उसको खोजती बैठ के। तो इस तरह से सक्षम ने काफी हेल्प की। एनएबी से भी मैंने किताबें मंगवाई जो जो यहाँ नहीं मिलती थी, उधर बुक शेयर का भी मेंबरशिप लिया और इस तरह से पढ़ते रहे। तो ये रहा। और 2020 में सर आ गया अपना कोरोना, तो अब रहा कि भाई ऑफलाइन कोचिंग, ये एक बड़ा डिजास्टर लाइफ में आएगा कि भाई कोचिंग अब बंद हो गई, अब क्या किया जाए। तो आपको पता है मेरे बेटे ने मेरे को गूगल मीट वगैरह चलाना सिखाया और बोला मम्मी आप इसमें क्लास करो। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात रही। बोलते कोरोना लोगों के लिए समस्या लेके आया, बहुत समस्याएं लेके आया, लेकिन उसने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि हम जो टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे थे, और सिर्फ मैं वहां के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी, इवन मेरे पास उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के या मध्य प्रदेश के और लोग भी आते थे, और दो दो महीना जैसे यू नो औरतें अपने मायके में रहती है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो मेरे पास क्लास करवाने के लिए दो दो महीना रहते थे और पढ़ते थे, लेकिन सब बाहर के लोग पढ़ नहीं पाते थे। तो लोग पूछते थे कोई प्लेटफॉर्म है क्या पढ़ने का आपके पास, मेरे पास तो नहीं है भाई पढ़ने का, वीडियो ऑडियो दे दो बोलते थे, मैं बोली नहीं नहीं मैं वो नहीं दे पाऊंगी। तो कोरोना के समय में जब गूगल मीट से स्टार्ट किया पढ़ाना, तो बहुत लोग जुड़े जो लोग चाहते थे, और सब लोग मेरे को अप्रोच करते थे कि भाई हम कैसे पढ़ सकते हैं, दोस्त भी, मेरी सहेलियां भी बोलती थी कि कोमल मुझे पढ़ा दे। तो सब मेरे फ्रेंड्स ने ग्रुप बनाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, फिर और लोग जुड़ते गए। फिर उसके बाद डिजिटल थोड़ा मार्केटिंग किया बेटे ने, और उसके बाद हमको कोविड के समय में भी इवन हमारे पड़ोसी तक हमसे ऑनलाइन पढ़ने लगे। तो जी, तो इस तरह की चीजें हैं। तो कोविड ने मुझे और स्टूडेंट्स दिलाए जो स्टूडेंट्स हमारे ऑफलाइन में नहीं थे, बहुत बहुत किया क्लासेस। और इसी दौरान तब जो क्लब हाउस एक ऐप से जुड़ी मैं, और वहां पर हमने अपना एक क्लब स्थापित किया, उससे मैं स्टार्ट की कि भाई विजुअली चैलेंज्ड लोग सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के अपने टैलेंट को कैसे शोकेस कर सकते हैं। तो क्लब हाउस से मैंने ये अभियान शुरू किया, और यहाँ से उसके बाद हम लोग देखे कि जैसे मेरे को लोग क्या बोलते थे कि देखो कि हम लोग वीडियो बना नहीं पाते, इसलिए हमारे यूट्यूब में चैनल पॉपुलराइज नहीं है, ये हुआ। तो मैं उस समय लिख भी रही थी, और पहली जो मैंने कहानी लिखी, पहली कहानी तो नहीं जो मतलब जिसको लोग बहुत पढ़े, कहानी तो बहुत सी लिखी क्योंकि मेरी काफी मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई कहानियां। और मैं आपको बताऊं सर, 2002 में 3 में मैंने नवभारत में भी लिखा हुआ है, उसमें एक आर्टिकल आता था पर्सनालिटी ऑफ द वीक, उससे मैंने वहां पे भी लिखा हुआ है। मैं महिला समिति की सेक्रेटरी थी जिस जगह पे मेरी शादी हुई थी वहां पर, तो वहां पर भी मैं काम कर रही थी लेखन का, और वहां पे सचिव का काम कर रही थी क्योंकि लेखन का ही काम है ये सब। तो मेरी बहुत सी इवन राजस्थान के भी कई, भरतपुर से एक मैगजीन निकलती थी महावैश्य सम्मेलन, उसमें भी कविताएं कहानी पब्लिश हुआ करती थी छोटी छोटी, तो ये सारी चीज हुआ करती थी। तो उसके बाद में एक कहानी मैंने लिखी, उसका नाम था कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। तो ये विधवा पुनर्विवाह पर एक 10 पेज की कहानी थी, इसको मैंने सब ग्रुप में जब भेजा तो मुझे बहुत से फोन आए, बहुत लोग फोन करने लगे वीआई कम्युनिटी से कि आप बहुत अच्छी कहानी लिखते हो, आप साइटेड हो क्या, क्योंकि आपने जो नायिका है उसकी साड़ी के फूलों का वर्णन किया है, उसके केश कैसे है वर्णन किया है, वो किस कलर की बिंदी लगाती है आप बताते हो, तो क्या आप साइटेड हो, है ना। और चूंकि मेरी फोटो भी जैसे कोई देख रहे हैं जो लोगों ने, है ना, जो लो विजन वाले भी देखने से पता ही नहीं चल रहा है कि ब्लाइंड है कि क्या है, तो फिर ये भी एक रीजन रहा कि सब पूछते थे नहीं नहीं आप साइटेड ही होगे जरूर, है ना। तो ये मिथ बना रहा काफी समय तक, तो लोगों को ये समझने में देर लगी कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओके ये बात है, मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता था कि नहीं मैं सच में ब्लाइंड हूँ, मुझे नहीं दिखता है। ओके तो ये रही, तो इस पे मेरे को कई लोगों ने बोला कि इस पे एक ड्रामा बनाना चाहिए, प्ले बनाना चाहिए, तो प्ले बनाना चाहिए, तो चलो प्ले बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरे एक फ्रेंड थे नहीं है, विकास शर्मा जी हैं, ये साइटेड है मुंबई से, और ये मेरे को मिले टीम विजन, एक मुंबई में एक संस्था है जो कि विजुअली इम्पैक्ट लोगों के लिए काम करती है, उसमें ये एंकर वगैरह का काम करते हैं और मेंबर है टीम के। तो मैंने इनके एक पोइट्री कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था ऑनलाइन कोविड के समय में, और मुझे इसमें इन्होंने अवार्ड किया था। तो अच्छा। वो जब ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने लगे तो उनके साथ में मेरी बातचीत होने लगी, तो मेरे को पता चला कि ये पर्सन बहुत अच्छा पर्सन है, और मतलब बहुत कोऑपरेट करते हैं ब्लाइंड लोगों के साथ में, तो उनके साथ में हमारा एक कहते हैं ना एक कनेक्शन बरकरार रहा। तो ये कनेक्शन मेरे को काम आया कनेक्टिंग ड्रीम्स की स्थापना करने के लिए।
1: जी
0: जी,
1: तो यानी अब आपने अपना खुद का एक तरह से एक कहना चाहिए कि सोशल वेंचर शुरू कर दिया है,
0: कनेक्टिंग वेंचर शुरू किया जिसका नाम कनेक्टिंग ड्रीम्स दिया, और ये हमारी वीआई कम्युनिटी के लोगों और साइटेड लोगों के बीच का एक वीआई भी नहीं, अदर दिव्यांगता भी इसमें है, सब लोग हैं, तो एक इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है, एक पहल है जिसमें हम लोग हमारे जो वीआईज हैं, अदर डिजेबल पीपल हैं और साइटेड भी हैं, उन सभी के टैलेंट को शोकेस करने के लिए, उनके भीतरी गुणों, उनकी जो प्रतिभा है उसको सामने लाने के लिए एक प्रयास है। तो एक मंच हुआ, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना, उसके बाद हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसमें हमारे सभी जो भाई बहन हैं दृष्टिबाधित, मैक्सिमम दृष्टिबाधित हैं, तो इन सभी की किसी की कविता, किसी का भजन, किसी का गीत, किसी की कहानी, ये सब कुछ इसके अंदर आती है। तो हमने पहली ऑडियो सीरीज 19 एपिसोड की बनाई, कैन आई होल्ड योर हैंड, खूबसूरत एहसास। पहले मुझे एडिटिंग नहीं आती थी, मैं एक और नाम लेना चाहूंगी, योगेश गोयल, ये आगरा से हैं, और इन्होंने मुझे एडिटिंग के लिए बहुत सहयोग किया और मुझे गोल्ड वेव की एडिटिंग सिखाई, तो मैं उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये भी एक ग्रेट पर्सन है और एक्सेसिबिलिटी टेस्टर है, तो इन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद मैं खुद भी ट्यूटोरियल सबसे देख के सीख गई, तो एडिटिंग भी आ गई। तो लिख रहे हैं, हमारे सभी ब्लाइंड लोगों को जोड़ा सबसे फोन पे बात करके, व्हाट्सएप चैटिंग कर करके कि भाई आप आओ जूम पे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे कहानी, स्क्रिप्ट लिखी गई पूरी, और सब लोग बोलते थे कोमल नहीं हम लोग कभी डायलॉग नहीं बोले हैं। मैंने बोला इसीलिए आप लोग बोलो, क्योंकि अंदर का डिप्रेशन निकलेगा, हीन भावना निकलेगी, कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने उन लोगों से काम करवाया जो लोग कभी एक लाइन नहीं बोले थे किसी प्लेटफॉर्म पर, तो सब लोग, हमने किसी पॉलिश्ड किसी आर्टिस्ट के साथ काम नहीं किया संदीप सर, ये मैं आपको सबसे पहली बार बताती हूँ, 0% इन्वेस्टमेंट पे काम किया, किसी को एक रुपए नहीं दिए, ना म्यूजिक के लिए नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खुद म्यूजिक बनाया, आयशाला से बनाए, फ्री ऐप से बनाए, है ना, आयशाला से किए, तानपुरा में चला रहे हैं और गाना सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी टीम में लोग जुड़ते गए। मैं इसमें नाम लेना चाहूंगी आपके जयपुर से श्री ओम वेनावरिया, जो बीएड अभी कंप्लीट किए हैं और ये संपूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है, ये हमारे चैनल से जुड़े, इन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत काम किया है और अभी भी कर रही है। तो ये लड़का मतलब बहुत अच्छा लिरिसिस्ट, पोएट, राइटर सब है, तो इन्होंने भी कनेक्टिंग ड्रीम्स के एज अ लाइक कोर मेंबर की तरह से, और सचिव भी कहते हैं, सचिव की भूमिका में भी ये हैं अभी, और विकास शर्मा जी को फाउंडर है, और इन्होंने जो भी वीडियो एडिटिंग हमारे चैनल पे होती है, अपलोड का जो सिस्टम है, टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं सारे यही डील करते हैं, और जो साउंड से रिलेटेड काम है, ऑडियो से रिलेटेड, वो सारा कुछ मैं करती हूँ, और ओम भी नावरिया बेस में ऑडियो लैब से करते हैं, मैं गोल्ड वेव सेट करती हूँ। तो ये कनेक्टिंग टीम्स हमने बनाया, इसमें हमारे 4 कोर मेंबर और है जिनका नाम क्रमशः सुदेश शर्मा, अभय गोयल, सुधांशु कुलश्रेष्ठ और रजनी गर्ग है। तो ये हमारे टीम के कोर मेंबर रहे हैं और बाकी हमारे टीम में 100 से भी ज्यादा मेंबर हैं जो कि भारत के अलग अलग शहरों से हैं के। तो इसमें एक चौथाई लोग जो हैं वो साइटेड हैं और बाकी जितने भी लोग हैं 80% लोग अराउंड सभी दिव्यांगजन हैं। तो कोई लोग ऐसा नहीं, कोई कम्प्लीटली ब्लाइंड है। तो लिखने का ये रहा तो ऑडियो सीरीज बनाई, स्क्रिप्ट लिखी, कहानी लिखी पहले, फिर उसी पर स्क्रिप्ट लिखी, फिर कहानी लिखने का सिलसिला चलता चला गया। के बाद हमने और ऑडियो सीरीज बनाई, एक अनबुझी प्यास, अ स्केच ऑफ लाइफ, ये 8 एपिसोड की हमने बनाई। इसमें हमारे 30 से ज्यादा भाई बहनों ने काम किया, ब्लाइंड भाई बहनों ने, और कैन आई होल्ड योर हैंड में तो 60 से ज्यादा लोगों ने काम किया। और उसके बाद हमने एक दहेज एक कुप्रथा, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे कि दहेज क्यों बनाई, तो दहेज एक कुप्रथा ये मैंने एक
1: बिल्कुल समझ गया मैं, वो वही कहा ना कि जो जिया है वही लिखा है।
0: तो विधवा पुनर्विवाह पर कैन आई होल्ड योर हैंड बनाया, एक अनबुझी प्यास जो है वो समाज की दोहरी मानसिकता पर कुठाराघात करती हुई एक सशक्त कहानी है, जिसमें एक वुमेन की कहानी है कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेने का एक डिसीजन वो रहा उसमें। तो ये तीन हमने बनाई, और इसके अलावा हमने ब्लाइंड लोगों के ऊपर एक मूवी बनाई जिसका नाम है यस आई एम 40। सर आप देखते हैं कि हम लोग आवाजों से जज करते हैं ना कौन कितना एज का है
1: जी,
0: तो हमने इस पर एक बहुत ही लाइट हार्टेड एक मूवी बनाई है यस आई एम 40, आपको जरूर देखनी चाहिए और सभी को देखनी चाहिए। बहुत ही सुंदर, हमारे सभी ब्लाइंड आर्टिस्ट ने इसमें काम किया, 12 लोगों ने तकरीबन इसमें काम किया है, और बहुत सुंदर इसमें ब्लाइंड लोगों की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के कि वो लोग कितने एफिशिएंट है वो भी हमने दिखाया है इसमें, वो किस तरह से जॉब्स को यूज करते हैं और जॉब में है, बैंक में एक जन जॉब कर रहा है, जो लड़की है वो एक और ऑफिस में है। तो ये हमने एक तरह से हम साइटेड लोग सब हमारी जब देखते हैं इन ऑडियो सीरीज को सुनते हैं तो बोलते हैं कि हाँ मतलब कर सकते हैं, तो हमने साइटेड तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास किया है। हाँ ये हो सकता है कि हम बहुत बहुत रीच नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर
1: हो जाएगा, आज कल बिल्कुल, आज नहीं तो कल, जो सोचा है वो तो होना ही वाला है जी।
0: अगर हम आज 4-5 हजार लोगों तक पहुँच पा रहे हैं तो हो सकता है कल ये संख्या में 0 और लग जाए, तो ऐसा हो सकता है। हम पॉजिटिव कहते हैं कीप योर फेस टू द सन,
1: एक के अनेक जीरो लग जाएंगे
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल,
1: अनेक जीरो लग जाएंगे और अनेक हीरो मिल जाएंगे, अनेक हीरो बन जाएंगे आपकी इस मुहिम के माध्यम से, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक कौन कौन से नॉवेल्स और कहानियां और कविताएं आपने लिखी हैं या ड्रामास लिखे हैं, कुछ याद आ रहा हो कितने, मतलब टोटल ऐसे संख्या में कभी नोटिस तो जी
0: जी हाँ, संख्या में अगर हम मैं बताऊँ तो 3 ऑडियो सीरीज हमने बनाई जिसकी कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद 3 हमने मूवी बनाई। इसके अलावा मेरी जो कहानियां हैं वो सर अभी तक अगर जोश पब्लिश नहीं हुई है, मैं उनके बारे में बताऊं कि 50 से भी अधिक मैंने लिखा हुआ है कंटेंट, कहानियां कविताएं तो सर भरमार है, 100-200 भरमार है कविताएं, तो ऐसी है कि मतलब
1: उपन्यास
0: करने का समय नहीं है। उपन्यास सर ऑफिशियली मैंने एक उपन्यास रिलीज किया है, का नाम क्या नहीं होल्ड योर हैंड है, जो उपन्यास की शक्ल में भी है। इसके 3 सीजन है सर, 3 वॉल्यूम में है। तो पहला सीजन मेरे ही चैनल पर अपलोडेड है, मेरी आवाज में रिकॉर्डेड है, और 115 भाग हम इसके रिलीज कर चुके हैं। और ये उपन्यास हम अभिव्यंजना प्रकाशन के अंदर के तहत हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं, अगले साल तक में भी ये पब्लिश हो जाएगा। और मैं अभिव्यंजना प्रकाशन के बारे में थोड़ा सा आऊंगी, डॉक्टर किशोर कुमार दास पथिक का ये प्रकाशन है जी।
1: तो बहुत अच्छी बात है, एक मेरे मन में, अच्छा वो भी ब्लाइंड पर्सन है
0: जी, बिल्कुल टोटली ब्लाइंड है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो जाकिर हुसैन कॉलेज है उसमें सीनियर प्रोफेसर है।
1: वाह बहुत खूब बहुत खूब, तो कभी अगर
0: इनका हमारे साथ अवसर, है, कोलैबोरेशन
1: अवसर मिला तो उनके साथ भी हम मन की आंखों से कार्यक्रम जरूर
0: बिल्कुल
1: करने की कोशिश करेंगे।
0: हाँ, वो बहुत,
1: और ये अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का ही है ना
0: जी, अभिव्यंजना प्रकाशन उन्हीं का है, और सर ने हमारे साथ कोलैबोरेशन करने के योग्य हमको समझा, और हमने उनका भावोन्मेष उन्होंने किताब लिखी है तो उसका लॉन्च भी था दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, तो उसके प्रोग्राम को मैंने ऑनलाइन पूरा ऑल इंडिया एंकरिंग किया है और पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज भी किया, ये भी मैंने किया है, और गोष्ठी कुछ काव्य गोष्ठियां हमने की है कनेक्टिव ड्रीम्स के बैनर में, और मुंबई के रेक्सार्ट एक साइटेड पोएट्स का प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है, और इसमें हमने डोर बनावट भावु की ये प्रोग्राम किया है, और विकास शर्मा डोर ये जो है ये इसमें है, और अक्षिता मंगलानी जी एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच है, तो इनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। तो ये सब चीजें कनेक्टिंग ड्रीम्स हम लोग समय समय पर इवेंट कॉम्पिटिशन सेलिब्रेशंस, गेट टुगेदर, छोटे मोटे ऑनलाइन, ऑफलाइन अभी तक हम कोई कार्यक्रम नहीं कर पाए हैं, तो ये बात है, तो हम करते आ रहे हैं। तो कहानियां लिखने का सर ऐसा है कि कहानियां बहुत सी लिखी हैं, जिसमें रिसेंटली हमने अभी एक रिलीज किया जिसका नाम है राजदंड। रिकॉर्ड मैं ही करती हूँ, अपनी कहानियां लिखती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, खुद साउंड एडिटिंग करती हूँ, वो नहीं था कोई अपना सा, छतरी बदल गई, ये सारी कहानियां मेरी रिलीज हो चुकी है चैनल पर।
1: सारे काम मैडम लेखन के कंप्यूटर आने के बाद ही आपने किए, या लेखन के कार्य के लिए आपने किसी को रखा हुआ था, या आप खुद ही लिखते थे, कैसे करते थे, क्योंकि ब्रेल लिपि तो आपने बहुत ज्यादा सीखी नहीं?
0: नहीं सीखी। लेखन का काम जो भी हुआ सर कंप्यूटर के आने के बाद ही हुआ, जो भी।
1: ओके अच्छा, यानी हिंदी टाइपिंग वगैरह बहुत अच्छे से आपने सीखा और उसी का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल भी किया।
0: तो आपका गूगल इनपुट टूल है सर, वो वाला ट्रेडिशनल हिंदी मुझे अभी भी परफेक्टली नहीं आती, सीख रही हूँ, ट्रेडिशनल हिंदी अभी भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती।
1: बहुत जबरदस्त आज इस कार्यक्रम की यात्रा रही मैम आपके साथ, और बात करते करते अब बिल्कुल अंत की ओर हैं हम लोग आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन आपके इस लेखन कार्य का, आपके इस सामाजिक समावेशन की जो मुहिम है इसका, और सबसे बड़ी बात आपका जो जुझारूपन है, इसका कभी अंत ना हो, हम यही आज दुआ करते हैं, यही कामना करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा आज रेडियो मधुबन के साथ जुड़ करके। तो मैं मतलब आपकी बातों में, हर एक बात में इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं कि अगर 10 प्रोग्राम भी करें तो कम पड़ जाएंगे आपके साथ। लेकिन अब चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, अब ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं पूछ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर चाहूंगा कि चलते चलते अब अपनी जिंदगी से जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ जिया है, जो कुछ अनुभव लिया है, उसके आधार पर हमारे सभी सुनने वालों को, चूंकि रेडियो मधुबन एक कम्युनिटी रेडियो भी है, ऑनलाइन रेडियो भी है, 140 देशों में सुना जाता है, और मेन स्ट्रीम के साथ साथ दृष्टिबाधित समाज के भी बहुत लोग सुनते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यक्रम के अंत में?
0: जी, मैं इसमें चार पंक्तियां सर सुनाती हूँ। अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, खुशियों की अभिलाषा में मुझको आंसू तरल मिले, मगर मैं रोई नहीं, मैं रोई नहीं जिंदगी की नाकामियों पर, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले, जो अंधेरों में डूबे आज और प्रतीक्षा के कल मिले। तो मैं रेडियो मधुबन के तमाम श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपनी समस्याओं से घबरा कर रोना नहीं है, हारना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, आप उठिए चलिए, क्योंकि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं चलाएगा, एक स्टेप आपको मंजिल की तरफ ले जाएगा। और हम संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष सब साइटेड के जीवन में भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ वीआईस के जीवन में होता है। तो मैं अपने सभी वीआई भाई बहनों से, दोस्तों से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके अन्य अंग चल रहे हैं, तो आप उन पर भरोसा रखिए। और एक और एक कविता की लाइन, एक गजल की लाइन है कि एक अनबुझी प्यास है जिंदगी, इसे किसकी तलाश है जिंदगी, मेरा खोया साजा सुकून है, क्या वो तेरे पास है जिंदगी। तो जिंदगी ऐसी लेती है, तो सुकून भी जिंदगी के पास है, आप जिंदगी से जुड़िए, जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो लोग सुसाइड कमिट करते हैं या जिनके मन में सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे कि मेरे भी मन में रही और हमारे लगभग ब्लाइंड भाई बहनों के मन में रहती है, तो इनसे हट करके जिंदगी से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं है, कोई वरदान नहीं है, इसको जिए और बहुत डिग्निफाइड एक तरीके से जिए, यही आपको सब कुछ देगी। इसी के साथ निवाणी को विराम देती हूँ, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद कोमल मैम आपका, कि आज समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें, अपने जिंदगी का पूरा अनुभव इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने श्रोताओं के सम्मुख रख दिया, तो निसंदेह बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो श्रोताओं, उम्मीद है आप सबको भी कार्यक्रम पसंद आया होगा। कोमल अग्रवाल मैडम के साथ आज की जो बातचीत रही, ये निश्चित रूप से आप सबको भी कुछ न कुछ सिखाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, और आप सब क्या करेंगे, रेडियो मधुबन सुनते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाएं भी हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपके पास भी कोई प्रतिभा है, किसी तरह की उपलब्धि है, तो आपका भी मन की आंखों से कार्यक्रम में इंतजार रहेगा। अब मुझे यानी संदीप त्रिवेदी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, किसी और कार्यक्रम के साथ, किसी और समय पर। एक बार फिर कोमल मैम धन्यवाद, बहुत बहुत
0: जी, बहुत शुक्रिया।
2: There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary and to awake awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris.
3: Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister.
4: Om Shanti.
3: Welcome to Going Beyond.
4: Thank you so much.
3: There's something very funny I read today. And I call it funny because it's so close to me. It looks as if somebody's written something after meeting me.
4: Really?
3: Yeah. Says, most of the time, the conflict is perceived in the mind. This is okay. How many times have you expected your secretary to pick up the folders from your desk and file them away? And then at other times, you want her not to touch them, since you have neatly sorted them and will want to look at them the next day. You expect her to be your mind reader. And when she doesn't do as you mentally expect her to do, there is a conflict. These kinds of situations create a lot of unnecessary thoughts, which result in ill feelings and negative attitudes. Next, very important. We fall into the language of always and never. Always and never. We are so frustrated that the people around us have not learnt the art of mind reading, that we accuse them of always disrupting our work or never doing anything around here. I laugh at it because I do the same thing at home. I tell my staff something someday, something someday.
4: Yeah, but it is so easy to sit and laugh at it now. And because right now we're not in the situation.
3: Yeah.
4: And which means that actually if we look at it in a detached perspective, it just appears funny. And not only funny, it appears unreasonable that the person is behaving in a very unreasonable manner. And yet when we are in the situation, nothing can be more real and nothing can be more logical. I'm sure now that you're reading it, it appears, how can anybody be doing this? But when you are in it, you feel that you're absolutely right. There cannot be anything more right. What is wrong in expecting one day for things to happen in this particular manner and the next day things to happen in another manner? What's wrong in expecting this? And so while we're doing it,
3: you don't even think about what is wrong or right. You just do that because, why did you do this? He said, because you did. But I didn't say that do it when guests are here.
4: Right. Absolutely.
3: I didn't tell you to do it at 9 o'clock.
4: Otherwise also, if let's say something as simple as, I will have my dinner at 7 o'clock, so the people around should be prepared. And then when you are in that mood, you will tell them, 7 o'clock daily, I should get my dinner here. Hmm. And so they will program themselves and they are accurate and disciplined. And then 2-3 days later, they will still bring the dinner accurately. See, if you see the other person's perspective, they're being very disciplined, sincere and hardworking. And then they get the dinner exactly at 7 o'clock. And that day you don't feel like eating at 7 o'clock. And so how would you react with them?
3: Then I tell them, why didn't you ask me before placing the dinner?
4: Yeah, but do you tell them the way you're saying it right now?
3: No. I get angry. I say, who told you to give me dinner? Right. At least ask me. And I'm sitting, I'm not far away.
4: Yes.
3: I'm just sitting in front of you. Right. Just ask me, are you hungry or something? And if they ask me, are you hungry? Didn't I tell you yesterday?
4: Right.
3: Didn't I tell you once? Do I have to tell you 10 times?
4: Right.
3: Then give me dinner at 7?
4: Right.
3: You don't have to ask me the same question every day. And the day they don't ask me.
4: Yeah.
3: Why can't you even ask me? I'm not hungry.
4: Either ways, we are not going to spare them, are we? And so if we see from the perspective of the other person, in this case, the secretary or the staff, it could be anybody, it could be husband, wife. What do you think the other person goes through?
3: Yeah, I try to take care of them later on.
4: Later on, it's like, breaking something and then trying to get it back together later on. And then most important is that thing breaks too often. It's not that it breaks just once
3: in
4: a while.
3: So they get gifts too often, no?
4: I was just reading the other day somewhere that psychologists say that on an average, approximately, that's what their research says, 17 positive statements are required to override the damage created by one negative statement.
3: Oh.
4: And when I read that, and
3: 17.
4: Yeah. Positive. So they said the ratio is 17:1. And the article was about appreciation. And it says, do you appreciate people, especially children or like staff, 17 times more than what you criticize them? I thought it was 17:1 in the other way. It would be more of 17 times criticism and once in a while appreciation. So
3: yeah.
4: Look at what we're doing to people. And we see that the whole day. You know, when
3: Why
4: I read
3: people?
4: Even with ourselves.
3: I criticize myself too.
4: And appreciate myself very rarely.
3: 17. It's okay. You're learning.
4: So the appreciation is not even very liberal. You know, appreciate liberally, motivate yourself. No, criticism is very liberal. It comes fast and flowing words or thoughts. And appreciation, very selected, 2-3 words. Good job. And then with that, you can do it better next time.
3: Because of the belief that just I am criticizing you for your good.
4: Yeah, but then...
3: It's so clear.
4: Yeah, but then let's see what people around us who are researching the human mind, what are they telling us? And actually, one is research and the other is experience. You know, even if you see parents or friends who are very critical in nature, it doesn't mean they don't love us. They really love us. And there have been times that they've been very, very, very nice to us. Very nice. And whatever we are today, it is because of all their love, care and support. And yet, we don't seem to forget the harsh words.
3: Never.
4: We may have forgotten the beautiful words, but we don't forget the harsh words.
3: But remembering, sister, while talking to you, I remember not the 17 times given appreciation by my parents, but that one criticism.
4: One criticism.
3: That I remember very well, clearly.
4: So even now it just shows that, one, we are not moving in a 17:1 ratio. Definitely. We don't normally, most of us, are not appreciating people 17 times more than we criticize them. No. We do get criticism more often. And criticism just means a negative energy in the form of anger, irritation, something like this. Even if the appreciation is 17 times and criticism is once, even then we tend to remember that criticism and we say, they said this to me. Now, we really need to sit back and see that we don't need any research to tell us this now. It's our own experience that criticism is here more. And the only reason is criticism was taken by us to wound ourselves. It's like you give me 17 gifts and then you hit me once really hard here.
3: Mm.
4: Huh? And when you hit me really hard, there was a wound. It pained. It really, really pained. 17 gifts, or maybe 100 gifts, and one big wound here, and it pained. Which one will I remember?
3: The pain.
4: The pain. And which means how careful we will need to be in our interactions with people. And also because when we are hitting someone and it's causing pain to them, what about the pain it's causing to ourselves?
3: How can that pain be created in myself when I don't even know that I'm creating a pain?
4: When we're using harsh words...
3: A lot of people don't know. They are so sure that they are doing this, disciplining the child. I'm doing it only for his good. He may be feeling bad now. Tomorrow, when I die, he will remember and say, yes, my father did so good for me. So when a person is so sure about something... The pain cannot be with me, no?
4: The pain cannot be with me, but I'm using harsh words.
3: But look, again, my belief.
4: Belief is fine.
3: So if there is my belief is
4: let's
3: that
4: say,
3: I'm doing it for your good,
4: no, let's
3: how
4: say
3: will
4: I take
3: I get
4: a knife.
3: Any?
4: I take a knife. My belief is that knife is good for cutting. But finally, when I use the knife, And when I understand, now earlier I was not aware, but now I understand
1: yes.
4: that the weapon, the sharp edge of that knife is first going to be in my hand. And so even if a knife is good, is needed for cutting, is my belief system, the first person I cut is me, myself.
3: Yeah, maybe subconsciously.
4: So my belief says that the knife is needed. These people just won't learn without a knife. I need to use this kind of energy. So belief says knife is a necessity, which is one part. But the reality is that the knife will first cut me before cutting them.
3: Yeah, I know someone who deals with a lot of truck drivers and who cheat them and they run away with things and all that. And they use the kind of business they do and the way they talk to them or behave with them is so painful to see, but they are so sure. They said, you can't help it.
4: Yes.
3: They do not listen otherwise.
4: They do not
3: but
4: listen.
3: But I also see one thing more,
4: yes.
3: that the person gets so tired by the evening, gets so irritated by the evening, that he brings the same language home.
4: Not only the language.
3: Yeah.
4: The vibration, the energy.
3: So what I was asking you, I have answered myself.
4: And this you will find in a lot of places. Teachers trying to control children create a lot of stress, carry their stress home. You shout at children, it's going to hit here first. So when we say this weapon is needed for my profession or for my children or whatever, we will need to remember the damage that it does to the other people more than that the damage is to me. And the reason is, like you said, this person who deals with truck drivers. Now, on an average, how many drivers in a day?
3: Maybe 200 to 300.
4: 200 to 300. Chal. So now let's look at the proportion. One owner and 200 to 300 truck drivers. Even if he has to shout at 10% of them in the whole day.
3: 30.
4: Because all of them are going to behave in different ways. And it's their vocabulary, they talk like that. And it's this businessman's belief system that unless you are ruthless with them or you shout at them, things are not going to happen. So even if he has to shout 20 to 30 times in a day, they get it only
3: once.
4: This person creates it 30 times, and which means he gets the energy 30 times while creating it and then transmits it. They get it once.
3: Yeah, but 30 times from his side. And what about from coming back?
4: That is, of course, another game altogether.
3: That
4: yes.
3: we've learned from you now.
4: Absolutely. So now tell...
3: What you give comes back to you.
4: What you give...
3: So 30 plus maybe 90 more.
4: Many
3: 120
4: more.
3: Times.
4: Yeah, so how is that mind going to be by the end of the day?
3: Totally depleted. Tired.
4: So we need to stop and check all our belief systems which we are saying, no, it's necessary. It's necessary. Criticism is necessary. Harsh language is necessary.
3: Maybe it's just for your convenience we use this line. Actually, everybody knows within that, you know, I've hurt my child or I've spoken a little louder. I shouldn't have done that.
4: Actually, our behavior is only reflecting first our own state of mind, not the behavior of the team or the children. Same team. Same children bring another set of parents or bring another leader. Same team. Let's say there is a team of 10 people. You know, I normally see with patient doctors, it's very interesting. Some doctors will say, this patient is very irritating because the patient tends to ask too many questions, is just not understanding, the relatives are also panicky, all those things. So the doctor who's very stressed and is very frustrated inside will say, this patient is irritating. Okay, now let's say we label the patient, this patient is irritating, because this patient has just created tremendous amount of irritation in a doctor. Now that means take the patient and take them to 10 doctors now. And so the same patient should create a amount of irritation in all the doctors, and that just doesn't happen. That just doesn't happen. They're going to have some doctors who are going to be very, very calm, very loveful, very empathetic, and then say, is there anything more you want to ask? Same patient. But yet this doctor who was getting irritated is going to say, it's this patient. It's because of him I am becoming like this. I have to talk to him. He will not understand. Same class of students, different teachers will handle the same class of students differently. And then some teacher will say, they just won't keep quiet if you don't.

0: शांति नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान आज के इस प्रोग्राम में राम प्रकाश जी हैं, यूएसए से हमारे साथ जुड़ गए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ देखकर। आप विशेष रूप से प्रोफेशनली आप इंजीनियर हैं और काफी अलग अलग कंपनीज में एज ए कंसल्टिंग आपने काम किया है, न्यूयॉर्क में भी आपने काम किया है, तो इंटरनेशनल डायरेक्टर अभी हैं और साथ ही साथ 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस ये जो एक प्रोजेक्ट था ब्रह्मा कुमारीज का जिसमें आपने विशेष काम किया और उसके साथ में 9/11 वाला सर्वे एंड शेयरिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका 9/11 वाला जो अमेरिका का एक्सपीरियंस है वो व्हाइट हाउस वाला भी काफी अच्छा है और बहुत सारी चीजें आपने ब्रह्म कुमारी से जुड़कर स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल होना जरूरी नहीं है लेकिन स्पिरिचुअलिटी को कितना प्रैक्टिस कर रहे हो दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो चीजें आपके द्वारा हम सीख रहे हैं निश्चित तौर पर। आपके एक्सपीरियंस में आप स्पिरिचुअलिटी को कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो आपका एक्सपीरियंस शेयरिंग में समझ में आ जाता है। तो निश्चित तौर पे आज हम लोग जब बात करेंगे आपसे या कुछ क्वेश्चन आंसर होगा तो जिसमें आपके शेयरिंग्स जो है हम सभी को मोटिवेशन देगा। तो बहुत बहुत स्वागत है राम प्रकाश जी आपका आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। नमस्ते।
1: नमस्ते, थैंक यू।
0: और मैं चाहूंगा श्रीशा एक बहुत ही प्यारा संगीत के साथ राम प्रकाश जी का स्वागत करें आप।
2: जरूर, टुडे आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग जहां से मैंने रेडियो मधुबन में अपना ऑडिशन दिया था, वो सॉन्ग मैं फिर से सुनाना चाहती हूँ।
0: जी जी जी।

0: जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करे, ये कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ पे हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। थैंक यू,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शीशा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना है, मस्ती भरा गीत। तो आइए राम प्रकाश जी, कैसे हैं आप, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं?
2: गुड मॉर्निंग, यहाँ पर न्यूयॉर्क में गुड मॉर्निंग है, आप गुड इवनिंग है,
1: बिल्कुल
2: तो ईस्ट मीट्स वेस्ट है ना, तो कैसे हम सब चीज को दिन रात को एक कर सकते हैं। तो इस समय मैं न्यूयॉर्क में हूँ, हमारा बहुत अच्छा स्थान है पीस विलेज, जो 300 एकड़ में रिट्रीट सेंटर बना हुआ है और बहुत बहुत ग्रीनरी है, बहुत बढ़िया यहाँ पर वातावरण है, तो मैं वहाँ बैठकर आप सभी का स्वागत करता हूँ और साथ में जो आपने मेरे को मौका दिया उसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। और मैं चाहूंगा राम प्रकाश जी, जैसे कि अभी आप शेयरिंग किया कि आप पीस विलेज में है, जो ब्रह्म कुमारी का एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, जहां पर मेडिटेशन भी करते हैं, रिट्रीट भी होता है और बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी होते हैं। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप ब्रह्म कुमारी से कैसे जुड़े हो, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर थे, बहुत सारा काम करते हुए अपने लाइफ में व्यस्त थे, तो इस और आध्यात्मिकता की और भी खास ब्रह्म कुमारी की और कैसे आपका जुड़ना हो, क्या ऐसा हुआ जो आप इस तरफ आ गए?
2: देखो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने में चेंज कर सकता हूँ, इफ आई कैन बिकम स्पिरिचुअल, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैं बताऊँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, ब्रह्मा कुमारी का नाम हमने सुना था लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता था। तो क्या था, एक बार हम कॉलेज में थर्ड ईयर में थे, मैंने इंजीनियरिंग की है ना, बाई प्रोफेशन आई एम इंजीनियर, तो हम आपस में बात कर रहे थे, एक आर्टिकल आया था, जैसे वो कोई अमेरिका का था, उसमें लाइफ मैगजीन, उसमें उन्होंने कई प्रिडिक्शन की थी, कोई जीन डिक्सन नाम की कोई बहुत फिलोसफर थी, एस्ट्रोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने जैसे कैनेडी का मर्डर हुआ, ये चाइना वॉल का गिरा, ये कई कुछ, उनमें से एक प्रिडिक्शन थी कि ओवर द टर्न ऑफ द सेंचुरी, माना थोड़े वर्षों में भारत सबसे ज्यादा समृद्धशाली होगा। तो हम फ्रेंड्स आपस में हंसने लगे, हम कहते हैं भारत तो 100 साल पिछड़ा हुआ है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर हुआ क्या कि जब मैंने इंजीनियरिंग कर ली और मैं अपने घर में बैठा था, एग्जाम का देकर आया था और मैं सिर्फ वेट कर रहा था, अचानक ब्रह्मा कुमारी का वहां हमारे शहर में आना हुआ और उन्होंने एग्जीबिशन किया, हमारे भुआ जिसमें थे, एग्जीबिशन के बाद उनको कोई स्थान ढूंढने की थी कि कोई जगह पर रह के वो सबको अपना ज्ञान सुना सके, तो हमारे घर में हमारे भुआ जी ने उनको बुलाया और मेरे को कहा, रामप्रकाश आप इनकी मदद करना, आप इनके होस्ट हो। तो मेरे को ब्रह्मा कुमारी इसका पसंद नहीं था बिल्कुल भी, तो क्या था, भुआ हमारी पीछे पड़ी रहती थी, बहुत ज्ञान सुनाती थी, तो मैं यंग था, समय 21 वर्ष का ही था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, तो मैंने उनको कहा भी देखो मैं उनकी मदद तो करूंगा, घर में आए हैं, लेकिन उनको ये कह देना कि मेरे को ज्ञान मत सुनाए, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन जैसे हम थोड़े दिन उनके साथ रहे, हमने देखा कि बहनें बड़ी सामान्य रूप से रह रही हैं। हम पहले सोचते थे ये सन्यासियों की तरह होंगे, लेकिन नहीं, वो तो हर चीज में इंटरेस्टेड थे और हमको लगा कि अच्छे परिवार से हैं और बहुत अच्छा जीवन जी सकते थे। लेकिन मैं उनको देखता था, ज्ञान सुनाते हैं, रात को बड़ा सिंपल खाना खाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, वो मेरे को ना बड़ी अपील करती थी। मुझे पता है ये मुस्कुराहट अगर थोड़ी सी ना होती है ना, फेक होती है, वो थोड़ा समय रहती है, लेकिन हम उनके साथ कंटिन्यूसली रहे तब लगा इनको कुछ ना कुछ तो मिलता होगा, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो क्या हुआ, मैंने अल्टीमेटली ज्ञान उनसे लेना शुरू कर दिया 2-3 वीक्स के बाद। तो उन्होंने कहा कि आपको मनुष्य से देवता बनने का है और सृष्टि पर स्वर्ग आने वाला है। तो मैं तो एकदम बौखला गया, मैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं मनुष्य से देवता बनने की। तो उस समय क्या था, मैं कॉलेज के समय में बिगड़ा हुआ था। अब मेरे को बुरा नहीं लगता है बताते हुए, मैं हम अग्रवाल परिवार से हैं, तो हमारे घर में पहले कोई प्याज वगैरह भी नहीं आता था। बाद में प्याज आना शुरू हुआ, उसके बाद और कुछ नहीं था, लेकिन हमने एग भी खाना शुरू किया, नॉन वेजिटेरियन बन गए, ड्रिंक करना शुरू कर दिया, स्मोक करना शुरू कर दिया, माना जो बुरे से बुरे काम थे ना हॉस्टल में होते हैं सब हमने करने शुरू कर दिए। तो जब उन्होंने कहा कि आप मनुष्य से देवता बन सकते हो, तो मेरे को हंसी आई। मैं कह मैं थोड़ा सा सुधर जाऊं, मेरे लिए तो वही बहुत है, ये देवता बनने की बात कर रहे हैं। पर हुआ क्या कि वो लेसन लेते लेते मैंने उनको जब ऐसा कहा ना, कहते हो सकता है लेकिन आप ना पूरा धारणा ऊपर चलो। तो मैंने कहा क्या धारणा है? तो क्या हुआ, एक हफ्ते के बीच में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सिगरेट शराब सब कुछ छोड़ दिया। तो मेरे को अचानक लगा एक हफ्ते में सब कुछ हो गया। तो अगर एक हफ्ते में मैं इतना चेंज हो सकता हूँ, तो अगर मैं और एफर्ट करूँ तो और भी ज्यादा हो सकता हूँ। तो इंजीनियरिंग में हम क्या देखते होते हैं कि कोई चीज का मॉडल बनाते हैं, और मॉडल अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर उसका प्रोटोटाइप, माना थोड़ी सी प्रोसेस आपको समझ आ जाती है, फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह का मेरे को लगा, और अचानक फिर मेरे को लगने लगा एक और चीज जो मेरे को ध्यान में आई, कोई इंजीनियर होने के नाते हम दो चीजें पर्टिकुलरली करते हैं। एक है हम चीज को ना सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारी ड्राइंग्स ये वो इंजीनियरिंग की कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉमन आदमियों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम किसी को सुनाते हैं, समझाते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं, ये आपका बेडरूम है, ये 10x15 का है, ये बेडरूम आपका 12x18 का है। 12x18 कितना होता है? उनके घर में जाके हम बताएंगे, देखो ये कमरा देख रहे हो, ये 12x18 के करीब है, इतना बड़ा कमरा होगा। कहते हाँ अभी समझ आया। तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया ना, तो मेरे को अंदर में बहुत होता था कि ये नॉलेज है ना, इसको भी सिंप्लीफाई करने का है। और दूसरा होता था, हम कहते हैं एप्लीकेशन, कि हम कितना भी पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे हमने कॉलेज में हम गए, पहले हमने पढ़ा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और मटेरियल, लेकिन जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में गए तो वहां हमको पढ़ाया गया अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स और मटेरियल। तो माना अप्लाई करना लाइफ में, तो एकदम मेरे को आने लगा कि ये ज्ञान और योग है, ये नॉलेज है, और दूसरी शक्ति है, योगा शक्ति है, माना एनर्जी जिसको हम कहते हैं। एक तरफ फिजिकल एनर्जी होती है, टाइम मनी स्पेस वगैरह, हमारी बॉडी की अपनी एनर्जी है, दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल एनर्जी, वो है प्यार, खुशी, शांति, आनंद। तो हमारे जीवन में जो स्पिरिचुअल एनर्जी इंट्रोड्यूस हो गई, तो इस स्पिरिचुअल एनर्जी को अप्लाई करना, एप्लीकेशन क्या है, वो है हमारे डे टू डे लाइफ में, हम कोई भी कर्म करते हैं उसके बीच में वो ऐड कर देते हैं, माना इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारे कर्मों की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मेरे को इस तरह का लगने लगा कि एप्लीकेशन क्या है स्पिरिचुअल एनर्जी की। तो मैं पहले अपने आप को सिविल इंजीनियर कहता था, तभी मैंने वो कहना शुरू कर दिया

0: स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग, पहले सिविल थे अभी स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग हो गया। माना स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है हमारे डे टू डे लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी कैसे हमारे कर्मों में काम आती है, स्पिरिचुअलिटी से हम कैसे ग्रो हो सकते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ को इस तरह चलाना शुरू किया तो करते करते इतना मेरे को आगे आनंद आता था, अंडरस्टैंडिंग होती थी, तो तब मेरे को लगने लगा कि जैसे ये कहते हैं ना मनुष्य से देवता बनना है, तो हम कई बार जब देवता शब्द बोलते हैं हम सोचते पता नहीं आकाश में होते हैं, पता नहीं उनके भुजाएं कितनी होती हैं, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, रावण का 10 सिर दिखाते हैं, तो ये सारे ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर मेरे को आइडिया आने लगा कि वास्तव में ये सारी सिंबॉलिक चीजें हैं, लेकिन अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, देखो कई बार कोई मनुष्य अच्छा होता है ना उसको कह देते हैं ये बिल्कुल देवता जैसा है, कोई वो थोड़ा खराब करता तुम बिल्कुल राक्षस की तरह हो ऐसा बोल देते हैं ना, कई बार हम ये भी कहते हैं ये आप कैसे कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, ऐसा कितनी बोलते हैं लोगों को, ये सिंबॉलिक होती हैं। तो तब मेरे को लगा कि देवता माना जिनमें दिव्यता होती है, देवता माना जिसमें दिव्य गुण होते हैं। तो एग्जाम्पल है कि जैसे हम ट्रूथ को कहते हैं सच्चाई है, वो कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, लेकिन सच्चाई कड़वी क्यों लगती है, क्योंकि हम उसको पत्थर की तरह मारते हैं, हम उसमें क्रोध डाल देते हैं, उसमें एरोगेंस आ जाता है, हम कोई सोच समझ के बात नहीं करेंगे, 10 लोगों के बीच में उनको बुरा साबित करेंगे, तो उससे क्या होता है वो दुख देने वाली बन जाती सच्चाई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसको प्यार से समझाते हैं, ह्यूमिलिटी से बताते हैं, हमारे को फेथ है कि हमने अपना काम कर दिया, तो जब उनका समय आएगा वो उसको समझेंगे तभी उसको फॉलो कर लेंगे, तो उस सच्चाई में प्यार, ह्यूमिलिटी, पेशेंस, टॉलरेंस, इसमें फेथ आ गया, तो उससे कहते हैं वो सच्चाई प्योर बन जाती है। पहले सच्चाई प्योर होती है तो वो इम्प्योर क्वालिटी है, लेकिन बाद में वही प्योर बन जाती है जिसको हम डिवाइन कह देते हैं, तो हमारे में दिव्य गुण आ गए तो हम देवता जैसे बन गए। तो मैंने इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को स्टार्ट किया, और फिर मैं तकरीबन 3.5 वर्ष इंडिया में था, उसके बाद मैं अमेरिका में आया, मैंने ज्ञान लिया था 74 में और 77 में मैं अमेरिका आया, और उसके बाद 79 में हमारे मोहिनी दीदी, मोहिनी बहन, वो न्यूयॉर्क में आए थे, मैं उनके साथ मिल गया, तो वहां से फिर मेरा जर्नी कंटिन्यू रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे ब्रह्म कुमारी से आपका जुड़ना हुआ, बड़ा अच्छे आपने बताई कि कैसे आपका जो है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, पहले तो आप बिल्कुल अलग थे और बाद में जब सामने से उनको देखा और उनके जीवन को, लाइफ को आपने एकदम नजदीक से देखा, आपके घर में ही वो लोग आए, वो रहने लगे, तो निश्चित तौर पर आपको उनके तौर तरीके, उनके बोलने का, वो सारी चीजें आपको नॉर्मली लगी और अच्छा लगा, और अच्छे खानदान से है और अच्छी चीजें कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, ये देखकर आपको लगा कि समथिंग इज डिफरेंट, तो फिर आपने इसकी और कदम बढ़ाया और आगे बढ़ के आपने इन चीजों को सीखा। चलिए राम प्रकाश जी, बहुत ही अच्छी बात है, आपने सिविल के बजाय अभी स्पिरिचुअल बोलना शुरू कर दिया है, तो अब मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती है, क्राइसिस, तो क्राइसिस को कैसे अपॉर्चुनिटी में बदलना है, ये क्या तरीका है, क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बताइए।
0: देखो मेरे को ना, मैं थोड़ा सा जैसे दुनिया के, जैसे दुनिया में हम क्राइसिस की बात करते हैं ना, मैंने क्या अपने जीवन में नोट किया, क्राइसिस कोई नहीं चाहता अपने जीवन में, पर आते हैं क्योंकि वो एक्सटर्नल होते हैं, तो इसके लिए हम उनको रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनसे डील कैसे करना है ना वो समझ आ जाती है। जैसे फ्लू होता है, बीमारी आ जाती है, लेकिन बीमारी सबको नहीं लगती है, थोड़ों को लगती है, कारण कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उनको नहीं फील होता है, उनको बीमारी नहीं लगती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है वैसे उनको लग जाता है। तो मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आए, आई बिलोंग टू द वेरी मॉडेस्ट फैमिली, एक समय हमारा बहुत बड़ा बिजनेस होता था, मैं 9th ग्रेड में था, हमारे सारे बिजनेस बैंकक्रप्ट हो गए, हमारे घर में खाना भी नहीं होता था, तो हमने अपने जीवन बड़ा कष्ट से व्यतीत किया, लेकिन मैंने उन जीवन में से गुजरते हुए जब अपने आप को देखा, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ ना, तो मेरे को लगा वो जो जितने भी क्राइसिस मेरी लाइफ में आए थे ना, उसने मेरे को बंदा बना, लगा दिया, माना मेरे को ना बहुत उसको ना बाद में जाकर सीखने का मेरे को मिला कि देखो वो मुसीबतें आई थी तो उससे क्या, तो मेरे को एक तो ये लगा गरीबी आई, अच्छे अच्छे घर में होते एकदम गरीबी आ गई, फिर गरीबों की लाइफ कैसी होती है। तो मैंने एक चीज नोट किया कि आदमी गरीब कोई कितना भी हो लेकिन उसको सबसे ज्यादा प्रिय होती है उसकी डिग्निटी। वो डिग्निटी के लिए मनुष्य अपनी जान भी दे देता है। होता था किसी को पता ना चले कि हम किस बुरे समय में से गुजर रहे हैं, हमको मुस्कुराना हमने सीख लिया कि कैसे डिफिकल्टी के समय में भी मुस्कुराते हैं। और फिर हमारे अगर मैं हमारी बैंक्रप्सी नहीं हुई होती, हो सकता है मैं बिगड़ जाता, तो कोई कहते थे बस 10th 11th grade तक पढ़ेगा क्योंकि बिगड़ गया है तो इसके बाद तो इसका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन लगा अभी तो मेरे को डिपेंडेंट नहीं रहने का है तो मेहनत करने लगा, पढ़ाई ज्यादा करने लगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई। तो मेरे को उस समय एहसास हुआ कई बार कम होना ज्यादा से भी बेटर है, क्योंकि ज्यादा होता है तो हमारी को वैल्यू खत्म हो जाती है। और अपने लाइफ में फिर मैंने आगे क्या देखा, वास्तव में ना अभी मैं कह सकता हूँ अगर जिंदगी में ग्रो करना है, क्यों आप अपने आप से पूछ कर देखो आप जीव ग्रो कब हुए, जब आपके ऊपर कोई संकट आया, जब आपके ऊपर क्राइसिस आया था ना उसी समय वो टाइम आप ग्रो हुए थे। बाकी समय लाइफ ना बड़ी इजी स्मूथ बोरिंग लाइफ होती है। कभी हम कभी मूवी में जाते हैं ना, देखो एंटरटेनमेंट भी है, हम कहते हैं ना हमारी लाइफ की वैल्यू, हम मूवी में भी जाते थे पहले 5-7 मिनट बड़ा नॉर्मल सी लाइफ चल रही है सभी की, फिर कहते हैं अच्छा मूवी कब स्टार्ट होगी, मूवी कब स्टार्ट होगी, फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मौत हो गई, फिर सभी ना खड़े होकर बैठ जाते हाँ अभी अभी शुरू हुई है मूवी। तो इसका मतलब जिंदगी में लाइफ जो है ना हमारी वो संकट क्राइसिस के आधार पर बनी हुई है, क्योंकि उसी समय हम ग्रो होते हैं, क्योंकि हम डिच में चले जाते हैं, है ना, चले खाई में चले जाते हैं, समझ नहीं आता कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरे से बात नहीं करता है, है ना, सब मेरे दोस्त चले गए। उस समय आप अपने आप को खाई में होते हो लेकिन आपको खड़े होते हो, वहां अपने आप को सपोर्ट करना आ जाता है, उससे आप में ह्यूमिलिटी आती है, आपके चेहरे पर ना नेचुरल जो चीजें, क्योंकि जब हम ना किसी सक्सेस के मोड में होते हैं तो एरोगेंस भी आ जाता है, वो हमारे चेहरे पर भी दिखाई देता है, कई बार हमारे कनेक्शन भी कट जाते हैं उससे, लेकिन जब हम क्राइसिस में होते हैं हमारे ह्यूमिलिटी आ जाती है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, और फिर हमारा जो ईगो होता है ना प्राइड वो भी खत्म करके हम ना मदद लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, तो उससे क्या हो गया हमारे चेहरे पर भी ना वो मासूमियता आ जाती है क्योंकि कमजोर है ना। तो उससे मैंने देखा धीरे धीरे करके आप अपने आप को संभाल कर परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़कर या अपना आत्मविश्वास इकट्ठा करके और बॉटम लाइन से शुरू करना शुरू करते हो ना, फिर आप खाई से निकल भी जाते हो ना, लेकिन जो मोमेंटम क्रिएट हुआ था नीचे से ऊपर आने का वो आपको और भी ऊंचा लेकर जाता है। तो आप देखेंगे लाइफ में ग्रोथ कब होती है। अभी देखो हम कोई एग्जाम के लिए तैयार होता है क्या, बहुत बड़ा क्राइसिस है ना, लेकिन वो थोड़े दिन हम रात दिन एक कर देते हैं, खाना भी नहीं सोचते, नींद का नहीं सोचते हैं, तो और जब हम पास हो जाते हैं तो देखो हमारी प्रमोशन हो गई ना। तो मेरे को बार बार इस चीज का लाइफ में, लेकिन मैंने इसको पॉजिटिव में कैसे लिया क्राइसिस को, क्राइसिस क्या चीज है, क्राइसिस कब आता है, जब कोई परिस्थिति आती है लेकिन आपके रिसोर्सेस, आपकी शक्ति या आपकी नॉलेज या कैपेबिलिटीज वो उसको मैच नहीं कर पाती, उससे ज्यादा होती है, माना मेरी सिचुएशन यहाँ पर है तो ये क्राइसिस हो गया। लेकिन अभी अनुभव हो गया क्राइसिस के समय हम ग्रो होते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर मेरे जीवन में क्राइसिस ना आए लाइफ बोरिंग हो जाती। मैंने बहुत बार देखा है जिन लाइफ लोगों की लाइफ बड़ी इजी होती ना, कहते हैं आपका क्या ख्याल है, ओ सेम ओल्ड स्टोरी सेम थिंग गोइंग ऑन, इतना बोरिंग सा चेहरा होता है कि नहीं है, जब सब चीज ठीक होती है। लेकिन इसका मतलब क्या, अगर मेरी लाइफ को ग्रो करना है, अगर मेरे जीवन में क्राइसिस नहीं भी है ना, मैं क्रिएट कर लूं क्राइसिस। आप हंसी करेंगे, ये क्या बात करते हो, क्राइसिस को क्रिएट करना, क्रिएट क्यों करेंगे, क्राइसिस का मतलब क्या है, जिसको हम पॉजिटिव क्राइसिस बोल देते हैं, वो है कि जितनी आपकी अबिलिटी है, जितनी आपके रिसोर्सेज है, उससे ऊंचा सोचो। जो आपकी लिमिट है ना, लिमिट से ऊंचा सोचेंगे ना तो वो देखा जाएगा क्राइसिस है, लेकिन वास्तव में वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? फिर आपके जो अंदर की जो शक्तियां हैं, इनर रिसोर्सेज, वो उभर कर आते। और जब वो उभर कर आते हैं ना, कितनी चीजें आपको अपना आइडिया नहीं होता कि मेरे में ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, लेकिन उस समय पता चलता रहे मेरे को आइडिया नहीं है कि कैसे सब कुछ मेरे से हो गया, मैंने तो कभी नहीं सोचा था मेरे में ये क्वालिटी है या मेरे में ये शक्ति है, पता नहीं। तब कहते हैं ये भगवान ने दिया होगा, तो हमारा भगवान में भी विश्वास बैठ जाता है, अपने पर भी विश्वास बैठ जाता है, तो हमारी ऐसे ग्रोथ होती है। तो लाइफ में अगर जीना है ना, मेरे को तो लगता है कि लाइफ में जो है जीवन जो है ना, क्योंकि बाकी है मेंटेनेंस, मेंटेन मकान होता है ना, मेंटेन करते रहते हैं। आई हैव टू मेंटेन माय जॉब, आई हैव टू मेंटेन माय रिलेशनशिप, आई हैव टू मेंटेन माय यू नो फैमिली, तो वो मेंटेनेंस है। लेकिन जो हम आगे करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल इंप्रूवमेंट, माना अपनी लाइफ को ऊंचा करना। अगर जिंदगी जीना है ना, जिंदगी एग्जिस्ट करती है सिर्फ क्राइसिस के पीरियड में। अगर जीवन में मजा लेना है ना, क्राइसिस माना पॉजिटिव क्राइसिस में जीना सीख। तो ऐसा मेरे को ना, ये क्राइसिस को मैंने अपॉर्चुनिटी के रूप में इस तरह लिया है। मैं ना एक छोटी सी एक सुनाता हूँ। हम छोटे होते थे, सातवीं आठवीं क्लास में, हमने कार्टून देखा था। उसमें क्या देखा कि बच्चों की रेस लगी है, सब लोग भाग रहे हैं, एक लड़का बिल्कुल पीछे था एंड में। तो लगा पता नहीं ये रेस भी पूरी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर बाद में फिनिश लाइन को दिखाया, उसमें देखा वो लड़का इतना तेज भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा है, नंबर वन आ गया। तो सोचा ये क्या हो गया, ये तो जादू हो गया, ये क्या कारण हुआ। तो तब बाद में मिडल का पोर्शन दिखाया, क्योंकि वो लास्ट में था, एक कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। तो कुत्ता पीछे पड़ा, वो डर के मारे, उसमें कहां से शक्ति आई, वो इतना तेज भागा नंबर वन आ गया। अभी देखो क्राइसिस आया, फियर आया, लेकिन फियर से क्या हो गया, उसकी सारी जो छुपी हुई शक्तियां थी ना, वो काम में आ गई। तो आप अपने जीवन में ना ट्राई करके देख, चैलेंज लो अपने जीवन में कि मेरे को अपनी लिमिट से ऊपर रहकर सोचना है, जिसको हम कहते हैं ना मेरी ड्रीम। तो ड्रीम भी एक दो ना हो, पांच सात ड्रीम रख, एक खत्म हो गया दूसरे पर जंप कर जाओ, उसको खत्म हो गया तीसरे पर करो, तो लिव इन द ड्रीम लैंड। जब जब तीन चार खत्म होंगे, पहला ड्रीम शायद खुल जाएगा। तो आप ना अपने जीवन में, मेरे को खासकर यंग लोगों से तो मेरे को बहुत होता है कि डरो नहीं आप। जो भी आपकी इमेजिनेशन है ना, कोई इमेजिनेशन रियलिटी के बिना नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं रियलिटी जरूर छिपी हुई है। तो कभी आपका जो थॉट आता है, जो आपकी इमेजिनेशन है, जो आपका ड्रीम है ना, बस करने लग जाओ, तो उस तरह आप ना क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। और आपको मालूम है ना अभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, देखो मतलब कुछ है इसके बारे में कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।
1: जी जी जी, राम प्रकाश जी, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया क्राइसिस कैसे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनते हैं, ये आपने बताया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्राइसिस आने के बाद ही व्यक्ति के जीवन में जो है एक पोटेंशियली आ जाता है कि उसे कुछ करना है, और वो करने के लिए जब जाता है तो वो पूरे जद्दोजहद मेहनत लगा के बीसों नफजोर लगा और वो अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। क्राइसिस नहीं आएगा तो शायद अपॉर्चुनिटीज भी कम मिलेंगे, जो आपने बताया बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके, थैंक यू सो मच। और आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। श्रीशा, मैं चाहूंगा कि एक और गीत आप सुनाइए राम प्रकाश जी के लिए।
2: जी।

0: प्यार की। शुक्रिया, नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया श्रीशाम, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। आइए आगे बढ़ते हैं। रामप्रकाश जी, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि कैसे हम लोग क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं, और हर व्यक्ति के पास ये मौका आता है। ईश्वर जो है सभी को कुछ करने के लिए कुछ सिचुएशन ला के खड़ा कर देता है, और वो सिचुएशन को आप अगर पूरी तरह से न्याय करते हैं, उसे अच्छी तरह से संभाल लेते हैं और अपने आप को साबित करने का मौका मिल जाता है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। आपने बताया बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी ना समझकर उसे क्राइसिस के रूप में ले तो फिर और क्राइसिस बढ़ जाता है, टेंशन आता है, हम लोग उसको चेंज नहीं कर पाते, हम लोग वहीं पर घूमते रहते हैं उस पत्थर को लेकर। मतलब इतना बड़ा पत्थर है, आप आगे नहीं जा सकते, ऐसे सोचते हैं। लेकिन वो पत्थर एक आपके लिए ब्रिज का काम भी कर सकता है, आपको मूव फॉरवर्ड भी कर सकता है, आपको हाई जंप देने का काम भी कर सकता है, आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे एडवेंचर आपके साथ जुड़ा हुआ है इफ यू थिंक अबाउट दैट। तो वो चीजें शायद कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं, तो वो चीजें आपने बड़ा अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया है, थैंक यू सो मच। तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि फियर, फियर की बात कर तो फियर हमारे जीवन में जो आता है उसको हम लोग कैसे कम करें, फियर को क्लियर करके हम लोग उसको स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: मेरे को लगता है लाइफ में देखो, मैं जो फिर लड़के की भी स्टोरी सुनाई ना, वो फियर था ना, उसका फियर उसका स्ट्रेंथ में बदल गया। तो मैंने बहुत बार अपने जीवन में ये देखा है कि आप कोई कहे ना राम प्रकाश आपको कभी फियर नहीं होता है, मैं कहता हूँ मेरे को हमेशा फियर रहता है कि पता नहीं लोग मेरे को पसंद करते कि नहीं करते, पता नहीं मैं लोगों की आशाओं को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं मैं इसमें कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। पर हमने नोट क्या किया है, आप कभी जीवन में देखना, जहां फियर होता है ना वहीं करेज, दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं। अगर जीवन में फियर नहीं होगा ना, आपको करेज की भी जरूरत नहीं। अगर जीवन में अनसर्टेनिटी नहीं हो, आपको फेथ की भी जरूरत नहीं है। आज देखो लोग एडवेंचर करने जाते हैं, जैसे कहा ना एडवेंचर करते हैं, या कहीं ना कहीं पहाड़ी पर चढ़ते हैं, इतनी इतनी खतरनाक चीजें करते हैं, डर तो होता है कि नहीं, उनकी जान भी जा सकती है, हर्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको जो वो एक्साइटमेंट होती ना कुछ नया जानने की, कुछ अकम्प्लिश करने की, वो जो अकम्प्लिश करने की आकांक्षा होती है उनका जो, या उनका जो एंथुसियाज्म होता है वो फियर से भी बढ़कर होता। तो जो आदमी अपने फियर में करेज लाके करना शुरू कर देता है, मैंने नोट किया कि कितनी बार मैंने नोट किया है कि कितनी बार हमारे जीवन में ना सिचुएशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आती हैं और अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं, लेकिन मनुष्य डरते क्या है कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, मतलब गलत चीजें क्या हो सकती है ना, वो ही सोचते हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि इसके बजाय कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो भी तो हो सकता है, अरे ये भी हो सकता है, अरे इसकी भी मदद मिल सकती है, अरे मेरे को ये भी क्वालिटी है, तो माना आप पॉजिटिव बनकर, होपफुल बनकर, तो जब आप में करेज होता है, आप में होप आती है और आपका चेहरा मुस्कुराता है। कितनी बार हमने देखा है कन्वेंशनल विजडम होती ना, आजकल कन्वेंशनल विजडम इज द विजडम ऑफ फियर। कभी आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको ना कोई बहुत बड़ा काम करने का दिल होता है, फिर आप मीटिंग बुला लेते हो तो हिम्मत दिलाते हो, चलो भी हल्ला करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, तो 15-20 मिनट कहते नहीं नहीं नहीं इसमें ये कैसे वो कैसे, अरे कर लेंगे कर लेंगे, तो सब में एक्साइटमेंट आ जाता है, कहते हाँ चलो चलो चलो, तो उनमें फिर एक सियाना बंदा बैठा होता आता है, वो सियाना बंदा क्या कहता है, भाई मैं ना आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, सबको उस पर विश्वास भी होता क्योंकि थोड़ा बुजुर्ग होता है, थोड़ा सियाना होता है, समझदार होता है, वो कहते हैं मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहता, पर ये प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो वो 20 लोग पता क्या कहेंगे, हाँ आप ठीक कहते हो, हमको सचमुच में ध्यान से चलना चाहिए, ना हमको ये नहीं करना चाहिए, वो 20 जनों का एंथुसियाज्म और एकदम नीचे आ जाए। होता है क्या होता है हमारे लाइफ में, 20 जनों का अनुभव जो एंथुसियाज्म, एक बंदे की कन्वेंशनल विजडम कि ये गलत हो सकता है, वो सब ठंडा हो जाता है। तो मेरे को होता है कि लाइफ में ना कन्वेंशनल विजडम को छोड़ कर ना, क्योंकि हमारे में कन्वेंशनल विजडम है, हमारी जो फेलियर्स होती है ना हम उनको अपने सामने रख लेते हैं, तब भी मेरे को लाइफ में होता है अगर जिंदगी जीना है ना इम्पॉसिबल में जियो। कभी आप जब इम्पॉसिबल टास्क अपने हाथ में लेंगे ना, आपका चेहरा ना मुस्कुराएगा, चाहे हंसी में सही, अरे मे भी वो हेल्प कर देगा, अरे वहां से हेल्प मिल जाएगा, अरे हमने पहले भी तो किया था, तो माना आप मुस्कुराएंगे। जब जब भी आप कोई बड़ा कोई चीज करेंगे, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी चीज करेंगे ना उसमें फियर आएगा, ये गलत ना हो जाए, कोई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अभी जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया ना 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस, कितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया होगा, कहते हैं आप पागल हो गए हो। माता है 7 बिलियन कितना होता है, 700 करोड़, 700 करोड़ अच्छे कर्म आप कैसे इकट्ठे करोगे। तो हमने कहा ना, लगा तो सही लेकिन हमने शुरू कर दिया, एक प्रोग्राम किया, दो किए, तीन किए, करते कराते कराते अभी हमने 2500 प्रोग्राम कर दिए मैंने, और जहां जहां जाके प्रोग्राम किए उन्होंने आगे प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, कुल मिलाकर 25,000 प्रोग्राम इसके बारे में हो चुके हैं, 25,000 प्रोग्राम, और अभी भी मैं तो फिर निकलने वाला हूं। पर कहने का मतलब है, डर कर हम कब तक बैठे रहेंगे। तो अगर जिंदगी जीना है ना, वो करो जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था, वो करो जो आपके कभी स्वप्न में भी नहीं आया था। होता क्या है, हमारी आकांक्षाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, है ना, कहते वी वांट टू फ्लाई, हम ये उड़ना चाहते हैं, लेकिन जब ना डिसीजन लेने का मौका आता है ना, तो हम ना कौन सा ग्राउंड रूट ले लेते हैं, माना ठीक है। तो 95% देखो मैं कही कहता हूँ, इफ यू आर रेडी टू फेल, अगर आपको फेल होने से डर नहीं है ना, 95% चांसेस हैं आप फेल नहीं होंगे, लेकिन 5% आपको तैयार रहना पड़ेगा। पर कई बार क्या, तो क्योंकि ह्यूमिलिटी हो सकती है ना, मतलब ह्यूमिलिटी कौन सी, आपको लोगों के आगे शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है, आपको लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ ठीक नहीं होगा, उसके लिए आप तैयार हो सकते हो। अगर हो सकते हो ना, 95% चांसेस हैं आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत बार अनुभव करके देखा, और आप, मैं समझता हूँ सबका ये अनुभव होगा कि जब जब आपने हिम्मत रखी ना, आपका काम हो गया। हाँ, हो सकता है 100% ना हो, हो सकता है 60-70% हो, लेकिन 60-70% भी जीरो से तो अच्छा है ना, कुछ तो आपकी प्राप्ति हुई ना, तो उसमें होता है। तो कहते हैं हम संतुष्ट हैं अपनी प्रेजेंट अकम्पलिशमेंट से, लेकिन हमारा एम हमेशा ऊंचा रहता है। तो फियर की बात है, देखो मैं आपको ना अपनी वो सुनाता हूँ, 9/11 का सुनाऊ मैं आपको रमेश भाई के वर्ल्ड
1: शॉर्ट।
2: हाँ, देखो मैं 64th फ्लोर पर था और प्लेन आकर टकराए ना, मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 110 मंजिला के थे, दो टावर थे, तो प्लेन आके टकराया, हम 64वीं मंजिल पर थे, हमको लगा अर्थक्वेक आया है, बिल्डिंग इधर गई इधर गई इधर गई, फिर खड़ी हो गई, लेकिन फिर हम नीचे उतरना शुरू किया, क्योंकि जब खड़ी हो गई तो लगा भी अर्थक्वेक तो नहीं, छोटा मोटा कोई प्लेन टकराया होगा, हमने नीचे आना शुरू, इतने में दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया, तो तब हमको पता लगा कि छोटा मोटा प्लेन नहीं टकराया, ये तो कोई आतंकवादियों का काम है। उस समय लोगों को दहशत होने लगी। फिर क्या हुआ, दूसरा टावर बाद में टकराया था लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया, तो तब लोगों के एकदम मतलब कि दूसरा गिर गया ऑलरेडी, तो इतना बुरी तरह से हमारा टावर हिल रहा था, तब लोग चीखने चिल्लाने लगे। और फिर क्या हुआ, हमको उसके कारण से जो मलबा था ना दूसरे टावर का, उसके कारण से हमारी जो सीढ़ी थे जिसमें आ रहे थे वो ब्लॉक हो गई, तो फिर हमको दूसरी सीढ़ी में जाना पड़ा, और थोड़े समय के बाद उस सीढ़ी में भी बहुत तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन वगैरह टूट गई। और तो फिर क्या हुआ, हम अपनी हैंड रेल को पकड़ के नीचे आ रहे हैं, तो फिर पता चला हमारी सीढ़ी वो नीचे से टूट गई दूसरे वाले भी, तो हमको फिर तीसरी सीढ़ी में आने के लिए एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा, पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे पाँव के नीचे है, कपड़े भीगे हुए हैं, बिल्कुल अंधेरे में हम वॉक करते हुए बाहर निकले, और हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, तो अचानक फील हुआ जमीन हिल रही है, पीछे मुड़ के देखा हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। हम उस टावर से सिर्फ इतना दूर थे, अगर वो टावर हमारी तरफ गिरा होता हम उसके नीचे आ जाते, लेकिन हम भाग के दूर चले गए और टावर सीधा ऐसे नीचे आया था। तो पर क्या है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर टेलीविजन वगैरह से वो आ रहे थे इंटरव्यू, एक वो चीज पूछते थे, फियर की बात चल रही है ना, उन्होंने कहा जी जी। कि हम 95 मिनट टावर के बीच में थे और 5 मिनट पहले निकले उसके गिरने से, तो इसका मतलब आई वॉज 5 मिनट्स अवे फ्रॉम डेथ। एक घंटा 40 मिनट्स भाई, घंटा 45 मिनट्स हम टावर से के अंदर थे। तो वो कहते थे अपना अनुभव सुनाओ जब आपको डर लगा हो कि आप बचेंगे नहीं। तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वो 95 मिनट्स में एक सेकंड भी मेरे को डर नहीं लगा था। तो मैं सोचता हूँ उसका क्या कारण होगा, ये तो नहीं है कि आई एम माचो काइंड ऑफ पर्सन, बड़ा स्ट्रांग हूँ, सुपरमैन हूँ, मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं भी मैं ऑर्डिनरी आदमी हूँ, कभी तो हम तो किसी से नाराज तो क्या होना, हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हमको पता हमारी हार होने वाली है। तो लेकिन कोई ने डर आया तो एक ही चीज मेरे को ख्याल में आई, क्योंकि मैं लोगों की मदद करने लग गया, तो लोगों की मदद करते हैं ना तो अपना डर मेरे को निकल गया। आपने अपने जीवन में देखा होगा, कभी भी आपको दुख तकलीफ हो रही होती है, डर होता है ना, आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ते हो जिसको आपसे भी ज्यादा दुख तकलीफ है, तो आपका एकदम ध्यान उनकी तरफ जाता है ना, आप उनको मदद करने लग जाते हो, तो आपने नोट किया होगा आपको अपना भी भय खत्म हो जाता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो क्या था भी, मदद आप क्या कर सकते हो, सब लोग नीचे आ रहे हैं, आप भी नीचे आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फर्क क्या था, बाकी लोग जल्दी जल्दी नीचे आ रहे हैं, लेकिन मेरे को था कि मैं लोगों की मदद करूं, मैं ज्ञान में चलता हूं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं पिछले 27 ईयर से, तो मैं वैसे थोड़े बनूंगा। तो मैं उनको हिम्मत बढ़ा रहा था। तो क्या होता था कि जब दूसरा टावर का जब शेकअप होता है ना, तो सबके ना बड़े वो चीखें निकल जाती हैं ना डर के मारे, तो जैसे कोई थोड़ी अभी आवाज होती ना, तो वहां लेडीज पीछे काम करती थी, उनकी चीख निकल जाती। तो मैं फिर चुपके से क्या करता, उनको कहता आप आगे आ जाओ, उनको मैं अपने पास ले आता, सामने ले आता था, और मैं उनको कहता हम सब इकट्ठे

0: हैं, साथ चलेंगे, डोंट वरी। अभी देखो कोई बड़ी बात नहीं है ना, दो कदम आगे था, अभी दो कदम मैं पीछे हो गया, लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने इतना मेरे को वो प्यार कर रहे थे, यहाँ तक कि भी कहा कि राम यू आर अवर एंजल, उन्होंने बोला ऐसा। तो मेरे को हंसी भी आई, मैं कह यहाँ एंजल बनने के लिए कितना कितना लोग वो पुरुषार्थ करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, यहाँ मैं दो कदम पीछे गया और मेरे को एंजल बना दिया, ये तो बहुत अच्छा डील है, दो कदम पीछे जाओ और
1: बिल्कुल
0: एंजल बन जाओ। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि कई बार जब हम एंजल्स की बात करते हैं ना, बड़े बड़े एंजल्स होते हैं ना, नामी ग्रामी, उनकी हम बात करते हैं, लेकिन हम हैं साधारण लोग, तो क्या ये पॉसिबल है वो बड़े बड़े एंजल हैं, मैं छोटा सा एंजल बन जाता हूँ। आई कैन बिकम ए माइक्रो एंजल, आई कैन बिकम ए पार्टिकल एंजल। पर एंजल करते क्या है, जहां मुसीबत होती है आकर मदद करते हैं, कोई उनसे रिटर्न में कुछ नहीं लेते हैं, और इससे पहले लोगों को पता चला वो फ्लाई कर जाते हैं, तो माना अपने हाथ में भी कुछ नहीं रखते हैं। तो क्या वो तो पॉसिबल हो सकता है कि हम कभी भी किसी को मुसीबत हो वहां जाके उनकी मदद करें, अपना नाम शाम के लिए नहीं करें, और इससे पहले कि वो आपको कोई गिफ्ट दें, क्योंकि अगर वो गिफ्ट देंगे, आप गिफ्ट ले लेंगे, फिर तो आप भारी हो जाएंगे, फिर उड़ेंगे कैसे। तो एंजल हल्के होते हैं, एंजल उड़ते रहते हैं, है ना, वो किसी से कुछ रिटर्न में नहीं लेते हैं, वो तो पॉसिबल हो सकता है। तब मेरे को लगा कि फियर यही हमारा करेज है, और फियर में ही हम देखो क्या से क्या बन सकते हैं। सिर्फ क्या है, जब कभी मुसीबत है ना, किसी ढूंढ ऐसे को ढूंढ लो जिसको आपसे भी ज्यादा तकलीफ है, उनकी आप मदद करेंगे ना, आपका फियर खत्म हो जाएगा। देखो ये मेरा
1: बिल्कुल
0: पर्सनल
1: बिल्कुल
0: एक्सपीरियंस है,
1: जी। चलिए राम जी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है। और दयाल जी जो हैं याद कर रहे हैं हमारे रेडियो स्टूडियो में पधारे मेरे सभी प्रिय मेहमानों को, मेरा प्यार भरा दिल से तहे दिल से सभी को नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू दयाल जी। और सुभाष जी ने लिखा है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक एंड प्रोग्राम, बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर माई लाइफ सर, राम प्रकाश जी एंड रमेश जी, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, और बड़े प्यार से आपने मैसेज किया। और दैया जी भी लिखते हैं, ओम शांति आप सभी को, और हम सब शिव बाबा के संतान हैं। बहुत सुंदर विचार आपने एक्सप्लेन किया, एक्सपीरियंस शेयर किया करके लिखा है दैया का। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हम राम प्रकाश जी के कुछ चुनिंदा अनुभव और क्राइसिस और डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसके बदले में हम लोग करेज और अपॉर्चुनिटीज को कैसे अपने लाइफ में देख सकते हैं, ये आपने सुना उनके अनुभवों से। तो निश्चित तौर पे हमारे पास सिचुएशन आता है तो हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं, ये देखने का नजरिया आपका बदलना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन आती है आपको अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए आपके लाइफ। दूसरा फियर भी है तो उसको अगर हम समझ लेते हैं और उससे ऊपर आ जाते हैं, करेज हमारे अंदर क्रिएट हो जाता है और हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ के जीने लगते। तो जिंदा दिल यही है कि बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जो है, आखिरी में उन्होंने अपने 9/11 का जो एक्सपीरियंस शेयर किया, उसी बिल्डिंग में थे जिस बिल्डिंग से प्लेन टकरा गया था, और वहां से निकलते निकलते उन्होंने देखा कि लाइफ में बहुत बड़ी चीज उन्होंने एक्सपीरियंस किया। और जब उनको दूसरों को ऐसे मुश्किल के समय हेल्प करते हैं तो निश्चित तौर पे हमें एंजल बनने का टाइटल मिल जाता है, ये आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा हमें। तो निश्चित तौर पे हम मुश्किल घड़ी में किसी को हेल्प करते हैं तो वो एंजल का ही काम होता है, क्योंकि खुद भी उसी सिचुएशन में है और तब मदद कर रहे हैं, तो और ज्यादा उसका इम्प्रेशन, उसका अनुभव होता है। तो राम प्रकाश जी थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज जरूर आप हमारे सभी दर्शक मित्रों को दें।
0: मेरे को जैसे आज फियर का बात किया ना, फियर और करेज एक जगह मिलते हैं, क्राइसिस अपॉर्चुनिटी एक जगह मिलती है, अनसर्टेनिटी फेथ एक जगह मिलता है। तो वास्तव में जिंदगी में हमको लड़ना नहीं है, जिंदगी अपने आप को चेंज करने की बात होती है। तो क्या है, एक चीज जो मैंने अपने जीवन में देखी, अगर हम अच्छे हैं लोग मेरा एडवांटेज लेंगे, होता है ना सबको के मैं अच्छा हूं लेकिन लोग मेरा एडवांटेज ले रहे हैं, मैं अच्छा हूं लोग मेरे को यूज कर रहे हैं। तो मेरे को होता है कि मैसेज में कि लोग मेरा एडवांटेज किस लिए लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एडवांटेज है, लेकिन जब मैं दूसरों को देता हूँ मेरे को प्रकृति परमात्मा सब तरफ से मिलना शुरू हो जाता है। और दूसरा है, जब हम कहते हैं ना हम अच्छे हैं, लोग हमको यूज कर रहे हैं, सबको ऐसा फील होता है ना कि हमको लोग यूज किया जा रहा है। तो मैंने अपने जीवन में क्या देखा कि अगर लोग मेरे को यूज कर रहे हैं इसका मतलब मैं यूजफुल हूँ, तभी तो वो मेरे को यूज कर रहे हैं। अगर मैं मेरे को यूज नहीं करेंगे तो मैं यूजलेस हो जाऊंगा। तो क्या मेरे को यूजलेस बनना मंजूर है कि मैं इतना यूजफुल बनूं सारी दुनिया मेरे को यूज करे? तो जितना मेरे को यूज करेंगे उतना मैं वैल्यूएबल बनता जाऊंगा। देखो यूजफुल बंदे को हर कोई बुलाता है ना, हमारे पास आओ आओ आओ होता है ना, लेकिन कोई यूजलेस है उसको बुलाना चाहेंगे, वो कहते मैं आऊं, कहते नहीं नहीं भाई बाद में आना, टाइम नहीं है, आ भी गए तो माय गॉश आ गया है, कब जाएगा, होता है कि नहीं होता। मतलब जिंदगी में अगर आपको जिंदगी जीना यूजफुल बन जाओ, जितना आपको लोग यूज करेंगे, देखो हम सूरज को यूज करते हैं ना, हवा को यूज करते हैं, पानी को यूज करते हैं, तो जितना आपको लोग यूज करेंगे उतना आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, आप भरपूर होते जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ती जाए। तो यही मेरा सबको, वो यूज करना क्या है, अपने रिलेशनशिप में अभी ये कोविड भी आया, जितना आपको करना है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर, थोड़ा एक्स्ट्रा, तो ये जो एक्स्ट्रा आप करेंगे ना ये आपकी ना दुनिया के प्रति कंट्रीब्यूशन है। एक्स्ट्रा प्यार, एक्स्ट्रा टॉलरेंस, एक्स्ट्रा एक्सेप्टेंस, माना किसी के दुख तकलीफ को जान लेना, थोड़ा सा आगे बढ़कर हेलो कर देना, है ना, तो कोई खिटपिट हो गई है तो खुद झुक के सॉरी बोल दो, थैंक यू बोल दो, पहले आप बोल दो और उनको क्रेडिट दे दो, तो आपका जीवन हमेशा सुखी बन जाएगा, आपको सारे डर निकल जाएंगे, क्योंकि डर होता है लोग मेरे को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप हैं ही लोगों को देने के लिए, मदद करने के लिए, हर कोई आपको प्यार करेगा, यू विल बी एक्सेप्टेड एवरीवेयर। तो यही मेरा सबको ये संदेश है, डरो नहीं अच्छा बनने से, डरो नहीं यूज होने से, क्योंकि ये भगवान को हम यूज करते हैं, प्रकृति को हम यूज करते हैं, तो हम भी दाता बन जाएंगे ना, तो वो एक बड़े सिंपल तरीके में हम देवता बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं, प्रैक्टिकल में, बड़े बड़े फरिश्ते नहीं जो उड़ने वाले हैं हवा में, लेकिन हमारा उमंग उत्साह का जो है ना, उमंग उत्साह खुशी, उसके पंख लेकर हम उड़ते हैं, हलते रहते हैं, है ना, कहते हैं फरिश्ते उड़ते रहते हैं, क्यों, क्योंकि ना वो किसी से लेते हैं, खाली हाथ होते हैं और बस खुशी खुशी में उड़ते रहते हैं। तो उड़ते रहो, मुस्कुराते रहो, लोग आपको यूज करते रहें, आप लोग आपका एडवांटेज लेते रहें, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली, जीवन आपका बड़ा सुखी बन जाए। ओम शांति।
1: ओम शांति। राम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक मित्रों को आपकी बातचीत सुनकर कहीं ना कहीं इनको मोटिवेशन मिल गया होगा लाइफ में आगे बढ़ने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं, और इसी के साथ राम प्रकाश जी एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको, थैंक यू सो मच। और श्रीशा जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं एक गीत सुनाने के लिए, थैंक यू। तो इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं अगले
0: आपका भी, रमेश भाई, श्रीशा बहन, बहुत बहुत थैंक यू फॉर हैविंग मी,
1: सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

0: मैं डुंडई गांव से हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हस्तिनापुर साम्राज्य में आज बहुत सरगर्मी है। महल के बाहर कई महिलाएं मदिरा पान के विरोध में नारेबाजी कर रही थी। द्रौपदी ने रनिवास में जब आवाज सुनी तो सेविका से पूछा, सेविका पता करो बाहर किस बात को लेकर शोर मचा है। महारानी जी, ये साम्राज्य की महिलाएं हैं जो महाराज युधिष्ठिर के सामने दूध क्रीड़ा एवं मदिरा पान पर रोक लगाने का सत्याग्रह करना चाहती हैं। सेविका का यह कथन सुनते ही द्रौपदी तीव्रता से राजमहल के मुख्य द्वार की ओर बढ़ गई। महारानी द्रौपदी इस तरह कहां चलती, युधिष्ठिर ने द्रौपदी को टोकते हुए कहा। महाराज, बाहर नगर की स्त्रियां दूध क्रीड़ा एवं मदिरा पान के विरोध में सत्याग्रह कर रही हैं। मैं वहीं जा रही हूं, आपका वहां क्या काम महारानी? धर्मराज, मुझसे बेहतर दूध क्रीड़ा व मदिरा पान के दोष को कौन समझ सकता है, द्रौपदी ने कहा। मगर प्रिय, अब उन बातों से क्या लाभ, अब तो महाभारत ही समाप्त हो गया। तुम्हारे खुले केश दुशासन के लहू से नहा लिए, दुर्योधन से तुम्हारे अपमान का बदला भी पूरा हुआ, हमारा राज्य हमें मिल गया, तुम पटरानी बन गई। फिर क्यों द्रौपदी, महाराज युधिष्ठिर बोले। महाराज, कुरुवंश ने दूध क्रीड़ा और मदिरापान का बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है। मैं नहीं चाहती कि उस साम्राज्य में फिर से कोई नारी किसी युधिष्ठिर के मद्यपाई होने पर किसी दुर्योधन की पदनियति का शिकार हो, फिर से इस साम्राज्य में कोई महाभारत हो, द्रौपदी ने व्यथित होकर कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर बोले। महाराज, मद में चूर होकर पुरुष इतना कमजोर हो जाता है कि उसे अपना पौरुष दिखाने के लिए सिर्फ नारी ही दिखाई देती है, द्रौपदी ने जवाब दिया। तो तुम कहना चाहती हो कि दूध क्रीड़ा और मद्यपान से केवल नारी के जीवन पर संकट है, महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। महाराज, ये व्यसन नारी जी

उनको तो अभिशाप में बदल ही देते हैं। साथ ही मुझे चिंता उन लाखों निरीह प्राणियों की भी है जो नारी के सम्मान से खिलवाड़ करने के कारण उत्पन्न महाभारत में अकारण मारे जाते हैं। बीती पर बिंदी लगाओ द्रौपदी। कैसे बिंदी लगाऊं महाराज, आखिर पटरानी हूं साम्राज्य की, प्रजा मेरे लिए संतान तुल्य है, संतान की रक्षा करना धर्म है मेरा। ये परंपराएं जो बड़े घरानों से चलन में आती हैं, वे समाज के लिए पत्थर की लकीर बन संकट का कारण बनती हैं, अतः उन्हें बंद होना ही होगा। कहते हुए द्रौपदी महल के बाहर खड़ी स्त्रियों की अगुवाई में खड़ी हो गई। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लिखी लघु कथा घरानों की परंपरा। महाभारत का एक दृश्य उठाकर के उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे सामने रख दिया और दो ऐसे पात्रों का संवाद उन्होंने रखा जो महाभारत महाकाव्य के प्रमुख पात्र हैं। हम सब जानते हैं महाभारत क्यों हुआ, भले ही हम अपने घरों में ना रखते हो, मगर एक बात तो जरूर हुई है कि घर घर महाभारत पहुंच गई है, और घर घर महाभारत पहुंचने का कारण कहीं न कहीं 10 विकारों में एक विकार व्यसन भी तो है। नारी के सम्मान से खिलवाड़ होने का सबसे बड़ा बहाना यही व्यसन बनते हैं और यही महाभारत है। ये पात्र सांकेतिक हो या फिर वास्तविक, मगर अगर सीख लेने की बात है तो सीख तो ली ही जा सकती है। परंपराएं अच्छी हों, बेहतर हों, कुल का उत्थान करने वाली हों, सम्मान दिलाने वाली हों तो ठीक भी है, मगर पौरुष या मर्दान की दिखाने के लिए व्यसन का सहारा लेना, काम विकार पर गर्व करना, ये मर्दानगी नहीं हुई, क्योंकि गंदी नाली में पैदा होने वाले पुछिल्ले कीड़े भी काम विकार में लिप्त होते हैं। इसीलिए अगर डॉक्टर लता अग्रवाल जी की ये बात समझ में आई हो तो इस सत्याग्रह में जुड़ जाना चाहिए, और सत्याग्रह हमारा सिर्फ यही हो सकता है कि हम इसका परित्याग कर दें अपने लेवल पर। दूसरों को सुधारना ये तो बहुत बात की बात है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है, परंतु औरों को परिवर्तित करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव संस्कार है, और अपने स्वभाव संस्कार को बदलना, उस पर जीत पाना, किसी भी संस्कार का, किसी भी आदत लत का गुलाम न होना, यही स्वराज्य अधिकार पाना है, और यही स्वराज्य का अधिकार पांडवों ने पाया था। धर्म के मार्ग पर चले थे, श्रीमत पर चले थे, श्री श्री भगवान की। श्रीमद भागवत कहते हैं ना, भगवान के द्वारा गाई हुई अथवा दी हुई श्रीमत, इसे हमने गीता का नाम दिया। यदि कभी आप गीता पाठ करते हैं तो खुद को अर्जुन मानकर, जो ज्ञान का अर्जन करना चाहता है, जिसे यह परिचय दिया जाता है कि तुम आत्मा हो, स्वयं को आत्मा मान करके ये समझ करके गीता पढ़िएगा कि परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आपसे ये बात कह रहा है जो गीता में लिखी है, तब गीता की बातें बुद्धि में भी आएंगी और धारणा हो पाएगी। अन्यथा हम ये मान करके पढ़ लेते हैं तो अर्जुन के लिए कहा गया था, परंतु वो अर्जुन मैं भी हो सकता हूं ये कभी नहीं सोचते। कैसी लगी आपको डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लिखी घरानों की परंपरा, जरूर बताइएगा। मैं अमित अगले पड़ाव पर आपसे मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: into the fire.
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।

ओम शांति। आज 5 जून 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। तो बाबा कहते हैं, ये दूर के मुसाफिर कौन है? शो बाबा दूर का मुसाफिर है, वो आते हैं साथ ले चलने के लिए, लेकिन उनका अपना शरीर नहीं है, इसीलिए वो आकर के शरीर में प्रवेश कर ज्ञान देते हैं, अपना परिचय देते हैं, फिर साथ ले चलते हैं। वही आकर के हमें पतित से पावन बनाते हैं। और बाबा कहते हैं, दुनिया में कोई भी मनुष्य आत्माएं इसको गति सदगति नहीं दे सकते हैं। तुम बच्चे ही इस समय बाप के मददगार बने हो, पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नई दुनिया बनाने। बाप का स्थापन किया हुआ ये यज्ञ है। परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान होने के बावजूद भी इस यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं, जितना बाप समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, तो रावण भी समर्थ है, सर्वशक्तिमान है। उसका राज्य छीना जा रहा है आधा कल्प के लिए, तो विघ्न तो डालेंगे ही, तो विघ्न पड़ते जाते हैं और कभी कभी बच्चों को सहन भी करना होता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, अब साथ चलने की तैयारी तुम बच्चों को करनी है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। आज की मुरली से प्रश्न है, भगवान समर्थ होते भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? उत्तर है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं और पड़ने ही है। तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं, गीत बजता है लेकिन उस गीत का अर्थ भी नहीं समझते। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे है कन रस। अब बच्चे जानते हैं, दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? आत्मा जानती है, हम भी दूर के मुसाफिर है। हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ नहीं समझे। बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। आत्मा समझती है। ईश्वर बाबा कहते हैं, मैं टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूं। टेम्पररी शरीर में आते हैं तो टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूं। तुम स्थाई जीव आत्माएं हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीव आत्मा हूं, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता हूं। जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूं, अपना परिचय दे, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? बाप ने समझाया है,
रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। न जानने का मुख्य कारण है पवित्रता का बंधन है, पवित्र बनना पड़ता है। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। देह होते

हुए भी देह को भूल अपने को आत्मा समझना, ये भी मनुष्य को बंधन लगता है। एक तो पवित्रता का बंधन, दूसरा देह ना समझकर आत्मा समझना, ये भी बंधन लगता है। जिस दूर के मुसाफिर पति पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं, मैं सबको ले चलूंगा, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा, वापस तो सबको जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है, भारत खंड तो रहता ही है, प्रलय हो जाए तो भारत खंड ही समाप्त हो जाए, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है, सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो, हम भी बाबा के मददगार बने। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो, तो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य न आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है, तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्म समझ, बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही गाया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है, आते भी है तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, मधुबन आते हैं तो समझते हम बाप दादा के पास जाते हैं, तो ये फैमिली हो गई, यह है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है, शिव बाबा के बच्चे जो इतने भी के भाई बहने हैं यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं पांडव और कौरवों ने खेल खेला, जुए का खेल खेला, राजाएं दांव में रखी, अब राजाएं न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है, दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, पांडवों को हथियार आदि छिपाकर जाए रखा, ये सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उनों की आपस में लड़ाई चली है, लड़ाई राजाओं की लगती है, यह तो भाई भाई है, लड़ाई हुई है कौरव और यौवन की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी पांच पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे, खेल ही खलास, पहाड़ पर जाके गल मरे तो खेल ही खलास, राज्यों का अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी है हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है, अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। बाप का डायरेक्शन क्या है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र,
ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है, कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्व विवाह का नाम भी है, कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्व विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है, शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। उन्हों को ही मेहनत होती है, शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत बनना है, पढ़ना भी है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर है उनको तो हम ले नहीं सकते, ये भी बाबा डिसिप्लिन सिखाते, सगीर कुमारियों को हम ले नहीं सकते। वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती है, माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं, आती जाती रहे सेंटर पर। ये तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। सत माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर, आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता, बाबा जो मुसाफिर है सदा गोरा रहता है। प्योरिटी में रहने वाला हूं मैं, आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूं। और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं जो सबको हसीन बना दे। बाप समझाते हैं मैं आया हूं रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है, ब्रह्मा बाबा का शरीर है। यह पतित शरीर हमारा नहीं है, आते ही है इनके बहुत जन्म के अंत के जन्म में जो नंबर वन पावन था, वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर सोलह कला संपूर्ण था, अब कोई कला ही नहीं रही है। जब वही आत्मा पहले नंबर में थी तो सोलह कला संपूर्ण थी और अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब है ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहां आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई जानते ही नहीं है, बल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़े हो परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूं। वह तो मनुष्य मनुष्य को शास्त्र का ज्ञान देते हैं। वह हो गए भगत, सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको न जानने कारण दे अभिमान आ जाता है, शिव बाबा को न जानने कारण स्वयं को भी आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हैं। वह कोई यह तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मनिश्चय करो, दुनिया के कोई सत्संग में तो कोई समझाते नहीं कि अपने को आत्मनिश्चय करो, आत्मा पढ़ती है, ये कोई समझाते नहीं। क्यों? क्योंकि दे अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा कोई कहेंगे, तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्कर लगा चुके हैं। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, थोड़ा बहुत है, वह गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही गीता का एपिसोड,
वही महाभारत की लड़ाई

भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, हम अभी धीरे धीरे चढ़ती कला में हैं। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम में, फिर वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए, हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आए हैं। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप को मिटाए सुख का वर्षा देने बाप आए हैं। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं, हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया है। भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था, ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारणा करेंगे न कराएंगे, उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं। ये देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, बाबा कहते पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। जब किराए पर चढ़ाते तो वह हो गया सेकंड हैंड। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए। इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है, तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी है हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। बल बहुत धनवान है परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं, नहीं तो मास दो मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी, बाबा से मिलने की कशिश होगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएंगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिले, गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। बाप कहते हैं आत्माएं मन मना भव, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में, ऐसे नहीं कि यहां भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, क्या समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते ईश्वर तो समर्थ है फिर विघ्न क्यों। मनुष्य को पता ही नहीं रावण भगवान से भी तीखा है, ऐसे तो तीखा हो नहीं सकता है, लेकिन बाबा की निर्माणता, बाबा कहते भगवान से भी तीखा।

है, उनकी राजाई छीनी जाती है, तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे, शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्र में भी लिख दिया है, श्री कृष्ण को 16108 पटरानियां थी, सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई, अब रावण स्वर्ग में कहां से आए। झूठ तो बहुत है, कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं है, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है, यही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है। यज्ञ बुद्धि में ज्ञान है, ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहां ही है, बुद्धि में ज्ञान है बैठे यहां हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है। ये छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। इतनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधेली है, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो, जो कल्प पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहां स्थापना होगी, कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है, बाबा को भी आराम आ जाता है। नाम ये किंग ऑफ फ्लावर्स, 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, मुरझा नहीं जाता है, खुशबू फैलती रहेगी। यहां भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं, उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी होती है। जो खिले हुए खुशबूदार फूल है उनके आगे बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है, बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए वर्षा देने आए हैं, बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धियोग कहां भटकता तो नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा, समाना और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं, वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं
और सामना माया से करते हैं, न कि दैवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी है, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। सामना किसी व्यक्ति का नहीं, माया का सामना करना है। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। आज का व्यक्ति इशारा है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, दुनिया में लोग जिंदा होते भी नाउम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। अपने खुश नसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उनमें हिम्मत उमंग उत्साह आ जाए, इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति।

शांति। हम सभी इस सृष्टि की महान आत्माएं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मावत्स और निराकार शिव की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान